FM बैंड 103.2 MHz पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। आज शनिवार है, शक सम्मत 1948 के श्रावण माह की 31वीं तिथि, तदनुसार 22 अगस्त सन 2026। इस वक्त प्रातः के 5:56 हुए हैं। हमारी आज की प्रसारण सभा अब प्रारंभ होती है।

FM-बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। प्रातः के 6 बजने को हैं। हिंदी में समाचार थोड़ी ही देर में हम रिले करेंगे आकाशवाणी दिल्ली से।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं देवेंद्र त्रिपाठी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सुधार उनकी सरकार के लिए मजबूरी नहीं बल्कि प्रतिबद्धता है। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियां लोगों के हित और देश के विकास को ध्यान में रखकर बनाई जा रही हैं। नई दिल्ली में इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम में प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार नियम बदलने के साथ नियम बनाने की सोच भी बदल रही है। उन्होंने कहा कि भारत अब उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना के माध्यम से उद्योग और रोजगार के नए अवसर सृजित कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक स्तर पर संसाधनों को लेकर बढ़ता तनाव और दुनिया भर में अविश्वास नई चुनौतियां पैदा कर रहे हैं।
1: दुनिया ने बड़ा भयंकर एक रूप देखा है इन दिनों। रिसोर्सेज का वेपनाइजेशन हो रहा, अविश्वास का वातावरण विश्व के लिए अनेक नई चुनौतियां लेकर के आ रहा। लेकिन ऐसे समय में भी दुनिया भारत को ग्रोथ और होप के ब्राइट स्पॉट के रूप में देख रही है। भारत ने पिछले 10-12 साल में अपनी 25 करोड़ आबादी को गरीबी से बाहर निकाला है।
0: प्रधानमंत्री ने भारत की G20 अध्यक्षता के मंत्र एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य का उल्लेख करते हुए कहा कि दुनिया के सभी देशों का भविष्य एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। लाल किले से स्वतंत्रता दिवस संबोधन का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के विकास के लिए 7 प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इनमें विनिर्माण, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण, तकनीक और नवाचार, हरित अर्थव्यवस्था और समुद्री अर्थव्यवस्था शामिल है। भारत की मेजबानी में आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में आज ब्रिक्स युवा मंत्रियों की और कल ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक आयोजित की जाएगी। बैठकों की अध्यक्षता युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया करेंगे। राज्य मंत्री रक्षा खड़से भी इसमें शामिल होंगी। युवा कार्य मंत्रियों की बैठक में युवा विकास, शिक्षा कौशल, रोजगार, उद्यमिता जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। वहीं खेल मंत्रियों की बैठक में 11 ब्रिक्स देशों के मंत्री और प्रतिनिधि खेलों में आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। भारत की अध्यक्षता में जयपुर में हुई ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक कल जयपुर घोषणा पत्र को सर्वसम्मति से मंजूरी देने के साथ संपन्न हुई। जयपुर घोषणा पत्र में ब्रिक्स देशों के बीच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पर्यावरण के अनुकूल पर्यटन, कौशल विकास और सुविधाजनक यात्रा जैसे क्षेत्रों पर जोर दिया गया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भारत की सांस्कृतिक जड़ों को सुरक्षित रखने की जरूरत पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि संस्कृति देश को एकजुट करने वाली मजबूत कड़ी है। नई दिल्ली में कल अंतर हृदय कनेक्ट के मल्हार कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने युवाओं, विशेष रूप से जेन जी से धैर्य और जिम्मेदारी के साथ अर्थव्यवस्था को बेहतर और मजबूत बनाने में योगदान देने की अपील की। उन्होंने कहा कि युवाओं को भारत की अलग अलग सांस्कृतिक परंपराओं से जोड़ने वाले कार्यक्रम जरूरी हैं, इससे उनमें देश के प्रति जुड़ाव की भावना मजबूत होती है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने बांग्लादेश के 23वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। उन्हें संसद के उपाध्यक्ष कैसर कमाल ने पद की शपथ दिलाई। आलमगीर गुरुवार को राष्ट्रपति चुनाव में 255 वोट हासिल कर निर्वाचित हुए हैं। उन्होंने विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार ओली अहमद को हराया, जिन्हें 88 वोट मिले थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 5 सितंबर को नई दिल्ली में 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार इन शिक्षकों का चयन जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर 3 चरणों की चयन प्रक्रिया के अंतर्गत किया गया है।

0: यूएफ विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के महिला डबल्स सेमीफाइनल में आज भारत की त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी का सामना शीर्ष वरीयता प्राप्त चीन की लियू चेंग सू और टैन निंग से होगा। क्वार्टर फाइनल में कल त्रिशा और गायत्री ने चीन की जिया ई फैन और झांग शू श्यान को हरा दिया। इस जीत से त्रिशा और गायत्री ने प्रतियोगिता में भारत का एक पदक तय कर लिया है। इस बीच पुरुष डबल्स क्वार्टर फाइनल में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी चीन के लियांग वेई केंग और वांग चांग से हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गए। भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने लुजान डायमंड लीग में रजत पदक जीत लिया है। उन्होंने 88.05 मीटर तक भाला फेंक कर दूसरा स्थान हासिल किया। नीरज श्रीलंका के रमेश थरंगा पथिराज से सिर्फ 9 सेंटीमीटर पीछे रहे। रमेश ने 88.14 मीटर तक भाला फेंक कर पहला स्थान प्राप्त किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हिंदी में समाचार अभी हम रिले कर रहे थे आकाशवाणी दिल्ली से FM एंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। प्रातः के 6:05 हुए हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। कार्यक्रम आराधना की शुरुआत आइए करते हैं श्रोताओं अपनी मातृभूमि के चरणों में नमन करते हुए समूह स्वरों में इस देश वंदना के साथ।

वाणी जयराम की आवाज में ये कबीर भजन हम आप तक पहुंचा रहे थे, और अब लीजिए सुनिए सुधा मल्होत्रा की आवाज में ये भजन।

0: शीला वर्मा की आवाज़ में ये भक्ति रचना अभी आप सुन रहे थे और अब इसी के साथ कार्यक्रम आराधना का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। प्रातः के 6:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती की बात। कार्यक्रम में आज जानकारी का विषय है बाजरा के प्रमुख रोग एवं नियंत्रण। वाचन स्वर अभिनव गौरहा का।
1: किसान भाई हो, आज जानबो बाजरा के प्रमुख रोग और ओखर नियंत्रण। बाजरा ला हम अपन खाए बर मोटा अनाज के रूप में और पशु के चारा बर लगाथन। बाजरा के सबले महत्वपूर्ण रोग होते डाउनी मिल्ड्यू, जिला कई जगह हरित बाल रोग भी कहे जाते। ए रोग में पौधा के बढ़वा रुक जाते, पत्ती मन में प्यूरा या हल्का धारी दिखाई दिए लागते और पत्ती के निचला सतह में सफेद भुरवा रंग के फफून जैसन वृद्धि दिखाई दे सकत है। रोग बढ़े में बाजरा के बाली समान रूप से नहीं बने और ओखर जगह पत्ती नुमा जिन संरचना है वो निकल जाते। बचाव पर किसान भाई मन ल चाही कि स्वस्थ और प्रमाणित बीज के ही उपयोग करें। रोगग्रस्त पौधा ला खेत में छोड़े के बजाय निकाल के नष्ट करना है। बीज उपचार पर बाजरा में डाउनी मिल्ड्यू के विरुद्ध अनुशंसित फफूंदनाशी के उपयोग करना है। विशेष रूप से मेटालेक्सिकल आधारित बीज उपचार की सिफारिश कृषि अनुशंसाओं में करे जाते। दूसर रोग की बात करी एयरगार्ट रोग। बाजरा में दूसर महत्वपूर्ण रोग है एयरगार्ट। ए रोग खासकर फूल आए के समय दिखाई देते हैं। हमला संक्रमित फूल से सामान्य दाना बने के बजाय चिपचिपा मिठ जैसन पदार्थ निकलते जिले किसान अक्सर पहचान लेते। बाद में ए पदार्थ सूख के करिया रंग के दाना या संरचना में बदल जाते। ए रोग के बचाव पर हमला स्वस्थ और सफा बीज के इस्तेमाल करना बड़ जरूरी है। खेत में संक्रमित बाली दिखाई देते तो वाला सावधानी पूर्वक तोड़ के खेत से बाहर हमला फेंक देना है, नष्ट कर देना है। समय आए तब बुआई करे, ऐसा परिस्थिति से बचे जिनमें फूल आए के समय खेत में लगातार नमी बने रही थे। कभू कभू नमी जिन होते मौसम के बदलाव होते एहू मन हा अनेक फसल में रोग के कारण बनते। तीसर रोग के बात करी स्मट या कंडुआ रोग। बाजरा में स्मट या कंडुआ रोग में दाना के जगह काला रंग के चूर्ण से भरे संरचना दिखाई देते। रोगग्रस्त बाली बला देख के आसानी से पहचान करे जा सकते। एकर बचाव पर स्वस्थ बीज के उपयोग करना है। बीज उपचार ला प्राथमिकता देना है। खेत में रोगग्रस्त बाली दिखाई देते तो ओला तोड़ के खेत से बाहर नष्ट करना है ताकि रोग के बीजाणु अगला फसल तक झन पहुंच सके। चौथा रोग के बात करबो बाजरा के ब्लास्ट रोग। बाजरा में ब्लास्ट रोग से भी बड़ नुकसान पहुंचते फसल ला। एम पत्ती में छोट छोट धब्बा बनते। ब्लास्ट के मतलब होते छोट छोट होके बड़े हो जाते जौन हा बाढ़ के भुरवा या राख जैसन धब्बा में बदल जाते। ज्यादा संक्रमण होते तब पत्ती मन सूखे लगते और पौधा के बढ़वार हा प्रभावित होते। एकर नियंत्रण पर खेत में संतुलित उर्वरक के प्रबंधन ला करना जरूरी होते। ज्यादा जरूरत से ज्यादा नत्रजन मतलब यूरिया के उपयोग करे से हमन ला नुकसान होते। एकर पर कृषि विशेषज्ञ मन के सलाह से अनुशंसित फफूंदनाशी के उपयोग करना है। किसान भाई मन पर जरूरी बात कही हमेशा प्रमाणित और स्वस्थ बीज ला खरीदना है। दूसर बुआई से पहली अनुशंसित बीज के उपचार करना है। तीसर खेत में रोग ग्रस्त पौधा या बाली दिखाई देते तो ओमन ला निकाल के नष्ट करना है। चौथा खेत में जरूरत से ज्यादा नमी और असंतुलित यूरिया माने नत्रजन खाद के उपयोग से बचना है। पांच

0: वह एक ही खेत में लगातार एक ही फसल लगाए से हमन ला बांचना है, संभव हो सके तब फसल चक्रण ला अपनाए। और सबले महत्वपूर्ण बात, कोनो भी रोग के लक्षण दिखाई दे तब बिना पहचान के अपन मन के या दुकानदार कहले दवाई छिड़काव नहीं करना है भाई। दुकान वाले लता अपन व्यवस्था बेचना है। कृषि विभाग, कृषि विज्ञान केंद्र या कृषि विशेषज्ञ से रोग के सही पहचान करा के ही अनुशंसित दवाई के अवखर मात्रा के उपयोग करना है। तो किसान भाई हो, हम यही कहबो कि स्वस्थ बीज, बीज उपचार और सफा बढ़िया खेत, समय में निगरानी, बाजरा या कोनो भी फसल के बढ़िया पहचान है। राम राम, जय जोहार।
1: कार्यक्रम खेती की बात अभी आप सुन रहे थे। आज जानकारी का विषय था बाजरा के प्रमुख रोग एवं नियंत्रण। वाचन स्वर था अभिनव गौरहा का। प्रातः के 6:35 हुए हैं और अब लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम रामचरित मानस गान। कार्यक्रम में मुख्य गायन स्वर बशीर अहमद का, संगीत संयोजन सतीश भाटिया का।

श्री राम लक्ष्मण और सीता को वन के मार्ग पर छोड़ अयोध्या लौटते हुए सुमंत्र को वैसा ही पश्चाताप हो रहा है जैसा किसी विवेकशील वेद के ज्ञाता तथा साधु चरणों में आसक्त व्यक्ति के मन में हो सकता है यदि वो धोखे से मदिरापान कर ले। भयानक संताप के कारण उनकी आंखों में आंसू उमड़ आए हैं, दृष्टि मंद हो गई है, कानों से कुछ भी सुनाई नहीं देता और बुद्धि काम नहीं कर रही, होठ सूख गए हैं, जीवा काम नहीं करती। आसन्न मृत्यु के इन सभी लक्षणों के बावजूद प्राण शरीर नहीं छोड़ रहे, क्योंकि मन के किसी कोने में यह आशा बंधी है कि 14 वर्ष बीत जाने पर श्री राम अयोध्या लौटेंगे और एक बार फिर उनके दर्शन हो सकेंगे। परंतु रह रहकर वो इस सोच से व्याकुल हो उठते हैं कि अयोध्या लौटकर वो लोगों को क्या उत्तर देंगे। उन्हें अकेला वापस आया देख कोई उनसे बात भी नहीं करेगा, शोक में डूबी माताओं का सामना वो किस प्रकार कर सकेंगे। आशंकाओं में डूबते उतराते सुमंत्र अयोध्या के समीप पहुंचे, किंतु दिन के प्रकाश में नगर में प्रवेश करने का उन्हें साहस नहीं हुआ।

0: अभी हम प्रसारित कर रहे थे कार्यक्रम रामचरितमानस का गायन स्वर बसीर अहमद का, संगीत संयोजन था सतीश भाटिया का। प्रातः के 6:45 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम चिंतन। कार्यक्रम में आज श्रोता सुनेंगे अहिंसा का अर्थ, इस विषय पर डॉक्टर शलभ तिवारी के विचार।
1: अहिंसा का सामान्य अर्थ किसी को न मारने से जोड़ा जाता है। ये आंशिक अहिंसा है। गांधी जी ने इसे विस्तृत रूप दिया और बताया कि अहिंसा मनसा वाचा और कर्मणा होती है। किसी का भी अहित न सोचना मनसा अहिंसा है। अनर्गल संभाषण से किसी को दुख न पहुंचाना वाचा अहिंसा है। और अंत में शक्ति का प्रयोग कर किसी को प्रताड़ित न करना कर्मणा अहिंसा है। क्रोध, द्वेष और स्वार्थ के कारण हिंसा का उद्भव होता है। इसके विपरीत अहिंसा में घोर शत्रु के प्रति भी प्रेम और मैत्री की भावना रहती है। अहिंसा का घनिष्ठ अंतर संबंध सत्य से है, जिसका आशय है होना या अस्तित्व होना। जिस सत्य की प्राप्ति के लिए व्यक्ति को दृढ़ प्रतिज्ञ होना चाहिए, वो सापेक्ष न होकर निरपेक्ष सत्य होना चाहिए। सापेक्ष सत्य परिस्थितिजन्य होता है, परंतु निरपेक्ष सत्य देश काल और परिस्थिति से ऊपर होता है, वो शाश्वत होता है। गांधी जी का दृष्टिकोण था कि इस निरपेक्ष सत्य रूपी साध्य को प्राप्त करने के लिए साधन भी पवित्र, नैतिक और अहिंसक होना चाहिए। ऐसा होना केवल अहिंसक समाज में संभव है। सत्य में शक्ति होती है, साहस होता है और होती है अहिंसा। सत्य का मूल अहिंसा है, जिसे केवल साहसी ही आत्मसात कर सकता है। गांधी जी ने सार्वजनिक जीवन में सत्य, श्रम की महत्ता और अहिंसा को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। गांधी जी ने एक अमिट और शाश्वत सत्य के रूप में प्रतिपादित किया था कि श्रम महत्वपूर्ण है, फिर चाहे वो श्रम किसी भी स्तर पर किया जाए प्रशंसनीय है। श्रम के स्तर को लेकर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। गांधी जी अहिंसा को आध्यात्मिक, नैतिक और सर्वोच्च शक्ति का प्रतीक मानते थे। आध्यात्मिक और नैतिक रूप में अहिंसा पूर्णता लिए होती है। इसे व्यक्ति अपनी नैतिकता और अंतरात्मा की आवाज पर अपनाता है। इसमें शक्ति का असीमित स्रोत होता है। ये जागृत अहिंसा है। अहिंसा का दूसरा रूप औचित्यपूर्ण अहिंसा है। इसे हम आवश्यकता पड़ने पर औचित्य के आधार पर स्वीकारते हैं। ईमानदारी और दृढ़ता से पालन किया जाए तो ये लाभदायक सिद्ध होती है। अहिंसा का तीसरा रूप है निष्क्रिय अहिंसा। ये वस्तुतः अहिंसा है ही नहीं, भले ऊपर से दिखती हो। ये भीरू प्रकृति या कायरों के भय, डर और मजबूरी का परिणाम होती है। ऐसी अहिंसा की गांधी जी निंदा करते हैं। अहिंसा को साहसी और शक्तिशाली ही आत्मसात कर सकता है, कमजोर और कायर नहीं। गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा दर्शन या चिंतन होने से कहीं अधिक कार्य पद्धति और जीवन शैली है। सामाजिक आर्थिक परिवर्तन और मानव सभ्यता का आधार अहिंसा है। अहिंसा ही समाज का आधार है। उन्होंने जीवन और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले जीव जंतुओं को मारने का विरोध नहीं किया है, और न ही जीवन निर्वाह के लिए की जाने वाली हिंसा को पाप माना है। एक शाकाहारी व्यक्ति हिंसक हो सकता है और एक मांसाहारी व्यक्ति अहिंसक हो सकता है। अहिंसा का व्रत

शत्रु की बुराइयों से घृणा कर सकता है, शत्रु से नहीं। अहिंसा में धैर्य का तत्व अधिक महत्व रखता है। भारत की स्वाधीनता परम सत्य थी तो अहिंसा आधारित सविनय अवज्ञा असहयोग भारत छोड़ो आंदोलन उसके आवश्यक अस्त्र रहे हैं। गांधी चिंतन में व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात हो या समाज की, राज्य में शक्ति के केंद्रीकरण की बात हो या विकेंद्रीकरण की, शासन के कार्यों की अधिकता की बात हो या कमी की, कुटीर उद्योगों की बात हो या अन्य पूंजी

0: या विकेंद्रीकरण की, शासन के कार्यों की अधिकता की बात हो या कमी की, कुटीर उद्योगों की बात हो या अन्य, पूंजीपति की संपत्ति के संबंध में न्यासिका सिद्धांत हो या एक सफाई करने वाले आम आदमी की भांति मान्यता देने की बात हो, समूचे चिंतन की आधारशिला अहिंसा की अवधारणा है। गांधी जी का अहिंसा चिंतन इतना सशक्त है कि वो समूचे समाज की पुनर्संरचना करने और उसे अधिकाधिक विकसित करने में पूर्णतः समर्थ और सक्षम है। गांधी जी ने राजनीति में प्रवेश करते ही सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों को जनता के समक्ष रखा और अहिंसा आधारित असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा, भारत छोड़ो आंदोलन के द्वारा भारत की निरीह सुप्त प्राय जनता में न केवल चेतना की नई लहर का संचार किया अपितु उन्हें सशक्त आत्मविश्वास प्रदान किया। गांधी जी राजनीतिज्ञों में संत थे और संतों में राजनीतिज्ञ, वे इंसानों में चमत्कार थे।
1: कार्यक्रम चिंतन में अभी श्रोता सुन रहे थे अहिंसा का अर्थ, इस विषय पर डॉक्टर शलभ तिवारी के विचार। प्रातः के 6:50 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। कार्यक्रम विवरण में आपको जानकारी दे दें आज की सभा में प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की। आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से हम रिले करेंगे समन्वित कार्यक्रम डॉक्टर की सलाह 8:30 पर और कार्यक्रम बातों बातों में 9:00। शाम 7:30 पर रिले करेंगे कार्यक्रम किसानवाणी।

प्रातःकालीन सूचनात्मक कार्यक्रम आज सुबह सुनिएगा 7:05 पर, और फिल्मी गीतों का आनंद लीजिएगा 7:30 पर कार्यक्रम सदाबहार नगमे में। नए तराने कार्यक्रम में 10:30 पर, और 5:05 पर कार्यक्रम चित्रपट संगीत में।

विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों से श्रोता जुड़ेंगे दिन के 11 बजे, दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक और रात 9:15 से रात 11 बजे तक। सुबह 10 बजे कार्यक्रम अमराई हमले कराएंगे। कार्यक्रम में सुनेगा छत्तीसगढ़ी लोकगीत। कलाकार होंगे दिलीप यादव, कुमारी गोस्वामी साहू, जीडी मानिकपुरी और साथी। प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ का प्रसारण होगा शाम 5 बजे। इस कार्यक्रम के प्रायोजक होंगे सीएफ अनिभाग सरगुजा। फरमाइशी कार्यक्रम ईमेल करें गीत सुने शाम 5:35, शाम 6:20 और शाम 7 बजे श्रोता सुन सकते हैं। रात 8 बजे कार्यक्रम सुगम संगीत में सुनिएगा गायिका नूरजहां के गाए कुछ गैर फिल्मी नगमे। और रात 8:15 का समय होगा कार्यक्रम रजनीगंधा का। समाचारों का अनुप्रसारण प्रतिदिन की तरह उनके निर्धारित समय पर किया जाएगा। इसी के साथ कार्यक्रम विवरण यहीं समाप्त। श्रोताओं कृपया एक महत्वपूर्ण सूचना सुनिए। आकाशवाणी बिलासपुर द्वारा एक विशेष फोन इन कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग सोमवार दिनांक 24 अगस्त 2026 को सुबह 11:30 से 12:30 के बीच की जाएगी। इस विषय पर जानकारी देने के लिए स्टूडियो में उपस्थित होंगे नगर के DIG वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री रजनेश सिंह। श्रोता हमें 07752266592 इस नंबर पर कॉल करें और अपनी समस्याएं सीधे DIG सर से पूछें। आपके फोन कॉल्स का हमें इंतजार रहेगा। श्रोताओं समय याद रखिएगा सोमवार सुबह 11:30 से 12:30 के बीच। हमारा फोन नंबर 07752266592 इस नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। सूचना समाप्त हुई।

FM 103.2 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। प्रातः के 6:55 होने को हैं। थोड़ी ही देर में संस्कृत और हिंदी में समाचार हम अनुप्रसारित करेंगे आकाशवाणी दिल्ली से।

0: शिक्षकेषु षड्विंशतिः पुरुषाः द्वाविंशति च महिलाः सन्ति। भारतर्तु विज्ञानविभागेन अद्य पूर्वमध्यप्रदेशे प्रचण्डात् अतिप्रचण्डवृष्टेः पूर्वानुमानं कृतमस्ति। असम सिक्किम मेघालय नागालैंड मणिपुरम मिजोरम त्रिपुरा राज्येषु सोमवासरपर्यन्तं प्रचण्डवृष्टेः संभावना वर्तते। अद्य दिल्ली पंजाब हरियाणा बिहार छत्तीसगढ़ पूर्वोत्तर प्रदेश ओडिशा उत्तराखंड हिमालयीय प्रदेशानां केषुचित् भागेषु अपि समान स्थितेः संभावना वर्तते इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सुधार उनकी सरकार के लिए मजबूरी नहीं बल्कि प्रतिबद्धता है। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियां लोगों के हित और देश के विकास को ध्यान में रखकर बनाई जा रही हैं। नई दिल्ली में इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम में प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार नियम बदलने के साथ नियम बनाने की भी बदल रही है। उन्होंने कहा कि भारत अब उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना के माध्यम से उद्योग और रोजगार के नए अवसर सृजित कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक स्तर पर संसाधनों को लेकर बढ़ता तनाव और दुनिया भर में अविश्वास नई चुनौतियां पैदा कर रहे हैं।
2: दुनिया ने बड़ा भयंकर एक रूप देखा है इन दिनों। रिसोर्सेज का वेपनाइजेशन हो रहा, अविश्वास का वातावरण विश्व के लिए अनेक नई चुनौतियां लेकर के आ रहा। लेकिन ऐसे समय में भी दुनिया भारत को ग्रोथ और होप के ब्राइट स्पॉट के रूप में देख रही है। भारत ने पिछले 10-12 साल में अपनी 25 करोड़ आबादी को गरीबी से बाहर निकाला है।
1: प्रधानमंत्री ने भारत की G20 अध्यक्षता के मंत्र एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य का उल्लेख करते हुए कहा कि दुनिया के सभी देशों का भविष्य एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। गृहमंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल और सशस्त्र सीमा बल को 1129 एकड़ जमीन देने के राज्य सरकार के फैसले की सराहना की है। उन्होंने कहा कि नई सरकार बनने के 45 दिन के भीतर ये जमीन दी गई, जबकि सीमा बाड़ के लिए जमीन की मांग 2014 से लंबित थी। सिलीगुड़ी में एक कार्यक्रम में श्री शाह ने कहा कि घुसपैठ रोकने और देश की सुरक्षा के लिए सीमा पर बाड़ लगाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि अवैध प्रवासियों की पहचान, उन्हें हटाने और वापस भेजने की कार्रवाई जारी रहेगी। भारत की अध्यक्षता में जयपुर में ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक जयपुर घोषणा पत्र को सर्वसम्मति से मंजूरी के साथ कल संपन्न हो गई। घोषणा पत्र में ब्रिक्स देशों के बीच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पर्यावरण अनुकूलन, पर्यटन, कौशल विकास और सुविधाजनक यात्रा जैसे क्षेत्रों पर बल दिया गया है। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने की। उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य में पर्यटन की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आज ब्रिक्स युवा कार्य मंत्रियों और कल ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक होगी। इन बैठकों की अध्यक्षता युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया करेंगे। खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से भी इसमें शामिल होंगी। सरकार ने कहा है कि देश में चीनी का पर्याप्त भंडार है और घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए चीनी की कोई कमी नहीं है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने बताया कि चीनी की कीमत पिछले कुछ हफ्तों में 48 रुपए से बढ़कर करीब 55 रुपए प्रति किलो हो गई है और सरकार लगातार कीमतों पर नजर रख रही है। कीमतों पर नियंत्रण के लिए सरकार ने चीनी कारोबारियों पर 400 टन की भंडारण सीमा लगाई है। ये सीमा 1 अगस्त से 30 नवम्बर तक लागू है। भारत और नेपाल ने सीमा प्रबंधन और सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। देहरादून में हुई भारत नेपाल संयुक्त कार्य समूह की 14वीं बैठक में दोनों देशों ने आपसी सहयोग के विभिन्न मुद्दों की समीक्षा की। 2 दिन की इस बैठक में सीमा पार अपराध रोकने, बुनियादी ढांचे, सड़क और रेल संपर्क मजबूत करने तथा अतिक्रमण हटाने पर चर्चा हुई। दोनों पक्षों ने विभिन्न क्षेत्रों में आपसी तालमेल और क्षमता बढ़ाने पर भी विचार साझा किए और इन मुद्दों पर आगे भी बातचीत जारी रखने पर सहमति जताई। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने

0: मध्यप्रदेश के 23वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। उन्हें संसद के उपाध्यक्ष कैसर कमाल ने पद की शपथ दिलाई। एफआईएच पुरुष हॉकी विश्व कप के दूसरे चरण में आज अम्स्टरडेम में भारत का सामना मेजबान नीदरलैंड से होगा। मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: समाचारों का अनुप्रसारण अभी आकाशवाणी दिल्ली से किया जा रहा था। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 7:05 हुए हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है प्रातःकालीन सूचनात्मक कार्यक्रम आज सुबह।

आज सुबह कार्यक्रम आज सुबह सुनने वाले सभी श्रोता साथी, स्वीकार कीजिए आपकी अपनी रेडियो साथी खुशबू का प्यार भरा नमस्कार।

श्रोताओं, सावन का ये महीना अपने पूरे रंग में है। कहीं रिमझिम फुहारे हैं तो कहीं झमाझम बारिश का दौर चल रहा है, और ये मौसम किसानों के लिए नई उम्मीदें लेकर आता है और सभी के लिए आनंद का अवसर बनता है। साथियों, सावन अपने अंदर समेटे लाता है तीज त्योहारों की सौंधी महक और पूरी प्रकृति को एक नई हरियाली से भर देता है। लेकिन बारिश केवल आनंद लेने का मौसम नहीं है, ये एक जिम्मेदारी का भी मौसम है। ये बातें हम सभी जानते हैं कि जितना पानी आज बरस रहा है वही आने वाले महीने में हम सब की प्यास बुझाएगा। इसलिए पानी सिर्फ बरसना ही नहीं चाहिए, उसे सहेजना भी चाहिए। और इसी सोच को आगे बढ़ाता है अभियान कैच द रेन, यानी बारिश की हर बूंद को पकड़िए और उसे भविष्य के लिए बचाइए। हम सभी जानते हैं कि पानी को बचाने के लिए हम सोखता गड्ढों के माध्यम से जमीन में पानी को उतार सकते हैं, छत पर गिरने वाले पानी को पाइप के जरिए टंकी में जमा किया जा सकता है। और ध्यान देने वाली बात है कि पानी के साथ गंदगी को जल स्रोतों तक ना पहुंचने दें। नालियों में प्लास्टिक और कचरा डालने से जल भराव बढ़ता है, दूषित पानी भी बीमारी का कारण बन सकता है। श्रोताओं, बरसात सिर्फ हरियाली और ठंडी फुहारों की मौसम नहीं, सिर्फ आनंद लेने का ये मौसम नहीं है, अपने साथ कई तरह की चुनौतियां भी लेकर आता है। खासकर जब नदी नाले उफान पर हों तो सबसे ज़रूरी हो जाता है कि उत्सुकता में भी हम अपनी जान को जोखिम ना डालें। लोग उफनते नाले या नदी के पुल पर खड़े होकर पानी का बहाव देखने लगते हैं। कभी कभी युवा रील्स के चक्कर में नदी नालों में चले जाते हैं, पानी के गहराई वाले जगहों में चले जाते हैं। तो कभी कभी तो बच्चे भी पानी के करीब चले जाते हैं। तेज बहाव के पुल नालों के किनारे से जाने से बचें, क्योंकि सुरक्षा श्रोताओं अपने हाथ में है।

0: जब नदी नालों में पानी ज्यादा भरा रहता है तो वहां की मिट्टी फिसलन भरी हो जाती है, जिससे कोई भी दुर्घटना घट सकती है। साथ ही इस मौसम में जहरीले कीड़े, सांप और मच्छरों से बचे, और इनसे बचने के लिए हमें अपने आसपास सफाई रखना है। डेंगू मलेरिया से बचाव के लिए पानी जमा ना होने दें, ये तो हम सभी जानते हैं। साथ ही मच्छरदानी का हमें उपयोग ज़रूर करना है। रात को सोए तो पूरे बाही के कपड़े पहने, और सावन के इस महीने में साथ ही साथ खान पान पर भी ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। साफ पानी पिए, भोजन ढक कर रखें, और हो सके तो बाहर का खाना हमें अवॉइड करना है। और यदि लगातार बुखार, सिर दर्द, बदन दर्द, उल्टी जैसे कुछ भी लक्षण हमें दिखाई देते हैं तो डॉक्टर से सलाह लेना ज़्यादा बेहतर है, ना कि दुकान जाकर, मेडिकल दुकान जाकर। हमें अपने मन से, केमिस्ट से कोई भी दवाई नहीं लेनी है, हमें डॉक्टर को दिखाना है और उनकी सलाह से जो भी दवाइयाँ हैं उनका हमें इस्तेमाल करना है। और श्रोताओं, इस समय क्या होता है ना, सड़कें भी बहुत फिसलन भरी हो जाती है, ये तो हम सब जानते ही हैं। तो हमें कोशिश करना है कि अपने जो वाहन की रफ्तार है वो हमें धीमी रखना है, जल्दबाजी में कहीं ना जाएं। बेहतर होगा कि समय से पहले हम निकल जाएं। हेलमेट का उपयोग करना है, और दो पहिया वाले हेलमेट का उपयोग करें, चार पहिया वाहन वाले सीट बेल्ट का उपयोग करें, क्योंकि इस समय सड़कें फिसलन भरी हो जाती हैं और साथ ही कीचड़, गड्ढे, पानी भराव और कम दृश्यता भी बहुत बड़ी चुनौती बन जाती है। तो सड़क पर धीमी गति से वाहन चलाएं, और साथ ही सड़क पर निकले तो यातायात नियमों का पालन जरूर करें, क्योंकि सुरक्षित रहेंगे हम तभी इस खूबसूरत मौसम का पूरा आनंद ले पाएंगे। और श्रोताओं, इसी सावधानी और जिम्मेदारी के साथ आज की सुबह को हम आगे बढ़ाते हैं और सुनवाते हैं आज का ट्रैफिक अपडेट, जो हमें मिलता है उमा शंकर पांडे से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी बिलासपुर के दैनिक प्रस्तुति ट्रैफिक अपडेट साफ बिलासपुर के साथ मैं हूं उमा शंकर पांडे। कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। समग्र सहायक शिक्षक संघ के द्वारा अपनी मांगों के संबंध में आज प्रातः 11 बजे जिले के सभी ब्लॉक में पैदल रैली निकालकर बीईओ कार्यालय, तहसील कार्यालय या एसडीएम कार्यालय में ज्ञापन प्रस्तुत किए जाने की योजना है। रैली में चल रहे सभी सदस्य इस बात का ध्यान रखें कि आपकी रैली से कहीं भी आम यातायात तनिक भी बाधित ना हो। सभी सड़क के एक किनारे चलें और एम्बुलेंस या फायर ब्रिगेड जैसे वाहनों के आने पर तत्काल साइड दे। इसके साथ ही शहर से लेकर गांव गांव तक, या यूं कहें कि संपूर्ण बिलासपुर जिले की यातायात व्यवस्था बिल्कुल सामान्य है। मित्रों, शासकीय तौर पर सभी प्रकार के वाहनों के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर के संबंध में एक नई व्यवस्था लागू की गई है। प्रत्येक वाहन के आगे एवं पीछे एक निश्चित आकार के नंबर प्लेट पर संबंधित वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा जाता है। इसी रजिस्ट्रेशन नंबर से वाहन और वाहन मालिक की पहचान होती है। पहले इन नंबर प्लेटों में काले पेन से रजिस्ट्रेशन नंबर हाथ से ही लिखा जाता रहा है, किंतु अब संपूर्ण भारत देश में इसमें आमूल चूल परिवर्तन किया गया है। अब यह नंबर मानक आकार के नंबर प्लेट पर अधिकृत कंपनी के द्वारा मशीन से प्रेस कर बनाया जाता है, जो नंबर प्लेट पर उभार लिए होता है, ताकि अब इस नंबर प्लेट पर कोई छेड़छाड़ ना कर सके। इसे हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट कहते हैं। अब प्रत्येक वाहन में इसे अनिवार्य किया गया है। इस नंबर प्लेट के न होने पर बड़े जुर्माने का प्रावधान है, इसलिए अब आप अपना सब काम रोक कर अपने वाहन में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर लगवाइए, क्योंकि शहर में लगे 500 कैमरे रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट भी चेक कर रहे हैं। मानक नंबर प्लेट के न होने पर चालान सीधे आपके पास भेजा जा रहा है। सतर्क हो जाइए, हमेशा यातायात नियमों का पालन करें। आपकी यात्रा शुभ हो।
0: ट्रैफिक अपडेट।

अभी आप सुन रहे थे उमा शंकर पांडे से। और अब श्रोताओं, कार्यक्रम आज सुबह में समय हो गया है इस प्यारे से गीत का, तो आइए आनंद लेते हैं लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज में इस गीत का।

0: करे शोर।
1: पवन करे शोर।
0: अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर।

जी हाँ श्रोताओं, सावन के इस महीने का पूरा आनंद उठाइए, लेकिन सावधानियों के साथ। और अब बात करते हैं हमारे अगले चर्चा की। आज 22 अगस्त को धर्म या विश्वास के आधार पर हिंसा के कृत्यों के पीड़ितों की स्मृति में अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में भी मनाया जाता है साथियों इस दिन को। और इस दिन को मनाने का उद्देश्य उन लोगों को याद करना और धार्मिक या आस्था आधारित हिंसा की निंदा करना है जो ऐसी हिंसा के शिकार हुए हैं। साथियों, इस दिवस का संदेश बहुत सीधा है कि किसी भी व्यक्ति की आस्था, विचार या विश्वास के आधार पर उसके साथ हिंसा स्वीकार्य नहीं हो सकती। और श्रोताओं, बात हम कर रहे हैं हिंसा अहिंसा की, तो याद आता है साल 1921 का वो समय। भारत अंग्रेजी शासन के अधीन था, देश में स्वतंत्रता आंदोलन तेज हो रहा था और महात्मा गांधी लोगों को स्वदेशी अपनाने और विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करने के लिए प्रेरित कर रहे थे। साल 1921 में गांधी जी ने विदेशी वस्त्रों की होली जलाकर एक बड़ा संदेश दिया। इससे पहले 31 जुलाई साल 1921 को गांधी जी ने बॉम्बे में विदेशी कपड़ों की पहली बड़ी होली जलाई थी और ये असहयोग आंदोलन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। इसने स्वदेशी आंदोलन को लोकप्रिय बनाया। विदेशी कपड़ों को आग के हवाले करने का ये दृश्य केवल कपड़ों को जलाने का दृश्य नहीं था, ये उस मानसिकता के खिलाफ एक प्रतीकात्मक विरोध था जिसे भारत का बाजार विदेशी वस्तुओं पर निर्भर होता जा रहा था। साथियों, गांधी जी चाहते थे कि भारत का आम आदमी अपने देश के बने वस्त्रों को अपनाए, स्वदेशी अपनाए, अपने गांव के कारीगरों और बुनकरों को सहारा दे और अपने श्रम पर विश्वास करे। और खादी भी इसी विचार का प्रतीक बनी। चरखे की आवाज केवल सूत काटने की आवाज नहीं थी, वो आत्मनिर्भरता की भी आवाज थी। साथियों, आज परिस्थितियां बदल चुकी हैं। बाजार में हमारे सामने देश दुनिया की अनगिनत उपयोग की वस्तुएं उपलब्ध हैं, लेकिन गांधी जी के स्वदेशी विचार का एक पहलू आज भी हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। स्थानीय उत्पादों और स्थानीय श्रम को सम्मान देना, हमारे गांव में किसान, बुनकर, हस्तशिल्पी और छोटे छोटे घरेलू उद्योगों से जुड़े लोग अपने श्रम से हमारे समाज को आगे बढ़ाते हैं और जब हम उनके बनाए सामानों को, उत्पादों को महत्व देते हैं तो केवल कोई वस्तु ही नहीं खरीदते बल्कि किसी मेहनतकश परिवार की आजीविका को भी मजबूती देते हैं। और इसी भावना को लिए हुए आइए सुनते हैं ये प्यारा संगीत।

0: भारत सरकार के नियमों के अनुसार 450 से अधिक उत्पाद जैसे ज्वेलरी, टॉयज, हेलमेट, इलेक्ट्रॉनिक्स इत्यादि ऐसे हैं जिनके निर्माण, आयात या सेल के लिए BIS मानक चिन्ह आवश्यक है। एक जागरूक ग्राहक बनिए, किसी भी प्रोडक्ट को खरीदते वक्त उस पर BIS मानक चिन्ह जरूर देखें और उस प्रोडक्ट की प्रामाणिकता जाँचने के लिए आज ही डाउनलोड करें BIS केयर ऐप। भारत सरकार के नियमों के अनुसार 450 से अधिक उत्पाद जैसे ज्वेलरी, टॉयज, हेलमेट, इलेक्ट्रॉनिक्स इत्यादि ऐसे हैं जिनके निर्माण, आयात या सेल के लिए BIS मानक चिन्ह आवश्यक है। एक जागरूक ग्राहक बनिए, किसी भी प्रोडक्ट को खरीदते वक्त उस पर BIS मानक चिन्ह जरूर देखें और उस प्रोडक्ट की प्रामाणिकता जाँचने के लिए आज ही डाउनलोड करें BIS केयर ऐप।
1: और अब कार्यक्रम में बात करते हैं उस साहित्यकार की, श्रोताओं जिन्होंने समाज की विसंगतियों पर मुस्कुराते हुए लेकिन बेहद तीखा सवाल किया। आज 22 अगस्त का दिन हिंदी साहित्य के महान व्यंगकार हरिशंकर परसाई की जयंती का दिन है। साथियों, परसाई जी ने व्यंग को केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं बनाया, उनकी रचनाओं में समाज की कमजोरियों, दिखावे, पाखंड और हमारी दोहरी मानसिकता पर भी गहरी चोट मिलती है। उनकी खासियत थी कि वे बात को इस तरह कहते कि पाठक पहले मुस्कुराता है और फिर अचानक सोचने लगता है कि अरे, ये तो हमारे आसपास ही हो रहा है। साथियों, हम ईमानदारी की बातें करते हैं लेकिन छोटी सी सुविधा के लिए नियम तोड़ देते हैं। हम सादगी की प्रशंसा तो करते हैं लेकिन दिखावे की दौड़ में शामिल हो जाते हैं। हम स्वच्छता की बात रोज करते हैं लेकिन बारिश के बाद घर के आसपास जमा पानी हटाने में भी लापरवाही करते हैं। और ये ही परसाई जी का व्यंग आज भी हमारे काम

वो हमें दूसरों पर हंसने से पहले खुद पर हंसना सिखाता है, अपने भीतर झांकना सिखाता है और ये समझाता है कि समाज को बदलने की शुरुआत अक्सर अपने व्यवहार से ही होती है। और अब इन्हीं बातों और जानकारी के साथ कार्यक्रम आज सुबह से दीजिए मुझे अनुमति।

0: आज सुबह।
1: कार्यक्रम आज सुबह अभी आप सुन रहे थे और अब लीजिए समय हो चला है कार्यक्रम सदाबहार नगमे का। कार्यक्रम का पहला गीत लीजिए सुनिए, बेमिसाल फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज़ है, आनंद बख्शी के बोल, आर डी बर्मन का संगीत।

लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म बेमिसाल का ये गीत अभी आपने सुना। आनंद बख्शी के बोल थे, आरडी बर्मन का संगीत। और अब लीजिए सुनिए थोड़ी सी बेवफाई, इस फिल्म का गीत आवाज दी है अनवर और सुलक्षणा पंडित ने। नक्शलायलपुरी के बोल, खय्याम का संगीत।

0: हाँ ये रिंग अच्छी है, बीवी को पसंद भी आ जाएगी।
1: अरे यस सर, आपकी चॉइस बहुत अच्छी है और ये डिजाइन भी नया है।
0: डिजाइन नया है वो तो ठीक है, लेकिन सोने की प्योरिटी का प्रूफ कहाँ मिलेगा?
2: बनिए एक जागरूक ग्राहक, आज ही डाउनलोड कीजिए BIS केयर ऐप। सोना खरीदने से पहले BIS केयर ऐप पर HUID कोड अवश्य वेरीफाई करें।

0: हाँ ये रिंग अच्छी है, बीवी को पसंद भी आ जाएगी।
1: अरे यस सर, आपकी चॉइस बहुत अच्छी है और ये डिजाइन भी नया है।
0: डिजाइन नया है वो तो ठीक है, लेकिन सोने की प्योरिटी का प्रूफ कहाँ मिलेगा?
2: बनिए एक जागरूक ग्राहक, आज ही डाउनलोड कीजिए BIS केयर ऐप। सोना खरीदने से पहले BIS केयर ऐप पर HUID कोड अवश्य वेरीफाई करें।
3: कृपया एक सूचना सुनिए। बढ़ते साइबर अपराध और उनसे सुरक्षा, आकाशवाणी बिलासपुर द्वारा एक विशेष फोन इन कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग सोमवार दिनांक 24 अगस्त 2026 को सुबह 11:30 से 12:30 के बीच की जाएगी। श्रोताओं, इस विषय पर जानकारी देने के लिए स्टूडियो में उपस्थित होंगे नगर के DIG वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री रजनेश सिंह। श्रोता हमें 07752-266592 इस नंबर पर कॉल करें और अपनी समस्याएं सीधे DIG सर से पूछें। आपके फोन कॉल्स का हमें इंतजार रहेगा। समय याद रखिएगा श्रोताओं, सोमवार सुबह 11:30 से 12:30 के बीच। सूचना समाप्त हुई और अब कार्यक्रम में आपको सुनवाते हैं लव फिल्म का ये गीत SP बालसुब्रमण्यम और चित्रा की युगल आवाजों में ये गीत है। मजरूह सुल्तानपुरी ने इसे लिखा है, संगीत से संवारा है आनंद मिलिंद ने।

लव फिल्म का ये गीत अभी श्रोता सुन रहे थे। आवाज़ें थी SP बाला सुब्रमण्यम और चित्रा की। मजरूह सुल्तानपुरी की रचना थी, संगीत से संवारा था आनंद मिलिंद ने। और अब इसी गीत के साथ ही कार्यक्रम सदाबहार नगमे का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। FM एंड 103.2 MHz पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 8 बजने को हैं समाचार, अब रिले होंगे आकाशवाणी दिल्ली से।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सुधार कोई मजबूरी नहीं बल्कि सरकार की प्रतिबद्धता और दृढ़ विश्वास है। कहा, सरकार की नीतियां लोगों के हित और देश के विकास को ध्यान में रखकर बनाई गई। गृहमंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए 1129 एकड़ जमीन देने के राज्य सरकार के फैसले की सराहना की। भारत और नेपाल ने सीमा प्रबंधन और सुरक्षा में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों ने पर्यटन, एआई और सुविधाजनक यात्रा पर केंद्रित जयपुर घोषणा पत्र को स्वीकृति दी। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के महिला डबल्स सेमीफाइनल में आज भारत की त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद का मुकाबला चीन की शीर्ष वरीयता प्राप्त जोड़ी से। और एम्स्टर्डम में पुरुष हॉकी विश्व कप के दूसरे चरण में आज शाम भारत का सामना मेजबान नीदरलैंड से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सुधार उनकी सरकार के लिए मजबूरी नहीं बल्कि प्रतिबद्धता है। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियां लोगों के हित और देश के विकास को ध्यान में रखकर बनाई जा रही हैं। नई दिल्ली में इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम में प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार नियम बदलने के साथ नियम बनाने की सोच भी बदल रही है। उन्होंने कहा कि भारत अब उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना के माध्यम से उद्योग और रोजगार के नए अवसर सृजित कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक स्तर पर संसाधनों को लेकर बढ़ता तनाव और दुनिया भर में अविश्वास नई चुनौतियां पैदा कर रहे हैं।
1: दुनिया ने बड़ा भयंकर एक रूप देखा है इन दिनों। रिसोर्सेज का वेपनाइजेशन हो रहा, अविश्वास का वातावरण विश्व के लिए अनेक नई चुनौतियां लेकर के आ रहा। लेकिन ऐसे समय में भी दुनिया भारत को ग्रोथ और होप के ब्राइट स्पॉट के रूप में देख रही है। भारत ने पिछले 10-12 साल में अपनी 25 करोड़ आबादी को गरीबी से बाहर निकाला है।
0: प्रधानमंत्री ने भारत की G20 अध्यक्षता के मंत्र एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य का उल्लेख करते हुए कहा कि दुनिया के सभी देशों का भविष्य एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। लाल किला से दिए गए स्वतंत्रता दिवस संबोधन का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के विकास के लिए 7 प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इनमें विनिर्माण, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण, तकनीक और नवाचार, हरित अर्थव्यवस्था और समुद्री अर्थव्यवस्था शामिल हैं।
1: 15 अगस्त को मैंने लाल किले से सप्तधारा की सप्तशक्तियों की बात की है और इसलिए भारत आज पॉलिसी लेवल पर नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स कर रहा है ताकि हमारा फ्यूचर सुरक्षित हो। गवर्नेंस पर रिफॉर्म्स कर रहा है, ईज ऑफ लिविंग के लिए रिफॉर्म्स कर रहा है।
0: गृहमंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल और सशस्त्र सीमा बल को 1129 एकड़ जमीन देने के राज्य सरकार के फैसले की सराहना की है। सिलीगुड़ी में एक कार्यक्रम में श्री शाह ने कहा कि घुसपैठ रोकने और देश की सुरक्षा के लिए सीमा पर बाड़ लगाना जरूरी है।
2: सरकार के गठन के 45 दिन के भीतर 1129 एकड़ भूमि बीएसएफ और एसएसबी के लिए शुभेंदु जी ने दे दिया। कुछ 29 एकड़ बाकी बचा है। ये तत्परता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री नाते नहीं है। उनको मालूम है जब तक घुसपैठ नहीं रोकती ना पश्चिम बंगाल सुरक्षित रह सकता है ना भारत सुरक्षित रह सकता है।
0: गृहमंत्री ने अवैध प्रवासियों की पहचान, उन्हें हटाने और वापस भेजने की कार्रवाई जारी रखने की बात कही। श्री शाह ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे चिकन नेक भी कहा जाता है, उसे पूर्वोत्तर की सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण बताया। गृहमंत्री ने 3 नए आपराधिक कानूनों पर 6 दिन की जागरूकता प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया। श्री शाह ने कहा कि मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली सरकार ने सत्ता संभालने के 3 दिन के भीतर 3 नए आपराधिक कानून लागू कर अपना वादा पूरा किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत और नेपाल ने सीमा प्रबंधन और सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। देहरादून में हुई भारत नेपाल संयुक्त कार्यसमूह की 14वीं बैठक में दोनों देशों ने आपसी सहयोग के विभिन्न

0: मुद्दों की समीक्षा की। एक रिपोर्ट।
1: चर्चा के दौरान सीमा पार अपराधों और आपराधिक गतिविधियों से निपटने के उपायों, सीमावर्ती बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और प्रभावी ढंग से उपयोग करने, एकीकृत जांच चौकी, सड़क और रेल नेटवर्क पर बात हुई। दोनों पक्षों ने अतिक्रमण हटाने और सीमाओं के रखरखाव पर भी चर्चा की। दोनों देशों ने विभिन्न क्षेत्रों में संस्थागत और क्षमता विकास को मजबूत करने पर विचार विमर्श किया और इन क्षेत्रों में सहयोग जारी रखने पर सहमति व्यक्त की। दोनों पक्षों ने नेपाल में होने वाली संयुक्त कार्य समूह की अगली बैठक की तारीख पर भी सहमति जताई। समाचार कक्ष से जसपाल कौर।
0: भारत की अध्यक्षता में जयपुर में ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक जयपुर घोषणा पत्र को सर्वसम्मति से मंजूरी के साथ कल संपन्न हो गई। घोषणा पत्र में ब्रिक्स देशों के बीच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पर्यावरण अनुकूल पर्यटन, कौशल विकास और सुविधाजनक यात्रा जैसे क्षेत्रों पर बल दिया गया है। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने की। उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य में पर्यटन की महत्वपूर्ण भूमिका होगी।
2: एक ऐसा पर्यटन का भविष्य जो अधिक रेजिलिएंट हो, जो इनोवेशन को अपनाए और उसके साथ साथ में सस्टेनेबिलिटी की आधारशिला का निर्माण करे, क्योंकि भारत के लिए पर्यटन केवल मॉन्यूमेंट्स की विजिट तक सीमित नहीं, अभी तो हमारी संस्कृति को जानने, हमारी संस्कृति की पहचान कराने का और इस तरह का अनुभव कराने का एक सशक्त माध्यम भी है, जिसके माध्यम को हम उनको अपनी संस्कृति और सांस्कृतिक विविधता के साथ में जोड़ सकते हैं।
0: भारत की मेजबानी में आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ब्रिक्स युवा मंत्रियों और खेल मंत्रियों की बैठक आज से शुरू होगी। ब्रिक्स युवा कार्य मंत्रियों की बैठक आज होगी, जबकि ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक कल आयोजित की जाएगी। बैठकों की अध्यक्षता युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया करेंगे। राज्य मंत्री रक्षा खड़से भी इसमें शामिल होंगी। युवा कार्य मंत्रियों की बैठक में युवा विकास, शिक्षा, कौशल, रोजगार, उद्यमिता जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। वहीं खेल मंत्रियों की बैठक में 11 ब्रिक्स देशों के मंत्री और प्रतिनिधि खेलों में आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। सरकार ने कहा है कि देश में चीनी का पर्याप्त भंडार है और घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए चीनी की कोई कमी नहीं है। उपभोक्ता मामले, खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने बताया कि चीनी की कीमत पिछले कुछ हफ्तों में 48 रुपये से बढ़कर करीब 55 रुपये प्रति किलो हो गई है और सरकार लगातार कीमतों पर नजर रख रही है। कीमत पर नियंत्रण के लिए सरकार ने चीनी कारोबारियों पर 400 टन की भंडारण सीमा लगाई है। ये सीमा 1 अगस्त से 30 नवंबर तक लागू है। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने भारत की सांस्कृतिक जड़ों को सुरक्षित रखने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि संस्कृति देश को एकजुट करने वाली मजबूत कड़ी है। नई दिल्ली में कल अंतर हृदय कनेक्ट मल्हार कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति ने युवाओं, विशेष रूप से जेंजी से धैर्य और दायित्व के साथ व्यवस्था को बेहतर और मजबूत बनाने में योगदान देने की अपील की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 5 सितंबर को नई दिल्ली में 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार इन शिक्षकों का चयन जिला, राज्य और राष्ट्र स्तर पर 3 चरणों की प्रक्रिया के जरिए किया गया है। पुरस्कार पाने वाले शिक्षक 27 राज्यों, 7 केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार के 6 संगठनों से हैं। इनमें 26 पुरुष और 22 महिला शिक्षक शामिल हैं। ये कार्यक्रम दूरदर्शन और शिक्षा मंत्रालय के स्वयं प्रभा चैनल पर सीधा प्रसारित किया जाएगा। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने बांग्लादेश के 23वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। उन्हें संसद के उपाध्यक्ष कैसर कमाल ने पद की शपथ दिलाई। आलमगीर गुरुवार को राष्ट्रपति चुनाव में 255 वोट हासिल कर निर्वाचित हुए हैं। उन्होंने विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार ओली अहमद को हराया, जिन्हें 88 वोट मिले। और अब खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार।
3: भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने लुजान डायमंड लीग में रजत पदक जीत लिया है। उन्होंने 88.05 मीटर तक भाला फेंककर दूसरा स्थान हासिल किया। नीरज श्रीलंका के रमेश थरंगा पथिराज से केवल 9 सेंटीमीटर पीछे रहे। रमेश ने 88.14 मीटर तक भाला फेंककर पहला स्थान हासिल किया। उधर कुश्ती में भारत की महिला पहलवान काजल धोचक ने स्लोवाकिया में अंडर-20 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीत लिया है। 76 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में काजल ने चीन की जिंगरू सन को 7-0 से हराया। इधर BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के महिला

0: डबल सेमीफाइनल में आज भारत की त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी का सामना शीर्ष वरीयता प्राप्त चीन की लियू शेंगशू और टेन निंग से होगा। क्वार्टर फाइनल में कल त्रिशा और गायत्री ने चीन की जिया यी फैन और झांग शुशियान को 16-21, 21-15, 21-13 से हराया। इस जीत से त्रिशा और गायत्री ने प्रतियोगिता में भारत का एक पदक तय कर लिया है। उधर अमस्टल फैन में FIH महिला हॉकी विश्व कप के पहले मैच में भारतीय टीम को कल नीदरलैंड से 0-2 से हार का सामना करना पड़ा। और पुरुष हॉकी विश्व कप के दूसरे चरण में आज भारत का सामना मेजबान नीदरलैंड से होगा। मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। पाकिस्तान पर 5-3 की शानदार जीत के बाद भारत ने पूल डी में दूसरा स्थान हासिल किया है।
1: मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश की आशंका व्यक्त की है। असम, सिक्किम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा सहित देश के पूर्वोत्तर हिस्सों में भी तेज बारिश की संभावना है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी इसी तरह का मौसम रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने आंध्र प्रदेश, उत्तरी कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में आज गरज के साथ वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। भारत ने 22 भारतीय नाविकों के साथ दो वाणिज्यिक जहाजों के अपहरण का मामला सोमालिया के अधिकारियों के सामने उठाया है। भारतीय उच्चायोग के अनुसार सभी भारतीय नाविक सुरक्षित बताए जा रहे हैं। भारत ने कहा है कि वो अपने नाविकों की सुरक्षा और कल्याण को सबसे ज्यादा महत्व देता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि होर्मुज जलडमरू मध्य वर्तमान में अमेरिका के नियंत्रण में है। उन्होंने इस बात पर भी बल दिया है कि ईरान को कभी भी परमाणु हथियार विकसित करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। दक्षिण कैरोलिना में श्री ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने ईरान को परमाणु हथियार प्राप्त करने से रोक दिया है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.ue.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं देवेंद्र त्रिपाठी।
2: धन्यवाद कनक। दिल्ली में स्वाइन फ्लू का संक्रमण, नवभारत टाइम्स और दैनिक जागरण की पहली खबर है। दैनिक जागरण लिखता है, राजधानी में एक दिन में स्वाइन फ्लू के 114 मरीज मिले। नवभारत टाइम्स ने लिखा है, कुल मामले पिछले साल से 7 से 8 गुना बढ़े, केंद्र ने स्वाइन फ्लू पर दिल्ली के अस्पतालों को किया अलर्ट। हिंदुस्तान ने लिखा है, फेफड़े हो रहे प्रभावित। चीनी की बढ़ती कीमत पर रोक लगाने के लिए सरकार द्वारा 15 दिन की भंडारण सीमा तय करने पर जनसत्ता ने अपने संपादकीय में चीनी की कड़वाहट शीर्षक से लिखा है, भंडारण सीमा का उद्देश्य जमाखोरी रोकना है तो ये स्वागत योग्य, मगर सरकार को ये भी सुनिश्चित करना होगा कि छोटे कारोबारियों पर नियमों का अनावश्यक बोझ न पड़े। लद्दाख में ग्रेविटी आधारित डायवर्जन से ग्लेशियर का पानी इगुफे सिंचाई नहर की ओर मोड़कर खेतों तक पहुंचाने की योजना दैनिक भास्कर के प्रथम पृष्ठ पर है। पत्र लिखता है, 9 करोड़ लीटर पानी अब भारत को सींचेगा। यमन के पास समुद्री लुटेरों द्वारा दो जहाजों को अगवा किए जाने की खबर भी अखबारों में है। हिंदुस्तान लिखता है, 22 भारतीय नाविकों को बंधक बनाया, विदेश मंत्रालय ने कहा सभी भारतीय सुरक्षित। सिविल जज भर्ती योग्यता नियमों में बदलाव की खबर दैनिक भास्कर, पंजाब केसरी सहित कई अखबारों में है। नवभारत टाइम्स लिखता है, 1 साल की वकालत पर अब बन सकेंगे जज। राजस्थान पत्रिका ने विदेश कारोबार में मोदी सरकार का बड़ा कदम शीर्षक से लिखा है, अब डॉलर ही नहीं रुपए में भुगतान ले सकेंगे निर्यातक। पत्र लिखता है, इससे अंतर्राष्ट्रीय कारोबार में रुपए का रुतबा बढ़ेगा। दिल्ली मास्टर प्लान 2047 में दिल्ली में खाली सरकारी मकानों को किराए के घर में बदलने की योजना नवभारत टाइम्स के पहले पन्ने पर है। और अमर उजाला ने अपने अंतिम पृष्ठ पर बताया है, पाकिस्तान में दिल्ली की चाट और ढाका में खूब पसंद की जा रही बनारसी साड़ियां, न्यूयॉर्क से कराची तक भारतीय व्यंजनों का क्रेज।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सुधार कोई मजबूरी नहीं बल्कि सरकार की प्रतिबद्धता और दृढ़ विश्वास है। कहा, सरकार की नीतियां लोगों के हित और देश के विकास को ध्यान में रखकर बनाई गई। गृहमंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए 1129 एकड़ जमीन देने के राज्य सरकार के फैसले की सराहना की। भारत और नेपाल ने सीमा प्रबंधन और सुरक्षा में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों ने पर्यटन, AI और सुविधाजनक यात्रा पर केंद्रित जयपुर घोषणा पत्र को स्वीकृति दी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज़।

0: 95.1 MHz पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 8:30 हुए हैं। अगला कार्यक्रम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे।
1: करता है रमाशंकर।

0: श्रोताओ नमस्कार। डॉक्टर की सलाह कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओ, बच्चे जिनकी किलकारियों से घर गूंजता है, इनकी हंसी हमें काफ़ी प्रेरित करती है। जब बच्चा हंसता खेलता रहता है तो हम निश्चिंत रहते हैं कि बच्चा स्वस्थ है, और बच्चों के स्वास्थ्य की देखभाल करना माँ और पिता दोनों का कर्तव्य होता है। और श्रोताओं, ये काफ़ी आवश्यक है कि बच्चों की ऊपर हम अपने निगरानी रखें, उनके हाव भाव, उनके तरीकों पर, उनके खान पान के लिए हम उन पर ध्यान रखें, और बच्चों के लिए सही खुराक, सही भोजन की को ध्यान में रखते हुए उनके लिए वैसा माहौल हमें तैयार करना चाहिए। और श्रोताओं, बदलते मौसम में बच्चे कई बार बीमार भी हो जाते हैं, जिसमें वायरल फीवर, बैक्टीरियल फीवर जैसे कई बीमारियां होती हैं, जिसका इलाज समय रहते करा लेने से वो बीमारी आगे नहीं बढ़ती और बच्चा हमारा स्वस्थ रहता है। और श्रोताओं, कभी कभी बच्चों में हम देखते हैं कि कई तरह की बीमारियाँ होती हैं जिसके लिए हमें हॉस्पिटल जाना पड़ता है, इनकी जाँच करानी पड़ती है। और अभी बदलते समय आधुनिक पद्धति में कई रोगों के लिए आधुनिक चिकित्सा पद्धतियाँ आ गई हैं, जिससे इलाज आसान हो गए हैं। श्रोताओं, बच्चों में होने वाली कुछ बीमारियां, उनके कारण, उनके लक्षण और उपचार विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर तन्मय मोतीवाला, जो एक बाल शल्य चिकित्सक हैं। तो डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद, और आप सभी के श्रोताओं को भी मेरा नमस्कार।
0: तो डॉक्टर साहब, जैसा कि अभी हम जानते हैं कि बारिश का मौसम है, और कभी धूप खिल जाती है, कभी बारिश होती है, कभी हल्की ठंड पड़ती है, तो इससे क्या होता है कि मौसम में परिवर्तन से बच्चों पर काफ़ी असर पड़ता है और बच्चे बीमार पड़ जाते हैं। तो अगर हम बात करें अभी बदलते मौसम में बच्चों में कौन कौन सी बीमारियाँ आमतौर पर देखी जाती हैं, तो क्या होती हैं? तो
1: इस मौसम में अक्सर बच्चे ठंड और गर्म के बीच में कभी भीग गए बारिश में स्कूल से आते वक्त, या ऐसे ही दोस्तों के साथ खेलते हुए भीग गए, तो ये आम होता है। और उस कारण से वायरल फीवर और ये जो फीवर होता है अक्सर बच्चों में, वो काफ़ी आम तौर पे है। और दूसरा ये है कि इस मौसम में बच्चे अक्सर बाहर का किसे पसंद नहीं है, लेकिन वो ये नहीं देखते कि किस तरीके से उसे बनाया जा रहा है, क्या सफाई मेंटेन्ड है कि नहीं है, तो अक्सर वहाँ पे खाने के कारण बच्चों को दस्त लगना या फूड पॉइजनिंग की समस्याएं भी आमतौर पर अभी हमारे बीच आ रही हैं। तो जो भी अभिभावक हैं उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि एक तो अगर बच्चे बाहर बारिश में जाएँ तो भीगे ना, रेनकोट या छाता का प्रयोग करें, और खाना खाने के पहले हमेशा हाथ धोएं ठीक से, और बाहर का खाना जो भी चीज़ें मिलती हैं उनको बिल्कुल देख कर खाएं।
0: जी जी डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी बात अभी आपने बताई है। तो डॉक्टर साहब, जब पेरेंट्स की बात आती है तो उनका दायित्व तो बनता है कि बच्चों पे निगरानी रखें, उनके लिए उनके स्वास्थ्य पर ध्यान दें, तो बच्चों में नियमित जाँच और निगरानी का क्या महत्व होता है?
1: तो मैंने ऐसा देखा है कि हम अक्सर जो है अपने जीवन में अपने लिए छोड़कर सबके लिए वक्त निकालते हैं। अब इस चीज़ को हम कैसे स्वास्थ्य के तौर पे देखते हैं कि हम अपने गाड़ी का टाइम टू टाइम सर्विसिंग कराते हैं, हमारे रिचार्ज टाइम टू टाइम होते हैं, लेकिन क्या हम अपने लिए कभी साल में एक बार बिना बीमार हुए कभी जाकर चेकअप करवाते हैं क्या? तो आंसर यही मिलेगा कि सर हमारे पास शायद उस चीज़ के लिए वक्त नहीं है। तो बहुत सी ऐसी बीमारियां होती हैं खासकर बच्चों में जो जब बहुत सीवियर स्टेज में आती हैं तभी जाकर पता चलती हैं, लेकिन अगर किसी डॉक्टर को हम सही टाइम पर मिलते हैं तो निवारक रूप पे हम जांच कराने पे उन चीज़ों को अर्ली स्टेज में पिकअप कर सकते हैं, और जब ऐसा होता है तो उनका इलाज भी बहुत मतलब आसानी से किया जा सकता है। इसलिए एक शेड्यूल होना चाहिए कि साल में एक बार हमें बच्चों का चेकअप निवारक तौर पे करवाना ही है, जिस तरीके से हम अपना शरीर के लिए एक फोकस्ड अप्रोच रख सकें।
0: जी जी, तो डॉक्टर साहब, जब हम बात करते हैं नियमित जांच और निगरानी के लिए, तो बच्चों के स्वास्थ्य से संबंधित कई योजनाएं चलाई जाती हैं, जिसमें कई सरकारी योजनाएं भी हैं, तो ऐसी कौन कौन सी योजनाएं हैं जिसका लाभ एक आम व्यक्ति ले सकता है?
1: तो सबसे

0: योजना जो सरकार के द्वारा चलाई गई है, और मेरा तो सौभाग्य भी रहा कि इसमें इस योजना में जिन्होंने काफ़ी मुखर तौर पे अपनी भूमिका निभाई, डॉक्टर अरुण, उनके साथ मैं एम्स जोधपुर में जब था तब काम भी किया है। तो राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम एक योजना है जो पूरे देश में चलाई जा रही है, जिसमें स्कूल में जाने वाले जो बच्चे हैं, लगभग हमारे देश में लास्ट सेंसस के हिसाब से 24 करोड़ बच्चे हैं जो स्कूल में जाने वाले हैं, इन सबका जो टेस्टिंग है वो फ्री पे किया, फ्री इसमें किया जाता है, और जो कुछ गंभीर समस्याएं इसमें पाई जाती हैं उनको आगे सरकारी अस्पताल के माध्यम से ही कैसे उनका इलाज होना है उसके लिए एक रेफरल की सुविधा भी प्रदान की जाती है। और हमारे छत्तीसगढ़ में जो एक योजना काफ़ी अच्छे तौर पे सरकार के द्वारा चलाई गई है, उसका नाम चिरायु योजना है। इसमें जो बच्चों के सुनने की तकलीफ है और हार्ट से रिलेटेड जो बीमारियां हैं, ये गंभीर बीमारियां भी इसमें काफी सारी पिक होती हैं।
1: जी। तो डॉक्टर साहब, जैसा आपने बताया चिरायु योजना जो है, तो इसमें ये योजना बच्चों के लिए कैसे मुहैया कराई जाती है, ये इसमें बच्चे कैसे शामिल हो सकते हैं?
0: स्कूल में ही इनके कैंप्स होते हैं, और अपने जो पास के जो भी सरकारी स्कूल हैं वहाँ पे जाके जब इसकी सूचना मिलती है कि इस तरीके का कैंप आयोजन कराया जा रहा है, तो उसमें जाके अपने बच्चे को एनरोल करवाना चाहिए इसमें।
1: जी। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने बताया कि आप जोधपुर में भी रहे हैं, एम्स जोधपुर में, तो वहाँ जब इस तरह के कार्यक्रमों से आप जुड़े थे, तो वहाँ कोई आपका अनुभव कि ऐसे कार्यक्रम, सरकारी कार्यक्रम से बच्चों के लिए कुछ निगरानी कार्यक्रम जो चलाए जा रहे थे, तो उसमें बच्चों का रोगों के बारे में पता चला हो, उनको उस रोग का निवारण किया गया हो?
0: तो इस तरीके से जो प्रोग्राम्स चलते हैं हमारे पास, क्योंकि एम्स जो है एक टर्शरी सेंटर होता है, जिसका मतलब ये होता है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होता है, फिर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होता है, और उसके बाद जो भी यहाँ पे जो इलाज होते हैं, जहाँ एक्सपर्टाइज बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, उनको यहाँ पे भेजा जाता है। तो ऐसे बहुत सी अनुवांशिक बीमारियाँ हमारे पास आती थी, क्योंकि मैं एक मैं शल्य चिकित्सा से जुड़ा हुआ हूँ बच्चों के संबंधित, तो बहुत सी ऐसी बीमारियाँ हैं जैसे कि बच्चों के होंठ हैं या तालू हैं कटे फटे हैं जन्म से लेकर, या फिर बच्चों के सांस लेने में तकलीफ है, या बच्चों के हार्ट से संबंधित उनके हार्ट में छेद है, या लीवर से संबंधित कुछ बीमारियां हैं जिनमें बच्चे जन्म से ही सफेद लेटिन पास कर रहे हैं। तो ऐसी बीमारियां बहुत सी हमारे पास आती थी, और इसका निवारण ये है कि हमें अगर टाइम पे इन चीजों के बारे में जागरूकता रहे और हम सही जगह इलाज के लिए पहुंच जाएं, तो इनका इलाज बहुत ही मुखर तौर पे और अच्छा रिजल्ट्स भी आता है इसका।
1: बहुत अच्छी बात अभी आपने बताया डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब, जब हम छोटे बच्चों से लेकर के थोड़े बड़े बच्चों की बात करते हैं, तो उनमें बीमारियों का पता लगाया जा सकता है, इसमें पेरेंट्स की क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए, उनकी क्या भागीदारी हो सकती है बच्चों के प्राथमिक स्तर की बीमारियों को डॉक्टर तक ले जाने में?
0: अब इसमें बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे अक्सर क्या होता है हमारे घर में, अगर कोई बच्चा आकर कहता है हमें कि मुझे ये तकलीफ है, तो हम ये कहते हैं कि बेटा ये कर लो ठीक हो जाएगा। हम अक्सर एक्सपर्ट के पास जाना नहीं चाहते। अब इसका एक उदाहरण मैं देना चाहूँगा, जैसे हमारे पास एक बच्चा था जो आए थे कैंप के थ्रू, जिसमें उसके घर वाले ये कहते थे कि बच्चा ना बड़ा बदमाश है, ये हमारी बात सुनता नहीं है। और स्कूल में जब जाते थे स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग के लिए, तो टीचर भी ये कहता था कि सर ये बच्चा ना बिल्कुल बदमाश है और ये सुनता नहीं है। और पेरेंट्स बहुत परेशान हो गए, डॉक्टर साहब के पास गए कि देखिए सर मेरा बच्चा ना बिल्कुल इतना बदमाश है कि किसी की बात मानता नहीं है। जब डॉक्टर ने उसकी टेस्टिंग की तो पता चला कि उसे सुनने की क्षमता में तकलीफ है। एक टेस्ट होता है जिसे कहा जाता है पियोटोन ऑडियोमेट्री, जब उसका कराया गया तो उसको सीवियर हियरिंग लॉस था। तो काफी बार ये होता है कि छोटी मोटी समस्याएं हमें लगती हैं कि शायद छोटी समस्या है, लेकिन क्योंकि हम डॉक्टर के पास जाना नहीं चाहते तो अक्सर वो समस्याएं बढ़ जाती हैं। तो जो भी छोटी मोटी समस्या अगर स्वास्थ्य से संबंधित है, तो बेहतर ये रहता है कि हम किसी एक्सपर्ट, किसी पीडियाट्रिशियन के पास या अपने पास में जो भी हॉस्पिटल उपलब्ध है वहां पे जाके आप उस एक्सपर्ट से एक अपॉइंटमेंट ले लीजिए। हम अगर बच्चों के स्वास्थ्य से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेंगे, तो उसमें कोई हार्म नहीं है, उसमें बेनिफिट हमारे लिए ज्यादा रहेगा।
1: जी। तो डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में हम आगे और बातें करेंगे, उससे पहले हम चाहेंगे कि आपकी पसंद का एक गीत हम इस कार्यक्रम में सुने।
0: एक जो गाना मुझे बड़ा पसंद है, मैं तो काफी गाने सुनता रहता हूँ, तो अभी ना जाओ छोड़कर के दिल अभी भरा नहीं, मैं ये सुनना चाहूंगा।
1: जी जी जी

0: श्रोताओं, इस गीत के पहले हम बात कर रहे थे डॉक्टर तन्मय मोतीवाला जी से, जो एक बाल शल्य चिकित्सक हैं, और बात कर रहे हैं हम बच्चों से संबंधित कुछ रोगों के बारे में, उनके कारणों के बारे में, लक्षण और उपचार के बारे में। तो डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि बच्चों में कई तरह की आनुवांशिक बीमारियाँ होती हैं, वो कौन कौन सी होती हैं, और अभी चिकित्सा पद्धति में इसका पता और कैसे लगाया जाता है, और इसके लिए कौन कौन से जो है इलाज उपलब्ध हैं।
1: तो बच्चों में पहली बात तो ये कि काफ़ी सारी अनुवांशिक बीमारियां अब बढ़ने लगी हैं, लेकिन अच्छी बात ये है कि हमारा जो मेडिकल साइंस है वो भी उसके साथ उस तरीके से प्रगति करता जा रहा है। तो जो कुछ आम बीमारियां जो हमारे सामने आती हैं उसमें जैसे कोई गर्भवती हैं, उनके पेट में किसी बच्चे के लिए डॉक्टर साहब ने बोला कि सोनोग्राफी में किडनी में सूजन पाई जा रही है, तो ये काफ़ी आम तौर पे हमारे सामने आता है। फिर जन्म लेने के बाद जो कुछ समस्याएं हैं, जैसे कि बच्चों की सांस की नली और खाने की नली में जुड़ाव है, या बच्चे की जो आंत है वो ठीक से नहीं बनी हुई है, या उनके मल द्वार का निर्माण ठीक से नहीं हुआ है, बच्चा जन्म से पेशाब जाने में जो है वो रास्ता टेढ़ा बना हुआ है, तो इस तरीके की जो बीमारियां हैं जन्म लेने के बाद तुरंत काफ़ी ये आमतौर पर पाई जाती हैं। उसके अलावा हर्निया है, या बच्चे के अंडकोश में पानी भरना जिसे हम हाइड्रोसील कहते हैं, या अपेंडिक्स की बीमारी, ये सारी जो है हमारे इसमें काफ़ी आमतौर पर देखी जाती हैं। लेकिन ये बात अच्छी है कि जो अभी इन जितनी भी बीमारियां मैं कह रहा हूँ इन सबका इलाज संभव है। ऐसे सेंटर्स में जहाँ बच्चों के सर्जन उपलब्ध हैं, न्यूनेटोलॉजिस्ट उपलब्ध हैं, पीडियाट्रिशियन उपलब्ध हैं, वहाँ पे

0: अगर हम जाते हैं तो इनका इलाज बहुत अच्छे तौर पे होता है और बच्चे ठीक होकर घर भी जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर छोटे बच्चे हैं उनमें इतनी गंभीर बीमारी के बारे में पता चला है तो हमें घबराना चाहिए। अगर हम टाइमली डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं तो इसका इलाज भी संभव है।
1: बच्चों में कुछ बीमारियां गर्भ से ही होने लगती हैं, तो इसमें गर्भ में जो इसका पता कैसे लगाया जा सकता है और इनका इलाज कैसे किया जा सकता है?
0: एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि जो अपने गायनेकोलॉजिस्ट या स्त्री रोग के जो डॉक्टर हैं आप जिनके पास इलाज करा रहे हैं उनके पास टाइम टू टाइम जब वो इलाज के लिए बुलाते हैं जाना है, जो सोनोग्राफी है उसमें एक स्कैन होता है जिसे हम एनोमली स्कैन कहते हैं, वो कराना अत्यंत आवश्यक है क्योंकि बहुत सी बीमारियां जो हैं वो वहीं पे पिकअप हो जाती हैं। कुछ बीमारियां जो लाइलाज हैं और सही टाइम पे पिकअप हो जाती हैं उसका भी जो निवारण है उस समय किया जा सकता है। कुछ ऐसी बीमारियां हैं जैसे मैंने कहा था कि किडनी के सूजन के बारे में, तो अक्सर देखा गया है कि 50% केस तो ऐसे होते हैं इनमें जिनका अपने आप निवारण हो जाता है और दूसरे कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिनका डिलीवरी के बाद जब बच्चा पैदा हो जाता है, अगर हम ऐसे हॉस्पिटल में डिलीवरी कराएं जहां पे न्यूनेटोलॉजिस्ट उपलब्ध है और बच्चों के सर्जन उपलब्ध हैं तो वहां पे उसका जो इलाज है वो संभव है। लेकिन टाइम पे इलाज होना जरूरी है, टाइम पे उसकी जांचें होना जरूरी है। इसलिए हमारे लिए एक ये मैसेज जरूरी है कि हम प्रेगनेंसी के दौरान जो जांच है वो करवाएं जरूर से। और कुछ ऐसे भी समस्याएं होती हैं जैसे कि स्पाइना बाइफिडा एक कंडीशन होती है जहां पे बच्चों के रीढ़ की हड्डी में गांठ होती है, लेकिन अगर ये स्कैन कराया जा रहा है प्रेगनेंसी के दौरान तो ये उसमें पिकअप हो जाती हैं। और मजे की बात यह है कि अगर हम आयरन और फोलिक एसिड की गोलियां जो हमारे स्त्री रोग विशेषज्ञ देते हैं वो अगर लेते हैं तो ये बीमारी को हम टाल सकते हैं, लेकिन अगर हमने वो दवाइयां नहीं ली हैं तो ये बीमारी होने के जो चांसेस हैं वो काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं।
1: जी। तो डॉक्टर साहब, अभी हम वर्तमान में देख रहे हैं कि बच्चों में एक जो काफी आम मोटापा, बच्चे ओवरवेट हो रहे हैं और इससे जो है बच्चों में कई तरह की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी देखने को मिल रही हैं, तो मोटापे से बच्चों को क्या क्या परेशानी हो सकती हैं और इसका कारण क्या है?
0: सबसे बड़ा कारण तो देखिए सबसे पहले हमें अपने अंदर झांकना होगा
1: जी
0: क्योंकि जो बच्चे हैं वो किससे सीखते हैं, अपने माता-पिता से।
1: जी
0: तो अगर हम ही दिन में एक बार एक्सरसाइज करने के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं या हमारा जब भी घर आते हैं काम से तो आमतौर पे हमारा मैक्सिमम टाइम फोन पे जा रहा है या टीवी देखने में जा रहा है तो बच्चे वो देखकर हमसे सीखते हैं।
1: जी
0: और घर पे खान पान कैसा हो रहा है, क्योंकि आजकल कैसा है ना कि एक नया ट्रेंड चला हुआ है कि बाहर का खाना अच्छा है, पैकेट आइटम खाना अच्छा है, लेकिन घर के खाने को हम अगर टिफिन डब्बा साथ में लेकर जाते हैं, कभी आप देखे होंगे पहले कि हम ट्रेन पे सफर कर रहे हैं या हवाई यात्रा कर रहे हैं तो साथ में टिफिन डब्बा लेके जाते थे,
1: जी
0: अब
1: जी
0: उसको लोग कूल नहीं मानते,
1: जी
0: तो
1: जी
0: हमको उसको वापस से उस ट्रेंड में लाना है कि घर का खाना जो है वो सबसे बेस्ट है। तो ये जो बच्चे हैं अगर एक्सरसाइज नहीं कर रहे, व्यायाम नहीं कर रहे, दिन में आधा घंटा भी खेलकूद नहीं हो रही है, सारा दिन या तो पढ़ाई में लगे हुए हैं या घर में ही सुस्त हैं, तो ये ही मेन कारण है जिस कारण से मोटापा बढ़ते जा रहा है। और आमतौर पे जो देखा गया है कि पहले हम माल न्यूट्रिशन या कुपोषण से लड़ रहे थे और अभी हम मोटापे से लड़ रहे हैं और ये समस्या बहुत ज्यादा है जितना हम देख रहे हैं उससे ज्यादा।
1: जी
0: और अगर हम इस पे अभी ध्यान नहीं देते हैं तो ये वो बच्चे हैं जिनमें आगे चल के लाइफस्टाइल रिलेटेड बीमारियां जिन्हें हम नॉन कम्युनिकेबल डिसीज कहते हैं, जैसे कि डायबिटीज या बीपी की बीमारी या हार्ट से संबंधित बीमारियां, ये
1: फैटी
0: इन
1: लिवर
0: बच्चों में फैटी लिवर और
1: जी
0: ये सारी चीजें जो हैं बच्चों में अभी उम्र से पहले आने लग रही हैं। और अगर हमारे घर में बच्चे हैं जिनका वजन बढ़ा हुआ है तो हमको कुछ चीजें हैं जो देखनी चाहिए। एक लक्षण होता है खासकर जिनमें डायबिटीज बन रहा है जिसे हम कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस कहा जाता है मेडिकल भाषा में इसे, और उसका जो सिम्टम है जिसे हम कहते हैं एकेंथोसिस नाइग्रीकेंस, जिसे हम देखते कैसे हैं कि अगर गले के पीछे में एक ऐसा मैल जैसा कुछ काला हिस्सा दिख रहा है जो धोने पर भी नहीं निकलता है या बगल में उस तरीके के चीजें दिख रही हैं,
1: पैचेस
0: पैचेस दिख रहे हैं उस
1: जी
0: तरीके के, और पेरेंट्स बार बार इन चीजों को देख के सोच रहे हैं कि ये मैल है और नहीं निकल रहा है, तो एक बार आप अपने नजदीकी पीडियाट्रिशियन को बाल स्वास्थ्य के लिए संबंधित जो है एक बार दिखाना चाहिए इसे, क्योंकि ये वो स्टेज है जहां पे अगर हम बच्चे को एक्सरसाइज करने के लिए प्रेरित करें, उसका डाइट चेंज करें, तो ये जो लक्षण है ये यहीं से वापस हो सकते हैं, और हो सकता है उसे आगे चल के लंबे समय तक के लिए दवाइयां ना लेनी पड़े। वैसे ही अगर बच्चे को अगर उसका

0: नज़दीकी पीडियाट्रिशियन को बाल स्वास्थ्य के लिए संबंधित जो है एक बार दिखाना चाहिए इसे, क्योंकि ये वो स्टेज है जहाँ पे अगर हम बच्चे को एक्सरसाइज करने के लिए प्रेरित करें, उसका डाइट चेंज करें, तो ये जो लक्षण है ये यहीं से वापस हो सकते हैं, और
1: जी
0: हो सकता है उसे आगे चल के लंबे समय तक के लिए दवाइयाँ ना लेनी पड़े। वैसे ही अगर बच्चे को अगर उसका वजन बढ़ा हुआ है और वो एक महिला है, तो उनमें काफ़ी बार वजन के कारण उनके जो मासिक धर्म है वो आगे पीछे चलते हैं, जिस कारण से PCOD और ये सारी बीमारियां भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं।
1: जी
0: तो हमारा फोकस ये होना चाहिए कि हम इन चीज़ों को इग्नोर ना करें, डॉक्टर के पास जाएं, और इनिशियल स्टेज में अगर आप जाते हैं तो बहुत बार वजन कम करने से ही चीज़ें बहुत अच्छी हो जाती हैं,
1: जी
0: और
1: जी
0: खान पान पर ध्यान रखने से।
1: बिल्कुल बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, अब जब हम बात करते हैं बच्चों के लिए चिकित्सा पद्धति की, अभी आधुनिक चिकित्सा पद्धति में बच्चों के लिए क्या नया है, यदि हम बात करें छोटे से बच्चों से लेकर के, यानी जो बच्चा आज पैदा हुआ है और एक 10 साल से ऊपर के बच्चे की बात करें, तो चिकित्सा पद्धति में क्या नया है?
0: अगर मैं, क्योंकि बाल शल्य चिकित्सा के साइड से ही ज़्यादा बात करूँगा इस बारे में, तो अक्सर हमें ऐसा लगता है कि पहली बात तो अगर छोटा बच्चा है और उसमें कुछ सर्जरी से संबंधित चीज़ें हमें पता लगी हैं, तो परिवार वाले ही घबरा जाते हैं, ऐसा लगता है कि बच्चा बच पाएगा कि नहीं बच
1: जी
0: पाएगा,
1: जी
0: इतनी बड़ी सर्जरी कैसे होगी। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि हम बहुत से ऐसे बच्चे आते हैं हमारे पास, 1 किलो, 1.5 किलो, 2 किलो, जिनका जन्म के टाइम पे वजन होता है। तो ये अभी हमारी जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं वो इतनी सुधार कर चुकी हैं कि इन बच्चों में भी सर्जरी बिल्कुल सेफली हो जाती हैं,
1: जी
0: लेकिन उसके लिए बच्चों के सर्जन अलग से होते हैं। जैसे कि हार्ट के और ब्रेन के सर्जन होते हैं, वैसे बच्चों के लिए हमारी ट्रेनिंग अलग से होती है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ हम बच्चों की सर्जरी पे फोकस करते हैं।
1: जी
0: इसके अलावा जो बड़े बच्चे होते हैं, या इवन जो बच्चे हैं जो 1 दिन के हैं या 5 दिन 10 दिन के हैं, उनमें भी दूरबीन द्वारा सर्जरी अभी सेफ है। दूरबीन द्वारा सर्जरी कैसे की जाती है, बच्चों के पेट में या जहां बेबी ऑपरेशन होना है वहां पे छोटे छोटे चीरे लगाए जाते हैं, 5 या 3 mm के दूरबीन डाला जाता है, और उसी छोटे छेद से पूरी सर्जरी कर सकते हैं हम। इसका बेनिफिट क्या है, जब इस तरीके से सर्जरी की जाती है तो रिकवरी टाइम बहुत अच्छा हो जाता है।
1: जी
0: बच्चे जो शायद बड़े चीरे से ऑपरेशन करने के बाद 5 से 7 दिन लग जाता है नॉर्मल अपनी
1: रिकवर होने
0: गतिविधियां रिकवर होने के लिए,
1: जी
0: इनमें वो 1 दिन में ही हो जाता है। जैसे हर्निया है,
1: जी
0: आज की डेट में बच्चों में अगर हर्निया हम ऑपरेट करते हैं दूरबीन पद्धति से, सुबह ऑपरेशन करके शाम में या अगले दिन छुट्टी करना संभव है।
1: बिल्कुल
0: और इसके बाद कुछ जो बड़े बच्चे हैं जिनमें कुछ बहुत ही जटिल बीमारियां हैं, उनमें रोबोटिक सर्जरी भी आज के तौर पे संभव है।
1: जी
0: अब अक्सर लोगों को ये लगता है कि बच्चों में रोबोटिक सर्जरी होगी तो क्या रोबोट मेरे बच्चे को ऑपरेट करने वाला है, तो ऐसा नहीं होता है। रोबोट के पीछे सर्जन ही होता है जो पूरा उस रोबोट को ऑपरेट करता है,
1: जी
0: और जिस तरीके से सर्जन ऑपरेट करते हैं उस रोबोटिक कंसोल में बैठकर, उस तरीके से ही रोबोट अंदर अपने मूवमेंट्स करता है। फायदा इस ऑपरेशन के थ्रू ये होता है कि जो जटिल बीमारियां हैं उनमें रोबोट से हमें अच्छा प्रिसिशन मिलता है, और जहां हम जिस तरीके से चीरा लगाना चाहते हैं बिल्कुल सटीक कट लगता है, और
1: जी
0: रिकवरी बहुत अच्छी होती है।
1: जी जी तो अभी आधुनिक चिकित्सा पद्धति में रोबोटिक्स का जो काफ़ी महत्व है, और इसमें समय भी कम लगता है, चीरे भी कम लगते हैं, और बच्चा या मरीज काफ़ी जल्द स्वस्थ होकर घर जा सकता है। ये बहुत ही अच्छी पद्धति है। तो डॉक्टर साहब, ये बहुत ही अच्छी आपने बात बताई है। तो इसमें डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने भी कई बार देखा होगा कि कई बार बच्चों के साथ कई केसेस आते हैं कि बच्चे ने सिक्का निगल लिया, या बच्चा खिलौना खेलते वक्त खिलौने के कुछ पार्ट्स को खेलते खेलते मुंह में डाल दिया और वो उनके सांस नली या खाने की नली में चला गया। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि बच्चों को खिलौना देते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
0: तो ये आपने बहुत ही अच्छी बात उठाई है यहाँ पे, और मैं आपके माध्यम से जितने भी हमारे श्रोतागण हैं उनसे ये एक गुजारिश करना चाहूँगा कि आप जब भी खिलौना खरीदते हैं अपने घर में, आपको ये देखना है कि उसमें बैटरी या सेल ऐसा तो नहीं है कि वो निकल जाएगा। क्योंकि हमें अक्सर ऐसा लगता है कि ऐसा खिलौना जिसमें लाइट हो, साउंड हो, तो बच्चा खुश हो जाएगा, तो हम ऐसे, या फिर उसमें कुछ ऐसे जैसे नाक है गुड्डे की वो लूज है, तो हमें ये चीजें देखना है कि क्या ऐसी चीजें हैं उसमें जो बच्चा निकाल कर खा सकता है। जैसे कि अक्सर हमारे पास अभी कुछ बच्चे आते हैं जो बटन बैटरी होता है, छोटा सा डिस्क शेप का होता है, वो कुछ खिलौने में लगा होता है, बच्चे उसे खा जाते हैं कि ये चॉकलेट है, और इसका दुष्प्रभाव इतना ज्यादा होता है कि अगर कोई बच्चा इसे गलती से निगल ले और वो उनके खाने की नली या सांस की नली में अटक जाए और हमें इसे निकालने में देर हो, तो ये एक रास्ता बना लेता है खाने और श्वास की नली के बीच में, जो जानलेवा भी होता है अगर ज्यादा लेट हो जाए तो।

0: तो हमें ये चीज ध्यान रखना है कि हम ऐसा खिलौना लाए ही क्यों हमारे घर में
1: जी
0: जिससे इतना बड़ा प्रॉब्लम हो सकता
1: हो
0: है।
1: सकता
0: और
1: है
0: इसके अलावा अक्सर हम बच्चों को सिखाने के लिए या बच्चों के खेलने के लिए मैग्नेट ले आते हैं, तो
1: जी।
0: ये मैग्नेट भी जो है काफी खतरनाक होते हैं। अक्सर जब ये अटक जाते हैं तो इमरजेंसी में सर्जरी करने की जरूरत पड़ती है। तो खासकर इन दो चीजों का हमें सबसे पहले ध्यान रखना है, कोई भी ऐसा खिलौना जहां पे ऐसा कुछ लूज आइटम हो जो बच्चा खा सके या उसमें से टूट कर गिर जाए और बच्चा खा ले, और तीसरी चीज मैग्नेट, ये तीनों चीजों से हमें बच्चों को दूर रखना है।
1: जी। तो डॉक्टर साहब, जब हम छोटे बच्चों की बात करते हैं तो कई बार देखा जाता है कि बच्चों में यूरिन से संबंधित कई परेशानियां होती हैं, तो वो कौन कौन सी हो सकती हैं और इसके क्या कारण होते हैं?
0: तो इसमें सबसे पहले जो बात हमें समझनी है वो ये है कि अगर आप अपने डॉक्टर के पास जा रहे हैं और उन्होंने बोला कि बच्चे का लग रहा है कि बच्चे को यूरिन में इन्फेक्शन है, तो वो अक्सर उनका यूरिन टेस्ट भेजते हैं, उसमें पॉजिटिव आ गया और इससे हमें कंफर्मेशन मिल जाती है कि बच्चे को यूरिन में इन्फेक्शन है। अब बहुत बार इसके कुछ मेडिकल कारण भी होते हैं और कुछ सर्जिकल कारण भी होते हैं, लेकिन ये आमतौर पर देखा गया है कि बच्चे को अगर ऐसा यूरिनरी इन्फेक्शन हुआ है जहाँ पे बच्चे को बुखार के साथ बहुत हाई ग्रेड बुखार है, 102 103 के आसपास तापमान जा रहा है और यूरिन में इन्फेक्शन पॉजिटिव आया है कल्चर में, तो इन बच्चों को एक बार बच्चों के सर्जन के पास भी दिखवाना चाहिए। खासकर जो मेल बेबीज होते हैं उनमें जो कॉमन कारण देखे गए हैं उसमें सबसे पहला जो कारण होता है जिसमें किडनी के आगे वाला जो हिस्सा होता है जिसे हम PUJ कहते हैं मेडिकल भाषा में, वहां पे रुकावट होती है, जो
1: जी
0: मूत्र मार्ग होता है बेसिकली, वहां पे रुकावट के कारण पेशाब जमा हो रहा होता है, उस कारण से इन्फेक्शन होता है। या दूसरा बच्चों पे आमतौर पे एक कंडीशन होती है जिसे हम वेसाइको यूरेटिक रिफ्लक्स कहते हैं, आम भाषा में मैं अगर इसे समझाऊं तो पेशाब जो है इन बच्चों में ऊपर के साइड में चढ़ रहा होता है, पेशाब की थैली से ये वापस किडनी की तरफ जाने लगता है,
1: जी
0: जिस
1: जी
0: कारण से ये रास्ता चौड़ा हो जाता है, और इन बच्चों में टेस्टिंग कराना जरूरी है क्योंकि अगर ये सर्जिकल कारण है और हम इसे टाइम पर इलाज नहीं करवा रहे हैं तो ये किडनी में डैमेज करने लग जाता है। तो
1: जी
0: जितने बार भी उस बच्चे को यूरिनरी इन्फेक्शन होगा उतने बार किडनी की फंक्शंस कम होने के चांसेस ज्यादा हैं,
1: जी
0: इसीलिए हमें बाल शल्य चिकित्सक के पास दिखाना जरूरी है। और अगर फीमेल बेबी है तो उनमें आमतौर पर जो रिफ्लक्स वाली कंडीशन मैंने बताई वो ज्यादा पाई जाती है। तो अगर मैं इसे एक समरी के तौर पे बताऊं तो ये है कि जब भी बच्चे में यूरिनरी इन्फेक्शन होता है और कल्चर में पॉजिटिव आता है तो एक बार आपको उसका टेस्टिंग डिटेल में शल्य चिकित्सक के पास जाके करवाना चाहिए।
1: जी। तो डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में चलने से पहले हम आपसे चाहेंगे कि आप हमारे श्रोताओं जो पेरेंट्स भी हैं उनके लिए छोटे बच्चों को लेकर के क्या बताना चाहेंगे आप?
0: मैं बस ये कहना चाहूंगा कि छोटे बच्चे जो होते हैं इनमें बहुत सी बीमारियां ऐसी होती हैं जो बच्चे नहीं बता पाते हैं, तो हमें उन चीजों के लिए जागरूक होना पड़ेगा। और अगर बच्चे किसी चीज को लेकर आपके पास आ रहे हैं कि पापा या मम्मी मुझे इस चीज से तकलीफ हो रही है और वो बच्चा बार बार बोल रहा है तो उसको हमें इग्नोर नहीं करना है। सही टाइम पे अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आज की डेट में हमारी मेडिकल साइंस इतनी प्रगति कर चुकी है कि चाहे वो सर्जिकल कंडीशन हो चाहे मेडिकल कंडीशन हो सबका इलाज संभव है, लेकिन अगर हम अर्ली स्टेज में उन चीजों के लिए चले जाते हैं तो उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा हमें मिलता है।
1: जी। डॉक्टर साहब, तो डॉक्टर साहब आपने बहुत अच्छी बातें आज बताई हैं और बेशक ही ये जानकारी हमारे श्रोताओं के लिए काफी महत्वपूर्ण होगी, और कार्यक्रम में आप आए और हमारे श्रोताओं को जो जानकारी दी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: डॉक्टर की सलाह कार्यक्रम से आज हमें यही अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: समन्वित कार्यक्रम डॉक्टर की सलाह में अभी आप सुन रहे थे बच्चों के रोग कारण लक्षण और उपचार इस विषय पर डॉक्टर तन्मय मोतीवाला से ली गई भेंटवार्ता। भेंट करता थे रमाशंकर। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में। ये आकाशवाणी रायपुर है। सुबह के 9 बजे हैं। लीजिए अब सुनिए समसामयिक विषयों पर केंद्रित हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम बातों बातों में। इसमें आज आपको सुनवा रहे हैं हीलर हर्बल गार्डन योजना पर औषधीय पादप बोर्ड के अध्यक्ष श्री विकास मरकाम से ली गई भेंटवार्ता। इस कार्यक्रम की प्रस्तुति विकल्प रंजन शुक्ला की है।
1: श्रोताओं नमस्कार। समसामयिक विषयों

0: पर आधारित हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम बातों बातों में के आज के अंक के साथ मैं राहुल सिन्हा। श्रोताओं, छत्तीसगढ़ का बड़ा इलाका वनों से आच्छादित है और इन्हीं वनों में पाए जाते हैं दुर्लभ प्रजाति के औषधीय पौधे। राज्य में औषधीय पौधों के संरक्षण, संवर्धन, खेती और उनके व्यापार को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने वर्ष 2004 में छत्तीसगढ़ आदिवासी स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा एवं औषधि पादप बोर्ड की स्थापना की। यह बोर्ड विभिन्न योजनाओं का संचालन करता है, इन्हीं में से एक है हीलर हर्बल गार्डन योजना। बीते 13 अगस्त को कोंडागांव जिले में आयोजित वैद्य सम्मेलन में इस योजना का शुभारंभ किया गया। श्रोताओं, इस योजना की क्या विशेषता है और इसके तहत क्या कार्य किए जाएंगे, इन सभी महत्वपूर्ण पहलुओं पर विस्तार से चर्चा के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं छत्तीसगढ़ आदिवासी स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा एवं औषधि पादप बोर्ड के अध्यक्ष विकास मरकाम जी। विकास मरकाम जी, आकाशवाणी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले तो हमारे श्रोताओं को ये बताइए कि छत्तीसगढ़ औषधि पादप बोर्ड, जहाँ के आप अध्यक्ष हैं, इसका उद्देश्य क्या है?
1: जी धन्यवाद। हमारा जो बोर्ड है आदिवासी स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा एवं औषधि पादप बोर्ड, ये बोर्ड आदिवासी औषधि ज्ञान परंपरा और प्रकृति के साथ तालमेल, स्थानीय वनस्पतियों पर आधारित एक प्राचीन और स्वदेशी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली है। यह ज्ञान मुख्य रूप से मौखिक परंपराओं के जरिए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचता है। इसमें विभिन्न पौधों के विभिन्न अंग जैसे जड़, छाल, पत्ते, उनके बीजों का उपयोग करके विभिन्न प्रकार की बीमारियों का इलाज किया जाता है। और इलाज आज से नहीं, बरसों पहले से ये इलाज की परंपरा रही है। छत्तीसगढ़ की ये समृद्ध आदिवासी औषधि परंपरा और वनस्पति आधारित ये पारंपरिक उपचार पद्धतियों को सुरक्षित रखने के लिए हमारा बोर्ड काम कर रहा है
0: जी।
1: और साथ ही साथ जो जड़ी बूटी है, औषधि पौधे हैं, उनका संरक्षण हो, उनका संवर्धन हो, उनकी वृद्धि हो, उस हिसाब से भी हम काम कर रहे हैं। साथ ही साथ कल्टीवेशन के माध्यम से, कृषिकरण के माध्यम से हम अपने किसानों को भी प्रोत्साहित करते हैं कि आप ये औषधि पौधे लगाएं, और वो लगा रहे हैं और उससे उनका मुनाफा भी हो रहा है, आर्थिक रूप से भी वो सुदृढ़ हो रहे हैं
0: जी। योजनाओं की बात करते हैं मरकाम जी, इस बोर्ड के तहत कौन कौन सी योजनाएं जो इन दिनों संचालित की जा रही हैं?
1: बोर्ड की तरफ से कृषिकरण का काम हम कर रहे हैं, कृषिकरण में भी विभिन्न प्रकार के काम हम करते हैं। हम कस्टम फार्मिंग, हमारा एक फार्मूला है, वो करते हैं। उसमें हम भूमि के नवाचार योजना अंतर्गत निवेशकों के माध्यम से उस कृषक की भूमि का विकास करते हैं। वहाँ पर यदि बारबेट तार वगैरह की व्यवस्था करना हो तो वो व्यवस्था करते हैं, बोर वगैरह की व्यवस्था करना हो पानी के लिए वो व्यवस्था करते हैं। और कस्टम फार्मिंग के माध्यम से हम मेडिसिनल प्लांट लगवाते हैं और उसमें बाई बैक गारंटी हम देते हैं
0: जी।
1: मतलब उपज आने से पहले ही उसको खरीदने की भी व्यवस्था हम कराते हैं। साथ ही साथ हमारे जो पारंपरिक रूप से बैदराज लोग हैं, उन बैदराज लोगों के लिए हम हर्बल गार्डन की व्यवस्था वो कराते हैं। हर्बल गार्डन में वो अपने बाड़ी में खुद जड़ी बूटी लगाएं, ये व्यवस्था है। साथ ही साथ मेडिसिनल प्लांट के बारे में बच्चों को जानकारी हो उसके लिए हम स्कूल हर्बल गार्डन की व्यवस्था करते हैं, स्कूलों में स्कूल हर्बल गार्डन हम बनाते हैं। और इस प्रकार की बहुत सारी योजना हमारे बोर्ड के द्वारा संचालित है
0: जी। बहुत ही व्यापक कार्य क्षेत्र है आपके बोर्ड का। इन दिनों जिस बात की चर्चा है, हीलर हर्बल गार्डन, ये योजना, सबसे पहले आप ये बताइए कि ये क्या है और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है?
1: हमारे बैदराज जो है परंपरागत रूप से स्वास्थ्य लाभ सेवा का काम ये लोग कर रहे हैं और उसके लिए उनको जड़ी बूटी की आवश्यकता पड़ती है। जड़ी बूटी ये लोग जंगलों में जाकर लेते हैं। अभी जंगलों में भी जो है जड़ी बूटियों का इतना दोहन हो गया है कि उसकी उपलब्धता कम है, और उसी के लिए हम अपने बैदराज लोगों को सहायता मिल जाए, उनको उनकी ही बाड़ी से जड़ी बूटी मिल जाए, उसके लिए हम लोगों ने हीलर हर्बल गार्डन की संकल्पना रखी है। और इस हीलर हर्बल गार्डन में वो अपनी बाड़ी में या नजदीक में जो भी जमीन हो वहां पर वो जड़ी बूटियों का वो पौधा लगाएं, उसकी पूरी व्यवस्था बोर्ड के द्वारा की जाती है। अपने पसंद से जो है हमारा बैदराज बताएगा कि कौन कौन सा पौधा उसको लगाना है, उन पौधों की हम लोग उपलब्धता कराते हैं और उसके देख रेख के लिए जो भी राशि उपलब्ध कराना है वो उपलब्ध हम लोग कराते हैं
0: जी। घर की बाड़ी में भी क्या औषधीय पौधे लगाए जा सकते हैं? इनका उद्यान विकसित करने से वैद्यों और आम लोगों को इसका क्या लाभ होगा जैसा आप बता रहे हैं?
1: बिल्कुल, घरों में भी जो है, घरों की बाड़ी में भी हम लोग औषधि पौधे लगा सकते हैं। अभी धमतरी जिले में हम लोगों ने पिछले साल पायलट प्रोजेक्ट के रूप में बाड़ी योजना हम लोगों ने लॉन्च किया। इस बाड़ी योजना में हम लोग जो है लगभग 38 ग्रामों में 976 हमारी महिला बहनों के घर की का वितरण कराते हैं, निःशुल्क वितरण कराते हैं। शहरों में वितरण होता है, गांवों में वितरण होता है और लोग उसको अपने गमलों में, अपनी बाड़ी में लगा के उसका उपयोग कर सकते हैं
0: जी, सरकार द्वारा लोगों को किस

0: तरह प्रोत्साहित किया जाता है? क्या इसके लिए कभी कोई ऐसे जागरूकता कार्यक्रम होते हैं, या किस तरीके से लोगों को जोड़ा जाता है और किस तरीके से प्रोत्साहित करते हैं?
1: बोर्ड के माध्यम से समय समय पर हम इन सब चीज़ों की जानकारी देते हैं। ब्लॉक स्तर पर हम जाकर कार्यक्रम आयोजित करते हैं। अपने स्कूल हर्बल गार्डन वाला कार्यक्रम हम लोग करते हैं, फिर होम हर्बल गार्डन है उसकी भी हम लोग प्रचार प्रसार करते हैं। गांव में भी सरपंचों के माध्यम से, हमारे जिला पंचायत के सदस्य हैं, जनपद सदस्य हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनके माध्यम से हम लोग होम हर्बल गार्डन का प्रचार प्रसार करके निःशुल्क पौधे वितरण करते हैं।
0: किस तरह की प्रतिक्रिया मिल रही है लोगों के बीच इस योजना को लेकर?
1: देखिए, कोरोना काल के बाद लोगों में एक जागरूकता आई है, लोग जो है जड़ी बूटी की तरफ प्रभावित हुए हैं और बहुत अच्छा रिस्पांस है। वो लोग इसका क्या उपयोग है, ये किस काम आता है, ये पौधा क्या है, ये सब जानकारी लेके उसको अपने घर में वो पौधे लगाते हैं।
0: जी, तो क्या ये छोटे स्थान पर गमले में पौधों के उपयोग को लेकर अभी लोगों में किस तरह की धारणाएं? जाहिर सी बात है, वो दौर था जब लोगों ने औषधीय पौधों के बारे में समझा जाना, उसका महत्व भी समझा, और इसके सही उपयोग और मात्रा को लेकर बोर्ड किस तरह जागरूक कर रहा है ये औषधीय पौधे खास तौर पर?
1: औषधि पौधों में जो गुण हैं वो सबको मालूम है, और इसका जो साइड इफेक्ट है ये साइड इफेक्ट इसमें नहीं है।
0: जी
1: जितने हमारे मेडिसिनल प्लांट हैं उनका साइड इफेक्ट नहीं है। हाँ, मात्रा जरूर जो है वो निर्धारित मात्रा में होना चाहिए। इसके लिए हम लोग, हमारे जो वैद्यराज लोग हैं उनसे हम लोग परामर्श लेते हैं कि कौन सा पौधा, कौन सी जड़ी बूटी कितने मात्रा में लेनी चाहिए। उसका हम लोग पाम्पलेट छपा के उसका प्रचार प्रसार करते हैं और लोगों को बताते हैं कि सर्दी होने पे आप किसका उपयोग कर सकते हैं, एलोवेरा का उपयोग आप कब कर सकते हैं, गिलोय का काढ़ा जो बनता है वो कितना उपयोग करना चाहिए। ये सब चीज़ें हम अपने बैदराज लोगों से परामर्श करके एक पॉम्पलेट बनाते हैं और उसका प्रचार प्रसार करते हैं।
0: हमारे देश में क्योंकि औषधीय पौधों के प्रति लोगों में पहले से बहुत जागरूकता रही है, लेकिन अभी जो नई पीढ़ी आ रही है वो कोविड के समय से ही इसके ज्यादा महत्व को समझ पाई है। तो नई पीढ़ी को प्रारंभिक रूप से पारंपरिक जड़ी बूटियों और स्थानीय स्वास्थ्य ज्ञान से जोड़ने के क्या बोर्ड द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं?
1: देखिए, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 2022 में हमारे जो छत्तीसगढ़ के ही बैदराज हैं, हेमचंद मांझी जी, नारायणपुर क्षेत्र के, उनको पद्मश्री से नवाजा, तो लोगों का आकर्षण जो है उस तरफ गया कि बैदराज लोग भी आज एथेंटिक रूप से इलाज करते हैं।
0: जी
1: और उसके कारण एक अच्छा माहौल छत्तीसगढ़ में बना, और छत्तीसगढ़ वैसे भी मेडिसिनल प्लांट के क्षेत्र में बहुत उन्नत राज्य रहा है। हम कई बार इसको हर्बल स्टेट के रूप में भी जानते हैं।
0: जी
1: अब चूंकि शहरों में हमारे लोग मेडिसिनल प्लांट के बारे में कम जानते हैं, तो उसी के लिए हम लोग जो है स्कूल हर्बल गार्डन की योजना हम लोगों ने लाया है। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री विष्णु देवसाय जी, हमारे वन मंत्री केदार कश्यप जी, इन लोगों ने एक योजना बनाई और उन्होंने कहा कि गांव-गांव तक लोगों को मेडिसिनल प्लांट के बारे में मालूम होना चाहिए, जड़ी बूटी के बारे में मालूम होना चाहिए, और उसी के कारण हम लोग स्कूल हर्बल गार्डन का योजना लाए हैं। और स्कूल हर्बल गार्डन के माध्यम से हम हमारे छोटे छोटे बच्चों को मेडिसिनल प्लांट के बारे में उनकी जानकारी देते हैं, कौन सी बीमारी में कौन सा पौधा उपयोग होता है, उसका पत्ता उपयोग होता है, उसका बीज उपयोग होता है, उसका जड़ उपयोग होता है, उसका कंद उपयोग होता है, इसके बारे में भी हम
0: जी
1: प्रश्नोत्तरी और विभिन्न प्रकार के आयोजन करके स्कूलों में जानकारी देते हैं, जागरूकता अभियान चलाते हैं।
0: ग्रामीण क्षेत्रों में लोग पहले से औषधीय पौधों के बारे में बात करते हैं, चर्चा करते हैं, बुजुर्ग
1: बिल्कुल
0: हैं जो वहां पे भी बात करते हैं, लेकिन
1: बिल्कुल
0: शहरी क्षेत्रों के लिए क्या कोई अलग योजना, जैसे शहरी क्षेत्रों में मॉल होते हैं या ऐसी जगह हैं जहां पर युवा बहुत बड़ी संख्या में एकत्रित होते हैं, क्या इन जगहों को भी चिन्हांकित किया है या इन पर भी कोई ऐसी योजनाओं को प्रचार प्रसार के लिए ऐसी कोई व्यवस्था?
1: अभी जो है रायपुर में हमारा जो मरीन ड्राइव है, उस मरीन ड्राइव में होम हर्बल गार्डन का हम प्रचार प्रसार करते हैं। हमारी गाड़ी वहाँ खड़ी रहती है, वहाँ हम निशुल्क जड़ी बूटी वाले जो हमारे मेडिसिनल प्लांट हैं उसको हम लोग वितरित करते हैं। उसमें हम लोगों ने देखा है कि युवाओं का रुझान अच्छे तरीके से है, वहाँ हम पॉम्पलेट का वितरण करते हैं, और आने वाले समय में वहाँ पर भी हम होम हर्बल गार्डन और मेडिसिनल प्लांट की एक प्रश्नोत्तरी का भी कार्यक्रम वहाँ पर रखेंगे।
0: बिल्कुल, औषधीय पौधों के संरक्षण की बात करते हैं तो इसके साथ साथ सतत उपयोग के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? संरक्षण भी बताइए, किस तरीके से इन औषधीय पौधों के संरक्षण के लिए बोर्ड काम कर रहा है और इसके उपयोग के लिए क्या कदम बोर्ड की तरफ से उठाए जा रहे हैं?
1: औषधि पौधों के संरक्षण के लिए, उनके संवर्धन के लिए हम लोग जो है फॉरेस्ट के माध्यम से जंगल में, जंगल के अंदर जो है वो मेडिसिनल प्लांट लगवाते हैं, उसका पौधा हम लोग उपलब्ध कराते हैं। इस साल भी हम लोगों ने बहुत बड़ी मात्रा में, लगभग 2 करोड़

0: करोड़ 3 करोड़ पौधे हम लोगों ने उपलब्ध कराया है। हम चाहते हैं कि औषधि पौधों का संरक्षण हो, संवर्धन हो और उसकी वृद्धि हो, और उसी प्रकार हम जो है वनों के बाहर कृषिकरण के माध्यम से भी औषधि पौधे उपलब्ध कराते हैं। मॉडल नर्सरी हम बनवाते हैं, नदी के किनारे पंचायतों की जो भूमि है उस पर भी खस बच जैसे पौधे हम लगा के औषधि पौधों का हम लोग एक वृद्धि पर काम कर रहे हैं। नियत निरालार योजना जो बस्तर के क्षेत्र में चलती है उसमें भी हम लोगों ने कैंप के बाजू में औषधि पौधों का रोपण किया है, और इस प्रकार जो है हमारा बोर्ड काम करता है औषधि पौधों के कृषिकरण में। पिछले साल हम लोगों ने 675 कृषकों के माध्यम से लगभग 300 एकड़ में ब्राह्मी, सतावर, बच, खस, सिंदूरी और लेमन ग्रास का कृषिकरण का काम किया
1: जी।
0: और इस साल भी जो है हम लगभग 500 एकड़ पर औषधि पौधों के कृषिकरण का कार्य कर रहे हैं
1: जी, छत्तीसगढ़ में औषधि पौधों की बहुत ही समृद्ध परंपरा रही है, और इस पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक समय में आगे बढ़ाने के लिए क्या योजना है बोर्ड की?
0: बोर्ड जो है वो हमारे परंपरागत जो वैद्य हैं उन वैद्य राजों के सतत संपर्क में हम लोग हैं। हम लोग उनका ट्रेनिंग का कार्यक्रम कराते हैं, ट्रेनिंग के बाद हमको उनका रजिस्ट्रेशन कराना है, रजिस्ट्रेशन के बाद हम उनके प्रमाणीकरण का भी काम करेंगे। साथ ही साथ अभी जो वैद्यराज लोगों की जो ये स्वास्थ्य परंपरा है वे वाचिक है, उसको हम दस्तावेजीकरण करके उसको लेखन के माध्यम से भी एक पूरी जानकारी एकत्र करना चाहते हैं, ताकि आने वाली पीढ़ियों को भी उस पुस्तकों के माध्यम से हमारे वैद्यराज कैसे इलाज करते थे, क्या इलाज करते थे, किन जड़ी बूटियों का उपयोग करते थे, आने वाली पीढ़ियों को भी मालूम चले, उसके कारण हम दस्तावेजीकरण का काम कर रहे हैं।
1: आम नागरिक बोर्ड की योजनाओं की जानकारी और औषधि पौधे प्राप्त करने के लिए कहाँ संपर्क कर सकते हैं?
0: हमारा बोर्ड का ऑफिस है यहीं रायपुर में, यहाँ पर भी वो लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ फॉरेस्ट के जो भी दफ्तर जवाबदारी हमारी है, छत्तीसगढ़ में तो हमारा सामान्य जनजीवन जो है वो इसका उपयोग करता है, तो इनका संरक्षण हो, इनका संवर्धन हो और आने वाली पीढ़ियों को भी उसकी जानकारी माताएं बहने घर के बुजुर्ग लोग दें।
1: विकास जी, आप हमारे साथ जुड़े और हमारे स्टूडियो में, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया
0: जी, धन्यवाद।
1: तो श्रोताओं, इसी के साथ हमारा आज का यह कार्यक्रम संपन्न होता है। अगले हफ्ते एक नए विषय के साथ हम फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।
2: कार्यक्रम बातों बातों में अभी हम अनुप्रसारित कर रहे थे आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से FM 103.2 MHz पर। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 9:15 हुए हैं। अब रिले करेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम।
3: विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक, और लीजिए अब आपको सुनवाते हैं काबिल फिल्म का गीत, आवाजें जुबीन नौटियाल और पलक मुझाल की। नासिर फराज ने इसे लिखा है, राजेश रोशन का संगीत।

0: कभी रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया, तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुंचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान।
1: एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां।
0: कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किस्से होंगे, यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
2: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
0: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान, 1 सितंबर सेल्यूलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
3: और आइए हम आपको सुनवाते हैं MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी। इस फिल्म का गीत आवाज अरमान मलिक की, मनोज मुंतशिर ने इसे लिखा है, अमाल मलिक का संगीत।

और आइए अब आपको सुनवाते हैं शानदार फिल्म का गीत अमित त्रिवेदी और अमिताभ भट्टाचार्य की ने इसे लिखा है, अमित त्रिवेदी का संगीत और आवाज। फिल्म का नाम शानदार।

ये है विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। आज के फनकार, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे थोड़ी ही देर में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आनिलो, आनिलो शाम सवरे,
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
2: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था, एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर करता गया।

ऐसी बेमिसाल कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: नमस्कार।
1: तुम काला बाजार किसके लिए करते थे?
2: रघुवीर के लिए।
3: रघुवीर के लिए?
1: जुर्म करने वाला चूंकि अपना बचाव नहीं करता और साफ अपने जुर्म को कबूल कर लेता है तो इसी से वो रहम का हकदार नहीं हो जाता। योर वर्शिप, आज तक जो कानून को दगा देता रहा अचानक आज वो शहीद बनने चला है। ये तो वही बात हुई कि 70 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली है। हमारा ही खून चूस चूस कर जो पलता रहा अचानक आज वो अपना खून हमें दान करने चला आया है। कड़ी से कड़ी सजा अदालत अगर ऐसे आदमी को नहीं देगी तो और किसे देगी?
0: ये आवाज फिल्म काला बाजार में

उस मशहूर अदाकार की है जिसे दुनिया जानती है किशोर साहू के नाम से। आज का ये कार्यक्रम केंद्रित है अभिनेता, लेखक, निर्माता और निर्देशक किशोर साहू पर।

गुजरे दौर के सिनेमा के चहेते दर्शकों के लिए किशोर साहू एक सुपरिचित नाम है। बहुआयामी प्रतिभा के कलाकार किशोर साहू ने 1937 से 1980 के बीच 22 फिल्मों में अभिनय किया था। सन 1915 में तब के मध्य भारत और आज के छत्तीसगढ़ प्रांत के दुर्ग शहर में जन्म हुआ था किशोर साहू का। नागपुर के मॉरिस कॉलेज से उन्होंने बीए की पढ़ाई की थी। किशोर साहू के पिता रायगढ़ रियासत के दीवान थे। कॉलेज के दिनों से ही किशोर साहू कहानियां लिखा करते थे। अपने कहानी लेखन से ही वो सिने जगत के संपर्क में आए। तब के बंबई में उन्हें सिने जगत में पांव जमाने के लिए बहुत मेहनत भी करनी पड़ी। मुंबई में अशोक कुमार और देविका रानी के प्रयासों से किशोर साहू को बॉम्बे टॉकीज की पहली फिल्म जीवन प्रभात में काम करने का मौका मिला। किशोर साहू ने कुछ अरसा मुंबई में और बिताया और फिर परिस्थितियों के चलते वापस नागपुर लौट गए। नागपुर में किशोर साहू के मित्र थे द्वारकादास डागा। उन्हीं के सहयोग से किशोर साहू ने बाद में मुंबई वापस लौटकर अपनी फिल्म निर्माण संस्था की नींव रखी। इस संस्था का नाम था द इंडिया आर्टिस्ट लिमिटेड। अपने इस बैनर तले

उन्होंने अपनी पहली फिल्म बनाई बहुरानी। अपने फिल्म बैनर तले किशोर साहू ने जो कुछ और मशहूर फिल्में निर्मित की उनके नाम हैं पूनम की रात, पुष्पांजलि, मयूर पंख और बेटी नैना साहू को लेकर बनाई गई फिल्म हरे कांच की चूड़ियां।

किशोर साहू अभिनेता, निर्माता, निर्देशक बनने से पहले लेखक थे। कहानी लेखन पर उनकी अच्छी पकड़ थी। उनकी ये प्रतिभा कई फिल्मों में नजर आती है। एक लेखक के रूप में उनकी चर्चित फिल्में हैं मयूर पंख, दिल अपना और प्रीत पराई, हरे कांच की चूड़ियां, औरत और तीन बहुरानियां। इस फिल्म की कहानी एक मध्यवर्गीय संयुक्त परिवार, उसकी आर्थिक स्थिति और परिवार के सदस्यों के आपसी संबंधों को रेखांकित करती है। दिल अपना और प्रीत पराई का लेखन करने के साथ साथ किशोर साहू ने इस फिल्म को निर्देशित भी किया था। इस फिल्म के गीत आज भी बेहद लोकप्रिय हैं।

निर्देशक के रूप में किशोर साहू की अन्य मशहूर फिल्में हैं 1942 की कुंवारा बाप, राजा, शरारत, वीर कुणाल, सिंदूर, साजन, 1948 की नदिया के पार, सावन आया रे, काली घटा, मयूर पंख, हैमलेट, किस्मत का खेल, बड़े सरकार, गृहस्थी, घर बसा के देखो, हरे कांच की चूड़ियां, पुष्पांजलि, धुएं की लकीर और पूनम की रात।

निर्देशक महेश कौल और साहित्यकार अमृतलाल नागर किशोर साहू के अभिन्न मित्रों में से थे। नागर जी ने किशोर साहू के लिए 3 फिल्में लिखी थीं, राजा, वीर कुणाल और कुंवारा बाप। फिल्म वीर कुणाल की नायिका थीं अभिनेत्री तनुजा और नूतन की मां शोभना समर्थ। सन 1942 में बनी फिल्म कुंवारा बाप और सन 1943 में बनी फिल्म राजा हास्य प्रधान फिल्में थी। इनमें स्वयं अमृतलाल नागर जी ने भी अभिनय किया था। किशोर साहू एक समर्थ अभिनेता थे। यूं तो उनके अभिनय से सजी कई फिल्में हैं, लेकिन जिन फिल्मों में उनके अभिनय को बहुत सराहना मिली उनमें से ही एक है फिल्म गाइड में किशोर साहू द्वारा निभाई गई रोजी बनी वहीदा रहमान के पति मार्को की भूमिका। ये गीत है फिल्म काली घटा का।

0: अभी हम रिले कर रहे थे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम FM बैंड 103.2 MHz पर। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 9:55 होने को है। प्रादेशिक समाचार अब आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से।
1: अब सुनिए प्रादेशिक समाचार। ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। वर्ल्ड लीडर्स फोरम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पिछले 10 से 12 वर्षों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में घरेलू मांग को पूरा करने के लिए चीनी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। कीमतें स्थिर रखने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। और छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा आज दुर्ग में प्रधान जिला और सत्र न्यायालय के नए भवन का भूमि पूजन करेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत ने पिछले 10 से 12 वर्षों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। सरकार सुधारों के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का हमेशा साझा भविष्य की भावना में विश्वास रहा है। नई दिल्ली में कल शाम वर्ल्ड लीडर्स फोरम को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि यही कारण है कि भारत की G20 अध्यक्षता

0: दौरान उसका मार्गदर्शक सिद्धांत एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य रहा। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में घरेलू मांग को पूरा करने के लिए चीनी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है, हालांकि इसका उत्पादन अनुमान से कम रहने की संभावना है। सरकार ने चीनी की कीमतों में हाल की बढ़ोतरी को देखते हुए पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतें स्थिर रखने के लिए कई कदम उठाए हैं। मंत्रालय ने कहा है कि चीनी की कीमतों में हाल की बढ़ोतरी को इथेनॉल उत्पादन के लिए चीनी के इस्तेमाल से जोड़ना सही नहीं है। सरकार ने कल दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत उद्यमिता पर राष्ट्रीय अभियान के दूसरे चरण का शुभारंभ किया है। ये अभियान 21 नवंबर तक 3 महीने के लिए और चलेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बताया कि इस अभियान से ग्रामीण महिलाओं की उद्यमिता को मजबूती और 6 करोड़ लखपति दीदियां बनाने के लक्ष्य में योगदान मिलेगा। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा आज दुर्ग में प्रधान जिला और सत्र न्यायालय के नए भवन का भूमि पूजन करेंगे। नए न्यायालय भवन को आधुनिक सुविधाओं और उन्नत तकनीकी संसाधनों से विकसित किया जाएगा। इसमें न्यायिक अधिकारियों, अधिवक्ताओं, कर्मचारियों, पक्षकारों और आम नागरिकों की सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जाएगा। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय की बीएससी एग्रीकल्चर द्वितीय वर्ष की एंटोमोलॉजी विषय की परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने के मामले को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रदेश में परीक्षाओं की शुचिता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता से किसी भी स्तर पर समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि परीक्षा प्रक्रिया को प्रभावित करने या विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने मामले की निष्पक्ष और विस्तृत जांच के निर्देश दिए हैं। संस्कृति विभाग द्वारा राजधानी रायपुर के महंत घासीदास संग्रहालय परिसर स्थित मुक्ताकाशी मंच पर पावस प्रसंग सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया। इस सांस्कृतिक संध्या में वर्षा ऋतु की भावभूमि को शास्त्रीय संगीत और नृत्य की प्रस्तुतियों के माध्यम से जीवंत किया गया। शास्त्रीय गायन, भरतनाट्यम और पृथक समूह की प्रस्तुतियों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम का विशेष आकर्षण डॉक्टर आरती सिंह और उनके विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत कथक नृत्य रहा। मौसम विभाग ने अगले 6-7 दिनों तक उत्तरी और मध्य छत्तीसगढ़ के एक दो स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा होने की चेतावनी दी है। वहीं कुछ स्थानों पर आज गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने की आशंका जताई है। मौसम विभाग के अनुसार मध्य प्रदेश और उसके आसपास एक निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इसके असर से आज प्रदेश के एक दो स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वर्ल्ड लीडर्स फोरम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पिछले 10 से 12 वर्षों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में घरेलू मांग को पूरा करने के लिए चीनी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है, कीमतें स्थिर रखने के लिए कई कदम उठाए गए हैं और छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा आज दुर्ग में प्रधान जिला और सत्र न्यायालय के नए भवन का भूमि पूजन करेंगे। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन 11:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: प्रादेशिक समाचार अभी हम रिले कर रहे थे आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से FM एंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 10 बजे हैं और अब लीजिए सुनिए छत्तीसगढ़ी लोकगीतों का कार्यक्रम अमराई। कार्यक्रम में आज हम आपको सुनाएंगे GD मानिकपुरी और साथी, और दिलीप यादव, कुमारी गोस्वामी साहू और साथियों के गायक कुछ चुनिंदा छत्तीसगढ़ी लोकगीत। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत में आपको सुनाते हैं दिलीप यादव, कुमारी गोस्वामी साहू और साथियों का गाया ये लोकगीत।

दिलीप यादव और कुमारी गोस्वामी साहू और साथियों की आवाज़ों में ये लोकगीत हम आप तक पहुंचा रहे थे। और अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम में अगला लोकगीत गंगादास मानिकपुरी और साथियों की आवाज़ों में।

0: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं, मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: कार्यक्रम अमराई में अब लीजिए सुनिए दिलीप यादव और कुमारी गोस्वामी साहू की आवाज में ये लोकगीत।

कृपया कार्यक्रम संबंधी ये सूचना सुनिए श्रोताओं। बढ़ते साइबर अपराध और उनसे सुरक्षा, आकाशवाणी बिलासपुर द्वारा एक विशेष फोन इन कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग सोमवार दिनांक 24 अगस्त 2026 को सुबह 11:30 से 12:30 के बीच की जाएगी और इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे स्टूडियो में उपस्थित होंगे नगर के DIG वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री रजनेश सिंह। श्रोता हमें 07752-266592 इस नंबर पर कॉल करें और अपनी समस्याएं सीधे DIG सर से पूछें। आपके फोन कॉल्स का हमें इंतजार रहेगा। श्रोताओं समय याद रखिएगा, सोमवार सुबह 11:30 से 12:30 के बीच। सूचना समाप्त हुई और अब कार्यक्रम अमराई में लीजिए सुनिए अगली प्रस्तुति गंगादास मानिकपुरी और साथियों की आवाजों में।

अभी आप सुन रहे थे दिलीप यादव, कुमारी गोस्वामी साहू और साथियों का गाया ये लोकगीत। और अब इसी के साथ छत्तीसगढ़ी लोकगीतों का कार्यक्रम अमराई यहीं समाप्त हुआ। सुबह के 10:30 हुए हैं और अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम नए तराने। कार्यक्रम का पहला तराना लीजिए सुनिए की एंड का। इस फिल्म से आवाज़ें हैं मिथुन और दीपाली की, सईद कादरी की रचना, मीत ब्रदर्स का संगीत।

की एंड का इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना। मिथुन और दीपाली की आवाज़ों में सईद कादरी के बोल थे, मीत ब्रदर्स का संगीत। और अब लीजिए सुनिए बैनी दयाल की आवाज़ में ये गीत, टू स्टेट्स। इस फिल्म से अमिताभ भट्टाचार्य ने इसे लिखा है, संगीत दिया शंकर एहसान लॉय ने।

0: क्या बात है, बड़े दिनों बाद।
1: हाँ यार। अच्छा सुन, दाढ़ी बनवाने का कितना होगा?
0: अरे वही अपना 60 रुपया।
1: अरे यार अभी सिर्फ मेरे पास 30 रुपए कैश है।
0: तो देख, दो तरीके हैं। पहला, आधी दाढ़ी करा ले।
1: और दूसरा?
0: अरे डिजिटल पेमेंट कर UPI से।
1: ये लो यार, UPI ने तो बचा लिया।

0: एक काम कर, फेशियल भी करा ले, डिजिटल पेमेंट कर देना।
1: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
2: हर लेन देन अब है आसान।
3: कार्यक्रम नए तराने में अब समय हुआ है आज के ट्रैफिक अपडेट का। सुनिए ट्रैफिक अपडेट उमा शंकर पांडे से।
4: आकाशवाणी बिलासपुर के दैनिक प्रस्तुति ट्रैफिक अपडेट बिलासपुर के साथ मैं हूँ उमा शंकर पांडे। कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। समग्र सहायक शिक्षक संघ के द्वारा अपनी मांगों के संबंध में आज प्रातः 11 बजे जिले के सभी ब्लॉक में पैदल रैली निकालकर बीईओ कार्यालय, तहसील कार्यालय या एसडीएम कार्यालय में ज्ञापन प्रस्तुत किए जाने की योजना है। रैली में चल रहे सभी सदस्य इस बात का ध्यान रखें कि आपकी रैली से कहीं भी आम यातायात तनिक भी बाधित ना हो। सभी सड़क के एक किनारे चले और एम्बुलेंस या फायर ब्रिगेड जैसे वाहनों के आने पर तत्काल साइड दे। इसके साथ ही शहर से लेकर गांव गांव तक ये यूं कहें कि संपूर्ण बिलासपुर जिले की यातायात व्यवस्था बिल्कुल सामान्य है। मित्रों, शासकीय तौर पर सभी प्रकार के वाहनों के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर के संबंध में एक नई व्यवस्था लागू की गई है। प्रत्येक वाहन के आगे एवं पीछे एक निश्चित आकार के नंबर प्लेट पर संबंधित वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा जाता है। इसी रजिस्ट्रेशन नंबर से वाहन और वाहन मालिक की पहचान होती है। पहले इन नंबर प्लेटों में काले पेन से रजिस्ट्रेशन नंबर हाथ से ही लिखा जाता रहा है, किंतु अब संपूर्ण भारत देश में इसमें आमूलचूल परिवर्तन किया गया है। अब यह नंबर मानक आकार के नंबर प्लेट पर अधिकृत कंपनी के द्वारा मशीन से प्रेस कर बनाया जाता है, जो नंबर प्लेट पर उभार लिए होता है, ताकि अब इस नंबर प्लेट पर कोई छेड़छाड़ न कर सके। इसे हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट कहते हैं। अब प्रत्येक वाहन में इसे अनिवार्य किया गया है। इस नंबर प्लेट के न होने पर बड़े जुर्माने का प्रावधान है। इसलिए अब आप अपना सब काम रोक कर अपने वाहन में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर लगवाइए, क्योंकि शहर में लगे 500 कैमरे रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट भी चेक कर रहे हैं। मानक नंबर प्लेट के न होने पर चालान सीधे आपके पास भेजा जा रहा है। सतर्क हो जाइए, हमेशा यातायात नियमों का पालन करें। आपकी यात्रा शुभ हो।
3: ट्रैफिक अपडेट अभी आप सुन रहे थे उमा शंकर पांडे से। और अब कार्यक्रम नए तराने में आगे बढ़ते हैं। सुनवाते हैं फिल्म अकेली का ये गीत, आवाज दी है गुरशब्द सिंह और चैनी का गर्ग ने, गीत और संगीत दिया है गुरशब्द सिंह ने।

अकेली फिल्म कहेगी तभी आपने सुना आवाजें दी थी गुरशब्द सिंह और चिनकिया, माफ कीजिएगा, चैनिका गर्ग ने। गीत और संगीत गुरशब्द सिंह का था। और अब लीजिए सुनिए फिल्म लव आजकल का ये गीत, आवाज है मोहित चौहान की, इरशाद कामिल ने इसे लिखा है, संगीत से सजाया है प्रीतम ने।

श्रोताओं, एक सूचना सुनिए। बढ़ते साइबर अपराध और उनसे सुरक्षा। आकाशवाणी बिलासपुर द्वारा एक विशेष फोन इन कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग सोमवार दिनांक 24 अगस्त 2026 को सुबह 11:30 से 12:30 के बीच की जाएगी और इस विषय पर जानकारी देने के लिए स्टूडियो में

इसको सुबह 11:30 से 12:30 के बीच की जाएगी और इस विषय पर जानकारी देने के लिए स्टूडियो में उपस्थित होंगे नगर के DIG वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री रजनेश सिंह। श्रोता हमें 07752-266592 इस नंबर पर कॉल करें और अपनी समस्याएं सीधे DIG सर से पूछें। आपकी फोन कॉल्स का हमें रहेगा इंतजार। समय याद रखिएगा, सोमवार सुबह 11:30 से 12:30 के बीच। सूचना समाप्त हुई और अब लीजिए सुनिए बत्तीगुल मीटर चालू इस फिल्म का गीत आतिफ असलम और अल्तमस फरीदी की आवाज में। लिखा है मनोज मुंतशिर ने, संगीत रोचक कोहली का।

0: बत्ती गुल मीटर चालू, इस फिल्म का ये गीत अभी श्रोता सुन रहे थे, आतिफ असलम की आवाज़। और इस गीत को लिखा था मनोज मुंतशिर ने, संगीत से सवारा रोचक कोहली ने। और इसी के साथ कार्यक्रम नए तराने का ये अंक यहीं समाप्त हुआ।
1: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं, मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
2: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती,
3: देश की सुरीली धड़कन
4: विविध भारती,
2: भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता,
3: कुछ बातें कुछ गीत कायम रहे छाया गीत,
2: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट,
3: वीर सैनिकों की जय माला
2: और हंसी का हवा महल, बाइस्कोप की बातें यादों के उजाले,
3: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग,
5: सखी सहेली,
3: बॉम्बे टॉकीज और
6: सेल्यूलॉइड के सितारे,
3: हम क्या कहें आपको याद सब है जरा जरा,
5: मुझे याद सब है जरा जरा।
2: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर
3: डीटीएच और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन
2: मन का सुकून, दिल की आरती,
3: सुरीली संदली।
0: एफएम 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। दिन के 11 बजने को हैं, अब से थोड़ी ही देर में हम जुड़ेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम।

0: दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त यूनुस खान हूं और आज मैटिनी शो कार्यक्रम में हम एक बहुत ही जरूरी मुद्दे पर बात करने वाले हैं, जिसके लिए हमने एक बहुत ही खास मेहमान को आमंत्रित किया है। डॉक्टर संजय कुमार शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त है। किस लिए प्राप्त है, ये आप इस बातचीत में आगे जानेंगे। डॉक्टर संजय कुमार शर्मा, बहुत बहुत स्वागत आपका।
1: बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे भी बहुत खुशी और प्रसन्नता हो रही है आज विविध भारती के मुंबई स्टूडियो में आकर।
0: जी, मैं आपसे दूसरे नंबर पर यह सवाल पूछूंगा कि आपको राष्ट्रपति पुरस्कार क्यों मिला है। सबसे पहले तो ये जो आपके नाम के आगे डॉक्टर लगा है, जी, तो जी। ये किस मर्ज के लिए लगा है?
1: बेसिकली मैंने MSc मैथमेटिक्स और VED किया।
0: हाँ।
1: और फिर देखा कि कुछ बचपन से ही लगने लगता था मानसिक विक्षिप्त मनोरोगियों,
0: जी,
1: तो फिर मैंने जाके फिर डॉक्टरी की। डॉक्टरी मतलब वो नहीं की थी कि MBBS वाला, नेचुरोपैथी में डॉक्टरी की थी हमने एक्चुअली।
0: अच्छा, गजब गजब, क्या बात है। ये बताइए कि आपको राष्ट्रपति पुरस्कार से किस बात के लिए सम्मानित किया गया था और आपके

0: आम का क्षेत्र क्या है?
1: विगत 36 वर्षों से मैं मानसिक विक्षिप्तों की सेवा स्वयं के व्यय पर करता हूं,
0: जी
1: यानी कि मेरी कोई एनजीओ नहीं है।
0: अच्छा,
1: हाँ, और मैं ग्रामीण क्षेत्रों में, बुंदेलखंड में, वैसे मेरा कार्य क्षेत्र संपूर्ण भारतवर्ष है, जहां से भी मुझे जानकारी मिलती है, कॉल आता है, तो मैं स्वयं के व्यय पर, स्वयं का खर्चा लगाकर वहां जाके ऐसे मानसिक विक्षिप्तों की सेवा करता हूं जो कि कई कई वर्षों से जंजीरों से अपने घर के कोने में, आंगन में, अपने खेत में, हार में कहीं बंधे रहते हैं। तो मैं वहां जाकर देखकर और पहचान कर उनका रेस्क्यू ऑपरेशन करता हूं, और जैसे ही उस मानसिक विक्षिप्त को छोड़ा जाता है तो वह किसी का मर्डर कर देते हैं, हत्या कर देते हैं, आगजनी कर देते हैं, बच्चों को उठा के मार देते हैं, तो वो वहां जाके मैं ऐसा कार्य करता हूं। तो शायद भारत सरकार ने इस लायक मुझे समझा कि मुझे महामहिम राष्ट्रपति जी के द्वारा देश का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति दिव्यांगजन सशक्तिकरण पुरस्कार 2024 मिला।
0: जी, मुझे ये बताएं कि ये काम आपने किस प्रेरणा से शुरू किया था? क्या कोई ऐसी घटना थी जिसने आपको प्रेरित किया, इस काम की तरफ मोड़ा?
1: हमारे जो पिताश्री थे वो शिक्षक थे,
0: जी,
1: तो मैं ये सोचता था कि एमएससी बीएड करने के बाद शिक्षक बनूं।
0: आप छतरपुर में थे?
1: जी, हाँ, मैंने पूरी हमारी जो शैक्षणिक योग्यता है वो मैंने छतरपुर से ली है। तो मैं सोचता था कि चलो, जैसे हमारे पिताजी एक महान शिक्षक थे और अनुशासित थे और बड़े योग्य शिक्षक थे, जिन्होंने बच्चों के प्रति त्याग किया है कि इनको कैसे सफल बनाया जाए, देश का नागरिक बनाया जाए, तो हम सोच रहे थे कि मैं भी पिता के समान एक शिक्षक बनूं। लेकिन ईश्वर हमसे शायद कुछ और ही कराना चाह रहा था। जब मैं नानी के यहाँ जाता था तो मैं बचपन में देखता था कि जब कोई मांगने वाला भिक्षु या कोई मनोरोगी हमारे यहाँ आता था नानी के यहाँ, तो जैसे बच्चे शरारत करते ना उनके साथ, तो शरारत की, कभी भोजन दिया नहीं दिया, या उनके ऊपर पानी फेंक दिया, कंकड़ उनको टच करके भाग गए, कंकड़ मार दिए, तो हमारी नानी कहती थी कि उनके भी हृदय है, जान है, उनके उनके भी वो भी एक मनुष्य हैं, उनके साथ अच्छा व्यवहार करें, उन्हें भोजन दें, उन्हें खाना दें और उन्हें कपड़े दें। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि नानी थी तो निरक्षर, लेकिन एक बहुत ही अनुभव था उनके पास, उनके पास ज्ञान का भंडार था। तो उन्होंने हमें ये प्रेरणा शिक्षा दी कि इन लोगों के साथ अच्छा व्यवहार किया जाए। तो कह सकते हैं वैशाली की महान आत्मा के द्वारा एक महान प्रेरणा हमें जो मिली, चिरस्थाई प्रेरणा मिली, जो निरंतर 36 वर्षों से आज तक चली आ रही है।
0: सबसे पहले आपने क्या किया था, किस व्यक्ति को किस तरह से क्या देखा और कैसे उसके सुधार के लिए और उसके बेहतरी के लिए काम किया?
1: जैसे कि हमारे घर में कुछ लोग मांगने वाले आते तो उनको भोजन कराना, या कोई इवेंट हुआ, कोई ओकेशन हुआ, फादर का जन्मदिन हुआ या कुछ हुआ, तो उनको घर से भोजन बनाकर इन लोगों के बीच में बांटना। तो अच्छा लगता था इनसे कभी बात करना, मिलना। फिर देखा कि इन लोगों के साथ जो व्यवहार किया जाता है, तो परिवार के लोग भी इन लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे, समाज के लोग भी इनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे, साथ में सरकार भी इनका कोई उचित ध्यान नहीं करती थी। तो सबसे पहले तो हम इनकी कटिंग कराना, कपड़े बदलाना, भोजन कराना इत्यादि करते रहे। फिर जैसे मैंने LLB की, तो मैंने देखा कि इसमें एक एक्ट है, कानून है, कि इनको हम कार्यपालिका और न्यायपालिका के सहयोग से इनको हम मानसिक आरोग्यशाला पहुंचा सकते हैं, वो भी पूर्णतः निशुल्क। तो वो हमने धीमे धीमे शुरुआत की। सबसे पहले एक सेरा नाम का मानसिक विक्षिप्त था, कहीं भी सांप खा ले, किसी को भी मारने दौड़ जाए, तो सर्वप्रथम आज से 28 वर्ष पहले हमने उसको मानसिक आरोग्यशाला ग्वालियर पहुंचाया था।
0: अच्छा।
1: वो स्वस्थ भी हो गया था।
0: मतलब ये कि किसी व्यक्ति को आपने वहां पहुंचाया और मेंटल हेल्थ सेंटर में, और वो ठीक हो गया?
1: हाँ, सभी ठीक हो जाते हैं। इसमें एक चीज और है, जैसे आपने प्रश्न किया जितने पहुंचाए वो क्या सब ठीक हो गए, तो इसमें क्या होता है, जैसे सर्दी खांसी बुखार होता है, वो पहले होता है, मतलब व्यक्ति स्वस्थ होता है, फिर यदि सर्दी खांसी बुखार हो गया तो इलाज से ठीक हो जाती। इसी प्रकार से यदि कोई मानसिक विक्षिप्त रहता है, पहले स्वस्थ था किन्हीं कारणोंवश मानसिक विक्षिप्त हो गया, तो उसको हम दवाइयों के माध्यम से ठीक करा सकते हैं। और

0: कोई यदि एमआर है, एमआर बोले तो मेंटल रिटार्ड, मानसिक मंदता, तो उनको हम फिर संबंधित एनजीओ में पहुंचाते हैं, क्योंकि जो मेंटल रिटार्ड पर्सन होते हैं उनका वो पैदाइशी होते हैं, तो उनको अपन सहायता कर सकते हो, उनको सरकारें पेंशन भी देती हैं, तो उनकी व्यवस्था भी करते हैं।
1: जी, अब तक कितने लोगों को आपने बेहतर दिशा की ओर पहुंचाने का काम किया है?
0: प्रत्येक दिन, ऐसा कोई भी दिन नहीं जाता है हमारे लिए जो कि जहां पर हमें फोन ना आता हो कि भैया, आजकल तो प्रशासनिक अधिकारी हमें फोन करने लगे हैं कि सर इसका जो एक्ट है, कानून है, वो हमें बताएं। तो हमने एक पीडीएफ फाइल बना रखी है, तो
1: जी
0: जहां से जैसे भी वो फोन आता है हम वहां जाके वो पीडीएफ फाइल दे देते कि
1: जी
0: एक्ट ये बोलता है,
1: जी
0: प्रोसीडिंग क्या है ये बता देते कि एक परिवाद बनेगा, कथन करेंगे, मेडिकल से मेडिकल कराएंगे, डॉक्टर से मेडिकल कराएंगे,
1: जी
0: तदुपरांत संबंधित व्यक्ति को
1: जी
0: संबंधित न्यायालय में पेश करके संबंधित मानसिक आरोग्यशाला में पहुंचाया जा सकता है, एक चीज।
1: जी
0: सेकंड चीज, यदि कोई मनोरोगी है, डिप्रेशन में है या कोई और भी चीजें हैं, तो उनको हम बेहतर इलाज के लिए मार्गदर्शन देते हैं कि आप ऐसा कीजिए। अभी जो आपने प्रश्न किया, अभी तक हमने 2000 प्लस खूंखार मानसिक विक्षिप्त, जिन्होंने की हत्याएं की है, आगजनी की है, जिन्होंने अपने घर परिवार को किसी न किसी की हत्या कर दी, तो 2000 से अधिक मानसिक विक्षिप्तों को कार्यपालिका और न्यायपालिका के सहयोग से मानसिक आरोग्यशाला पहुंचाया। आप विश्वास करेंगे, 2000 प्लस जितने भी थे वो सभी स्वस्थ होकर समाज की मुख्य धारा में जुड़ गए हैं,
1: जी
0: वो अपना व अपने परिवार का भरण पोषण भी कर रहे हैं साथ में। लेकिन एक निर्देश भी देते हम कि इसकी जो इलाज करा के आए हैं, इसकी दवाइयां जब तक डॉक्टर ना कहे बंद ना करे। अधिकांशतः प्रायः देखा गया है कि जैसे ही इलाज करा के आते हैं वो स्वस्थ हो जाते हैं, फिर दवाइयां बंद कर देते हैं। तो दवाइयां कभी बंद ना करें जब
1: अच्छा,
0: तक
1: इस
0: डॉक्टर ना
1: दिशा
0: कहे।
1: में
0: जी जी
1: आपको किस तरह की परेशानियों का, विरोध का सामना करना पड़ा?
0: देखो, ये तो स्वाभाविक है, जब कोई अच्छा कार्य करेंगे तो निश्चित है परेशानियां तो आती ही हैं, वो तो आपका दृढ़ संकल्प है कि आप उन परेशानियों को, उन प्रॉब्लम को कैसे फेस करते हैं, कैसे निकालते हैं। तो जब हम जाते हैं तो सबसे पहले तो वो जो मानसिक विक्षिप्त रहता है, जो फोन आया कि आप मिलिए उससे, तो जाते तो वैसे ही बिहेव करता है वो मेरे साथ भी, जैसे आम पब्लिक के साथ बिहेव करता है,
1: हिंसक हो सकता है।
0: हिंसक होते हैं, हो जाते हैं। लेकिन जब धीमे धीमे हम उनके संपर्क में आते हैं, उनकी वस्तुएं खाने पीने के लिए देते हैं, वो हमारी बात समझने का प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं, हम उनकी बात समझने का प्रयास कोशिश करते हैं, ये सिलसिला थोड़ा बढ़ता है, फिर वो हमारी बात मानते हैं, हम उनकी बात मानते हैं, और फिर हम ऐसे खूंखार मानसिक, तो यदि बेघर है, होमलेस है, तो संबंधित थाना प्रभारी को कहेंगे, संबंधित थाना प्रभारी भी हमारे साथ कॉपरेट नहीं करता, कहने लगते हमारे पास और भी कार्य हैं, और क्या पुलिस के पास यही कार्य है, उन्हें हम कानून बताते हैं, है ना। फिर उन्हें ये लगता है कि जे क्यों इस सेवा को कर रहे हैं, फिर हम उन्हें बताते हैं कि हमारी कोई एनजीओ नहीं है। फिर जैसे वो हमारे विषय में मालूम करते हैं कि हाँ ये व्यक्ति
1: जेन्यून है।
0: जेन्युइन और निस्वार्थ भाव से सेवा कई वर्षों से करते आ रहे हैं, तब वो हमें कॉपरेट करते हैं, कभी नहीं करते हैं। कभी जब हम ज्यादा परेशान करते हैं और तो वो क्या करते हैं, उस मानसिक विक्षिप्त को अपने क्षेत्र से किसी ट्रक में बैठा कर आगे बढ़ा देते हैं, ऐसे क्रम चलता रहता है।
1: अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने कहा कि आप किसी भी मानसिक विक्षिप्त व्यक्ति को देखते हैं कि वो किसी बुरी स्थिति में है, तो आप उसे वहां से रेस्क्यू करते हैं और आप उसे सरकारी यूनिट में पहुंचाते हैं, है ना, सुधार गृह में पहुंचाते हैं या
0: मानसिक आरोग्यशाला।
1: आरोग्यशाला जो होती है वहां पहुंचाते हैं। क्या वहां से सहयोग मिलता है? और क्या आपकी बात सुनकर कोई व्यक्ति इस तरह का प्रयास करे तो क्या वो सफल हो पाएगा?
0: क्यों नहीं सफल हो सकता भाई, सफल तो हो। जैसे हमें भी जब शुरू की थी आज से 36 वर्ष पहले तो प्रॉब्लम आई थी, लेकिन एक दृढ़ संकल्प होना चाहिए, एक मन में विश्वास होना चाहिए कि देखो, यदि आप संघर्षों से टकराएंगे और लड़ेंगे तभी तो आप ऊंचाइयां छू पाएंगे,
1: जी, बिल्कुल
0: तभी आप हटके कोई कार्य करेंगे तभी तो आप ऊंचाइयां छू पाएंगे। अन्यथा आम जनता में तो सब वही रहता है, बगल से निकल जाते, उसको देखते रहते हैं। तो यदि कोई व्यक्ति हमारे जैसा कार्य करना चाहता है तो पहले तो हम उसका बहुत स्वागत करेंगे, लेकिन उसमें एक प्रेरणा कर ले कि हमें ये काम निस्वार्थ

0: भाव से करना है,
1: लगे रहना पड़ेगा,
0: लगे रहना पड़ेगा। और बिना प्रतिफल के, बिना किसी आशा के यदि आप करेंगे तो आज नहीं तो कल, कल नहीं परसों आप भी सफलता की सीढ़ी चढ़ते हुए शिखर पर पहुंचेंगे। जो हमारी कार्य करने की पद्धति है, जैसे आपने पूछा, तो जैसे भी हमें कहीं मिलता है मानसिक विक्षेप, हम संबंधित थाने में जाकर उसके विषय में मिसिंग कंप्लेन देखते हैं कि कोई मिसिंग कंप्लेन तो नहीं है। फिर नहीं मिलती है तो एक पुलिस अधिकारी से परवाद बनवाते हैं, उन्हें कानून बताते हैं, फिर मेडिकल से मेडिकल बोर्ड से उसका मेडिकल भी कराते हैं, कथन कटवाते हैं। फिर संबंधित थाना प्रभारी, इसमें कानून है, जैसे हम आपको यही बताना चाहते हैं कि 1912 में था द इंडियन लुनेसी एक्ट, उसमें जो मानसिक आरोग्यशाला में भर्ती करने की जो प्रोसेस थी, प्रक्रिया थी, उसमें एसडीएम डिप्टी कलेक्टर को पावर था कि वो आदेशित कर देते थे। लेकिन देखा गया कि कुछ इसका मिसयूज हो रहा है, व्यक्ति झाड़ फूंक करता है, राख से इलाज करता है, मंदिर मस्जिद पे जाता है। फिर नया एक्ट बना, मेंटल हेल्थ एक्ट 1987, वो भी बहुत अच्छा चल रहा था। उसमें हर चीज की डेफिनेशन बताई गई कि मजिस्ट्रेट की डेफिनेशन क्या है, डॉक्टर की डेफिनेशन क्या है, और रिसेप्शन ऑर्डर क्या है, कैसे परवाद बनेगा, किस धारा के अंतर्गत बनेगा, ड्यूटी ऑफ द पुलिस ऑफिसर क्या है, रिहैबिलिटेशन सेंटर क्या है, और जिन बेघर हैं, जिनका कोई नहीं है इस दुनिया में, उनको कैसे आरोग्यशाला पहुंचाए, तो उसके लिए गार्जियनशिप कौन नियुक्त करेगा, कि गार्जियनशिप किसको मिलना चाहिए। तो इस एक्ट में एक चीज और हम बता दें, वर्तमान परिवेश में हमारे जो युवा हैं, आप देखते होंगे अखबारों में और माध्यम के, सोशल मीडिया के माध्यम से, हमारे जो युवा हैं वो आत्महत्या की ओर ज्यादा अग्रसर हो रहे हैं। तो ये एक समाज के लिए एक प्रश्न चिन्ह भी है। तो इसके विषय में हम जरूर बताना चाहते हैं कि इस एक्ट में पहले व्यक्ति, यदि एक ही धारा थी हमारे संविधान में, हमारे कानून में एक ही धारा थी कि यदि आत्महत्या करते हुए कोई भी व्यक्ति पकड़ा जाता है तो उसे 1 वर्ष का कारावास होता था, दंड दिया जाता था, और यदि उसने अपराध कर लिया, डन, तो वो तो स्वर्गवासी हो गया, इस दुनिया ही में नहीं है। इस एक्ट में जो अभी नया एक्ट आ गया है, मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017, इस एक्ट में इस धारा को विलोपित किया गया है। इस एक्ट में एक और फायदा है, मतलब बताया गया है कि जो दिव्यांग हैं, जो पहले 7 प्रकार के थे, अब 21 प्रकार के किए गए हैं। साथ ही इनके लिए बीमा नहीं मिलता था, इनकी फोटो कोई भी छाप देता था, इनकी इनके दुर्व्यवहार करता था, इन्हें परेशान करता था, घर के लोग भी परेशान करते थे, उन्हें उनकी हिस्सेदारी नहीं देते थे, उनके परिवार में यदि कोई संकट आता था या कुछ भी होता था, परिवार का जो उनका हिस्सा था वो भी गवन कर जाते थे, ले जाते थे। तो अब ऐसे गार्जियनशिप बनाएंगे और ऐसे परिवारों के लिए इनके लिए बीमा का भी प्रावधान किया गया है, और यदि कोई इनसे दुर्व्यवहार करता है, कंट्रोवीन करता है, तो इसमें सजा का भी प्रावधान किया गया है इस एक्ट में।
1: जी,
0: वो सजा है कि पहली बार यदि कोई उल्लंघन करता है, कंट्रोवीन करता है, तो उसको 2 माह की सजा और 10,000 रुपए जुर्माना, या दोनों संयुक्त रूप से कर सकते हैं। फिर यदि दोबारा कंट्रोवीन होता है, उल्लंघन करते हैं, तो इसमें 2 वर्ष की सजा और 50,000 से लेकर 5 लाख तक का जुर्माने का प्रावधान है।
1: जी, आपने ये कानून पहलू तो बताए। दो बातें यहाँ जो है वो मैं आपसे करना चाहता हूँ। एक तो ये है कि ये जो झाड़ फूंक और अंधविश्वास का प्रचलन है, ये मानसिक रोग हों या बहुत ज्यादा खतरनाक बीमारियां हों, इन सब परिस्थितियों में लोग इनकी शरण में जाते हैं।
0: जी जी जी।
1: तो इस तरह के मामले आपने देखे हैं कि किसी व्यक्ति में मानसिक विक्षिप्तता के लक्षण दिखे तो लोग इस तरह का अंधविश्वास अपनाते हैं, इससे मामला कितना बिगड़ता है, ये एक बात हुई। दूसरी बात मैं ये जानना चाहता हूं कि कौन सी ऐसी घटनाएं आपने इन 36 सालों में देखी हैं जिनमें से कुछ का यहां जिक्र किया जाए, तो एक ही बात है कि इन दोनों बातों के जवाब दीजिए।
0: होता क्या था कि नार्कोटेक्स की दवाइयां थी, मनोचिकित्सक पूरे देश में कम थे, और व्यक्ति यदि मनोरोगी हो गया है, एक बात हम आपको और बताते हैं आपके माध्यम से कि हमारे क्षेत्र में तो ज्यादातर, वहां के क्षेत्रों में भी होगा, पढ़ते रहते अखबारों में, एक गांजा पीने से, मैरिजुआना, गांजा पीने से हमारे बुंदेलखंड में काफी मानसिक विक्षेप मिलते हैं। गांजा यदि

0: खाली पेट पिया जाए तो व्यक्ति आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक साल के अंदर वो मानसिक विक्षेप की कगार पर आ जाएगा,
1: ओ
0: गांजा पीने से केवल। तो गांजा नहीं पीना चाहिए, नशा तो किसी भी प्रकार का नहीं करना चाहिए। और हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ईश्वर ने हमें बहुत अच्छा शरीर दिया है। जब पहली बार हम तंबाकू खाते हैं, सिगरेट पीते हैं, अल्कोहल पीते हैं, तो हमारा शरीर मना करता है। जैसे हम सिगरेट पीते हैं, मिठसकी लगती है, तंबाकू खाते उल्टी होती चक्कर आते हैं, शराब पीते उल्टी होती है, तो भगवान ने इतना अच्छा शरीर दिया, मना करता है। तो गांजा तो भूल के नहीं पीना चाहिए। गांजा पीने से व्यक्ति निश्चित ही आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो नरसों, निश्चित ही एक न दिन मान से विक्षिप्त होगा। यदि उसकी डाइट अच्छी रही ना रही तो, डाइट अच्छी रही तो ठीक है, कुछ दिन बाद कुछ सफर कर जाएगा, 10 साल 5 साल, लेकिन गांजा पीने से बुंदेलखंड में बहुत मानसिक विक्षेप मिलते हैं।
1: जी
0: पहली चीज
1: जी
0: होता यह है कि डॉक्टर मिलते नहीं है, दवाइयां नार्कोटेक्स की रहती हैं, डॉक्टर के पर्चे पे दवाइयां मिलती हैं, तो व्यक्ति जाए तो आखिर जाए कहां। सेकंड चीज जो हम आपको बताना चाह रहे हैं कि हर व्यक्ति ये कहता है कि मैं मानसिक विक्षेप नहीं हूं, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि पढ़ा लिखा व्यक्ति भी मनोरोगी हो रहे हैं आज के समय में, सबसे ज्यादा हमारे युवा हो रहे हैं। उसका मेन कारण है मोबाइल,
1: अच्छा
0: सोशल मीडिया। इनके इनके बच्चों के ऊपर जब लाइक डिसलाइक इनके नहीं आते हैं तो इनके मानसिक बोझ बढ़ता है। और माता पिता भी इनके ऊपर बहुत कहते हैं कि देखो फलाने का बच्चा ये बन गया, ढिकाने का बच्चा ये बन गया, और तुम कुछ नहीं कर रहे हो, तो मानसिक बोझ हमारे बच्चों पर पड़ता है और वो उसको सहन नहीं करते, तो बच्चे फिर गांजा पीने लगते हो, फिर वो आत्महत्या भी करते हैं। तो एक कारण। दूसरी बात, आपने जो प्रश्न किया था कि जो इनके ऊपर, तो एक्चुअली व्यक्ति जाए तो कहां जाए, वो तो वो फिर झाड़ फूक की ओर अग्रसर होता है। झाड़ फूक करने से क्या होता है कि हमारा शरीर बहुत अच्छा है, तो जब झाड़ फूक कोई व्यक्ति करता है तो अति विश्वास के कारण हमारे शरीर से ऐसे रसायनों का स्राव होता है जो कि हमें खुशी प्रदान करता है। सेरोटोनिन है, डोपामाइन है, ऑक्सीटोशन है, तो ये ब्रेन केमिकल है। और ये सब काय से बनते हैं, प्रोटीन से। प्रोटीन में होता है अमीनो एसिड ट्रिप्टोफैन, जो ब्रेन केमिकल कहलाते हैं। जब ये ब्रेन में जाते हैं तो हमें सेरोटोनिन, डोपामाइन, ऑक्सीटोशन मिलते हैं, है ना। तो होता क्या है कि जब इन जगह पर जाते हैं, मंदिर, मस्जिद, मजार, बाबा, ओझा के यहां राख लेके आते हैं, तो अति विश्वास के कारण कुछ समय के लिए अच्छे हो जाते हैं। और
1: असर
0: कहें
1: दिखता है, जो झूठा असर हो सकता है
0: हाँ,
1: या
0: कुछ समय के
1: भ्रमित
0: लिए,
1: असर हो सकता है।
0: कुछ समय के लिए, लेकिन वो फिर फिक्री अपनी वही अपना लेते हैं तो रहता है। लेकिन हम आपके माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि हमारे जो युवा हैं, तो पहले होता क्या था कि जो पहले WHO के जो आंकड़े बताते हैं 2019 के अनुसार, कि पहले 40 सेकंड में एक व्यक्ति सुसाइड करता था, अब प्रति सेकंड हो गया है 2020 में। और एक सर्वे कराया था निमंस ने बेंगलोर में, उसने देखा था 10,000 लोगों पर, तो जो पढ़े लिखे लोग थे उन पे भी कराया था, तो 2,443 लोग मनोरोगी पाए गए। तो कोई भी व्यक्ति मनोरोगी होगा उसको कहते हैं CMD, कॉमन मेंटल डिसऑर्डर। हम मानते ही नहीं है कि हम मनोरोगी हो गए हैं। क्यों नहीं मानते? हमारे घर परिवार में सभ्य समाज के लोग नहीं आएंगे, कहेंगे अरे वो तो मनोरोगियों का परिवार है, हमारे यहाँ शादी विवाह नहीं होगी, कोई हमारे परिवार में नहीं आएंगे, भिन्न भिन्न कारण हो सके। इसलिए कोई बताता नहीं है कि हम मनोरोगी हो गए हैं, और हमें मालूम भी नहीं चलता। इसका इसके कोई टेस्ट भी नहीं होते कि कोई ब्लड टेस्ट हो, यूरिन टेस्ट हो, फलाने टेस्ट हो। इसमें तो बस ऐसा ज्ञात किया जाता है कि व्यक्ति को यदि 15 दिन से अधिक नींद ना आना, भूख नहीं लगना, अजीब सा लगना, और ऐसा लगना, बुरा बुरा लगना, बुरे बुरे ख्याल आना है, तो अजीब, मतलब तो वो समझो कि CMD की ओर अग्रसर है, कॉमन मेंटल डिसऑर्डर की ओर अग्रसर है।
1: ऐसी परिस्थिति में ओझा या झाड़फूंक वाली जगहों पर जाने की बजाय मेडिकल हेल्प लेनी जरूरी
0: मेडिकल हेल्प उससे ठीक भी, जैसे हमारे पास उदाहरण है कि हमने 2,000 से ऊपर पहुंचाया, वो स्वस्थ होकर समाज की मुख्यधारा में जुड़ गए हैं।
1: जी, अब मुझे कुछ ऐसी घटनाएं बताइए
0: जी
1: जो
0: जी
1: आपके जीवन की बड़ी यादगार घटनाएं हैं और जिनमें बदलाव के संकेत हैं।
0: एक तो हम अपना बुरा अनुभव बता दें कि हम एक मानसिक विक्षिप्त को, जो कि BSc पास था और सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ाता भी था, वो किसी गांजा पीने से हो गया था मानसिक विक्षिप्त।
1: ओ
0: हाँ, तो उसको बांधे थे, जंजीरों से बांधे थे, और उसने आगजनी भी की थी, और बहुत अच्छा हष्टपुष्ट लड़का था। तो न्यायाधीश महोदय से निवेदन किया, थानेदार से भी निवेदन किया, पहुंचाया, तो न्यायाधीश महोदय ने कहा नहीं मैं नहीं करूंगी, SDM करेंगे। हमने उनको कानून बताया, तो उन्होंने कहा

0: उसको बांधे क्यों है? हमने कहा जी हिंसक है, अभी किसी को मार देगा, और एक दो इसके ऊपर 5 अपराध भी दर्ज हैं संबंधित थाने में, इसलिए इसको बांधे हुए हैं। तो उन्होंने एक आदेश दिया कि लड़के को, पिताजी को, जो इनके खास हम खास बने हैं वकील साहब संजय शर्मा, इनको भी अरेस्ट कर लिया जाए 342 में।
1: ओ
0: मौखिक आदेश दिया था, लेकिन फिलहाल उन्हें भी अनुभव हुआ कि नहीं जी मानसिक विक्षिप्त है, उनने मेडिकल रिपोर्ट दिखाई, सब दिखाई। तो दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं
1: तो
0: आपके माध्यम
1: आपको
0: से,
1: गिरफ्तार कर लिया गया था?
0: नहीं, उनने मौखिक आदेश दिया था, क्यों आप इसको बांधे हुए हैं? किसी अच्छे पुरुष को आपको बांधे रखना एक कानूनी अपराध है,
1: जी
0: और जो
1: जी
0: बांधे गए उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होती है। तो
1: राइट
0: उनने ऐसा सोचा, लेकिन फिर उन्होंने उसी मानसिक विक्षिप्त को मानसिक आरोग्यशाला में पहुंचाया, वो स्वस्थ भी हो गया और समाज की मुख्य धारा, फिर इस स्कूल में पढ़ाने भी लगा था वो।
1: वाह
0: फिर एक और उदाहरण दे रहे हैं कि एक मानसिक विक्षिप्त नहीं था, मनोरोगी था वो, तो उसको सुनाई भी नहीं देता था, बोल नहीं पाता था। तो उसके बगल में नया नया कंप्यूटर आया, और जैसे कि बाहर से, दिल्ली से, कहीं से भी कोई रिजल्ट ओपन होता था,

0: एक मानसिक विक्षिप्त, मानसिक विक्षिप्त नहीं था, मनोरोगी था वो, तो उसको सुनाई भी नहीं देता था, बोल नहीं पाता था। तो उसके बगल में नया नया कंप्यूटर आया, और जैसे कि बाहर से, दिल्ली से, कहीं से भी कोई रिजल्ट ओपन होता था तो वो उस गांव में मार्कशीट निकाल देता था, अंक सूची निकाल देता था। तो उसको ऐसा भ्रम हुआ कि हमारा पड़ोसी, जो हम खाते पीते हैं, हमारा खून और हमारा भोजन निकाल लेता है। तो
1: अरे
0: वो,
1: बाप रे,
0: हाँ, तो वो दुबला हो गया था पूरी तरह। वो मेरे पास आया, बोला भैया, वो बगल वाला पड़ोसी के पास कंप्यूटर आया है, प्रिंटर आया है, जिस पे का वो हमारा खून और खून निकाल लेता है, भोजन निकाल लेता है। हमने कैसे? बोले जिस प्रकार से दिल्ली में कोई रिजल्ट ओपन हुआ, अंक सूची वो अपने घर से निकाल देता है, तो इसी प्रकार से हमारा ब्लड और खून निकाल लेता और हमारा भोजन निकाल लेता।
1: भयंकर अंधविश्वास।
0: हाँ, भयंकर। तो हमने कहा कैसे कैसे उसको मना किया जाए? तो उसने कहा हमसे कि यदि आप उसको मना कर दें, हमने वो हमारी बात नहीं मानेगा। तो हमने पुलिस वालों को बताया, क्योंकि वो ना पढ़ा लिखा था, 12वीं पास था वो, और कंपोजिंग करता था प्रेस में।
1: ओके
0: हाँ, पढ़ा लिखा था, लेकिन वो साइको पेशेंट था।
1: जी,
0: फिर उसको हमने जब समझाया, बताया, तो पुलिस वालों से कहा, पुलिस वालों से निवेदन किया कि इसको समझा देना। तो उसने लिख के दिया कि हम इनका भोजन हम नहीं निकालेंगे ना खून। वो विगत विगत एक हफ्ते में स्वस्थ हो गया।
1: मतलब ये सोचिए कि ये नौटंकी नाटक एक तरह का
0: हाँ
1: रचना पड़ा कि
0: हाँ
1: भाई एक व्यक्ति की बेहतरी के लिए इस तरह का कुछ।
0: एक चीज और हम बताना चाहते हैं कि 2017 में नोबेल पुरस्कार मिला था जैविक घंटी पर।
1: जी
0: आप जैसा मन में सोचेंगे, जैसे विचार ले आएंगे, सामने आपको आकृति भी आ जाएगी।
1: ये मन का खेल है।
0: जी, नोबेल पुरस्कार मिला गया है 2017 में जैविक।
2: अभी हम रिले कर रहे थे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम FM 103.2 MHz पर। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। प्रादेशिक समाचार अब आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से हम रिले करेंगे।

ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में घरेलू मांग को पूरा करने के लिए चीनी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। बलरामपुर जिले में सड़क हादसे में 3 मजदूरों की मौत, 7 गंभीर रूप से घायल। और मौसम विभाग ने अगले 7 दिनों तक उत्तरी और मध्य छत्तीसगढ़ के एक दो स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा होने की चेतावनी दी है। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में घरेलू मांग को पूरा करने के लिए चीनी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है, हालांकि इसका उत्पादन अनुमान से कम रहने की संभावना है। सरकार ने चीनी की कीमतों में हाल की बढ़ोतरी को देखते हुए पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतें स्थिर रखने के लिए कई कदम उठाए हैं। मंत्रालय ने कहा है कि चीनी की कीमतों में हाल की बढ़ोतरी को इथेनॉल उत्पादन के लिए चीनी के इस्तेमाल से जोड़ना सही नहीं है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कल नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा से सौजन्य भेंट की। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य और चिकित्सा सेवाओं के विस्तार तथा केंद्र सरकार के सहयोग से संचालित स्वास्थ्य योजनाओं की प्रगति को लेकर सार्थक चर्चा हुई। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा आज दुर्ग में प्रधान जिला और सत्र न्यायालय के नए भवन का भूमि पूजन करेंगे। नए न्यायालय भवन को आधुनिक सुविधाओं और उन्नत तकनीकी संसाधनों से विकसित किया जाएगा। इसमें न्यायिक अधिकारियों, अधिवक्ताओं, कर्मचारियों, पक्षकारों और आम नागरिकों की सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जाएगा। छत्तीसगढ़ से हज के लिए आवेदन करने वाले प्रतीक्षा सूची के 82 आवेदकों के नाम तय हो गए हैं। राज्य हज कमेटी के चेयरमैन मिर्जा एजाज बेग ने बताया कि हज कमेटी ऑफ इंडिया से प्राप्त सूचना के अनुसार प्रतीक्षा सूची में क्रमांक 1 से 82 तक के आवेदकों का चयन हुआ है। चयनित हज यात्रियों को पहली किस्त के रूप में प्रति हाजी 1,52,300 रुपये 30 अगस्त तक जमा करने होंगे। बलरामपुर जिले में देर रात बॉक्साइट ट्रक और पिकअप के बीच हुई भीषण टक्कर में 3 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 7 मजदूर गंभीर रूप से घायल।

0: घायल हो गए। ये हादसा राजपुर कुसमी मार्ग पर सेवारी हाई स्कूल के पास बीती रात हुआ। पिकअप में चालक सहित 11 मजदूर सवार थे, जो प्रतापपुर से शंकरगढ़ जा रहे थे। दुर्घटना के बाद पुलिस ने घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर रूप से घायल 7 मजदूरों को बेहतर इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। रायपुर के टिकरापारा थाना क्षेत्र में शुक्रवार को करंट की चपेट में आने से मां और बेटे की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि महिला सूखने के लिए टंगे कपड़े निकालने गई थी, इसी दौरान वो करंट की चपेट में आ गई। अपनी मां को बचाने के लिए पहुंचा 23 वर्षीय बेटा भी करंट की चपेट में आ गया। भिलाई के जामुल थाना क्षेत्र में स्व सहायता समूह में निवेश का झांसा देकर महिलाओं के नाम पर करीब 15 लाख रुपए का लोन निकालने के मामले में पुलिस ने एक महिला को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार इस महिला पर मुद्रा और पर्सनल लोन लेकर महिलाओं के बैंक पासबुक, एटीएम और अन्य दस्तावेज अपने पास रखने का आरोप है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से संबंधित दस्तावेज बरामद किए हैं। वहीं इसी जिले के उतई थाना क्षेत्र में पुलिस आरक्षक की नौकरी लगाने के नाम पर 12 लाख रुपए की ठगी करने के मामले में पुलिस ने उमेश दास मानिकपुरी के खिलाफ अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मौसम विभाग ने अगले 6-7 दिनों तक उत्तरी और मध्य छत्तीसगढ़ के एक दो स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा होने की चेतावनी दी है। वहीं कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने की आशंका जताई है। मौसम विभाग के अनुसार मध्य प्रदेश और उसके आसपास एक निम्न दाब का क्षेत्र बना हुआ है, इसके असर से आज प्रदेश के एक दो स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में घरेलू मांग को पूरा करने के लिए चीनी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। बलरामपुर जिले में सड़क हादसे में 3 मजदूरों की मौत, 7 गंभीर रूप से घायल। और मौसम विभाग ने अगले 7 दिनों तक उत्तरी और मध्य छत्तीसगढ़ के एक दो स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा होने की चेतावनी दी है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ी में होगा, जिसे शाम 6:10 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: प्रादेशिक समाचार अभी हम अनुप्रसारित कर रहे थे आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से। FM एंड 103.2 MHz पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। दोपहर के 12 बजे हैं। अब से लेकर शाम 5 बजे तक हम रिले करेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सुधार उनकी सरकार के लिए मजबूरी नहीं बल्कि प्रतिबद्धता है। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियां लोगों के हित और देश के विकास को ध्यान में रखकर बनाई जा रही हैं। नई दिल्ली में इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम में प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार केवल नियम नहीं बदल रही बल्कि नीतियों में भी व्यापक बदलाव कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक स्तर पर संसाधनों को लेकर बढ़ता तनाव और दुनिया भर में अविश्वास नई चुनौतियां पैदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत के विकास के लिए 7 प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
3: मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन, मैंने ऐसे 7 सेक्टर्स की बात की जिन पर भारत का आज बहुत ज्यादा फोकस है। और इसलिए भारत आज पॉलिसी लेवल पर नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स कर रहा है ताकि हमारा फ्यूचर सुरक्षित हो, गवर्नेंस पर रिफॉर्म्स कर रहा है, ईज ऑफ लिविंग के लिए रिफॉर्म्स कर रहा है। ये रिफॉर्म्स हमारे लिए कंपल्सन नहीं है, ये हमारा कमिटमेंट है, ये हमारा कन्विक्शन है।
2: प्रधानमंत्री ने भारत की G20 अध्यक्षता के मंत्र एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य का उल्लेख करते हुए कहा कि दुनिया के सभी देशों का भविष्य एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। भारत की मेजबानी में आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आज ब्रिक्स युवा मंत्रियों की बैठक होगी, जबकि कल ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक आयोजित की जाएगी। बैठकों की अध्यक्षता युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया करेंगे। राज्य मंत्री रक्षा खड़से भी इसमें शामिल होंगे। युवा कार्य मंत्रियों की बैठक में युवा विकास, शिक्षा, कौशल, रोजगार, उद्यमिता जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। वहीं खेल मंत्रियों की बैठक में 11 ब्रिक्स देशों के मंत्री और प्रतिनिधि खेलों में आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने आगामी 57वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव इफ्फी की तैयारियों के लिए गठित समिति की पहली बैठक की अध्यक्षता की। 57वां अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव इस वर्ष 20 से 28 नवंबर के बीच गोवा में आयोजित होगा। बैठक को संबोधित करते हुए डॉक्टर मुरुगन ने युवा छात्रों, उभरते फिल्म निर्माताओं और भारतीय फिल्म उद्योग के गुमनाम नायकों के लिए अधिक अवसरों पर जोर दिया। सरकार ने आज 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए क्लोरोफेनिरामाइन मैलेट और फिनाइल एफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड वाले सभी फिक्स्ड डोज

0: कॉम्बिनेशन के निर्माण, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर इन दवाओं पर स्पष्ट चेतावनी देना अनिवार्य किया है, ताकि 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को ये दवाएं नहीं दी जानी चाहिए। भारत ने 22 भारतीय नाविकों के साथ 2 वाणिज्यिक जहाजों के अपहरण का मामला सोमालिया के अधिकारियों के सामने उठाया है। भारतीय उच्चायोग के अनुसार सभी भारतीय नाविक सुरक्षित बताए जा रहे हैं। भारत ने कहा है कि वो अपने नाविकों की सुरक्षा और कल्याण को सबसे ज्यादा महत्व देता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भी कहा है कि भारत अशांत समुद्री क्षेत्रों में काम कर रहे भारतीय नाविकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर है। ग्रामीण विकास मंत्रालय की सशक्त समिति ने आज नई दिल्ली में दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के गैर कृषि आजीविका घटक के अंतर्गत प्रस्तावों की समीक्षा की। बैठक का उद्देश्य महिलाओं के नेतृत्व वाले ग्रामीण उद्यमों को मजबूत और व्यापक बनाना तथा स्वयं सहायता समूहों के छोटे उद्यमों को आगे बढ़ाकर विकासोन्मुख व्यवसायों में बदलने का मार्ग तैयार करना था। बैठक की अध्यक्षता ग्रामीण विकास सचिव रोहित कंसल ने की। झारखंड के रामगढ़ जिले में मां छिन्नमस्तिका सीमेंट एंड स्टील पावर प्लांट में कल रात टरबाइन में तेज धमाके के बाद भीषण आग लग गई। इस हादसे में 3 इंजीनियरों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार अत्यधिक तापमान के कारण प्लांट का प्रोटेक्शन सिस्टम काम नहीं कर पाया, इससे टरबाइन की गति अचानक बढ़ गई और इसमें विस्फोट हो गया। प्लांट कर्मचारियों का आरोप है कि कंट्रोल रूम में बढ़ते तापमान और पर्याप्त कूलिंग व्यवस्था नहीं होने की जानकारी प्रबंधन को पहले से ही दी गई थी, लेकिन समय पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। तेलंगाना के यादाद्री भुवनगिरी जिले के पोचमपल्ली मंडल में स्थित हेजलो लैब्स प्राइवेट लिमिटेड में देर रात बड़ा विस्फोट हुआ। हादसे में 2 कर्मचारियों की मौत हो गई, जबकि 9 अन्य घायल हुए हैं। एक केमिकल रिएक्टर के अचानक फटने से औद्योगिक इकाई में जोरदार धमाका हुआ और भीषण आग लग गई। रिएक्टर फटने के कारणों की जांच की जा रही है। भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने लुजान डायमंड लीग में रजत पदक जीत लिया है। उन्होंने 88.05 मीटर तक भाला फेंक कर दूसरा स्थान हासिल किया। FIH पुरुष हॉकी विश्व कप के दूसरे चरण में आज एम्स्टर्डम में भारत का सामना मेजबान नीदरलैंड से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, आइए सुनिए यादों की महफिल।

0: कुछ दिल ने कहा।
1: सुनहरे ख्वाबों वाली एक लड़की,
0: अगर मेरी माँ बायोलॉजिकल मदर है तो टेक्निकल मदर मेरी विविध भारती है,
1: जिसे बचपन से ही गाने का शौक था।
0: कुर्सी पे बैठ के गा रहे थे और उसको लगा ट्रांजिस्टर ऑन छूट गया है। हम चले तुम चलो सावन की हवा चले।
1: उसने तोड़े पारंपरिक समाज के बंधन।
0: अब जब हम बाइक लेके निकल गए, जब तीन चक्कर लग गया तब याद आया ये तो अब रोकना ही नहीं आता है।
1: एक कामयाबी जो मिलते मिलते रह गई,
0: कभी सोचते ही नहीं थे कि हम हारेंगे।
1: जिंदगी ने करवाया एक लंबा इंतजार।
0: सुंदर सपनों की है मंजिल कदम की।
1: संघर्ष की डाल पर कामयाबी का फूल खिला।
0: जैसे तो है पास मेरे तेरे पास में।
1: जानी मानी गायिका दीपाली सहाय, बॉम्बे टॉकीज, 29 अगस्त से 12 सितंबर, हर शनिवार शाम 4 बजे, सिर्फ

परवीन सुल्ताना की आवासीय कुदरत फिल्म का ये गीत मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा हुआ था। संगीत आरडी बर्मन का, विविध भारती पर चल रही है यादों की महफिल।

0: गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
1: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
0: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना सुबह और शाम 6:45 पर सिर्फ विविध भारती पर।
2: यादों की महफिल कार्यक्रम में अब चश्मे बद्दूर फिल्म का गीत येसुदास और हेमंती शुक्ला।

0: रावड़ी राठौड़ में मेरा करेक्टर इंस्पेक्टर का था जो कि पॉजिटिव था, और कर्नाटका में एक जगह है जो बहुत मंदिर है जहाँ, उसकी जगह पे शूटिंग हुई थी इसकी।
1: अभिनय के दुनिया की बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा, सुनिए उनकी जिंदगी, उनके रिश्तों और सिनेमा की बातें।
2: पिज्जा एमएमएस का मैं खास करके बताना चाहूंगी कि दो ही एक्टर थे उसमें, और

0: सिनेमा की बातें।
1: पिज्जा एमएमएस का मैं खास करके बताना चाहूंगी कि दो ही एक्टर थे उसमें और दो ही एक्टर की 16 मिनट की नॉन कट मतलब फिल्म है वो।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 25 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: इंस्टाग्राम पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं, पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
3: नहीं नहीं, अभी नहीं।
2: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है। इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा
4: कुछ लिखा
2: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को।

सुरीला सफर। सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। सुरीला सफर कार्यक्रम में हर रोज हम एक इबारत पोस्ट करते हैं विविध भारती के फेसबुक पेज पर, और इस फेसबुक पेज पर जो इबारत होती है उसके जरिए हमारे श्रोताओं को एक चैलेंज मिलता है। वो चैलेंज ये होता है कि कुछ गाने छिपे होते हैं इस इबारत में, जिसके जरिए आपको पहचानना पड़ता है कि आज के कार्यक्रम का ताना बाना आखिर क्या है। तो चलिए आज की इबारत हम आपको पढ़कर सुनाते हैं। दो लोगों की बातचीत है ये, चलो गानों में बात करते हैं। मतलब, अरे मैं एक लाइन बोलूंगा जो किसी गाने की होगी, फिर तुम बोलना, लाइन बीच की भी हो सकती है। ठीक है, देखो मुश्किल लाइनें होंगी, चैलेंज मंजूर, शुरू करो। क्या दर्द किसी का लेगा कोई, इतना तो किसी में दर्द नहीं। नारी दीवानी हूं पीड़ा की रानी, मेरे ख्वाबों के झरोखों को सजाने वाली। किसके ख्वाबों ने मेरी रातों से कुछ मांगा है, अपने आप रातों में चिलमने सरकती हैं। जिसने मन का दीप जलाया, दुनिया को उसने ही उजला पाया। नए फूल फिर डगर में खिलेंगे, बहते चले हम मस्ती के धारों में। हम आपके कदमों पर गिर जाएंगे गश खाकर, इसका कोई पेंच भी ढीला है। हम न बोलेंगे कभी जो खत्म हो किसी जगह, ये ऐसा सिलसिला नहीं। कैसे समझाऊं, बड़ी ना समझो, आया ना मजा, तुम्हें तो बड़े गाने याद हैं। अगली बार फिर खेलेंगे ये खेल। ये है आज की इबारत, और बहुत बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट आए हैं, और आज के इस कार्यक्रम का सिलसिला शुरू करते हैं इस गाने के साथ। और आप भी बताइए कि क्या गानों के जरिए आप भी करते हैं संवाद। ये भी बताइए कि इस गाने को किस शायर ने लिखा है।

एक श्रोता ये लिखती हैं कि यूनुसी, ये संवाद वाली इबारत तो जैसे अब आपकी पहचान हो गई है। हम भी कभी कभी करते हैं गीतों के माध्यम से बातें और बड़ा ही मजा आता है। वहीं दूसरी तरफ एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि भाई आपसे किसी सारगर्भित गद्यांश की उम्मीद रहती है और गानों की आधी अधूरी

पंक्तियां जोड़कर आप ये भारत ना दिया करें। तो भाई हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि ये जो पिछले कुछ हफ्तों से जब भी सुरीला सफर कार्यक्रम में आपका ये दोस्त आता है, दो लोगों की बातचीत को गानों में पिरोता है और उसके जरिए एक इबारत तैयार होती है। अगर आपको लगता है कि ये ठीक तरीका नहीं है तो बाकायदा गद्यांश लिखा जा सकता है जिसमें कोई शब्द होंगे और उन शब्दों पर गाने होंगे। पर जिस तरह से आज बहुत ही मुश्किल पंक्तियों को मैंने पिरो दिया है गानों में, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें गाने खोजने में बहुत मजा आया और बहुत देर लगी गाने खोजने में? कई ऐसे लोग हैं मैंने देखा कि जिनके गानों को लेकर जवाब बड़े गलत आए हैं। मतलब ये है कि कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने कुछ पंक्तियों को थोड़ा सा गलत पहचान लिया है, लेकिन फिर भी कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने बाकायदा बहुत अच्छे से पहचाना। कैफी आजमी का लिखा हुआ ये गाना था, कुछ रोता है जिन्होंने से बोला है, गाना है गुलजार साहब का, जो कि नहीं है। चलिए अगले गाने की तरफ बढ़ते हैं। और ये जो गाना है ये किसी के आने से चेहरे पर चमक जाने वाली खुशी का गाना है। इस वीकेंड आपके घर कौन आ रहा है, क्या आपका चेहरा खिल उठे? आपको अपने घर किसके आने का इंतजार है?

क्या बात है, अभी अभी एक कमेंट ही आया है कि वक्त के इस गाने से चेहरे पर खुशी छा जाती है क्योंकि इस गाने में बजा पियानो इनॉक डैनियल साहब का बजाया हुआ है। इत्तेफाक की बात यह है कि बीते दिनों जब मैं पुणे गया तो इनॉक डैनियल साहब से मेरी मुलाकात भी हुई थी। बहरहाल एक श्रोता है जिन्होंने लिखा है कि इस गाने में साधना बहुत ही ज्यादा पसंद है। एक और श्रोता है जो लिख रही है कि अभी तो राखी आ रही है और अपनी बेटी का इंतजार है, वो अपनी नन्ही परी के साथ आने वाली है। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिख रहे हैं कि राखी है इसलिए मैं अपनी बहनों और बेटी का इंतजार कर रहा हूं। एक श्रोता को जन्माष्टमी पर कृष्ण जी का इंतजार है। तो इसके अलावा

एक और श्रोता हैं जिनके ससुराल वाले आ रहे हैं और वो त्रिकोणीय फल बना रहे हैं, समोसा बना रहे हैं। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो आज कहीं जा रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे श्रोता हैं जिनके घर कुछ लोग आ रहे हैं और उन्हें उनके आने से खुशी है। एक श्रोता हैं जिन्हें कुछ पत्रिकाओं की ऑनलाइन उन्होंने उनके ऑर्डर दिए थे तो उनका इंतजार है, यानी आंखों में चमक तब आएगी जब वो मैगजीन्स आ जाएंगी। इसके अलावा एक श्रोता है जो लिख रही है कि मैं आलसी होना चाहती थी लेकिन आज कोशिश किया और पहेली हल कर ली। आज की इबारत कठिन है, यह हमारे एक श्रोता ने लिखा है। कठिन आज की इबारत बाकायदा है और बहुत ज्यादा कठिन बनाई गई है। चलिए कठिनाई से आगे बढ़ते हैं और दूसरी कठिनाई की तरफ बढ़ते हैं, एक कठिनाई से दूसरी कठिनाई की तरफ। आप में से जो लोग ईमानदारी से बताना चाहते हैं बताएं कि आज कौन है जो उनसे रूठा हुआ है। पढ़ने जैसे संदेश होंगे तो हम यहां पढ़कर बताएंगे, क्या पता ये संदेश सुनकर रूठा हुआ कोई मान जाए। दूसरी चीज, रूठे हुए को मनाने का आपका फेवरेट तरीका क्या है?

भाई कितना मजा आया ये पढ़ के कि एक श्रोता लिखते हैं कि हमारे साथ रूठने वाली तो हमारी नवासी है, एक चॉकलेट और एक आइसक्रीम में मान जाती है। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो ये लिख रही हैं कि काश मैं इधर बात कर सकती लेकिन अपनी सहेली के साथ अस्पताल में हूँ, मतलब किसी मरीज को देखने के लिए गई हुई है। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि मनाने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि कान पकड़ो और कुछ अपनी शक्ल ऐसी बनाओ कि सामने वाले को लगे कि मस्का मारा जा रहा है। भाई बड़े अनुभवी हैं आप, बड़ी स्टाइल से आपने बताया है, एकदम तस्वीर आंखों के आगे खींच गई। इसके अलावा एक और श्रोता है जो ये लिख रहे हैं कि मेरी श्रीमती जब मुझसे रूठ जाती है तब मैं उन्हें अदरक इलायची वाली चाय बनाकर खुद अपने हाथों से पिलाता हूं। देखिए भाई सीखिए कुछ। इसके अलावा और भी बहुत सारे श्रोता हैं जिन्होंने रूठने मनाने के कुछ नुस्खे लिखे हैं। आज के इस कार्यक्रम में ऐसा भी होगा ये तो हमने सोचा ही नहीं था। अगर आप में से किसी श्रोता को रूठने

बनाने वाले जो नुस्खे हैं अभी भी पता हैं और उसमें से कुछ नुस्खे इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हैं, तो जरा लिख दीजिए, हम जरूर शामिल कर लेते हैं। इसके अलावा एक श्रोता ये लिखते हैं कि मेरी कोशिश ये रहती है कि कोई मुझसे रूठे ना, और अगर गलती से कोई रूठ लेता है तो मैं माफी मांग लेता हूं। और इसके अलावा एक और श्रोता है, इन्होंने बड़ा शॉर्टकट मारा है, लिखते हैं कि अब तो बहुत इजी है, रूठने वाले को मनाने के लिए व्हाट्सअप ऑन करो, फ्लावर्स केक और सॉरी सेंड कर दो। भाई अगर इतने आसानी से लोग मान जाएं तो फिर बात ही क्या है, व्हाट्सएप पर नकली फ्लावर्स, नकली केक, नकली सॉरी, क्या इससे कोई मानता है। चलिए अब ये है कि एक श्रोता जो है उन्हें शायरी सूझी, उन्होंने लिखा, रूठना तुम्हारा भी अजीब मौसम है, तुम चुप हो तो कमरे में रखी चीजें भी जैसे धीरे धीरे बोलने लगती हैं। इसके अलावा एक और श्रोता है जो ये कहते हैं कि रूठते तो हम भी हैं, पर एक बात हमें हमारी अच्छी लगती है कि हम मान भी जाते हैं, ज्यादा देर तक हम रूठे नहीं रह सकते, ये भी एक मजेदार चीज है। तो आज के इस कार्यक्रम का रास्ता जो है वो रूठने मनाने की तरफ मुड़ गया है। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि एक उम्र के बाद कोई किसी को मनाता नहीं है, ये भी अनुभव की बात है। फिर एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि हमारी रूठने की उम्र पार हो चुकी है, अब तो सिर्फ समझौते में गुजर रही है। और इसके अलावा कई श्रोता है जिन्होंने लिखा है कि आज की इबारत कठिन है, लेकिन इस इबारत में जो बातचीत का अंदाज है वो पसंद आता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। और अब चलते हैं भीगने की तरफ। इस बार की बारिश में सबसे ज्यादा कब भीगे आप, ये जरूर बताइएगा कि इस बार की बारिश में सबसे ज्यादा कब भीगे आप। ऐसा अक्सर होता है कि जब हम रेनकोट या छतरी लेकर नहीं निकले तब जरूर ऊपर वाला टॉर्च लगा के देख लेता है और आपके ऊपर बारिश करवा देता है। क्या आपके साथ ऐसा हुआ कि मौका देखकर बारिश ने आपके ऊपर लगाया हो चौका?

भाई हमने चाहा था कि आप में से बहुत सारे लोग भीगने के अपने किस्से बताएं तो बड़ा मजा आए। एक श्रोता है लिख रहे हैं कि फिलिस्तीन में तो पिछले 7 दिनों में खूब बारिश हुई और काम ही ऐसा है कि बाइक में चाहे रेनकोट भी पहनना पड़ता है तब भी सारा बदन पानी से तर हो जाता है। एक और श्रोता है जो लिखती है कि बारिश में भीगना भी बड़ा मजेदार अनुभव है। पहली बूंद चेहरे पर पड़ती है तो लगता है आसमान ने चुपके से छेड़ दिया हो। फिर बाल कपड़े जूते सब अपनी अपनी शिकायत लेकर बैठ जाते हैं लेकिन मन है कि बचपन की तरफ लौटना चाहता है। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखती है कि मुझे भीगना पसंद नहीं है लेकिन मुझे भीगने वाले गीत पसंद हैं। इसके अलावा एक और श्रोता है कहते हैं कि जैसे ही घर से निकले तो बारिश ने भिगो दिया, जब तक गाड़ी तक पहुंचे तब तक भीग चुके थे। इसके अलावा एक और श्रोता है अचानक बारिश में भीगने का ज्यादा अनुभव तो नहीं पर बारिश के मौसम में धूप खिली हो और छत पर कपड़े सुखाने डालें तो बादल जैसे भागे दौड़े चले आते हैं और हम कितना भी भाग कर जाए सूखे हुए कपड़ों को गीले होने से बचा नहीं पाते। ये मजेदार बात है। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि बरसात में खेतों की मेड़ों पर भीगते भीगते मजा आता है। बहरहाल खेतों पर छाता लेकर श्रीमती जी गर्मा गर्म नाश्ता लेकर आई हूं तो बात ही क्या है। एक और श्रोता है लिखते हैं कि कहीं बाइक चलाता हूं तो भीग जाता हूं अक्सर। एक और श्रोता है लिखते हैं कि धर्मशाला ओवरब्रिज में ड्यूटी जाते समय अचानक बारिश होने लगी और मैं भीग गया। घर वापस गया, कपड़े बदले, रेनकोट पहना और उसके बाद वापस काम पर गया। इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने लिखा है भात लावणी यानी चावल की रोपाई देखने नसरापुर गए थे तब बारिश में बहुत ज्यादा भीगे थे। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि अगर मेरी वाइफ रूठ जाती है तो मैं सॉरी कहता हूं और जादू की झप्पी देता हूं। इसके अलावा एक और श्रोता है जो ये लिखते हैं कि भाई बहुत ज्यादा वायरल फीवर फैला हुआ है आजकल तो इसलिए भीगने से हम बचते हैं। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि छत्रपति संभाजी नगर में तो इतनी बारिश ही नहीं हुई कि हम भीग जाएं। और इसके अलावा इतनी सारी बातें लोगों ने बारिश के बारे में की है। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि हमारे यहाँ सीजन की बारिश कम होती है लेकिन जब बारिश होती है तो हम अपने टेरेस पर चले जाते हैं और भीगते हैं। बारिश की इतनी सारी बातें, कोई तो ऐसा होगा जो इस वक्त कार्यक्रम सुनते हुए भी बारिश का मजा ले रहा होगा, भीग रहा होगा। ये सच है कि वायरल फीवर का डर रहता है लेकिन ये भी होता है कि बारिश हुई और लोग निकल पड़े लॉन्ग ड्राइव पर। आपके शहर के आसपास ऐसी कौन सी जगह हैं जहां बारिश में मनाया जा सकता है पिकनिक, जहां लोगों की भीड़ आती है बारिश के मजे लेने के लिए?

भाई इतनी जल्दी गाना खत्म हो गया। जो अच्छे गाने होते हैं उनके खत्म होने पर यही लगता है, अरे ये गाना खत्म हो गया। एक श्रोता है जो कहते हैं कि हमारा सबसे नजदीकी शहर अयोध्या है, जहां राम की पौड़ी पर 12 महीने नहाते भीगते पिकनिक का मजा लीजिए, पुण्य कमाइए। एक और श्रोता है जो अपने जलंधर शहर के आसपास के घूमने के इलाकों के बारे में बता रहे हैं। और इसके अलावा एक और श्रोता है जो कह रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ तो नर्मदा जी काफी ऊपर तक आ चुकी हैं और शासन ने मना किया, उसके बावजूद लोग पुल पार कर रहे हैं। और इसके अलावा एक और श्रोता है जो ये कह रहे हैं कि बनारस में बारिश के समय 3 जगहों पर सब लोग पिकनिक करते हैं, सबसे पहले सारनाथ, फिर नमो घाट और फिर बनारस का 80, फिर क्या मजा है, तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन भी मिलते हैं। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कह रहे हैं कि आप भोपाल आ जाइए, कोलार डैम चलते हैं, जंगल में चलते हैं, पिकनिक मनाएंगे, बहुत मजा आ जाएगा। इसके अलावा एक और श्रोता है जो ये कहते हैं कि बीते 3 महीनों से हम पुणे में हैं, लोनावाला, तमहिणी घाट, अनेकों झरने, और इस बार तो इंद्रदेव पूना पर बहुत ज्यादा मेहरबान है। और जहां तक बारिश में भीगने की बात है तो हमारे एक दोस्त हैं जिनका नाम है शकील आजमी, वो कहते हैं खुद को इतना मत बचाया कर, खुद को इतना मत बचाया कर, बारिशें आए तो भीग जाया कर, क्या समझे आप। एक और श्रोता हैं जो ये लिखते हैं कि बारिश में भीगना तो होता है पर कभी कभी आंसू भी भिगो देते हैं, जज्बाती बात इन्होंने लिखी है। एक श्रोता लंदन में है जो बारिश का इंतजार कर रही है और कहती है कि इतनी गर्मी कि बगीचे की घास तक सूख गई है। एक और श्रोता है जो इंदौर में है, लिखती हैं कि मांडू बहुत आसपास है और वहां लोगों की बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ रहती है। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखती है कि मैं और मेरे पतिदेव जब भोपाल में मिलते थे तो बड़े तालाब के किनारे हाथों में गर्मा गर्म भुट्टा और फिर भीगने का मजा। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि हमारे शहर के आसपास कारहांडला का जंगल है और ताडोबा है, पिकनिक मनाने के लिए बड़ी सुंदर जगह है। तो इस तरह से बहुत सारे श्रोताओं ने ये लिखा है कि किस तरह से उन्हें भीगने में मजा आता है और कैसे उनके घर के आसपास बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां बारिश के दिनों में मनाया जा सकता है पिकनिक। और इसके अलावा एक और श्रोता है जो सागर शहर में पिकनिक मनाने की जगहों के बारे में लिख रही हैं। एक श्रोता है जो गोरखपुर में हैं और लिखते हैं कि रामगढ़ ताल गोरखपुर में बारिश में घूमने का बहुत ज्यादा मजा आता है, बिल्कुल अब तो वहां जो चलने के लिए जगह बन गई है वो भी बड़ी सुंदर है। एक और श्रोता है जो लिखते हैं जयपुर में आमेर, जलमहल, नाहरगढ़, जयगढ़

0: क्या बात है। तो भैया सारे देश की जो बारिश की शानदार जगह हैं उनके बारे में हमें पता चल गया कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे पिकनिक मनाया जा सकता है। खंडवा के पास हनुमंतिया टापू है, बैक वाटर का बहुत ही सुंदर पिकनिक स्पॉट, वहाँ भी बहुत मजा आता है। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि 5 और 6 जुलाई को बहुत बारिश हुई और हम लोग मारवे बीच चले गए, बिल्डिंग की पूरी टोली गई थी पर भीगने नहीं दिया गया क्योंकि रेड अलर्ट लगा था। बिल्कुल समंदर जब चढ़ा हुआ हो तो वहां नहीं जाना चाहिए, बारिश में दुर्घटनाएं भी बहुत होती हैं। चलिए आज सुबह से आपके होठों पर कौन सा गाना तैर रहा है?
1: रंगीला रे,
0: क्या ये गाना? इस गाने की गीतकार कौन है ये आपको है बताना। और हाँ ये भी बताइए कि आपने सबसे सबसे अभी अभी कौन सी फिल्म देखी, नई या पुरानी, एकदम अभी।

भाई बड़ी मजेदार बात है। बहुत सारे श्रोताओं ने बहुत अलग अलग फिल्में देखी हैं, और ये जो सवाल है ना कि अभी आपकी देखी हुई ताजा फिल्म कौन सी है, ताजा फिल्म का मतलब ये है कि व्हाट फिल्म हैव यू सीन वेरी रिसेंटली, चाहे वो नई हो या पुरानी हो। तो कितनी मजेदार फिल्मों का इंद्रधनुष सज गया। बिल्कुल ताजा ताजा रिलीज हुई फिल्मों में से भी कुछ देखी हैं। अब जैसे एक श्रोता है जिन्होंने अपना देश देखी है, एक और श्रोता है जिन्होंने पुरानी वाली खामोशी देखी है, यानी वो खामोशी जिसमें गाना है हमने देखी है उन आंखों की महकती खुशबू या तुम पुकार लो। इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने दोस्ती देखी है, वाह वाह वाह, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत वाली दोस्ती। और इसके अलावा बहुत सारे श्रोता ऐसे हैं जिन्होंने बंटवारा 2 देखी है और आवरापन 2 या 3 जो भी है वो देखी है। इसके अलावा एक श्रोता है जिन्होंने टैक्सी नंबर 9211 उनकी देखी हुई आखिरी फिल्म है। एक श्रोता है जिन्होंने परख फिल्म देखी है और उनके होठों पर सजा हुआ है गाना मिला है किसी का झुमका, वाह वाह वाह वाह वाह क्या बात है। इसके अलावा आज का अर्जुन फिल्म कोई श्रोता है जो देख रही थी और लाइट चली गई। और इसके अलावा दीवाना मस्ताना कोई देख रहा है, कोई देख रहा है हम साथ साथ हैं, दो आंखें बारह हाथ, साहब बीवी और गुलाम, और इसके अलावा मैं वापस आऊंगा, और इसके अलावा देखिए मेरे महबूब, ओहो हो, नमकीन, गुलजार साहब की फिल्में भी कितने सारे लोग देख रहे हैं, और इसके अलावा भागम भाग, जंगल और कुदरत। देखिए सिर्फ नाम अगर पढ़ें तो कितने सारे लोग क्या क्या फिल्में देख रहे हैं। एक श्रोता लिख रहे हैं कि एक बार लॉन्ग ड्राइव पर निकले थे, सोचा था रास्ते में बारिश होगी, गाने बजेंगे, मौसम रोमांटिक होगा, बारिश हुई, गाने बजे पर रोमांस की जगह पेट ने आवाज लगाई, पहले कुछ खाने का इंतजाम करो फिर आगे बढ़ना, आखिरकार मंजिल से पहले एक ढाबा मिल गया, तो समझ में आया कि कुछ सफर पेट के रास्ते भी तय किए जाते हैं। मजाक की बात लेकिन दिलचस्प। और इसके अलावा कई श्रोता हैं जो अलग अलग तरह की फिल्में देख रहे हैं, जैसे एक श्रोता है जिन्होंने स्पाइडरमैन देखी है। उसके अलावा देखिए कितनी फिल्में भाई, आराधना कोई देख रहा है, कोई गाइड देख रहा है। गाइड से एक चीज याद आ गई, आज गाइड फिल्म में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले एक व्यक्ति का जन्मदिन है, मार्को की भूमिका निभाई थी, उनकी याद का दिन आज है। कौन है वो कलाकार ये बताइएगा। योगेश के बोल आ रहे हैं अब, जाहिर है कि सवाल ये तो नहीं होगा, इस गाने के संगीतकार बताइए।

जब मन बहुत उदास होता है तो होठों पर कौन सा गाना सजता है? क्या उदासी में कोई गाना आपके होठों पर सजता है?

इस गाने के जरिए योगेश जी बहुत बहुत बहुत याद आया। आपके इस दोस्त को उनके साथ बहुत वक्त बिताने का मौका मिला है और एक बेमिसाल इंसान, सादा लेकिन कितने गहरे गीतकार। कभी उनके बारे में बातें की जाएंगी। एक श्रोता हैं जो ये लिख रहे हैं कि गाइड के मार्को यानी किशोर साहू जी, उनकी याद का दिन है। जी हाँ, किशोर साहू, उनकी याद का दिन आज 22 अगस्त 1980 को उनका निधन हुआ था। और किशोर साहू मध्य प्रदेश के राजनांदगांव के रहने वाले थे और वहां से मुंबई आए और एक्टिंग की दुनिया में तो नाम कमाया, लेकिन वो एक निर्देशक भी थे और फिल्म लेखक भी थे। बहुत कम लोगों को पता है कि उन्होंने कुछ फिल्में लिखी और इसके अलावा कई फिल्मों का निर्देशन भी किया है। क्या आपको पता है कि किशोर साहू की निर्देशित मशहूर फिल्में कौन सी हैं? एक फिल्म मैं बताता हूं, बाकी आप बताइएगा। हरे कांच की चूड़ियां किशोर साहू के निर्देशन वाली फिल्म थी। एक श्रोता हैं जो लिखते हैं कि मायूसी में गाने जुबा पर आते हैं, बड़ी बड़ी सुनी सुनी सी है जिंदगी, किसका रास्ता देखें, जिंदगी देने वाले सुन। एक श्रोता हैं जो कहते हैं अपनी कहानी छोड़ जा, कुछ तो निशानी छोड़ जा। और इसके अलावा कहानियां सुनाती है पवन नाती जाती, ये एक श्रोता को बहुत ज्यादा पसंद है। एक श्रोता लिख रहे हैं कि आज तो जैसे गानों का रिवीजन हो रहा है। एक और श्रोता हैं जो कहते हैं कि इंदौर में एक पुराना सिनेमा घर है मिल्की वे, जिसकी छत पतरे की थी और बारिश आने पर अलग ही पार्श्व संगीत बजता था। अब मुझे तो जावेद साहब के बोल याद आ गए, बजता है जल तरंग टीम की छत पे यूं। शायद इसी तरह के किसी एहसास के लिए उन्होंने लिखा होगा, बजता है जल तरंग टीन की छत पे यूं। इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने ये लिखा है कि किशोर कुमार की मखमली आवाज, योगेश के दार्शनिक बोल, राजेश रोशन का ये संगीत, ये गाना अपने आप में अनमोल है। तो आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारे श्रोता अभी भी किशोर साहू को याद कर रहे हैं, मार्को जिनकी याद का दिन आज है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक बहुत ही अनमोल गाने की तरफ बढ़ते हैं जो एक बहुत नाजुक से एहसास को बयां करता है। सवाल यह है कि इस गाने को किसने लिखा?

एक श्रोता है जो लिखते हैं कि शायद ये गीत का मालूम रूही ने लिखा है, जो गलत जवाब है। और इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने लिखा है कि भाई ये गाना जो है ये कैफ भोपाली का लिखा गाना है और ये सही जवाब है। कैफ भोपाली एक बहुत ही नामी शायर, अगर आप मुशायरों के शौकीन रहे हैं तो वो ये गजल जो है बहुत तरन्नुम में सुनाया करते थे। तेरा चेहरा कितना सुहाना लगता है, तेरे आगे चांद पुराना लगता है, और तिरछे तिरछे तीर नजर के लगते हैं, सीधा सीधा दिल पे निशाना लगता है, और आग का क्या है पल दो पल में लगती है, बुझते बुझते एक समाना लगता है। ये कैफ भोपाली बहुत ही मशहूर वयोवृद्ध शायर भोपाल के, और उन्होंने ये गाना लिखा था, बहुत ही मशहूर गाना है। बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट्स हैं, एक गुजराती कमेंट है जिसे मैं ट्रांसलेट करके पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर वो मुझे मिल गया। वो जिस तरह से लिखा है मैं अगर ये लिपि पढ़ने की कोशिश करूँ तो लिख रहे हैं कि मुझे तो उदास गाने बहुत ज़्यादा पसंद हैं, आए तुम याद मुझे जब जब बहार आई, इस तरह के गाने पसंद हैं। देखिए मैंने गुजराती लिपि भी पढ़ ली। इसके अलावा एक श्रोता है जो लिखते हैं कि आज की तेज प्रश्नावली जो है और दिलकश गाने हैं, शुक्रिया। और इसके अलावा चिलमन का अंदाज, आनंद बख्शी ने भी चिलमन पर एक गाना लिखा है, सही पहचाना है आपने, उस गाने की बाद में करेंगे। इसके अलावा मन्ना डे का भी एक चिलमन वाला गाना है, अगर आपको याद हो तो जिक्र कीजिएगा यहाँ पर। एक श्रोता है जो कह रहे हैं कि धुएं की लकीर का एक गाना लोकप्रिय हुआ था, तेरी झील सी गहरी आंखों में कुछ देखा है। एक श्रोता है जिन्हें मुझे करेक्ट किया है, राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में है, मध्य प्रदेश में नहीं। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, हम पुराने जमाने के लोग हो गए, उस जमाने में राजनांदगांव मध्य प्रदेश में हुआ करता था, आपने सुधार किया, शुक्रिया। राजनांदगांव छत्तीसगढ़। और इसके अलावा बहुत सारे और भी श्रोता है, जरा सामने तो आओ चलिए, उनके अकेलेपन का गाना है। इसके अलावा कुछ और श्रोता है जिन्हें उदास गाने बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। आपके लगातार कमेंट्स आ रहे हैं, उसमें से कोशिश ये कर रहा हूँ कि देखिए, काली घटा, गृहस्थी, दिल अपना और प्रीत पराई जैसी फिल्में किशोर साहू ने निर्देशित की। दिल अपना और प्रीत पराई, मुझे क्यों लग रहा है कि दिल अपना और प्रीत पराई किशोर साहू की निर्देशित, यस, दिल अपना और प्रीत पराई किशोर साहू की निर्देशित फिल्म है, बिल्कुल सही है। और इसके अलावा शुक्रिया इन तमाम जवाबों के लिए। अगला गाना आ रहा है और ये बताइएगा कि फिल्म

एक श्रोता लिखती हैं कि प्यासा फिल्म बार बार देखी है फिर भी मन में प्यास रह जाती है। इसके अलावा बहुत सारे अलग अलग श्रोता हैं। एक श्रोता ये हैं जो कहते हैं कि सबसे दिलचस्प लगेगा जब आखिर में आप कहेंगे अभी ना जाओ छोड़ कर के, दिल अभी भरा नहीं। आपको कैसे अंदाजा लगा कि आखिर में यही गाना बजेगा, क्योंकि यही गाना तो हमने रख छोड़ा है आखिर में बजाने के लिए। एक दौर था जब दूरदर्शन पर रविवार को फिल्म आया करती थी और रविवार को जो फिल्म आती थी उसका बहुत इंतजार रहता था। उस दौर में देखी गई जो सबसे यादगार फिल्म थी आपकी, वो कौन सी थी ये बताइएगा। दूरदर्शन के जमाने में जो रविवार की सबसे यादगार फिल्म होती थी, एक झलक इस गाने की बजा रहे हैं क्योंकि इस गाने का एक अंश आज की इबारत में था और उसके बाद आपसे विदाई लेने वाला वो गाना जिसके बारे में अभी अभी हमने कमेंट पढ़ा।

0: ये गाना जैसे रोमांच पैदा कर देता है। शैलेंद्र के ये बोल, सली चौधरी के तर्ज, बेमिसाल गाना है। इस गाने को काटते हुए अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन इसे शामिल करने का मन था। और अब वो गाना जो आप सभी से ये कहने की इजाजत देता है कि अब हम चलते हैं।
1: अभी न जाओ छोड़ कर,

0: त्रिवेणी के सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, घमंड, हाँ घमंड यानी अहंकार, एक ऐसी मानसिक अवस्था है जो अत्यधिक आत्मसंतुष्टि या अपनी उपलब्धियों जैसे कि धन, पद, रूप या ज्ञान के गलत इस्तेमाल से पैदा होती है। ऐसे लोग हर समय अपनी महानता साबित करने के लिए अक्सर दूसरों की कमियां निकालते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं। अगर कोई इन्हें इनकी गलती बता दे तो ये बहुत जल्दी आक्रामक रुख अपनाने लगते हैं। ऐसे अहंकारी लोगों के रिश्ते ज्यादा दिन नहीं टिकते क्योंकि वे दूसरों को सम्मान नहीं देते। ये लोग हर समय खुद की तुलना दूसरों से करते हैं और उन्हें खुद से कमतर आंकते हैं। इन्हें हर जगह लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचने की आदत होती है। देखा जाए तो अहंकार को इंसान का सबसे बड़ा शत्रु माना गया है क्योंकि ये दंभ हमारी बुद्धि और विवेक दोनों को भ्रष्ट कर देता है और अंततः ये व्यक्ति के पतन और विनाश का कारण बनता है।
1: चार पैसे क्या मिले, क्या मिले भाई क्या मिले, खुद को समझ बैठे खुदा, वो खुदा ही जाने अब होगा

घमंड यानी अहंकार, जिस पर आज हम अपनी बात रख रहे हैं, हमारा सबसे बड़ा शत्रु इसलिए है क्योंकि ये आपकी यानी हमारी सीखने की क्षमता को नष्ट कर देता है, विवेक को भ्रमित करता है और रिश्तों में खटास पैदा कर देता है। जब किसी व्यक्ति में घमंड आ जाता है तो वह दूसरों के अनुभव और सलाह को कमतर आंकने लगता है और हमेशा खुद को सर्वश्रेष्ठ समझता है। साथ ही ऐसे लोग हमेशा दूसरों की सफलता से ईर्ष्या करते हैं और हमेशा अपनी तारीफ सुनना पसंद करते हैं। दूसरों को नीचा दिखाने का कोई अवसर ऐसे लोग नहीं छोड़ते। गीता के तीसरे अध्याय के 27वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रकृति के गुणों द्वारा सब कर्म किए जाते हैं, लेकिन अहंकार से मोहित अज्ञानी ये मान बैठता है कि मैं ही करता हूँ। बाइबल भी बार बार घमंड के खिलाफ चेतावनी देती है क्योंकि एक अहंकारी व्यक्ति अक्सर घमंड से भरा, आत्मकेंद्रित और दूसरों को तुच्छ समझने वाला होता है। लेकिन ये सभी बातें, ये सभी आदतें यानी ये अहंकार मसीह के स्वभाव के विपरीत है।

अहंकार हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, ये हम सभी जानते हैं। इसके विपरीत सरलता और विनम्रता हमारे सबसे सुंदर और प्रभावशाली आभूषण हैं। जब हम अहंकार को त्याग देते हैं तो हमारा वास्तविक व्यक्तित्व निखर कर आता है। विनम्रता न केवल हमें दूसरों को सम्मान दिलाती है, बल्कि सीखने और आगे बढ़ने के दरवाजे भी हमेशा खुले रखती है। महात्मा गांधी ने भी कहा था, विनम्र तरीके से आप दुनिया को हिला सकते हैं। दुर्योधन, जी हाँ दुर्योधन, हर सलाह को साजिश समझता था, क्योंकि अहंकार सवाल सुन नहीं पाता। जो खुद को हमेशा सही माने उसका अंत अक्सर अकेला होता है। इसलिए याद रखें, हर व्यक्ति का अपना महत्व है। अहंकारी नहीं, विनम्र बनिए। दूसरों में कमियां खोजने के बजाय अपनी कमियों पर हमें नजर रखनी चाहिए। साथ ही हमें ये याद रखना चाहिए कि विनम्रता कोई कमजोरी नहीं, बल्कि एक छिपी हुई ताकत और महानता की पहली सीढ़ी है।

0: सुनहरे ख्वाबों वाली एक लड़की।
1: अगर मेरी माँ बायोलॉजिकल मदर है तो टेक्निकल मदर मेरी विविध भारती है,
0: जिसे बचपन से ही गाने का शौक था।
1: कुर्सी पे बैठ के गा रहे थे और उसको लगा ट्रांजिस्टर ऑन छूट गया है।
2: हम चले तुम चलो सावन की हवा चले।
0: उसने तोड़े पारंपरिक समाज के बंधन।
1: अब जब हम बाइक लेके निकल गए, जब तीन चक्कर लग गया तब याद आया ये तो अब रोकना ही नहीं आता।
0: एक कामयाबी जो मिलते मिलते रह गई।
1: कभी सोचते ही नहीं थे कि हम हारेंगे।
0: जिंदगी ने करवाया एक लंबा इंतजार।
2: सुंदर सपनों की है मंजिल कदम की।
0: संघर्ष की डाल पर कामयाबी का फूल खिला।
2: जैसे तो है पास मेरे तेरे पास में।
0: जानी मानी गायिका दीपाली सहाय, बॉम्बे टॉकीज, 29 अगस्त से 12 सितंबर हर शनिवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। प्रतीक्षा समाचारों की।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज। सरकार ने 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए क्लोरोफ्रिनामाइन मैलेट और फिनाइलेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड वाले सभी फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन के निर्माण, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगाया। भारत आज शाम आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ब्रिक्स युवा मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। भारत ने सोमालिया के साथ 2 विदेशी ध्वज वाले वाणिज्यिक जहाजों के अपहरण का मुद्दा उठाया। इसमें 22 भारतीय नाविक सवार थे। अमेरिका ने व्यापार वार्ता विफल होने के बाद कनाडा के 20 अरब डॉलर मूल्य के उत्पादों पर 50% टैरिफ लगाया। कनाडा ने भी समान स्तर की जवाबी टैरिफ लगाने की बात कही। पूर्वी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट। और BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में भारतीय महिला जोड़ी त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद आज सेमीफाइनल में चीन की लियू शेंगशू और टैन निंग से खेलेंगी। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने आज 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए क्लोरोफ्रिनामाइन मैलेट और फिनाइलेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड वाले सभी फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन के निर्माण, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया है। एक रिपोर्ट।
4: स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर इन दवाओं पर स्पष्ट चेतावनी देना अनिवार्य किया है कि 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को ये दवाएं नहीं दी जानी चाहिए। यह कदम छोटे बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। सरकार ने निर्माताओं को निर्देश दिया है कि इन दवाओं के लेबल, पैकेज में दिए गए निर्देशों और प्रचार सामग्री पर स्पष्ट रूप से चेतावनी लिखी जाए। सरकार ने कहा है कि ऐसे दवाओं के इस्तेमाल से 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम हो सकता है और इनके सुरक्षित विकल्प उपलब्ध हैं। इस वर्ष जून में भी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने देश भर में लोगों के इस्तेमाल के लिए 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन दवाओं के निर्माण, बिक्री और वितरण पर रोक लगाई थी। शिवांग के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: वहीं सरकार ने टेलीविजन चैनलों के लिए भी विज्ञापन की 12 मिनट की अधिकतम अवधि की सीमा हटाने की अधिसूचना जारी कर दी है। ये फैसला केवल टेलीविजन नेटवर्क नियम 1994 में संशोधन को राजपत्र में अधिसूचित किए जाने के साथ लागू हो गया है। इससे पहले सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने एक बयान में कहा था कि टेलीविजन प्रसारण क्षेत्र में हुए बदलावों को देखते हुए विज्ञापन की अवधि से जुड़े प्रावधानों की समीक्षा करने की जरूरत महसूस की गई। मंत्रालय ने कहा कि भारत में टेलीविजन क्षेत्र विज्ञापनों पर काफी निर्भर है, चाहे कोई चैनल पेड हो या फ्री टू एयर। भारत की मेजबानी में आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आज ब्रिक्स युवा मंत्रियों की बैठक होगी, जबकि कल ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक आयोजित की जाएगी। बैठकों की अध्यक्षता युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया करेंगे। राज्य मंत्री रक्षा खडसे भी इसमें शामिल होंगी। युवा कार्य मंत्रियों की बैठक में युवा विकास, शिक्षा, कौशल, रोजगार, उद्यमिता जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज ब्रिक्स देशों के मंत्रियों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों के साथ आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम के निकट ऐतिहासिक थोटलकोंडा बौद्ध विरासत स्थल का दौरा किया। डॉक्टर मांडविया ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत थोटलकोंडा में पौधारोपण भी किया। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा है कि समय पर फैसले देने वाली न्याय व्यवस्था वैश्विक विश्वास बढ़ाती है, कारोबार सुगमता को मजबूत करती है और किसी देश को निवेश तथा आर्थिक विकास के लिए अधिक भरोसेमंद बनाती है।

0: दिल्ली में 11वें ब्रिक्स लीगल फोरम को संबोधित करते हुए न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि मजबूत संस्थान, विशेष रूप से प्रभावी न्याय व्यवस्था आर्थिक विकास की आधारशिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने लाइसेंस राज के दौरान उत्पादन को दंडित करने के अपने दृष्टिकोण में मौलिक परिवर्तन किया है। अब उसके स्थान पर सरकारी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव पीएलआई योजना के माध्यम से इसे पुरस्कृत किया जाता। इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम 2026 को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने पिछली सरकारों की उस सोच की आलोचना की जिसमें जानबूझकर चीजों की कमी बनाए रखी जाती थी ताकि लोगों को सरकार पर निर्भर रखा जा सके। शासन की सोच में परिवर्तनकारी बदलाव का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने नकारात्मक प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव मॉडल की तुलना वर्तमान पीएलआई योजना से की।
1: जहां पहले प्रोडक्शन बढ़ाने पर पनिशमेंट मिलता था, वहीं आज हमारी सरकार प्रोडक्शन बढ़ाने पर इंसेंटिव दे रही है। पीएलआई स्कीम की सक्सेस दुनिया देख रही है। सिर्फ इस एक योजना की वजह से करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए का एक्चुअल इन्वेस्टमेंट हुआ है। 22 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रोडक्शन और सेल्स हुई है। 15 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का एक्सपोर्ट हुआ है और 14 लाख से ज्यादा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब बनी है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार सप्तधारा पर विशेष ध्यान दे रही है। इसमें विनिर्माण, प्रौद्योगिकी और हरित अर्थव्यवस्था सहित 7 प्रमुख क्षेत्र शामिल हैं।
1: मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन, मैंने ऐसे 7 सेक्टर्स की बात की जिन पर भारत का आज बहुत ज्यादा फोकस है और इसलिए भारत आज पॉलिसी लेवल पर नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स कर रहा है ताकि हमारा फ्यूचर सुरक्षित हो। गवर्नेंस पर रिफॉर्म्स कर रहा है, ईज ऑफ लिविंग के लिए रिफॉर्म्स कर रहा है। ये रिफॉर्म्स हमारे लिए कंपल्सन नहीं है, ये हमारा कमिटमेंट है, ये हमारा कन्विक्शन है।
0: गृहमंत्री अमित शाह ने आज सिलीगुड़ी में पश्चिम बंगाल के पहाड़ी क्षेत्रों से जुड़े सभी पक्षों के साथ बैठक की। इसमें उत्तर बंगाल के पहाड़ी क्षेत्रों की समस्याओं के स्थायी समाधान के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी पंकज सिंह की अध्यक्षता में एक मध्यस्थ समिति गठित करने का निर्णय लिया गया। ये समिति अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपेगी। ये समाचार हमारी न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत ने 22 भारतीय नाविकों के साथ 2 वाणिज्यिक जहाजों के अपहरण का मामला सोमालिया के अधिकारियों के सामने उठाया है। भारतीय उच्चायोग के अनुसार सभी भारतीय नाविक सुरक्षित बताए जा रहे हैं। भारत ने कहा है कि वो अपने नाविकों की सुरक्षा और कल्याण को सबसे ज्यादा महत्व देता है। पहला जहाज एमटी सिवू 20 अगस्त को यमन के तट के पास अदन की खाड़ी में अगवा किया गया। इसमें 16 भारतीय नाविक समेत 20 लोग सवार थे। दूसरा जहाज एमवी 17 अगस्त को सोमालिया के पुंटलैंड तट के पास अगवा किया गया। इसमें 6 भारतीय नाविक समेत 10 लोग सवार थे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भी कहा है कि भारत अशांत समुद्री क्षेत्रों में काम कर रहे भारतीय नाविकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर है।
2: 2 ships which are foreign flagged. 2 जहाज हैं, दोनों पर विदेशी झंडे लगे हैं। उन पर कुल 22 भारतीय नाविक सवार हैं। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक वे सभी सुरक्षित हैं। सरकार उनकी सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करने के लिए इस मामले में संबंधित अधिकारियों से संपर्क में है।
3: वी आर इन टच विद द अथॉरिटीज दैट आर कंसर्न्ड इन दिस।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर कल से रूस की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। यात्रा के दौरान श्री जयशंकर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग से जुड़ी 27वीं बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। अमेरिका ने 20 अरब डॉलर मूल्य के कनाडा के उत्पादों पर 50% टैरिफ लगा दिया है। ये टैरिफ आज लागू हो गए। अंतिम समय में तनाव कम करने के लिए हुई वार्ता विफल रहने के बाद कनाडा ने तत्काल जवाबी कार्रवाई करने की बात कही है। नए अमेरिकी टैरिफ से कनाडा के अमेरिका को होने वाले सालाना निर्यात का करीब 5% हिस्सा प्रभावित होगा। प्रभावित उत्पादों में हॉकी स्टिक और मेडिकल जांच में इस्तेमाल होने वाली लकड़ी की स्टिक भी शामिल है। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा है कि कनाडा भी डॉलर के बदले डॉलर के आधार पर समान टैरिफ लगाएगा। प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने वार्ता विफल होने के लिए वाशिंगटन को जिम्मेदार ठहराया। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने आगामी 57वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव इफ्फी की तैयारियों के लिए गठित समिति की पहली बैठक की अध्यक्षता की। इफ्फी इस वर्ष 20 से 28 नवंबर के बीच गोवा में आयोजित होगा। बैठक को संबोधित करते हुए डॉक्टर मुरुगन ने युवा छात्रों, उभरते फिल्म निर्माताओं और भारतीय फिल्म उद्योग के गुमनाम नायकों के लिए

0: अधिक अवसरों पर जोर दिया। भारतीय जनता पार्टी ने आज राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के सम्मान और संरक्षण के संबंध में एक प्रस्ताव पारित किया। सोशल मीडिया पोस्ट में भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि बीजेपी कांग्रेस पार्टी की कार्य समिति के उस निर्णय की कड़ी निंदा करती है और स्पष्ट रूप से विरोध करती है जिसमें पार्टी कार्यक्रमों में वंदे मातरम के केवल पिछले दो छंद गाने का निर्णय लिया गया था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC ने पंजाब सरकार को एक दुष्कर्म के मामले को दबाने के लिए नोटिस जारी किया है। आयोग ने एक शिकायत का संज्ञान लेते हुए आरोपों की जांच कराने को कहा है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि मुख्यमंत्री भगवंत मान की पत्नी ने मामले को दबाने के लिए 5 करोड़ रुपए की मांग की। रामगढ़ में देर रात एक सीमेंट और इस्पात पावर प्लांट में टरबाइन फटने के बाद भीषण आग लग गई। हादसे में 3 इंजीनियरों की मौत हो गई जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। एक रिपोर्ट।
1: प्रारंभिक जानकारी के अनुसार अत्यधिक तापमान के कारण प्लांट का प्रोटेक्शन सिस्टम फेल हो गया जिससे टरबाइन ओवर स्पीड हो गया और विस्फोट हुआ। प्लांट कर्मचारियों का आरोप है कि कंट्रोल रूम में अत्यधिक तापमान और खराब कूलिंग व्यवस्था की जानकारी प्रबंधन को पहले ही दी गई थी लेकिन समय रहते कोई कार्रवाई नहीं की गई। विस्फोट और आग की सूचना मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हादसे से आक्रोशित ग्रामीणों और स्थानीय लोगों ने प्रभावित परिवारों को मुआवजा और नौकरी देने की मांग को लेकर आज रामगढ़ पतरातू मार्ग जाम कर दिया। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: तेलंगाना के यदाद्री भुवनगिरी जिले के पोचमपल्ली मंडल में स्थित हेजलो लैब्स प्राइवेट लिमिटेड में देर रात बड़ा विस्फोट हुआ। हादसे में 2 कर्मचारियों की मौत हो गई जबकि 9 अन्य घायल हुए हैं। रिएक्टर फटने के कारणों की जांच की जा रही है। मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मध्य प्रदेश के जिलों में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है।
2: मध्य प्रदेश में मानसून सक्रिय है, इसके चलते प्रदेश के पूर्वी हिस्से में पिछले 2 दिन से भारी बारिश हो रही है और कई जगह नदियां उफान पर हैं। मौसम विभाग ने आज सिवनी और बालाघाट में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं दतिया, भिंड, निवाड़ी, टीकमगढ़ समेत 12 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। इसके अलावा कई अन्य जिलों में तेज बारिश और हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: ओडिशा में बाढ़ की स्थिति में सुधार है लेकिन उत्तर और तटीय ओडिशा के कई इलाकों में अब भी पानी भरा हुआ है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कई जिलों में करीब 14 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं।
3: उड़ीसा में बाढ़ का संकट अभी भी बना हुआ है और 7 जिलों में लगभग 14 लाख लोग इससे प्रभावित है। हालांकि मुख्य नदियां का जलस्तर घट रहा है लेकिन कई गांव अभी भी पानी से घिरे हुए हैं। बालेश्वर में पानी में डूबे कई गांव के लोग अभी भी नाव पर निर्भर हैं और उन्होंने पके हुए भोजन, सूखे राशन और पीने का पानी की भारी कमी की शिकायत की है। अब तक इस बाढ़ में 13 लोगों की मौत हो चुकी है। इस बीच IMD ने आज से इसी महीने की 26 तारीख तक उड़ीसा में बहुत भारी बारिश का अनुमान लगाया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: वहीं मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी तेज वर्षा होने की संभावना व्यक्त की है। वहीं बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर भारत में अगले 2 से 3 दिन के दौरान इसी तरह की स्थिति रहने की स्थिति है। मौसम विभाग ने मछुआरों को सोमवार तक अरब सागर के पूर्व मध्य हिस्सों और बुधवार तक बंगाल की खाड़ी के पश्चिम मध्य हिस्सों में समुद्र में न जाने की सलाह दी है। भारतीय सेना ने हवाई निगरानी, त्वरित प्रतिक्रिया और युद्ध क्षेत्र तक पहुंच बढ़ाने के लिए सीमावर्ती राज्य पंजाब में अत्याधुनिक ड्रोन से लैस अपनी पहली बाज बटालियन का गठन किया है। ये बटालियन आकाश में निगरानी तंत्र और युद्ध क्षेत्र में दुश्मन पर बढ़त के रूप में काम करेगी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO ने प्रतिष्ठानों से आग्रह किया है कि वो EPF के दायरे से बाहर कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कर्मचारी नामांकन अभियान 2026 का लाभ उठाएं। इस अभियान का उद्देश्य नियोक्ताओं के स्वैच्छिक अनुपालन को सुगम बनाना और पात्र श्रमिकों को भविष्य निधि, पेंशन और बीमा के लाभ प्रदान करना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है और अब बात खेलों की। BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में आज महिला डबल्स के सेमीफाइनल में भारत की त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद का मुकाबला शीर्ष वरीयता प्राप्त चीन की लियू शेंगशू और टैन निंग से होगा। ये मुकाबला नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में खेला जाएगा।
4: भारतीय जोड़ी ने कल चीन की चौथी वरीयता प्राप्त जिया ई फैन और झांगशू जियान को 16-21,

0: 21-15 और 21-13 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। इस जीत के साथ त्रिशा और गायत्री ने इस चैंपियनशिप में भारत के लिए एक पदक पक्का कर लिया है। त्रिशा और गायत्री विश्व चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला युगल जोड़ी भी बन गई हैं। ज्वाला गुट्टा और अश्विनी पोनप्पा पहली भारतीय जोड़ी थी जिन्होंने 15 साल पहले लंदन में कांस्य पदक जीतकर ये उपलब्धि हासिल की थी। विष्णु पीएस की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से भूपेंद्र सिंह।
1: वहीं एफआईएच पुरुष हॉकी विश्व कप के दूसरे चरण में आज एम्स्टरडेम में भारत का सामना शाम 7:30 बजे से नीदरलैंड से होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए क्लोरोफेनिरामाइन मैलेट और फिनाइलेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड वाले सभी फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन के निर्माण, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगाया। भारत आज शाम आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ब्रिक्स युवा मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। अमेरिका ने व्यापार वार्ता विफल होने के बाद कनाडा के $20 अरब मूल्य के उत्पादों पर 50% टैरिफ लगाया। पूर्वी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, सदाबहार नगमे।

0: मजू सुल्तानपुरी के बोलते एसडी बर्मन की तर्ज। अशोक भोसले की आवाज थी, फिल्म का नाम था सुजाता।
1: रिमझिमी बरसे

Ay, qué.

0: सुनहरे ख्वाबों वाली एक लड़की।
1: अगर मेरी माँ बायोलॉजिकल मदर है तो टेक्निकल मदर मेरी विविध भारती है,
0: जिसे बचपन से ही गाने का शौक था।
1: कुर्सी पे बैठ के गा रहे थे और उसको लगा ट्रांजिस्टर ऑन छूट गया है।
2: हम चले तुम चलो सावन की हवा चले।
0: उसने तोड़े पारंपरिक समाज के बंधन।
1: अब जब हम बाइक लेके निकल गए, जब तीन चक्कर लग गया तब याद आया ये तो अब रोकना ही नहीं आता।
0: एक कामयाबी जो मिलते मिलते रह गई।
1: कभी सोचते ही नहीं थे कि हम हारेंगे।
0: जिंदगी ने करवाया एक लंबा इंतजार।
2: सुंदर सपनों की है मंजिल कदम की।
0: संघर्ष की डाल पर कामयाबी का फूल खिला।
2: जैसे तो है पास मेरे तेरे पास में।
0: जानी मानी गायिका दीपाली सहाय, बॉम्बे टॉकीज, 29 अगस्त से 12 सितंबर हर शनिवार शाम 4 बजे सिर्फ

0: अभिनेत्री फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर की आवाज में था। मंजू सुल्तानपुरी के बोल, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। इसी के साथ अब आज का सदाबहार नगमे कार्यक्रम खत्म होता है।
1: संगीत सरिता कार्यक्रम में नई श्रृंखला, स्वर साधना की अनुपम परंपरा, किराना घराना। हम

0: भारती पर।
1: रंगमंच से रुपहले पर्दे तक कुछ अनकहे किस्से, कुछ यादगार किरदार।
2: रावड़ी राठौड़ में मेरा करैक्टर इंस्पेक्टर का था, जो कि पॉजिटिव था। और कर्नाटका में एक जगह है जो बहुत मंदिर है जहाँ, उसकी जगह पे शूटिंग हुई थी इसकी।
1: अभिनय के दुनिया की बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा, सुनिए उनकी जिंदगी, उनके रिश्तों और सिनेमा की बातें।
3: पिज्जा एमएमएस का मैं खास करके बताना चाहूंगी कि दो ही एक्टर थे उसमें, और दो ही एक्टर की 16 मिनट की नॉन कट मतलब फिल्म है वो।
1: सेल्यूलॉइड के सितारे 25 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: आमंत्रित कलाकार हैं
1: गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
0: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
1: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना सुबह और शाम 6:45 पर सिर्फ

0: मन चाहेगी।
1: मन चाहेगी
0: मन चाहेगी मन चाहेगी कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। कार्यक्रम शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें।
1: एक व्यक्ति या परिवार की चिट्ठियां एक महीने में एक बार ही शामिल की जाएंगी।
0: एक चिट्ठी में केवल अपने परिवार के नाम लिखें, दूसरे शहर के, दूसरे व्यक्तियों के, अपने दोस्तों के नाम नहीं लिखें, इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा।
1: हम अपने हर श्रोता की चिट्ठियों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इसमें समय लग सकता है, कृपया धैर्य बनाए रखें।
2: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी, कृपया सील ठप्पे वाले और छपे हुए पोस्ट कार्ड ना भेजें, अंतरदेशीय नहीं, केवल पोस्ट कार्ड भेजें। और ये चिट्ठियां आपको भेजने कहाँ है?
0: कार्यक्रम मन चाहेगी,
1: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
2: पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091।
0: तो भाई मन चाहे गीत कार्यक्रम में आज का सिलसिला शुरू किया जाए। और आप सभी श्रोताओं की चिट्ठियां आई हैं। नागपुर जिला पाटन साबंगी से गजानन लिखार, मनोज लिखार और संचना लिखार, महमूद आरिफ, आरिफ फातिमा, एम एच शरीफ, आरिफ हुसैन और साथियों की चिट्ठी रामना हल्ली बेंगलोर से आई है। और ये जो चिट्ठी है मौजे गोवर्धन जिला वाशिम से रविंद्र पवार, मीना पवार और श्रीकांत की है। जवाहरगंज जबलपुर से जिनेंद्र जैन और महेंद्र जैन की चिट्ठी, कनेरा मोहल्ला पटियाला से मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन पलक, कर्ण, गीतू, निहारिका, हार्दिक और वंश। और इसके अलावा हयात कॉलोनी अररिया बिहार से फैसल इमाम, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अकमल, नफीसा परवीन, न्यूटन चिखली, परासिया, छिंदवाड़ा से अनिल वाघ, संगीता वाघ, रविंद्र वाघ, वंदना वाघ, अंकेश वाघ, अनुतेश वाघ और ऋतिक वाघ की फरमाइश पर ये गाना लता मंगेशकर और किशोर कुमार, गुलजार, राहुल देव बर्मन, फिल्म का नाम आंधी।

0: सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुवारे,
1: क्यों कर रहे हो? कहाँ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना।

विविध भारती पर आप मन चाहे गीत कार्यक्रम सुन रहे हैं और जी हाँ बिल्कुल सही झलक सुनाई दी आपको, यही गाना आगे बजने वाला है। लेकिन पहले उन श्रोताओं के नाम तो आपको बता दें जिनकी चिट्ठियां हमें मिली हैं। पुणे से पंकज वडोदे, आर्या, प्रियंका, वीटी वडोदे और चंद्र प्रभा वडोदे, और ये चिट्ठी अलंकार मार्केट देवास से मकबूल हुसैन बोहरा, मुस्तफा हुसैन और नजमुद्दीन की है। बाबू रामानंद, बीना आनंद और खुशी आनंद ने नंदग्राम गाजियाबाद से हमें खत लिखा है। रामगंज खंडवा से विजय महोबिया, कविता महोबिया और प्यारे बाबू, और गोल बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभयानंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज और प्रमोद, आनंद रत्नानी, अजय, रेखा रत्नानी, अभय, भाग्या और मीरा रत्नानी ने नर्मदापुरम से इस गाने की फरमाइश भेजी है। सुनते हैं हीर रांझा फिल्म का गाना।

अगले गाने के लिए आप सभी की फरमाइश आई हैं। छत्तीसगढ़ बेमित्रा जिला से सुरेश कुमार सारथी, कमलकांत सारथी, सुनील कुमार, वीरेंद्र सारथी, रुद्र कुमार और व्रिज कांत सारथी। कस्बा बराड़ा जिला अंबाला से रवि कुमार राहू, रंजीत कौर मन्नत, गुरकीरत और गुरुशब्द सिंह राहुल। आदर्श रेडियो श्रोता संघ कन्हरिया बाजार पूर्णिया से दिलीप कुमार सेंचुरी, बिमला रानी सेंचुरी, शिम्पी रानी साह, सुरेश लाल साह और अमित राजा। और ये फरमाइश आई है कर्नाटक बेंगलोर से मेनका नतारा की। इसके अलावा जी यही एक नाम है और अनीता, प्रीति, येसु और निसार की फरमाइश है। और कृष्ण गोपाल शर्मा, राज शर्मा, मंजू शर्मा, आशीष शर्मा, बिट्टू जैन और दीपक जैन की लुधियाना पंजाब से फरमाइश हमें मिली है। इसके अलावा एक और चिट्ठी, और वो चिट्ठी भेजी है पूरे बाकड़े परिवार ने, जिसमें पवन कुमार, ज्योतिताई, संतोष राव बाकड़े शामिल हैं अकोला से। और ये है आपकी पसंद का गाना, फिल्म का नाम है अनजाना।

0: इंस्टाग्राम पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं,
1: हाँ जी।
0: अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं,
2: हाँ जी, हाँ।
0: पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
2: नहीं नहीं, अभी नहीं।
0: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है,
3: है ना, बोलो, बोलो।
0: तो इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
4: कुछ लिखा,
0: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को। मनचाही गीत कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से, और अगली फरमाइश है चेतक सर्कल उदयपुर से मुकेश जीनकर, रेणु जीनकर, अजय प्रिंस और कुलदीप की, शाहूनगर यवतमाल से राहुल मनवर, सरला मनवर, विशाल, चेतन मनवर, रोशनी मनवर, स्वीटी बेबी प्रियांशी, कस्बा हरदुआ गंज अलीगढ़ से मुन्ना खान अंसारी, शहीद अहमद, नफीस अंसारी, अनाविया अजान और अयान, तेलंगाना निजामाबाद से शेख अल्लाहबख्श, बेगम राबिया, रहीम मुन्ना, महीन फातिमा, अदीब, दानिश, आसिफ, जोहरान शेख, मालवा मिल कंपाउंड इंदौर से प्रमिंद्र कुशवाहा, कैलाश कुशवाहा, रमेश कुशवाहा, मंजू चौहान और कामिनी चौहान। कलाकार फिल्म का गाना, हिंदी पर की बोल कल्याण जी आनंद जी की तर्ज, किशोर कुमार की आवाज़।

और अब कार्यक्रम का आखिरी गीत आप सभी की फरमाइश है, महादेव डोंगरे राधा नगरी कोल्हापुर से ये श्रोता संजय पंचोलिया, प्रियंका, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और इनके साथी घंटाघर चौक खंडवा के श्रोता हैं, काटोल नागपुर से सुरेश मलमकार, श्रीमती रजनी मलमकार, ये फरमाइश बीड शहर से रंजीत कुमार, नामदेव थोरात, रितेश, आकाश, रंजना, रश्मि और गबरू, पहलवान की महेंद्र सटकरकटे, विजया सरकटे और मिलिंद वरुड़ जौलका से और वर्धा से दिलीप खैर का, शोभा रविंद्र सारिका और स्वरा।

0: मन चाहेगी।
1: मन चाहेगी,
0: मन चाहेगी।

नाट्य तरंग कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं नाटक जैसी करनी वैसी भरनी। लेखक रोमी शिराज, निर्देशक मुद्रा राक्षस।

0: सुभद्रा, सुभद्रा,
1: ये मकान मालिक तो कुछ करता नहीं, इतने दिन से कहा जा रहा है, छत तक ठीक नहीं करवाई, अब देखो ये देखो जगह जगह से टपक रही है।
0: अरे मैं कहता हूँ तुम मेरी बात सुनती क्यों नहीं? शाम को जो चाट खाई थी लगता है बहुत खराब थी, खाकर खाकर और तबीयत खराब हो गई।
1: तुम्हारी तो तबीयत ही खराब रहती।
0: अरे ऊपर कुछ ऐसी आवाज हुई जैसे कोई कूदा हो।
1: अरे तेज हवा की वजह से कुछ गिर गया होगा।
0: हा?
1: तुम भी बस बुढ़ापे में लगता है ज्यादा सुनने लगे हो।
0: क्या क्या क्या? अरे अरे अरे जी जी जी जी क्या बात हुई है? क्या बात हुई है? मैं बूढ़ा कब से हो गया जी है? कब बूढ़ा हुआ मैं? कौन आ गया?
2: कौन? जीवनलाल जी है, रहते हैं क्या?
3: अरे भाई दरवाजा खोलिए।
0: कौन है देखो तो जरा।
2: कौन है?
0: अरे पुलिस?
2: जीवनलाल जी आप ही हैं?
3: हाँ यही है जीवनलाल जी। अरे बाबा बहुत गंडगोल हो गया है। तुम्हारा जो फादर था ना,
0: हाँ।
3: वो हमारा पागल खाने में सुसाइड कर लिया।
0: क्या?
3: ये इंस्पेक्टर साहब बोलता है उसका लाश को आइडेंटिफाई करना है।
0: हाँ।
3: अभी चलना है।
0: अच्छा अच्छा चलता हूँ, जरा कपड़े पहन लूँ, अभी आया।
1: बात क्या है? अरे कुछ बोलते क्यों नहीं?
0: पागल खाने से इंस्पेक्टर साहब खबर लाए हैं।
1: पागल खाने से क्या?
0: पिताजी ने आत्महत्या कर ली है।
1: आत्महत्या?
0: हाँ।
1: जब तक जिंदा थे तब तक तो हमारे लिए मुसीबत थे ही, अब मरकर भी चैन नहीं लेने देंगे।
0: अरे ये सब बातें बाद में भी तो हो सकती हैं। लाओ देखो।

0: मेरा छाता कहाँ रखा है? लाओ जरा।
1: अरे अरे, इस आंधी तूफान में कहाँ निकले जा रहे हो? कल सुबह चले जाना।
0: अरे बेकार की बातें मत करो, अभी जाना होगा मुझे। इंस्पेक्टर साहब लेने आए हैं मुझे।
1: लो, अब उनकी वजह से द्वारे पुलिस आकर भी खड़ी हो गई।
0: बकबक बंद करो, देखो भाई छाता कहाँ रखा है। और सुनो, कुछ पैसे भी दे देना। मेरा कुर्ता कहाँ रख छोड़ा है?
1: कुर्सी के पीछे टंगा तो है।
0: हाँ हाँ
1: ये
0: मिल
1: लीजिए।
0: गया। हाँ। अच्छा सुनो, मैं चलता हूँ, वो गुड्डू के हाथ अपने देवर को भी खबर भिजवा देना।

0: आइए, इस तरफ से आइए।
1: जी वेरी सैड, वेरी सैड। वो कल दोपहर से ही गायब था, आज पागलखाना का पीछा का कुआं से उनका लाश को निकला गया। शायद वो कुआं में कूदकर ही उन्होंने जान दे दिया। हाँ, ओ ना अंदर है। ओरे बाबा, तुम्हारा फादर, माय गॉड, अजीब मैन था, माय गॉड, कल से गायब। इधर ढूंढा उधर ढूंढा, माय गॉड, पता नहीं कब कुआं में गिर गया।
2: कुएं में कूद गया? अरे डॉक्टर साहब, आपको अपने रोगियों का ख्याल तो रखना चाहिए।
1: ओरे बाबा, की रकम बात करता है तुम, हा? हम सभी का पुआ ख्याल रखता है, खाना कपड़ा।
2: हाँ, सब जानता हूँ, खाना कपड़ा। अरे इस तरह का खाना तो शायद जानवर भी खाना पसंद नहीं करेंगे, और कपड़ा, शायद ही किसी मानसिक रोगी को कपड़े पहने देखा हो हमने।
1: माय गॉड, जब पागल लोग अपना कपड़ा फाड़ देगा तो कोई कितना बार पहनाएगा।
2: अरे डॉक्टर साहब, आपके पास तो हर चीज का जवाब हाजिर है।
1: जीवनलाल बाबू, ये सब बात तो होता रहेगा, पहले आप डेड बॉडी को आइडेंटिफाई कर लीजिए। इंस्पेक्टर साहब, आप चलिए, हम कल सुबह इनको थाने भेज देगा।
0: अच्छा।
2: कितनी बदबू है यहाँ।
1: देखिए, इनको पहचानता है?
2: जी जी, यही है, यही मेरे पिताजी हैं। इनका इनका ये शरीर इतना फूल कैसे गया?
1: तुम्हारा फादर, माय गॉड, ऐसा पागल तो हमने अपना लाइफ में कभी नहीं देखा। कभी बोलता हम पागल नहीं, कभी बोलता हम पागल है। कई बार पांच पांच दिन खाना नहीं खाता, और कभी जितना दो बोलता आओ लाओ, नहीं देने से सब कुछ तोड़ता फोड़ता। ओ ओ, देखो वो खिड़की का ग्लास साहब उसी ने तोड़ा, मना करा तो हम पर अंडा खींच कर मारा। He was a different kind of a lunatic.
3: मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मैं पागल नहीं हूँ। दर्शा दर्शा दर्शा दर्शा, मेरे बेटा को घसा कर लीजिए, उन्होंने मुझे यहाँ बंद कराया है, मैं पागल नहीं हूँ।
1: ओरे बाबा, ये यहाँ कहाँ से आ गया है? तुम उधर चलो, उधर चलो तुम।
3: मैं पागल नहीं,
1: इधर आ जाओ, तुमका मुर्दा है।
3: तो है, पागल नहीं हूँ।
1: चलो बाहर जाओ।
2: डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, ये कौन है?
1: पागल है, इसका लड़का लोग छोड़ दिया था।
2: हाँ, लड़का लोग छोड़ दिया था।
1: हाँ,
2: लेकिन लेकिन देखने से तो पागल नहीं लगता।
1: हाँ, नहीं लगता, पर हाय, ठीक आपका फादर की तरह तो नहीं लगता, पर हाय।
2: हाँ, लेकिन लेकिन मेरे पिताजी तो पागल थे ना, वो तो पागल थे। हाँ,
3: मैं पागल नहीं हूँ, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मेरे बेटे को पकड़ो।
1: अब आप घर जाइए, समझा? बारिश भी थम गया है ना, और कल सुबह थाने में पहुंच जाइएगा। हाँ
2: जी, खुश बाबू, खुश बाबू, आप ऐसा करिए, आप जाइए, मैं थोड़ी देर यही पिताजी के पास बैठूंगा।
1: अरे बाबा, यहाँ बैठेगा? ठीक है, ठीक है, तो तुम बैठो, हम फिर जाता है। हाँ, हम जाता है।
2: पिताजी।

0: पिताजी, पिताजी ये आपने क्या कर डाला?
1: क्यों, क्या हुआ?
0: इतनी मुश्किल से प्रॉपर्टी डीलर ने दो लोगों को राजी किया था, वो आए और आपने उनसे बात तक नहीं की।
2: मुझे नहीं बेचना है अपना मकान। जानते हो कितनी यादें जुड़ी हैं इस घर से।
0: 40,000 में खरीदे इस टूटे फूटे मकान के 15 लाख रुपए देने को तैयार हैं होटल वाले।
2: 50 लाख भी अगर दें तब भी नहीं बेचूंगा, और फिर इस उम्र में 15 लाख लेकर करूंगा क्या मैं?
0: पिताजी मेरा नहीं तो कम से कम अपने पोतों का तो ख्याल कीजिए आप।
2: उनका ख्याल तुम करो जीवन, वो तुम्हारे बेटे हैं।
0: पिताजी आप कुछ समझिए तो सही।
2: क्या समझूं, क्या समझूं मैं?
0: 15 लाख में इस मकान को बेचकर किराए का मकान ले लीजिए, कुछ पैसा बैंक में डाल दीजिए और
2: क्या।
0: और फिर पिताजी मुझे भी तो नए सिरे से अपना बिजनेस जमाना है, कुछ पैसा मुझे भी दे दीजिएगा, भले ही उधार दे दीजिए।
2: अपने रिटायरमेंट के पैसे से 30,000 मैंने दिए हैं तुम दोनों भाइयों को।
0: 30,000? अरे 30,000 में तो पिताजी बाहर एक छींका भी नहीं आता है।
2: होश में रह के बात करो जीवन।
0: होश में तो पिताजी आप नहीं हैं, मैं चाहूं तो कानूनन अपना हिस्सा ले सकता हूं आपसे।
2: क्या, तो फिर कान खोल कर सुन लो जीवन, मैं ये मकान नहीं बेचूंगा। और यही कह देना छोटे से भी, ज्यादा बहस की तो सारा मकान किसी संस्था को दान कर दूंगा।
0: अरे अरे अरे अरे आप तो काफी लंबी सोच के बैठे हैं पिताजी, मैं भी देखता हूं आपके सपने कैसे पूरे होते हैं।
2: क्या मतलब, क्या चाहते हो तुम?
0: आग लगाना चाहता हूं इस घर को, यही चाहते ना तो लीजिए, ये रही माचे।
2: जीवन पागल हो गया तुम?
0: हाँ हाँ
2: बिल्कुल पागल
0: हो गया हूं मैं पागल। मकान बेच कर दो मुझे पैसे, वरना रोक कर तुम अभी इस कबाब खाने को। मैं
2: बदतमीज, तेरी इतनी हिम्मत, छोड़ छोड़ माचिस को।
0: नहीं
2: मैं कहता हूँ माचिस मुझे
0: नहीं छोड़ूंगा,
2: नहीं
0: छोड़ूंगा,
2: छोड़ दूंगा इस घर को। जो चीज मेरी नहीं है वो फिर किसी की भी नहीं हो सकती।
0: नीच बेहुदे बाप से हाथापाई करता है, छोड़ माचिस मैं कहता हूँ। पकड़ो, लो पकड़ो ये माचिस, काम आएगी तुम्हारे कभी।
2: हे भगवान, इसी दिन के लिए पढ़ा लिखा कर बड़ा किया था मैंने तुम दोनों को।
0: अरे इस बात की क्यों धौस मारते हैं आप, कौन बाप नहीं पढ़ाता लिखाता अपनी औलादों को?
2: इस तरह की औलाद से तो बे औलाद ही होना ठीक था। पता नहीं मेरे किस जन्म का पाप हो तुम दोनों भाई।
0: क्या पता कौन किसका पाप है। अरे मेरा मतलब है अंजनी को देखिए, नई फैक्ट्री के लिए 7 लाख रुपया दिया है उसके बाप ने उसे।
2: अंजनी, अंजनी जैसे अगर तुम होते ना जीवन, तो 70 लाख का इंतजाम करता मैं तुम्हारे लिए।
0: पता नहीं क्या जिद है आपकी। देखिए पिताजी, मैं आपसे आखिरी बार पूछ रहा हूं, ये मकान आपको बेचना है या नहीं?
2: एक ही जवाब तुम कितनी बार सुनोगे जीवन?
0: ठीक है, तो मैं भी आपकी जिद तुड़वा करके ही दम लूंगा।
2: हद से आगे बढ़ने की कोशिश मत करो जीवन, एक कूटी कौड़ी नहीं दूंगा मैं तुमको, और ये मकान भी किसी संस्था को दान कर दूंगा। कान खोल कर सुन लो, और ना सुन सको तो निकल जाओ इस घर से।
3: अरे पिताजी क्या हो गया?
2: अच्छा हुआ तुम भी आ गए, अपने भाई के साथ बैठकर फैसला कर लो। अगर इस घर में रहना है तो शांति से रहो, वरना निकल जाओ तुम भी। और ये भी, मैं शाम तक वापस आऊंगा।
3: अरे क्या बात हो गई भैया?
0: अरे वही उनकी पुरानी जिद, घर नहीं बेचेंगे।
3: ओ तो क्या बात ज्यादा बढ़ गई थी?
0: अरे ज्यादा, ये तो कहो संपत्ति मैं ही अपने पर काबू किए था, वरना आज तो
3: इस तरह काम नहीं चलेगा भैया, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। एक दुकान खरीदने के लिए मेरी भी बात चल रही है विवेक नगर में, मेन मार्केट में ही दुकान है, और 3 लाख रुपया पगड़ी मांग रहा है। अगर ये मकान बिक जाए तो मजा आ जाए। वो होटल वाले आए थे?
0: अरे आए थे, 15 लाख रुपए दे रहे थे।
3: 15 लाख?
0: फिर जी बात ही नहीं की इस बुढ़ो ब, ब, ब, ब, तुम्हारे बाप ने।
3: आखिर क्यों?
0: नहीं बेचेंगे, अरे हम सबकी कब्र जो बननी है यहाँ।
3: 15 लाख? तब तो मैं वो कोनी वाली बड़ी दुकान भी ले।

0: सकता हूँ। 4.5 लाख रुपए पगड़ी है उसकी। ओफो, इस समय पता नहीं कौन आ गया। कौन है भाई?
1: अरे भाई मैं हूँ अवधेश।
0: पता नहीं कहाँ से आमर आई है।
2: सुनो, पैसे वैसे उधार मांगे तो मना कर देना।
0: अरे पहले पिछला उधार चुकाए तो।
1: अरे क्या हो रहा दोस्तों, बड़ा मुंह लटकाए बैठे हो।
3: भाभी जी कहाँ?
4: भाभी तुम्हारी बाजार तक गई हैं।
1: बड़े दुखी नजर आ रहे हो, क्या हुआ?
4: अब क्या बताएं यार अवधेश, हम दोनों को पैसे की जरूरत है। पिताजी से मकान बेचने को जब भी कहते हैं मानते ही नहीं। बस आज इसी बात को लेकर काफी बकझक भी हो गई। आज तो उन्होंने हम दोनों को घर से निकल जाने की भी धमकी दी है। समझ में नहीं आता यार क्या करें। धमका रहे हैं कि ये मकान किसी संस्था को दान कर देंगे।
1: लो यार पान खाओ। तब तो ऐसा करो, एक संस्था तुम लोग भी खोल डालो।
0: देखो आदेश, मजाक मत करो।
2: अच्छा एक बात बताओ, पिताजी के रहते क्या हम लोग इस मकान को बेच सकते हैं?
1: जब तक वो जिंदा हैं तब तक तो नहीं, मेरा मतलब है उनके रहते।
4: अरे यार उन्हें अभी क्या होने वाला है, इतनी दूर की तो फिर बेकार ही की सोचना।
0: बताओ भला, इतना पैसा पास में है फिर भी जैसे नहीं है।
4: अरे जी तो करता है जबरदस्ती उनसे मकान अपने नाम लिखवा कर बेच डाल।
1: अगर इस तरीके की मूर्खताएं सोचनी है तो मैं चलता हूँ यहाँ।
0: अरे भाई तुम तो, भाई तुम ही कुछ अकल की बात बोलो ना।
1: भाई तरीका तो मेरी खुराफाती खोपड़ी में है, पर जरा मुश्किल।
0: असंभव तो नहीं है?
1: कदापि नहीं बालकों, कदापि नहीं। वो नवजोत चिकित्सा केंद्र का नाम सुना?
0: वो नवजोत चिकित्सक? अच्छा अच्छा, वो पागलों वाला अस्पताल। अरे वहाँ जहाँ वो 2-3 बार छापा भी पड़ चुका है।
1: और उसका आर्डन तो सरकारी धन दुरुपयोग में पिछले साल गिरफ्तार होते होते बचा था। क्यों ठीक है ना?
0: ठीक, मगर ये पागल खाने का क्या चक्कर है उदेश बाबू?
1: देखो भाई, अगर तुम्हारे पिता को पागल करार करके इस पागल खाने में बंद करवा दिया जाए।
4: हम क्या बच्चों जैसी बातें करते हो यार, एक अच्छे खासे आदमी को पागल खाने में भर्ती कैसे करवा सकते हैं?
1: एक आधे पागल को तो भर्ती करवाया ही जा सकता है ना।
0: अरे यार क्या पहेलियां बुझा रहे हो, सीधी तरह ये बताओ ना कि कैसे संभव होगा।
1: देखो, अपने पिता को रोज थोड़ा थोड़ा वो चूर्ण देना जो मैं बताऊंगा।
4: खा चुके वो ये चूर्ण?
1: अरे खाना तो खाएंगे, बस उसी में चुटकी भर मिलाकर दे देना, मगर खिलाना जरा प्यास से। अब फिर चमत्कार देखना, धीमे धीमे वो शारीरिक और मानसिक रूप से बेहद कमजोर हो जाएंगे।
0: क्या?
1: और उसके बाद ही उन्हें पागल खाने में भर्ती करा दिया जाएगा।
0: लेकिन अवधेश, पागल खाने में तो काफी तकलीफ रहेगी उन्हें।
2: और क्या?
1: अरे हर महीने कुछ पैसे मुझे दे दिया करना, मैं उन्हें दे आया करूंगा, कोई कष्ट नहीं होने पाएगा उन्हें।
0: लेकिन मकान तो फिर भी पिताजी के ही नाम रहेगा ना।
4: और क्या,
1: एक दो कागजों में उनका अंगूठा लगवा लेंगे, नहीं काम बना तो 2-3 जाली कागज मैं बनवा दूंगा।
0: मगर नवजोत वाले उन्हें पागल कैसे मानेंगे?
1: तुम दोनों यार आते तो बेवकूफों की श्रेणी में ही हो। मैं तुम लोगों को एक बात पहले से साफ कर दूं कि ये फार्मूला अंधेरे में चलाएगा तीर जैसा है, और ये तीर निशाने पर लगेगा या नहीं इसकी 50-50% उम्मीद ही रखो। हाँ वैसे तुम लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि नवजोत में तमाम लोग छुटकारा पाने के लिए अपने पिता से लेकर दूसरी शादी के चक्कर में अपनी पत्नी तक को भर्ती करवा चुके हैं।
0: मगर अवधेश, इसकी जांच भी तो कभी हो सकती है।
1: एक अच्छा भला आदमी साल भर इस कैद खाने में रह ले तो पागल तो हो ही जाएगा। अब वैसे तुम लोग चाहो तो अपने पिता के मरने का इंतजार कर लो, 20 साल 25 साल या।
4: अरे नहीं नहीं भाई, अब तो लगता है 20-25 साल तक भीख मांग करके ही गुजारा करना ही पड़ेगा।
0: मेरे ख्याल से अवधेश की बात ठीक ही है भैया, कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना तो पड़ेगा ना।
1: अब पिताजी जैसी पुरानी चीज खोकर अफसोस ही क्या होगा।
4: क्या कर डाला आपने, क्या किया पिताजी?
5: अरे झूललाल बाबू, अभी गया नहीं आप? यहीं बैठा है।
4: जाता हूँ डॉक्टर साहब, जाता हूँ।

0: बड़ी देर कर दी आपने आने में। संपत भैया एक घंटे से इंतजार कर रहे हैं आपका।
1: संपत,
2: नमस्ते भैया।
1: नमस्ते नमस्ते। बड़े कमजोर नजर आ रहे हो।
2: अब हम थोड़े हो गए भैया, फिर पास ऐसा है ही क्या जो खुश रखे, स्वस्थ रखे।
1: पिताजी के बारे में पता चला तुम्हें?
2: पता चला, ये तो होना ही था एक दिन।
1: एक नई मुसीबत भी तो खड़ी हो गई
2: जी।
1: पुलिस सारी बातों की जांच करेगी, तुमको तो पता ही है। उनको पागल सिद्ध करने वाले कागज भी तो जाली ही थे। अवधेश ने जिससे बनवाए थे वो डॉक्टर ही कहां था, शायद कोई कंपाउंडर वगैरह था।
2: यानी एक और मुसीबत।
1: हाँ, एक और मतलब?
2: अब आपसे क्या छुपाना भैया, मेरे लड़कों ने मुझे घर से जाने के लिए कह दिया।
1: अरे अरे, लेकिन संपत, ये सब कैसे हुआ, कब हुआ?
2: क्या बताऊं, मैं आपसे सब छुपाए रहा भैया। मैंने अपने लड़कों पर भरोसा करके उन्हें सारा पैसा दे दिया, दुकान उनके नाम कर दिया, और पैसा पाते उनकी आंखें पलट गई। रोज ही रोज मेरा अपमान होता है, घर से जाने के लिए कहा जाता है। जी तो करता है आत्महत्या कर लूं।
1: लेकिन लेकिन पिताजी वाला मकान बेचने पर तो 7.5 लाख रुपए मिले थे तुम्हें।
2: हाँ, मिले थे भैया। ज्यादा पैसा होने पर खर्च भी कुछ ज्यादा होता है। फिर पैसा पिताजी की मेहनत का था, हमारी मेहनत का नहीं था। जो ज्यादा खर्च होने पर दर्द होता।
1: सच कहते हो संपत, वो रुपए तो ऐसा लगा मानो सड़क पर पड़े मिले हो। पिताजी की बात और थी, हर काम करने से पहले 20 बार सोचते थे। अब लगता है मकान न बेचने का उनका फैसला भी ठीक ही था। अब देखो, किराए के मकान में आए दिन मकान मालिक किराया बढ़ाता रहता है, न बढ़ाओ तो निकालने की धमकी ऊपर से।
2: अच्छा भैया, पुलिस जांच से अगर सारी बातों का खुलासा हो गया तो?
1: अरे नहीं नहीं, तब तो बुढ़ापा ही खराब होगा और जग हंसाई ऊपर से होगी।
2: खैर जो भी हो, मेरे से तो बेहतर स्थिति है आपकी।
1: हाँ ठीक कहते हो, फिलहाल तो बेहतर ही है। लड़की की शादी कर दी, लड़का है बस जरा चुप रहता है, घर आएगा आते ही अपने कमरे में घुस जाएगा, न किसी से बोलना न किसी से चालना।
2: अच्छा भैया, चलता हूँ, वो फिर आऊंगा।
1: अच्छा अच्छा,
2: वो भैया वो
1: हाँ?
2: वो
1: कुछ कहना चाहते हो?
2: भैया, पिताजी के अंतिम संस्कार के लिए मेरा मतलब है कि?
1: अरे नहीं नहीं, चिंता मत करो, पैसे का इंतजाम कर दूंगा। और कुछ?
2: वो कहते तो ठीक नहीं लगता भैया। वैसे अगर मेरे लड़कों ने मुझे निकाल दिया तो मैं कुछ दिनों के लिए यहाँ
0: सुनो कर... जी, बात सुनो जरा।
1: हाँ हाँ ठीक है भाई संपत, तुम्हारे रहने पर तो हमें कोई एतराज नहीं है, पर तुम तो जानते हो एक ही कमरा फालतू है और मेहमान है कि आते ही रहते हैं। अब अपनी सुविधा के लिए तुम मुझे तो तकलीफ में डालना पसंद नहीं करोगे ना?
2: क्या कोई बात नहीं भैया, कोई बात नहीं, कोई बात। अच्छा चलता हूँ। नमस्ते भैया।
1: नमस्ते।
2: नमस्ते भाभी।
1: मुसीबत पर मुसीबत, अपने बच्चों से बनाकर रखेगा नहीं और यहाँ टिकने के लिए हाथ फैलाए हैं। एक तो पिताजी ने आत्महत्या करके और मुसीबत खड़ी कर दी, अगर जांच हुई तो बचना भी मुश्किल हो जाएगा।
0: अरे क्या अशुभ बोल रहे हो?
1: अरे

0: ठीक ही कह रहा हूं। हे, ये छड़ी किसकी रखी है?
1: अवधेश की होगी, भूल गया होगा।
0: अवधेश? अवधेश कब आया था यहाँ?
1: कल जब आप काम पर गए थे, वो तो आता ही तब है जब आप घर पर ना हो।
0: अरे लेकिन लेकिन वो आता क्यों है यहाँ?
1: क्या पता, अपने बेटे अनिल से पूछिए ना, उसी से मिलता है। शायद कोई बिजनेस करना चाहता है अनिल।
0: बिजनेस? बिजनेस क्या मतलब? बिजनेस और अवधेश के साथ? अरे पता है, सांप है वो, सांप सब कुछ बेचकर खा जाएगा।
1: क्यों, आपकी तो बहुत दोस्ती थी उससे, खाना पीना उठना बैठना।
0: अरे हाँ हाँ जब थी तब थी। इसी बेवकूफ की बातों में आकर ही मैंने न जाने कितनी गलतियां, कितने पाप कर डाले। जवानी के जोश में पता ही नहीं था चला कि मैं पिताजी के साथ क्या सलूक कर रहा हूं। उस समय तो बस

0: बता कर ही मैंने न जाने कितनी गलतियां कितने पाप कर डाले। जवानी के जोश में पता ही नहीं था चला कि मैं पिताजी के साथ क्या सुलूक कर रहा हूं। उस समय तो बस इसी अवधेश और संपत ने मिलकर पिताजी के खिलाफ भड़की आग में घी डाला था।
1: उन्होंने भड़काया और आप भड़क गए।
0: अच्छा अच्छा ठीक है, अब तुम भी मुझे ही दोष दे लो। नोच खाओ मुझे, नोच खाओ। समय पिताजी को पागल खाने भेजने से तुम भी तो मना कर सकती थी मुझे।
1: हाँ हाँ जरूर, उस समय लाखों रुपए के आगे कुछ सूझ रहा था आपको। उस समय तो खाने में जाने किस किस चीज का चूरन मिलाकर खिलवाते थे आप।
0: क्या बोली क्या बोली क्या बोली, बोलो बोलो, जोर से बोलो, चीखो चीखो ताकि मोहल्ले वाले भी तो सुन ले।
2: अरे जी क्या हुआ, क्यों इस तरह से चिल्ला रहे हैं आप?
0: ये एक बात बताओ अनिल, ये अवधेश क्यों आता है यहाँ? हाँ क्या करना चाहते हो तुम उसके साथ? बिजनेस करना चाहते हो? पता है बेचकर खा जाएगा तुम्हें और तुम्हारे कपड़े भी।
2: मगर वो तो आपके दोस्त हैं।
0: कोई दोस्त नहीं है वो मेरा, समझे?
2: मगर क्या बिगाड़ा अवधेश चाचा ने?
0: उसकी वजह से ही तुम्हारे बाबा ने आत्महत्या कर ली।
2: बाबा ने? वो जो पागलखाने में बंद थे?
0: हाँ हाँ वही।
2: बाबा ने आत्महत्या की?
0: क्या क्या बिजनेस समझा रहा था तुम्हें? क्या बिजनेस समझा रहा था वो तुम्हें?
1: बेटे तुम्हारे बाबा ने अवधेश की वजह से नहीं, इनकी वजह से आत्महत्या की है। इन्होंने
0: चुप कर, मैं कहता हूँ चुप कर।
2: पिताजी क्या हो गया है आपको, माँ पर क्यों बिगड़ रहे हैं? बिजनेस में बुराई ही क्या है, आखिर मुझे अपने भविष्य के बारे में भी सोचना है। महज 3 लाख से मेरा बिजनेस शुरू हो जाए।
0: अच्छा अच्छा, और ये 3 लाख रुपए तुझे देगा कौन?
2: अवधेश चाचा ने कहा है कि रुपया आपके पास है, आखिर आपने भी तो बाबा से पैसा लिया होगा।
0: मैंने क्या मतलब, और क्या बताया अवधेश ने तुझे, और क्या क्या बताया तुझे? कौन खोल कर सुन लो, एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा तुम्हें, समझे? एक कौड़ी भी नहीं दूंगा।
2: समझिए आप, हा? आप अगर मुझे पैसे नहीं देंगे तो कानूनन अपना हक ले लूंगा मैं आपसे।
0: क्या कहा तुमने? कानूनन अपना हक लोगे? तो जाओ सड़क पर और मांगो कानून से अपना हक।
2: नहीं जाऊंगा, देखता हूं कौन निकालता है मुझे यहां से।
0: और ये हाथ में क्या है तुम्हारे?
2: हाथ में आपसे क्या मतलब, आप तो घर से निकाल रहे थे मुझे। वैसे ये आप ही के खाने के लिए लाया हूं मैं।
0: खाने के लिए? मेरे खाने के लिए? हो तो ये हो रहा है इस घर में, ये हो रहा है। अरे खुले आम क्यों नहीं खिला देते जहर? अरे गला घोट कर क्यों नहीं मार देते मुझे? खिलाओ खिलाओ खिलाओ जहर मुझे, खिलाओ।
2: ये
0: खिलाओ।
2: क्या अनशन बक रहे हैं आप, कौन क्या खिला रहा है आपको?
0: अरे मैं सब समझ गया हूँ तुम लोगों की चाल, मैं सब समझ गया हूँ। कौन खोल कर सुन लो, आज से अपने लिए खाना मैं खुद बनाऊंगा और तुम माँ बेटे को निकाल करके ही दम लूंगा। अवधेश के साथ मिलकर मेरी दौलत हड़पना चाहते हो, मुझे पागल खाने में भर्ती कराना चाहते हो। अरे अरे कमबख्तो, शहर खिलाकर आधा तो मार ही दिया है मुझे।
1: ये क्या कह रहे हैं आप?
3: अरे भाई क्या हो रहा है?
2: देखिए ना चाचा, इनका तो लगता है दिमाग चल गया है, पागल हो गए हैं लगता है।
0: अरे मैं पागल? अरे मैं नहीं हूँ पागल, तुम सब हो पागल, नहीं हूँ मैं पागल। तुम अगर मुझे पागल खाने भेजोगे तो नहीं जाऊंगा, मैं हरगिज नहीं जाऊंगा वहां।
3: हाँ आपकी बात भी सही हो सकती है, बिल्कुल सही हो सकती है, लेकिन सच तो बताएगा डॉक्टर ही। हा? क्यों अनिल भतीजे?
0: क्या कहा? डॉक्टर? नहीं, मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगा, मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगा, मैं जाऊं नहीं जाऊंगा सर जी, मैं जाऊं नहीं जाऊंगा।

0: साउंड कैमरा एक्शन।
1: आज के बॉम्बे टॉकीज में आपको सुनवा रहे हैं अभिनेता आलोक गागड़ेकर से यूनुस खान की बातचीत।
2: बहुत बहुत स्वागत आलोक गागड़ेकर जी विविध भारती के स्टूडियो में।
3: जी जी जी नमस्कार धन्यवाद।
2: आलोक जी रेडियो से जो आपका जुड़ाव है वो जब हमारी स्टूडियो में आते आते बातचीत हो रही थी तो बहुत सारी बातें सामने आई, तो मुझे रेडियो से जुड़ी कुछ दिलचस्प घटनाएं बताइए जो आपके जीवन में घटित हुई हैं।
3: जी यानी ये कह सकता हूं मैं कि रेडियो मेरे जिंदगी का एक अहम हिस्सा रहा है बचपन से।
2: जी
3: क्योंकि घर में तो टीवी भी था, कलरमैन टीवी था हमारे पास और सभी संसाधन थे, लेकिन मेरी नानी माँ का घर था जहाँ बिजली भी नहीं थी और वहाँ एक लकड़ी का रेडियो था।
2: वो किस जगह रहती थी?
3: वो हमारे अहमदाबाद में ही, अहमदाबाद हाँ। हमारा जो एक मोहल्ला है, जो हमारा गांव है छारा नगर गांव, तो वहां पर रहते थे। तो सुबह 6 बजे से उनके घर में वो रेडियो शुरू हो जाता था और वही हमारा मॉर्निंग एक उठने का प्रण बनता था कि रेडियो शुरू हो गया इसका मतलब सुबह हो गई है, अब रेडियो पे ये गाने चल रहे हैं इसका मतलब दोपहर हो गई है। तो यानी कि जो रेडियो में भी बार बार कहा जाता है कि रेडियो विविध भारती जीवन का संगीत, तो सच में वो जीवन का संगीत बचपन से ही जुड़ा था। तो मैं बच्चा था यानी 11-12 साल का और मुझे क्या समझ है गीतों की, लेकिन बावजूद उसके मुझे वो बीच बीच में आती हुई एंकरिंग, बीच बीच में आते हुए एड फिल्म्स के जो जिंगल्स और इन सब के साथ इतना जुड़ाव हो गया कि एक वक्त ऐसा आया कि वो रेडियो जब खराब हुआ तो मैंने खाना खाना छोड़ दिया।
2: ओहो
3: मुझे लगा कि मैं नहीं अभी के अभी रेडियो रिपेयर करो, और हमारे नानी माँ का आर्थिक परिस्थिति इतना अच्छा नहीं था कि वो तुरंत एक नया रेडियो ले आते।
2: हाँ हाँ।
3: तो मैं एक 11 साल का लड़का रेडियो लेकर बाजार में घूम रहा है कि कोई इसे रिपेयर कर दे, क्योंकि इसकी वजह से मेरी दिनचर्या जो है वो पूरी डिस्टर्ब हो गई है। तो रेडियो से वो जुड़ाव था कि जैसे एक मित्र आपका साथ छोड़ दे तो कैसा फील होता है।
2: कितनी तो प्यारी बात है कि आप जी, इतना जी, ज्यादा जुड़े थे। तो फिर वो रेडियो सुधर पाया कि नहीं सुधर पाया?
3: वो रेडियो तो नहीं सुधर पाया, लेकिन इतना है कि नानी माँ और ये लोग इतना प्यार करते थे मुझसे कि उन्होंने फिर मुझे एक नया ट्रांजिस्टर रेडियो, जो उस वक्त मुझे अभी भी कीमत याद है कि 92 रुपीज में हमने खरीदा था, जो मेरे पास ही रहता था। और तब फिर धीरे धीरे समझ बनी, हम स्पोर्ट्स खेलते थे तो क्रिकेट रेडियो के अंदर क्रिकेट सुनना यानी कि वो स्टेडियम में जो आनंद आता है उससे भी ज्यादा आनंद आपको रेडियो पे सुनने का आता है, क्योंकि एक एक बॉल, एक एक बैट, एक एक खिलाड़ी की हरकत जो हमको बयां करते थे रेडियो पर, वो पूरा विजुअलाइजेशन जब सामने आया तो पता चला कि ये केवल मशीन का पुर्जा नहीं है, लेकिन ये तो एक ऐसा यंत्र है जो शायद मनुष्य के साथ बातें कर रहा है, यानी कि एक हमारा गिव एंड टेक होता था। ये फिर आगे चल के बातें है, जब मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में भी जुड़ा तो वहां पर भी रेडियो सुनते थे हम, क्योंकि एक एफएम मिल ही जाता था कहीं पे भी, है ना। तो वहां पर भी ऐसे लगता था कि आज मैं दुखी हूं ये रेडियो को कैसे पता चल गया,
2: अरे वाह वाह वाह,
3: आज मेरी मेरे मित्र के साथ अनबन हुई ये रेडियो को कैसे पता चल गया, और उन्होंने आज वही गीत क्यों चला दिया कि दोस्त दोस्त ना रहा या प्यार प्यार ना रहा या इस तरीके की। तो जिंदगी के साथ आपको साहित्य, संगीत और अभिनय या मनोरंजन, इन सबको जोड़ने वाला अगर कोई यंत्र है इस सृष्टि पे तो वो रेडियो है। और पूरी पृथ्वी में मुझे लगता है कि हमारा देश का, भारत देश का जो विविध भारती और आकाशवाणी रेडियो है, ये विशिष्ट प्रकार का रेडियो है। और मैं बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली मान रहा हूं कि मैं आज इस मंच पर बैठा हूं और आपके सामने प्रस्तुत हूं, और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, यानी मैं क्या बताऊं, मेरे पास शब्द नहीं है।
2: क्या बात है, तो ये आपका रेडियो से इतना ज्यादा जुड़ाव रहा, विविध भारती से इतना जुड़ाव रहा। बचपन में अभिनय की ओर रुझान कब हुआ था आपका?
3: अभिनय का ऐसा था कि स्कूल के दिनों में जब टीचर्स डे सेलिब्रेट होता था तो उसमें मुझे एक बार टीचर ने कहा कि आपको टीचर बनना है, क्योंकि उसमें हम देखते हैं कि क्या एटीट्यूड है, कितना डेवलपमेंट आया है। तो मेरे लिए यही था कि कौन सा विषय, तो सबसे सुंदर मजबूत टिकाऊ विषय था मेरे लिए हिंदी।

जैसी करनी वैसी भरनी। अभी आपने रोमी शिरास का लिखा ये नाटक सुना। निर्देशक थे मुद्रा राक्षस और ये नाटक आकाशवाणी लखनऊ की प्रस्तुति थी। नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त हुआ।

0: कि इससे अच्छा विषय क्या हो सकता है। तो मैंने हिंदी विषय के लिए पार्ट लिया कि मैं हिंदी विषय पढ़ाऊंगा, और मुझे अभी तक शायद याद है कि मैं मुंशी प्रेमचंद की कोई कहानी को लेकर बात करने वाला था जो हमारे कक्षा में थी। तो वहां टीचर्स डे में टीचर बनने का जो एक पहला अनुभव रहा, वो मुझे ऐसे लगा कि नहीं यार, यह तो अच्छा लग रहा है। उसके बाद फिर नुक्कड़ नाटक, जो हमारा एक अहम हिस्सा है थिएटर का, तो गुजरात में हम थोड़ा अवेयरनेस को लेकर नुक्कड़ नाटक करते थे,
1: जी,
0: कुछ गरीबों को समझाने के लिए, मजदूरों के लिए।
1: तो ये किसी समूह से जुड़ गए थे आप?
0: हाँ, हमारा एक थिएटर ग्रुप था जिसका नाम ही था बुधन थिएटर ग्रुप। तो बुधन एक विशिष्ट व्यक्ति था, तो उस बुधन के किरदार से हम बुधन जैसे और किरदारों के लिए कोई एक मैसेज तैयार करते थे और लोगों तक पहुंचाते थे। तो नुक्कड़ नाटक से शुरुआत हुई और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय तक मेरी, यानी कि ये जर्नी चली, कि जिसमें मैं सिर्फ सीख रहा था, सीख रहा था, सीख रहा था, क्योंकि अभिनय को जितना सीखो उतना कम है, एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। आज भी हम बड़े बड़े एक्टर्स को जब मिलते हैं तो वो भी कुछ ना कुछ नया मनन चिंतन कर रहे होते हैं कि भाई आज आपको क्या जरूरत है अभिनय के बारे में इतना सोचने की, आप जो कुछ बोलोगे वो ही पत्थर की लकीर बन जाएगा। लेकिन बावजूद उसके हमने देखा कि कितना सिंसियर वर्क है ये, कि नजर हटी की दुर्घटना घटी। एक अभिनय, यानी कि 2 सवा 2 घंटे की फिल्म में जब आदमी एक्टिंग करता है तो उसको कितनी बारीकाई से काम करना पड़ता है। तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में जाने के बाद और बारीकाई से मैंने इस पर काम किया, ध्यान दिया, और फिर लगा कि अब जिंदगी अभिनय के सहारे गुजर सकती है। जब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, क्योंकि अपने आप में 11-15 हजार लोगों का एप्लीकेशन वहां उस वक्त गया था,
1: हाँ, मैं
0: और
1: यही
0: उस
1: सोच रहा था कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में जाना इतना आसान नहीं रह गया है। तो आप किस बरस गए थे और कितना कड़ा मुकाबला था?
0: कड़ा मुकाबला तो बेशक था। और मैं 2003 में मैंने अप्लाई किया था, उससे पहले मैंने 2002 में अप्लाई किया और मैं फेल हुआ।
1: ओ,
0: तो ये भी एक जिंदगी का सबक है
1: तो
0: कि
1: बहुत दुखी हुए होंगे
0: बहुत
1: आप।
0: दुखी हो गया था। मुझे ऐसे लगा था कि पता नहीं मैं जिंदगी में अभी कुछ कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। मैं, हमारे राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के निर्देशक डॉक्टर देवेंद्र राज अंकुर जी, जिन्होंने बहुत समझाया था कि ऐसा नहीं होता है, आप थिएटर करते रहो, जुड़ते रहो। जब अगर आप एनएसडी में नहीं हुआ सिलेक्शन, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि जिंदगी खत्म हो गई, आप कहीं और जगह भी। लेकिन बावजूद उसके मेरा मन नहीं मान रहा था। मैं बोला नहीं सर, मैं एक ऐसी जगह पर प्रशिक्षण लेना चाह रहा था कि जहां पर रात दिन आप सिर्फ अभिनय की बातें करते हैं, संगीत की बातें करते हैं, साहित्य की बातें करते हैं। तो फिर मन बनाया कि अगले साल दोबारा मेहनत करनी है, और अगले साल और ज्यादा मेहनत करके मैं वहां पहुंचा और मेरा फिर सिलेक्शन हो गया 2003 और 2006। ये 3 वर्ष मेरे, यानी कि मिला जुला कर 1000 दिन की ट्रेनिंग मैंने वहां पर ली है।
1: क्या बात, क्या बात है। यहां रुकते हैं और एक गाना सुनते हैं। आपकी पसंद का कौन सा गाना यहां बजाया जाए?
0: मुझे लग रहा है कि मेरा एक फेवरेट सॉन्ग है जो दोस्ताना फिल्म में अमिताभ
1: जी
0: बच्चन साहब और शत्रुघ्न सिन्हा साहब पर फिल्माया है, और
1: बिल्कुल।
0: वो है सलामत रहे दोस्ताना हमारा। तो उसमें ना एक जगह पर वो एक सैड नोट भी है, कि जहां पर किशोर कुमार और रफी साहब का, दोनों का एक सैड नोट भी है, तो मुझे वो भी बड़ा पसंद है। लेकिन अगर वो एक फुल फेज में अगर वो गाना सुना दिया जाए तो बड़ा मजा आ
1: बिल्कुल, ये
0: जाएगा।
1: गाना सुनते हैं।
0: जी जी जी

0: आलोक जी, दोस्ताना फिल्म का ये गाना हमने सुना, और इससे पहले बातें ये हो रही थी कि आपने पहले स्ट्रीट थिएटर से शुरू किया अहमदाबाद में, और वहां से आपने ये तय किया कि भाई अब मुझे राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय जाना
1: विद्यालय
0: है।
1: जाना है।
0: आपने ये भी जिक्र किया कि परिवार में जो है वो वकालत की परंपरा थी, पिताजी वकील थे,
1: जी
0: तो
1: जी जी जी
0: ये कितना आसान था अभिनय की दुनिया में जाना एक वकील का बेटा होकर।
1: जी पापा का तो यही था कि मैं वकील ही बनूं, क्योंकि होता है ना कि एक डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, वकील का बेटा वकील। लेकिन पापा ने ये भी एक उनमें गुण थे कि जब वो कॉलेज काल में पढ़ते थे तो उन्होंने भी काफी नाटक किए थे। तो उन्होंने वो नाटक किए थे, शेक्सपियर के प्ले किए थे उन्होंने, सेंट जेवियर्स कॉलेज में वो पढ़ते थे, जेवियर्स में अहमदाबाद में। तो उन्होंने फिर बादल सरकार का एक स्पार्टकस नाटक भी खेला था।
0: अरे बाप रे,
1: तो फिर जब उनसे मैं परमिशन मांगता था कि मैं मोहल्ले के नाटक में भाग लेने जा रहा हूँ गणपति के लिए या जन्माष्टमी के लिए, तो वो बेझिझक मुझे कहते थे जाओ बेटा, उससे जिंदगी समझ में आएगी तुमको कि थिएटर एक रंगमंच है। लेकिन जब उनको ये कहा गया कि अब मैं पूरी तरीके से ही नाटक में हूं, तो उन्होंने कहा कि 100% करो, लेकिन प्रशिक्षण के साथ करो। उन्होंने ये कहा कि हर चीज को सीखा जा सकता है। और यही बात फिर एनएसडी में मुझे अंकुर जी ने कही कि आप गौर कीजिए कि आपको कोई सलून में आप गए हुए हो और आपको पता चले कि जो आपके अभी बाल बनाने वाला है या कटिंग करने वाला है आपके बालों की, वो कहीं से सीखा हुआ नहीं है, तो आप क्या करेंगे, आपका रिएक्शन क्या होगा? तो मैं तो उनको अपना सिर नहीं दूंगा। तो बोले कि आप कैसे सोच सकते हैं कि 2 घंटे 3 घंटे का नाटक और आप बिना ट्रेनिंग के उतनी ही गुणवत्ता के साथ कर लोगे। तो पिताजी ने फिर मुझे परमिशन दी कि यू कैन गो। और फिर कॉलेज में मैंने कैंपस थिएटर किया। मेरे गुरु सौम्य जोशी जी, जो फिल्मों में अभी लिखते हैं, उनकी फिल्म 102 नॉट आउट उन्होंने लिखी। उसके अलावा बहुत अच्छा थिएटर करते हैं वो गुजराती।
0: लगातार उनका तो बहुत अच्छा,
1: हाँ
0: अच्छे प्लेज अभी भी चले आ रहे हैं।
1: हाँ अभिजीत जोशी एंड सौम्य जोशी दोनों
0: जी
1: भाई है।
0: जी
1: तो इन दोनों भाइयों के साथ मैंने थिएटर की जर्नी शुरू की थी अहमदाबाद में। तो पिताजी को लग रहा था कि ये जैसे वकालत भी एक अपने आप में रिस्की फील्ड है कि आपका काम हुआ तो ठीक है, वरना कचहरी के चक्कर लगाते रहिए। तो पिताजी ने फिर हमको कहा कि आप कर सकते हो। तो फिर मैंने कॉलेज में दबा के थिएटर किया।
0: वाह वाह,
1: तीनों 3 वर्ष मुझे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला।
0: क्या बात है।
1: INT एक संस्था है जिसको इंडियन नेशनल थिएटर बोलते हैं, जो मुंबई बेस्ड है, लेकिन वो गुजरात में कंपटीशन करती थी कॉलेज में। तो ये कह सकते हैं कि 20वीं सदी का आखिरी अवार्ड मुझे मिला है और 21वीं सदी का प्रथम अवार्ड भी मुझे मिला है।
0: वाह वाह।
1: तो 99 में मैंने पहला प्ले किया था तुत्तु तु तु तु तारा, एक शराबी का कैरेक्टर था जो जॉनी लिवर साहब के एक जोक पर हमने नाटक इम्प्रोवाइज किया था कि अहमदाबाद में चारों तरफ एक शराबी घूम रहा है बस। तो उस किरदार को मुझे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। फिर दूसरे दिन मैंने एक किसान की बायोपिक की थी, फार्मर सुसाइड्स बहुत हो रहे थे गुजरात में। तो सौम्य जोशी साहब की कलम थोड़ी
0: मजबूत
1: वैसी,
0: है
1: हाँ, इंकलाबी कलम रही
0: तो ये
1: शुरुआत
0: सब
1: से।
0: उन्होंने लिखे।
1: उन्होंने ही लिखे दो शौकर सही नगर वस्तु तू,
0: ओ
1: और बहुत कमाल के लिरिसिस्ट है वो, कमाल के म्यूजिक कंपोजर है, कमाल के एक्टर, कमाल के डायरेक्टर। और मेरा सौभाग्य है कि मैं तो, मेरा पूरा परिवार उनका ऋणी रहेगा कि मुझे ऐसे माहौल से उन्होंने निकाला जहां थोड़ा मुश्किल था ग्रो करना, तो वहां से उन्होंने मुझे एक ग्रोइंग एक्टर एक बनाया। तो ये आज इस मंच पर उनको याद कर रहा हूं तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है मेरे गुरु को याद।
0: एनएसडी में पहुंचने के बाद आपका एक तरह से सपना पूरा हुआ, और आपने कहा कि 1000 दिन वहां तकरीबन आपने निकाले हैं। तो एनएसडी की कुछ यादें हैं, और वहां जो आपके बैचमेट्स थे, आपके सीनियर्स थे, उन सब के बारे में बताइए।
1: जी

0: राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में एक फायदा ये है कि आप वहां जाते हो ना, तो आपके साथ प्रांगण में, उसके कैंपस में पूरा देश आपके साथ रहता है। तो सबसे पहला मजा तो वो आया कि जब सीनियर जूनियर के बीच में एक इंट्रो फेस होता था हमारा, जस्ट एक इंट्रो फेस होता था कि लोग पूछते थे आपके बारे में, तो बड़ा अच्छा था कि पहले ही हमारा इंटरेक्शन ऐसे होता था कि आप गुजराती हो और आपका एक बैचमेट आसामी है, असम से है, तो आपको असामी भाषा सीखनी है और आपको उन्हें गुजराती सिखानी है।
1: अरे गजब।
0: तो ये कल्चरल एक्सचेंज के प्रोग्राम से जो एनर्जी बनती है, वो एनर्जी हमारी आज तक बनी हुई है कि अब हम लाइक कोई किरदार में एक्सेंट डालना हो तो हम बड़ी आसानी से बंगाली एक्सेंट ले लेते हैं, एमपी का एक्सेंट ले लेते हैं। और किस्से तो इतने हैं, जैसे कि हमारे सीनियर पंकज त्रिपाठी जी थे, तो
1: ओहो
0: वो थर्ड ईयर में थे और हम फर्स्ट ईयर में थे, तो जब बातचीत होती थी विद्यार्थियों के बीच में तो हमको वो कहते थे कि अच्छा तुम गुजरात से हो तो गुजरात का फोक थिएटर के बारे में तुम्हारा क्या समझ है। तो हमने कहा कि हाँ भवाई और ऐसा फोक थिएटर है, और उनका बिहार का एक अलग फोक थिएटर है, लौंडा नाच और इन सारी चीजों का। तो उस जगह से लाइक एक होता है ना कि आप टीचर से जितना सीखते हो उतना आपके सीनियर्स भी आपको इतने प्यार से सिखाते थे। इश्तियाक भाई थे तो उनका म्यूजिक पर कमांड था,
1: अरे हारमोनियम पे बैठ जाएं वो तो
0: हारमोनियम पर
1: फिर
0: बैठ जाएंगे तो वो चलता ही रहेगा उनका। तो हर तरह से, यानी कि सुबह से लेकर रात तक हमारा पहनना ओढ़ना खाना पीना सिर्फ एक्टिंग एक्टिंग एक्टिंग ही रहती थी। एक मजेदार किस्सा है वो ये है कि हम लोग गए थे के एन पणिकर जी के थिएटर में केरला, तो वहां पर हमको तैया तैयम नाम का एक नाटक करने को कहा गया। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग फॉर्म था। ये तैया तैयम एक रिचुअलिस्टिक थिएटर
1: बिल्कुल
0: केरला का होता है कि जिसकी यात्रा करीबन 9-10 दिन तक चलती है, यानी
1: जी
0: 12-15 दिन तक एक ही शो चल रहा है।
1: जी
0: रोज रात को आ रहे हैं लोग, शो चल रहा है 2-3 घंटे, फिर प्रसाद बट रहा है, फिर दूसरे दिन आ रहे हैं। तो हमको वहां पर वहां की गवर्नमेंट के साथ टाई अप होकर और हम वहां पर गए, तो पणिकर जी की एक बात जो मुझे इतनी अच्छी लगी, जो सीखने को मिली, कि वो व्यक्ति ने हमको विलंबित विधा में, यानी कि विलंबित लय में, आप संस्कृत नाटक की जो एक लय होती है, जितने फिर हमको पता चला कि मोहनलाल जी भी उनके वहां प्ले कर चुके थे, तो वो विलंबित लय में आप म्यूजिक के साथ बीट के साथ एक सेंटर स्टेज पर आते हो और वहां लार्जर देन लाइफ आपको एक्ट करना पड़ता है, तो दैट्स गुड। यानी एनएसडी की तो बात ही अलग है। तो
1: बिल्कुल।
0: हमारे
1: और
0: सीनियर कई रतन थियाम जी का थिएटर करने गए थे वहां पर,
1: अच्छा
0: वहां थांगटा सीख कर आए, हम
1: हाँ
0: केरला गए तो हम वहां कल्लरीपयट्टम सीख कर आए, तो आज भी
1: हाँ
0: वो कल्लरीपयट्टम की आर्ट मुझे आज भी याद है और आज भी मैं उसी से व्यायाम करता हूं अपना।
1: अरे वाह वाह वाह। तो एक तरह से ये होता है कि एक तो आप भारत से परिचित होते हैं, परंपराओं से, संस्कृति से परिचित होते हैं, और दूसरा नाट्य परंपराओं से अच्छी तरह से परिचित होके एक ठोस एक्टर या एक ठोस कलाकार बना के एनएसडी आपको
0: भेजते हैं।
1: मैदान में भेजता है कि अब जाओ। आपके साथ भी ये हुआ कि तय करना था कि दिल्ली में रहना है कि मुंबई जाना है?
0: नहीं, मेरा तो पहले से ये था कि मुझे मुंबई ही जाना है, क्योंकि मैं अगर गुजरात में भी जाता तो गुजराती थिएटर अपने आप में एक कमर्शियल थिएटर है, कि जहां से आदमी आज भी सिर्फ गुजराती थिएटर करने वाले, परेश रावल जी ने भी एक इंटरव्यू में कहा था कि आज अगर पूरे भारत देश में रोज थिएटर हो रहा हो तो वो सिर्फ गुजराती है,
1: वाह सही बात
0: रोज
1: है।
0: रोज। यानी कि आज आप बोरीवली का प्रबोधन ठाकरे या घाटकोपर का ऑडिटोरियम या भाईदास सब, लेकिन तेजपाल हॉल या वहां पर कहीं पे भी चले जाओ कि रोज आपको एक नया नाटक देखने को मिल सकता है। तो मुझे तो पता था कि मुझे थिएटर करना है या सिनेमा करना है, तो मेरे लिए पृष्ठभूमि मुंबई से अच्छी कुछ नहीं हो सकती थी। तो दिल्ली में मेरा रुकने का प्लान नहीं था, यानी कि रंगमंडल से जुड़ने का और उसका मेरा कोई प्लान नहीं था। मेरा यही था कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से ट्रेनिंग ली है, अब जल्दी से इस कैंपस को मुझे छोड़ देना है, क्योंकि मैंने ऐसे कई हमारे सीनियर विद्यार्थियों को देखा कि फिर वो वहीं रहते थे तो, और हम रोज पूछते थे कि दादा आप कौन सी बैच के हो, तो कोई कह रहे थे कि हम 95 के बैच के हैं, 92 के बैच के हैं, और वहीं कैंपस में आकर और कैंपस के साथ ही जुड़ जाते हैं, तो आदमी आगे चल के ग्रो नहीं कर पाता। तो हमने सोचा कि हमें दिल्ली तो नहीं रहना है, हम मुंबई चले चलेंगे, और मुंबई और अहमदाबाद के बीच में डिस्टेंस भी बहुत ज्यादा नहीं था, तो कॉन्फिडेंस मेरा बरकरार रहा, और मुंबई में आते ही सरस्वती माता की कृपा से काम भी अच्छा मिलने लगा।
1: यहां एक

0: गाना सुनते हैं, फिर मुंबई की बातें करेंगे।
1: जी जी जी
0: तो बताइए कि आपकी पसंद का कौन सा गाना होगा यहाँ पर?
1: जी, धर्मवीर फिल्म का गाना मेरा बहुत फेवरेट है,
0: हाँ।
1: जो दोनों सात अजूबे इस दुनिया में, आठवीं
0: वाह,
1: अपनी जोड़ी, और वहां पर भी एक सैड नोट आता है
0: बिल्कुल अलग।
1: माता को लेकर के, ये जो सच्चा वादा है तो सब कुछ आधा आधा है, तो रानी माँ से मुझको भी मिल जाए ममता थोड़ी,
0: वाह वाह वाह,
1: तो ये एक अगर आप सुना दे तो
0: जरूर सुनते
1: बहुत
0: हैं ये
1: अच्छा।
0: गाना।
2: सात अजूबे इस दुनिया में, आठ में अपनी जोड़ी। सात अजूबे इस दुनिया में, आठवीं अपनी जोड़ी। पर थोड़े से भई टूटे ना।

0: धर्मवीर फिल्म का ये गाना हमने सुना और बातें मुंबई की हो रही हैं। दिल्ली की दुनिया बहुत अलग है और मुंबई की दुनिया संघर्षों की दुनिया है। जब आप मुंबई आए तो क्या कैफियत थी और क्या परिस्थितियां थी?
1: बहुत वैसा सवाल है कि सच में आज भी वो लम्हा याद करता हूँ तो थोड़ा पेट में एक घबराहट सी हो जाती है कि मैं आया था तब मैं शादीशुदा था,
0: अच्छा
1: यानी कि मेरी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के फर्स्ट ईयर के बाद ही अरेंज मैरिज, मेरा घर में गुजरात में शादी हो गई थी।
0: अच्छा ऐसा।
1: हाँ,
0: और
1: और
0: आपने ये तय किया कि भाई पढ़ाई के दौरान शादी कर लेते
1: हाँ
0: हैं?
1: हाँ क्योंकि हमारे वहाँ बहुत जल्दी हो ही जाती थी तो उससे कोई छुटकारा था नहीं, तो
0: तो
1: बहुत
0: एक काम करते हैं, संघर्ष के बारे में बाद में बात करते हैं, ये शादी वाली बात पूरी कर लेते हैं पहले।
1: जी फर्स्ट ईयर में मैं पढ़ रहा था, उससे पहले ही हमारी शादी की बात तय हो गई थी। मेरी वाइफ, जिसका नाम रुक्मणी है, और वो बीकॉम कर रही थी, बैचलर ऑफ कॉमर्स, और मैं बीए कर रहा था, बैचलर ऑफ आर्ट्स। उसका थिएटर से कोई ताल्लुकात नहीं था, लेकिन अच्छे घर की संस्कारी लड़की थी तो घर वालों ने कहा कि शादी तो आज नहीं तो कल करनी है, तो हमने कहा कि नहीं, हमको तो अभी दिल्ली जाना है, पता नहीं क्या बोले।

0: नहीं, तुम शादी दिल्ली में छुट्टियों में आकर शादी कर सकते हो और उसके बाद फिर आराम से तुम जिंदगी बसर कर सकते हो। तो मुझे भी ऐसे लगा कि चलो कोई बात नहीं, देखी जाएगी, जब इतने ही संघर्ष ले लिए है जिंदगी ने तो ये भी एक संघर्ष निपट जाएगा। तो फर्स्ट ईयर की छुट्टियों में जब मैं घर आया 2004 में, तब हमारी शादी हुई और अभी हमारी शादी को 22 साल कंप्लीट हो गए। और जब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में मैं पास आउट होने के बाद जब बंबई आए, तो ये हालत थी कि अब पत्नी को लेकर आपको बंबई निकलना है। तो
1: और
0: वही,
1: ऑलरेडी वो आपके
0: हाँ
1: बिना इतने समय रह चुकी हैं।
0: हाँ क्योंकि आप कितना ही अत्याचार कर लोगे कि अगर आपकी सहूलियत के हिसाब से अगर आप जिंदगी को जाते हैं तो सब कुछ नहीं मिलता। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, चलो करते हैं संघर्ष जैसे सभी लोगों ने किया है। तो माहड़ा में हम लोग रहते थे, मलाड में, और शुरुआती दिनों में काम को लेकर कुछ भी क्लैरिटी नहीं थी, क्योंकि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में हमने थिएटर किया रात दिन अच्छे से, प्रांगण था, हर तरह की सहूलियत हमको मिल जाती थी, रहने के लिए हॉस्टल, हवा गर्मी लग रही है तो कूलर लग गया, ठंडा पानी खराब हो गया तुरंत बन गया। अब यहाँ क्या करेंगे? तो यहाँ पहली बार पता चला कि लाइट बिल आता है 350 रुपया एक वन रूम किचन का, वो भी बहुत मायने रखता है एक हिसाब किताब में। तो ये संघर्ष शुरू किया, लेकिन वही मैंने कहा था ना कि पापा की एक बात मुझे वो हमेशा याद रही थी कि लाइफ में कुछ इस तरीके से करो कि आप अभिनय भी कर सको और घर भी तुम्हारा चले उस तरीके से। तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की ट्रेनिंग क्या है, अपने आप में थिएटर में आपको इतना वो मंच देते हैं कि आप किसी को थिएटर पढ़ा भी सकते हैं, यानी उतना लेवल का नहीं जैसे वहां के फैकल्टी पढ़ाते हैं, लेकिन मोटा मोटा खाका आप किसी को बता सकते हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप हो जाती है। तो मैंने एनजीओ सेक्टर पे आकर काम करना शुरू किया और मैं स्ट्रीट चिल्ड्रन और स्ट्रीट प्लेटफॉर्म बॉयज के साथ थिएटर एज अ थेरेपी काम करता था, आगरीपाड़ा, मलाड से आगरीपाड़ा जाना। तो पहले ही दिन जब लोकल ट्रेन में मैं चढ़ा तो मैं रो पड़ा, क्योंकि एक तो पहले चढ़ने को नहीं मिल रहा था और हमको यही सिखाया कि टाइम पे पहुंचना है कोई भी क्लास में, तो मुझे 150 रुपये पर क्लास मिलता था उसके लिए। तो मुझे लगा कि यार अगर दो क्लास मिल जाए तो रोज का 300 रुपया तो मुझे यहीं से मिल रहा है, यानी महीने का 9,000 रुपये और घर का किराया ये सब मिला के 5-6 हज़ार में हो रहा था। तो वो संघर्ष के दिनों में मैंने एनजीओ सेक्टर में काम किया और साथ साथ में ऑडिशन देना शुरू किया और
1: जी,
0: फिर यात्रा धीरे धीरे सहूलियत के साथ आगे बढ़ने लगी।
1: क्या बात है। तो लोकल ट्रेन में जाके और आप वहां
0: जी
1: सिखाते थे बच्चों
0: जी
1: को,
0: जी
1: वो यात्रा ज्यादा बड़ा संघर्ष थी या वो बच्चों को सिखाना ज्यादा बड़ा संघर्ष था?
0: बच्चों को सिखाना बहुत बड़ा संघर्ष था, क्योंकि यात्रा तो क्या है कि हमको लग रहा था कि ये भीड़ है, लेकिन मुंबई में आपको कहीं पे भी भीड़ दिखाई देगी कि कौन, ये ऐसी जगह होगी नहीं जहां भीड़ ना हो। लेकिन हाँ, बच्चों के साथ क्या होता था कि मैं सिखाते सिखाते बहुत सीखता भी रहता था, जैसे तरह तरह के लोग थे और वही एनएसडी जैसा माहौल वहां पर भी था कि कोई उड़ीसा से एक बच्चा आया है। अब उसमें कुछ केसेस ऐसे होते थे कि कुछ बच्चे हीरो बनने आए थे
1: लो, अब ये समझाना भी मुश्किल है।
0: और उनको मैं ही समझा रहा हूं क्योंकि मैं भी हीरो बनने आया हूं। तो मेरे लिए तो ऐसा हो गया था कि ये सेल्फ लर्निंग हो रही थी। तो कुछ लोगों को वो एनजीओ ऐसी थी कि वो ऐसे बच्चों को रेस्क्यू करती थी जो बॉम्बे में बेचारे भटक रहे हैं, है ना, फिर कोई एडिक्शन में घुस गए, तो उनके बच्चों की पहले बातचीत होती थी तो पता चलता था कि एक बच्चा है जो सलमान खान के घर के बाहर ही सोता था, वो सलमान खान को देखने ही इधर आया था, फिर उसको लगा कि मुझे सलमान खान से अच्छे से मिलना है तो एक्टर बन जाना पड़ेगा।
1: अरे बाप रे,
0: तो ऐसे मेंटालिटी के बच्चों के साथ मैंने वैसे ही काम किए कि फिर उनको जिंदगी का फलसफा समझ में आया और फिर उनको हमने एक अच्छे ट्रैक पर लेकर गए। उसमें से जो टैलेंटेड लोग थे उनको भी एक्टिंग का भी काम दिया गया, लेकिन वही होता है ना कि टारगेट किस तरीके से सेट करके आते हैं और कैसे लोग आ जाते हैं।
1: तो उनमें से कई लोगों को एक दिशा मिली।
0: दिशा मिली, जैसे कि कई लोगों ने पेपर बैग बनाने का काम शुरू किया, कई लोगों ने पहाड़ों पर ट्रैकिंग करने का काम शुरू किया, तो वो भी अपने आप में बड़ी बात थी कि जो बेसहारा थे, सड़क पर सोते थे, फुटपाथ
1: अपना
0: पे
1: अपना
0: सोते,
1: काम कर
0: अपना
1: पाए।
0: अपना काम कर रहे हैं। आज वो शादीशुदा है, कुछ लोग आज भी फोन करते हैं, आलोक सर कैसे हैं आप, हमको याद है आपने हमको ये डायलॉग सिखाया था। तो मैंने डायलॉग उनको जिंदगी के लिए सिखाया था कि भाई कोई भी ऐसा एक टोंग ट्विस्टर ले लेते थे, एक ऊंचा ऊंट है, पूंछ ऊंची ऊंट की, पूंछ से भी ऊंची क्या पीठ ऊंची ऊंट की, अब इसी को अलग अलग इमोशन में बोलो।
1: यस।
0: तो कोई गुस्से में बोलता था एक ऊंचा ऊंट है, पूंछ ऊंची ऊंट की, पूंछ से भी ऊंची।

0: क्या पीठ
1: हाँ
0: ऊंची ऊंट की।
1: अलग
0: तो
1: अलग
0: ये
1: तरह की
0: थिएटर
1: एक्टिंग।
0: एज अ थेरेपी, तो बच्चे हंसते थे और वही उनके साथ भी एक परिवार जैसा संबंध बन गया था। साथी नाम की ऑर्गेनाइजेशन थी, आज तो शायद वो नहीं है वहां, लेकिन वो बहुत अच्छा काम करती थी। तो मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि साथी ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे शुरुआत में काम दिया, जिससे मैं बॉम्बे में टिका रहा और फिर धीरे धीरे फिल्मों के ऑडिशन देना, जो रोजमर्रा है, जो अमरीश पुरी साहब ने जो काम किया होगा वही हमने किया, कि लोगों से
1: जी, वो
0: मिलना,
1: एक प्रोसेस है कि वो
0: वो एक
1: करनी ही
0: प्रोसेस है,
1: पड़ती है।
0: वहां से कोई नहीं बच सकता।
1: तो शुरुआती तौर पर किस तरह के एक्सपीरियंसेस थे जब आप काम मांगने जाते थे, और क्योंकि तब शायद उस तरह से कास्टिंग डायरेक्टर्स नहीं आए थे
0: नहीं
1: और
0: थे,
1: आपको
0: नहीं थे,
1: अपने
0: नहीं थे।
1: फोटोज लेकर और पोर्टफोलियो लेकर जाना
0: जी
1: पड़ता
0: जी जी
1: था।
0: जी मुझे आज भी याद है कि चंदन टॉकीज के पास एक फोटोग्राफर
1: जुहू में
0: था और वो कुछ 100 रुपए की एक तस्वीर निकाल के देते थे,
1: जी
0: और मेरे पास एक ही डेनिम का शर्ट था, जींस का, जो मुझे एनएसडी से ही दिल्ली में ही खरीदा हुआ था, क्योंकि वहां वो सेल वगैरह लगते रहते हैं मंडी हाउस। तो वो पहनकर मैंने उसको कहा कि 5 फोटो भैया हमको कोई ऐसी निकाल दो जिससे लोग समझ जाए कि हम भी एक्टिंग करने के लिए आए। तो पांचों पांच एक ही कॉस्ट्यूम में तो हो नहीं सकती थी,
1: बिल्कुल।
0: तो मैंने कहा कि अंदर हमने एक गंजी पहनी हुई है, 2-3 फोटो शर्ट में निकाल लो, 2-3 गंजी में निकाल लो स्पोर्ट्स लुक के। तो वो 5 फोटो से हमने हमारी यात्रा शुरू की। और मुझे याद है कि जय माँ संतोषी माँ की फिल्म रिमेक बन रही थी उस वक्त, दोबारा
1: हाँ
0: दोबारा, तो उसमें हमारे एनएसडी के कास्टिंग डायरेक्टर थे परेश पारेख जी।
1: हाँ
0: तो उन्होंने कहा कि अच्छा तुम आ गए, फोन किया उनको, 2-4 नंबर लेके निकला था, तो उन्होंने सीधा मुझे दादर बुलाया। अब दादर मेरे लिए अपने आप में वैसा था जैसे हम अहमदाबाद से कहीं,
1: बड़ौदा चले
0: हाँ
1: गए।
0: हाँ बड़ौदा चले गए, वैसी यात्रा थी। तो दादर बुलाया और मैं चप्पल पहनकर चला गया, चप्पल भी वो थी बरसाती प्लास्टिक वाली, है ना, उसका एक अंगूठा निकला हुआ था। अब वो अंगूठे को उंगलियों में फंसाते हुए मैं सीढ़ियां चढ़ा कि भाई यहां तक हो जाए। फिर वहां गए तो उन्होंने कहा कि हाँ ऑडिशन दे दो। तो मैं बोला चलो यार, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से आए हैं, ऑडिशन तो दे ही देंगे। लेकिन हमसे हो नहीं पाया ऑडिशन, हमको समझ ही नहीं पाया कि वो क्या कह रहे थे, कैसे समझ रहे थे। फिर हमने सिर पकड़ लिया, मैं बोला कुछ तो गड़बड़ है अभी भी, तो ये भी समझना पड़ेगा कि ये प्रक्रिया क्या है। तो फिर वो परेश भाई ने बहुत प्यार से समझाया कि थोड़ा खुल के करो, थोड़ा तुम टेंशन में हो, सुखद अवस्था में रहो। मैं बोला सर सुखद अवस्था में कैसे रहूं, 3-4 दिन के बाद फिर रेंट देना है ये भी होता है। लेकिन इस तरीके से कारवा चल पड़ा। और पहली फिल्म मैंने की थी तशन, ये भी बड़ी बात है कि यश चोपड़ा की फिल्म में मेरा कास्टिंग हुआ,
1: और ये पहली फिल्म बनी,
0: पहली फिल्म बनी मेरी।
1: इसमें कितना संघर्ष करना पड़ा।
0: इसका ऑडिशन ग्रुप में हुआ कि भाई सबको चाहिए, क्योंकि बड़ी बड़ी फिल्म थी, बहुत बड़ी फिल्म थी,
1: बहुत बड़ी
0: अनिल
1: फिल्म,
0: कपूर,
1: मल्टी स्टारर।
0: हाँ अनिल कपूर, करीना कपूर, सैफ अली खान, अक्षय कुमार, और अक्षय कुमार का एक अलग लेवल। अनिल कपूर उसमें पहली बार नेगेटिव रोल कर रहे थे, विलन, और अक्षय कुमार का नाम उसमें बच्चन पांडे था, और डायरेक्टर थे विक्टर साहब, विजय विजय कृष्ण आचार्य, बहुत अच्छे डायरेक्टर। तो उन्होंने कहा कि यार वैसे तो रामलीला का सीन है और कोई हनुमान बना हुआ है, कोई भाला पकड़, तो ये जो वो भाला पकड़ने वाली कहावतें जो सुनी थी एनएसडी में कि यार क्या करोगे भाला पकड़ के खड़े रहोगे पीछे, तो मैं बोला ये सब कुछ मेरे साथ ही क्यों शुरुआत हो रही है। तो फिर उन्होंने कहा कि यार इसमें से कोई अच्छी लाइन बोलने वाला एक एक्टर चाहिए, तो मैंने हाथ ऊपर कर दिया, मैं बोला सर मैं बोल लूंगा, क्योंकि ये तो करना ही पड़ेगा आपको, कि बताओ तो सही आपको आता
1: बिल्कुल
0: है।
1: बिल्कुल।
0: तो फिर उन्होंने मुझे रामलीला का कोई कैरेक्टर नहीं दिया, बल्कि रामलीला देखने के लिए जो लोग बैठे थे उसमें फर्स्ट रो में मैं बैठा हूं। अब बड़ी बात क्या है, बहुत मजेदार किस्सा है, कि अक्षय जी को जो डायलॉग बोलना था वो उन्होंने मेरी छाती पे लिखा हुआ था, तो प्रिंट आउट उन्होंने मेरी छाती पे लगा दिया। अब मुझे लगा ये मेरे डायलॉग तो नहीं है, मैं कैसे बोलूंगा ऐसे देखकर। तो फिर का पता चला कि वो अक्षय जी के डायलॉग है, वो आपको भी देखेंगे और प्रिंट आउट को भी देखेंगे। और मेरा डायलॉग था उनके साथ, बढ़िया सा डायलॉग, जो उसके बाद भी बहुत हिट हुआ वो डायलॉग, कि वो आते हैं और लड़की को बोलते हैं कि अरे पार्वती तू यहां क्या कर रही, लड़की का नाम पार्वती था लेकिन रामलीला चल रही थी तो वो सीता का रोल कर रही थी। तो फिर मैंने कहा कि अरे भैया वो सीता है, सीता पार्वतिया तो शिव पुराण का हीरोइन है, कहा कुछ भी बोलते हैं ऐसा कुछ, हमने हंसा। तो वहां जो एक्चुअल ऑडियंस थी ना वो भी हंसने लगी।

0: कि हमने इस तरीके से कुछ डायलॉग बोला।
1: हाँ
0: एंड अक्षय जी के साथ बड़ा अच्छा अनुभव रहा, और वो मेरी पहली फिल्म थी। फिर वो रिलीज हुई तो देखने जाना है पहली बार कि अपने आप को
1: पर्दे पर दिख रहे हैं।
0: 70 mm के पर्दे पर कैमरा ये वो, तो फिल्म चली नहीं, लेकिन मजा आया कि हमने अपने आप को देखा कि यार एडिटिंग में कहीं वो सीन कटा नहीं, मैं पूरा दिखा। और मराठा मंदिर में मैंने देखी, तो
1: वाह
0: मराठा
1: वाह,
0: मंदिर अपने आप में एक
1: एक
0: ऐतिहासिक
1: ऐतिहासिक थिएटर है,
0: ऐतिहासिक थिएटर है। तो दिस इज अ थिंग।
1: वाह। और इसके बाद फिर कारवां आगे बढ़ा।
0: हाँ फिर तो वही है कि एक काम से दूसरा काम, लेकिन हाँ संघर्ष तो बीच बीच में चल ही रहा था। ऐसा नहीं है कि एक फिल्म कर ली तो दूसरी कल ही कल मिल जाएगी। आज तक भी हमको फिल्में ढूंढने के लिए थोड़ा वो संघर्ष तो करना ही पड़ता है कि कौन सी जगह पर आपकी जरूरत है, इंपॉर्टेंट ये है। तो यही कह रहे थे ना कि यार तुमको कैसे यश चोपड़ा के वहां से काम मिल गया, क्योंकि उनको लग रहा था कि तुम तो राम गोपाल वर्मा के एक्टर हो।
1: अच्छा,
0: हाँ एक ये भी होता था ना कि रामू जी के फिल्मों में ज्यादातर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की एक वो पैटर्न बनी हुई थी। राजपाल यादव जी हो गए, और भी एक्टर्स जैसे विजय राज जी हमारे NSD रिपेट्री के। तो ये भी एक बड़ी बात थी कि इतनी बड़ी कमर्शियल फिल्म में मुझे एक छोटा सा किरदार मिला, तो वहां से मेरी शुरुआत हुई टशन। फिर आगे तो धीरे धीरे काइपियो छे, काइपियो छे में मैंने सुशांत जी के साथ काम किया, उसमें गट्टू जी डायरेक्टर थे अभिषेक कपूर, वो बहुत अच्छा उसमें किरदार, धीरे धीरे बढ़ता गया किरदार, और अब ऐसा है कि हमको अच्छे किरदार मिलने लग गए हैं।
1: बिल्कुल। बजरंगी भाईजान में भी आपने काम
0: जी
1: किया।
0: जी जी जी बजरंगी भाईजान का मैं मेरा सलमान जी के साथ काफी अच्छा वो सीन था बस में।
1: हाँ, बस वाला सीन,
0: जी जी
1: बिल्कुल। उसके बारे में बताइए कैसा रहा हो।
0: बढ़िया। उस वक्त दुनिया को बस यही लगता था कि भाई सलमान जी पता नहीं किस तरीके से बात करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, वो बहुत सहज तरीके से हमसे मिले थे। और उसमें भी यही था कि तीन चार लोग बस में बैठे थे, अब बोले कि डायलॉग बोलने वाला है, फिर हमने हाथ ऊपर कर दिया था, मैं बोला हम बोल लेंगे सर। और वहां पर भी हमारी सीट के वहां सलमान जी के डायलॉग लिखे हुए हैं।
1: अच्छा, ऐसा भी था।
0: हाँ डायलॉग तो उनके लिखे हुए ही रहते थे, और मैं तो तुगलक के भी याद करके चला गया था डायलॉग
1: अरे बाप रे।
0: कि जहां कम पड़ जाए तो हम बोल देंगे। तो वो ऐसा सीन था कि वो मुन्नी से पूछता है कि तुम कौन से जगह से हो, वो बोल तो सकती नहीं थी, तो बोले कि मैं शहरों के नाम बोल रहा हूं
1: तो
0: तो
1: वहां
0: हाथ
1: करना।
0: करना। तो
1: हाँ
0: वो शहरों के सारे नाम मेरे सीट पे लिखे थे,
1: ओ
0: बड़ौदा, बीकानेर, जैसलमेर, ये वो, और उसमें एक शहर मेरा क्यू था, वो
1: हाँ
0: मुझे पकड़ना था। तो वो बड़ा मजेदार सीन है वो, कभी आप आज
1: बिल्कुल
0: भी वो
1: बिल्कुल।
0: फिल्म सेटमैक्स पे चलती है तो उस सीन की। और इतना अच्छा भाईचारा हमारा बना कि फिर मैंने जब दूसरी बार ट्यूबलाइट फिल्म में काम किया, सेम डायरेक्टर
1: हाँ
0: सेम स्टार, तो वो मुझे मुझे पहचान गए सलमान भाई। अरे बोले तुम तो पहले भी काम कर चुके हो ना मेरे साथ में। बोला हाँ सर मैंने बजरंगी भाई, हाँ कमाल का यार तुम्हारा वो हंसी बहुत अच्छा है, तो उसमें मैंने हंसने का
1: जी
0: एक
1: जी
0: सिग्नेचर बनाया
1: जी
0: था।
1: जी जी
0: तो ये है। और उस वक्त वो तीन सेट पर काम कर रहे थे,
1: ओके
0: प्रेम रतन धन पायो,
1: हाँ
0: बिग बॉस और बजरंगी भाईजान,
1: ओके
0: और एनडी देसाई स्टूडियो था क्योंकि सब नजदीक है, क्योंकि बिग बॉस लोनावाला में था, प्रेम रतन धन पायो वहीं था,
1: और ये कर्जत में था।
0: हाँ करजत में था। तो उनके साथ खाना वाना भी हुआ, तो बहुत अच्छे से वो खिलाते हैं अपने कोवा एक्टर को, खुद बहुत कम खाते हैं, तो अच्छा एक्सपीरियंस रहा। कबीर खान सर बहुत प्यार से समझाते हैं एक एक किरदार को, तो हंसी ठल्ले हुए वहां पर भी कुछ उनकी बातों के। जब शूट नहीं कर रहे होते हैं तब भी आप बात करते हैं ना को एक्टर से, तो सलमान,
1: बिल्कुल।
0: हाँ तो सलमान भाई से बोले अच्छा है अच्छा है, हाँ गुड गुड ऐसा। तो अब इतना बड़ा एक्टर, आई मीन हमारे लिए तो बहुत ही बड़ा है सलमान खान, तो बचपन से जिनको मैंने प्यार किया फिल्म में देखा, हमने जिनको हमने बागी फिल्म में देखा, वो किरदार आपके सामने बैठा है आपके साथ एक ही फिल्म में, तो वो मोमेंट मेरे लिए बहुत
1: मायने
0: मायने
1: रखता है
0: रखती
1: जी। एक तो ये कि अभी एक गाने की जगह बनाई जाए और उसके बाद आगे की बात करेंगे,
0: है।
1: तो
0: मैं
1: कौन सा
0: चाहता
1: गाना
0: हूं
1: होगा।
0: बजरंगी भाईजान फिल्म का ही एक गाना हो जाए, भर दो
1: बिल्कुल,
0: झोली मेरी,
1: क्या
0: जो
1: बात है,
0: अदनान सामी
1: सुनते
0: ने।
1: हैं अदनान समी की
0: जी जी
1: आवाज
0: जी
1: है।
0: जी जी

0: भाई बजरंगी भाईजान की हमने बातें की और फिल्मों में फिर उसके बाद आपका काम आगे जो है वो बढ़ता चला गया और एक तरह से मुंबई में एक जगह बनती
1: जी
0: चली गई।
1: जी
0: टेलीविजन भी किया और थिएटर की दुनिया में भी आप दोबारा सक्रिय हुए मुंबई में, ये बातें अब हम करेंगे।
1: हाँ। तो थिएटर तो मैंने कहा ना कि मुझे गुजराती थिएटर से बहुत होप थी शुरुआत से, और वो आज भी है मुझे, क्योंकि एकमात्र ऐसा थिएटर है जो आपको रोज एक शो दे रहा है।
0: जी
1: जैसे ही आप ग्रीन रूम में पहुंचते हो, अपना कॉस्ट्यूम होते हैं ना, मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी मिल जानी चाहिए, कुली फिल्म का बच्चन साहब का डायलॉग, तो
0: जी
1: वैसा वहां वो ऑर्गेनाइजेशन है उनका, तो मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने थिएटर किया था काफी, सिनेमा करता रहा। टीवी शो के लिए मैंने ऐसे अपने आप को बहुत ज्यादा टाइम नहीं दिया मैंने टीवी शो के लिए, क्योंकि मुझे लग रहा था कि जब थिएटर मेरे पास है, जो गुजराती थिएटर है, जो पैसों वाला थिएटर है, तो क्यों फिर मैं अपने आप को दो तीन जगहों पर बांटता चला जाऊं। तो फिर मैंने सिनेमा और थिएटर, थिएटर में मैं गुजराती थिएटर, हिंदी थिएटर, अभी लेटेस्ट अभी भी मैं लाइलाज प्ले कर रहा हूं,
0: पंकज त्रिपाठी जी
1: पंकज
0: वाला।
1: त्रिपाठी जी जिसके प्रोड्यूसर

0: सर है, उनकी वाइफ मृदुला त्रिपाठी, और फैज मोहम्मद ने उसको, वो भी एनएसडी के मेरे जूनियर है। और बड़ा इंटरेस्टिंग म्यूजिकल प्ले है, एक बैंड वालों की कहानी है।
1: हाँ
0: कितनी गजब कहानी है कि बैंड वाले जो होते हैं वो कई बार अपनी ही गर्लफ्रेंड की शादी में बैंड बजाने चले जाते।
1: अरे बाप
0: दिस
1: रे,
0: इज अ वन लाइन।
1: जी,
0: तो
1: क्या
0: ये
1: बात
0: ऐसी
1: है।
0: ट्रेजेडी है, तो बहुत मजा आता है उनके साथ काम करके, और इतने सहज तरीके से वो आज भी लोगों से हमसे
1: और
0: मिलते
1: बहुत
0: हैं।
1: पुराना आपका तो नाता रहा है, आपके
0: हाँ,
1: सीनियर रहे
0: मैं
1: हैं।
0: फर्स्ट ईयर थर्ड ईयर तो समझ लो ना कि वो एक बहुत है आपके। आप तीशु भाई, इरफान भाई, इनका भी ऐसा ही फर्स्ट ईयर थर्ड ईयर वाला जो रिलेशन होता है
1: हाँ
0: ये बहुत मायने रखता है। तो वही मेरे साथ भी हुआ।
1: जी, तो ये जो इन दिनों थिएटर की जो परंपरा है वो फिर से समृद्ध है, और फिल्मों के कलाकार भी अब थिएटर की दुनिया का रुख करते हैं, और दर्शक भी प्लेस को अलग-अलग शहरों में इंतजार करते हैं, देखना चाहते हैं। इसके बारे में आपकी क्या राय है, और ये कितनी अच्छी परंपरा है कि थिएटर समृद्ध हो रहा है?
0: बिल्कुल, मुझे तो जहां तक लगता है कि आज से 3,000 साल पहले भी थिएटर चल रहा था।
1: जी
0: बिफोर बीसी में, हम बिफोर क्राइस्ट, हम ग्रीक थिएटर की हिस्ट्री वगैरह देखते हैं तो वहां से लेकर आज तक कभी थिएटर वीक नहीं हुआ है। हम ही कमजोर पड़ गए हैं, करने वाले ही कमजोर पड़े हैं, थिएटर कभी वीक नहीं हुआ है। ये नसीर साहब का भी एक स्टेटमेंट मैंने सुना था, नसीर सर का, कि उन्होंने एक जगह कहा था कि जब मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ज्वाइन कर रहा था तब लोग बोल रहे थे कि थिएटर ऑक्सीजन पर है। आज तक भी वो ऑक्सीजन पर, यानी आज तक नहीं मरा
1: हाँ,
0: तो कैसे
1: लेकिन हमेशा
0: ऑक्सीजन।
1: ये कहा जाता है ये थिएटर ऑक्सीजन पर है।
0: हाँ, हमेशा कहा जाता है। तो ये एक मिथ जो बना हुआ था वो मुझे लग रहा है कि अब धीरे धीरे टूट रहा है, और अब बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है। जैसे कि पहले मुंबई में हम सिर्फ पृथ्वी थिएटर में ही एक डिपेंडेंट थे, लेकिन अब नीता मुकेश अंबानी के वहां पर भी कल्चरल सेंटर में ऑडिटोरियम बन गए। बहुत इंटीमेट स्पेसेस सब डेवलप हुई है कि आप चार किरदारों को लेकर एक परसाई जी की कहानी उठा लो और उसको भी नाटक का रूप दे दो। और इसमें सबसे बड़ा रोल है, अगर मैं कहूँ ना, कि थिएटर घर घर तक पहुंचाने में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा तो है ही, अब्राहम अलकाज़ी साहब तो है ही, लेकिन उनके जितने भी शिष्य हैं, वो उनमें अंकुर जी है, उनमें रामगोपाल बजाज है, रतन थियाम है, बंसी कौल है, इन सब लोगों ने थिएटर की बहुत बड़ी साधना की, और उस वजह से आज वो थिएटर हमको हमेशा अपनी तरफ चुंबक की आकर्षण की तरह वो हमें खींचता है। जैसे कहानियों का रंगमंच, इतनी प्यारी विदा है ये,
1: अंकुर जी ने जो
0: अंकुर
1: बात
0: जी
1: की
0: की
1: थी,
0: विदा है ये,
1: जी
0: अंकुर जी, महेश आनंद जी, लेकिन अंकुर जी का ये कॉन्सेप्ट इतना अच्छा लगता था हमको। हमने प्रेमचंद जी की कहानियां भी की थी, जिनेंद्र जी की भी कहानियां की थी, और उनका एक ही था कि जीरो कॉस्ट बजट है इसमें, आपके पास कहानी है और मंच है,
1: बस
0: लाइट अगर हुई तो ठीक है, बोले बोले अगर एक आध हेलोजन जल गया तो ठीक है आलोक, बाकी और कुछ नहीं है। और एक कहानी के हमको तीन तीन ड्राफ्ट बनाने को कहते थे, कि पहली कहानी में मैं बड़े भाई साहब बनाऊं तो दूसरे ड्राफ्ट में मैं छोटा भाई बनूंगा। हाँ? अब वो छोटा भाई क्या कर रहा है, उसकी एक्टिविटी क्या है, और कहानी का एक भी शब्द आगे पीछे नहीं होना चाहिए,
1: सेम का सेम
0: सेम
1: होगा।
0: टू सेम। तो फर्स्ट टाइम मैंने फील किया कि व्हाट इज द नैरेटिव एक्टिंग एंड व्हाट इज द सब्जेक्टिव एक्टिंग, तो नैरेशन के साथ। तो आज थिएटर अपने आप में एक अच्छा रोल अदा कर रहा है समाज में, और बहुत अच्छी बात है कि बड़े बड़े स्टार फिल्मों में काम करने के बाद भी थिएटर को एज अ अपना वो समझकर कर रहे हैं कि हमें और कुछ नया सीखने को मिल जाए थिएटर में, और
1: बिल्कुल,
0: व्हाट इज द थिएटर का कंट्रीब्यूशन फिर सिनेमा में ले जाते हैं,
1: हाँ, तो दोनों तरफ की धाराएं
0: दोनों
1: चल रही
0: तरफ
1: हैं।
0: की धारा।
1: आप तो कई भाषाएं जानते हैं, और जाहिर है कि अब फिर ये थिएटर में भी ये काम आते हैं। आपने यहां मुंबई में गुजराती थिएटर भी किया?
0: मैंने गुजराती थिएटर किया, मैंने एक हमारी खुद की जो मदर टंग है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, भांतू बोली बोलते हैं उसको,
1: अच्छा
0: हम लोग ट्राइबल हैं एक्चुअली,
1: जी
0: वो
1: जी
0: दो
1: तो ये
0: घुमक्कड़।
1: मराठी का एक प्रकार है, ये
0: नहीं,
1: गुजराती का एक प्रकार है।
0: ये अपने आप में है ना, ये राष्ट्रीय स्तर पर बोली जाती भाषा है,
1: अच्छा
0: बट ये लोग बंजार यानी घुमक्कड़ रहे, तो कोई गुजरात में स्थायी हो गया, कोई महाराष्ट्र में हो गया, तो वो लोग पढ़ाई कर रहे हैं मराठी में और गुजराती में, लेकिन जब आपस में मिलेंगे तो उनकी एक विशिष्ट बोली है।
1: अरे बाबा
0: अगर आप कहें तो मैं उस बोली में ना, मेरी
1: जी,
0: एक फिल्म भी आई है दिल्ली क्राइम सीजन 2,
1: हाँ,
0: वो किरदार मेरा उसी कम्युनिटी के था।
1: तो
0: तो
1: आपने वो किरदार वैसा बनाया
0: नहीं
1: या?
0: नहीं मैंने राइटर के साथ डिस्कस किया था, भावेश मांडलिया राइटर जिन्होंने ओ माई गॉड
1: जी,
0: लिखी, तो उनके साथ डिस्कस किया, तो उन्होंने कहा कि ये बैक स्टोरी आपकी बहुत अच्छी जा रही है, यानी मैंने अपनी बैक स्टोरी को उस किरदार के अंदर रखा। तो वो भांतु बोली में बात करते हैं, जैसे मुझे बोलना है कि कहाँ जा रहे हो, और शाम तक वापस आ जाओगे ना, अरे की तोड़।

0: तेरा तो सांझा सुधी उल्टा ही जांगड़ा ना, एकदम
1: ओहो, इसमें
0: डिफरेंट
1: कुछ
0: है।
1: शब्द
0: हाँ
1: गुजराती के आ रहे हैं।
0: गुजराती के थोड़े मराठी, तो ये क्या घुमक्कड़ लोगों की ने कभी महाराष्ट्र से कुछ ले लिया, कोई गुजरात से
1: हाँ,
0: कुछ ले
1: तो एक
0: लिया,
1: मिक्स है।
0: कुछ राजस्थान से कुछ ले लिया। तो ये भाषा मुझे आती है, गुजराती भाषा मुझे आती है, हिंदी मुझे आती है, उर्दू जबान भी, यानी कि नुक्ते उक्ते
1: हाँ
0: लग जाते हैं ठीक ठाक। तो ये है, अंग्रेजी व्यवहारिक रूप से जितनी बोल सकता है उतनी मैं बोल लेता हूँ।
1: जी,
0: तो भाषा मुझे लग रहा है कि एक अभिनेता का सबसे बड़ा वो होता है एलिमेंट, कि जिसको वो जितना मांझ ले उतना अच्छा है।
1: बहुत सारे बच्चे हैं जो अलग अलग शहरों में हैं और हमारी इस बातचीत को सुन रहे हैं, उनको लगता है कि एनएसडी जाएं और मुंबई आ जाएं, बस लाइफ सेट है,
0: नहीं,
1: तो
0: बिल्कुल नहीं।
1: उनको अपनी तरफ से कुछ कहिए।
0: मैं बस उनको इतना ही कहूंगा कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा आपको विधा सिखाता है,
1: जी
0: और प्रोफेशनल विधा सिखाता है, व्यावसायिक रंगमंच की तालीम देता है। लेकिन वो व्यवसायी एक बहुत बड़ा व्यवसायी है,
1: हाँ
0: तो उस व्यवसाय में आपको आपके ग्राहक खुद ही ढूंढने हैं, है
1: हाँ
0: ना।
1: और मुंबई शहर आपको पीसता
0: हाँ,
1: है।
0: पीसता है, जलना पड़ता है। और ये भी नहीं है कि इसमें नकारात्मकता ही भरी पड़ी है।
1: जी
0: कहीं पर आपका कुछ अच्छे काम आप करते हो तो आपको उसका अच्छा रिजल्ट भी मिलता है। तो मैंने ऐसे कई लोगों को देखा कि जो आते हैं और एडिक्शन में भी डूब जाते हैं, है ना, कई और तरह की चीजों में भटक जाते हैं। तो उन चीजों में अगर ना भटके, और अगर आपने प्रशिक्षण प्राप्त किया है, चाहे फिल्म टेलीविजन इंस्टीट्यूट से किया हो, फिल्म इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया FTII से किया हो, या नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से किया हो, BNA से किया हो, तो प्रशिक्षण का जो एक बल लेकर अगर आप काम करते हो तो सफलता आपको मिलेगी। सफलता को आप ही कैटेगराइज करते हो कि किसको है। जैसे अभी अक्षय खन्ना जी को हम देख रहे हैं धुरंधर फिल्म में,
1: बिल्कुल।
0: तो उन्होंने यही कहा कि सफलता को आप कैसे मापते हो, है ना, कि मुझे आप सलमान खान और शाहरुख खान के साथ कंपेयर क्यों कर रहे हो, मैं
1: बिल्कुल।
0: अपने लेवल पर सफल हूं। तो मुझे लग रहा है कि ये एक अभिनेता के लिए बहुत बड़ी बात है।
1: क्या बात है, चलते चलते एक गाने की फरमाइश है।
0: शैलेंद्र जी मेरे बहुत फेवरेट रहे,
1: जी
0: और रेणु जी
1: वाह
0: की
1: वाह,
0: कहानी पर उन्होंने जो
1: तीसरी
0: फिल्म
1: कसम
0: तीसरी
1: बनाई,
0: कसम, उसका अगर आप सुना दे, दुनिया बनाने वाले क्या
1: वाह वाह
0: तेरे मन में
1: वाह,
0: सनम।
1: जरूर ये गाना सुनाते हैं
0: जी
1: आपको।

0: आलोक जी, बहुत अच्छा लगा आप विविध भारती के स्टूडियो में आए और आपने इतनी सारी बातें हमारे साथ शेयर की। बहुत बहुत धन्यवाद
1: जी
0: अपना
1: जी
0: समय देने के लिए।
1: जी जी जी धन्यवाद, और बहुत ही शुभकामनाएं हैं विविध भारती को, आप पूरी टीम को, जितने भी लोग ये काम कर रहे हैं। और क्या बताऊं मैं आपको कि रेडियो सच में हमारी जिंदगी का एक संगीत है, और अगर इंसान को आप किसी एक अरण्य में डाल दे, किसी घोर जंगल में डाल दे जहां सिर्फ निराशा निराशा ही हो गुफाओं में, और वहां एक रेडियो चल रहा हो ना, तो वो भी कहते हैं ना, रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था कि एक दिया सारे अंधेरे को भगा देता है। तो रेडियो घर में ऐसा है जो हमारी नकारात्मक शक्ति को बाहर फेंकता है और एक रचनात्मक ऊर्जा को हमारे घर में लाता है।
0: क्या
1: तो
0: बात है,
1: रेडियो यंत्र घर में रहना वो ऐसा ही है जैसे एक परिवार का सदस्य आपके साथ रह रहा है।
0: बहुत बहुत शुक्रिया,
1: धन्यवाद।
2: बॉम्बे टॉकीज के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे अभिनेता आलोक गागड़ेकर से यूनुस खान की बातचीत। चलने से पहले आपको बता दें, आज के इस कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन सहयोग रीमा जोशी, इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: पर है डुपर है अपना बॉम्बे टॉकी।
1: कुछ दिल ने कहा,
2: सुनहरे ख्वाबों वाली एक लड़की,
1: अगर मेरी माँ बायोलॉजिकल मदर है तो टेक्निकल मदर मेरी विविध भारती है,
2: जिसे बचपन से ही गाने का शौक था।
1: कुर्सी पे बैठ के गा रहे थे और उसको लगा ट्रांजिस्टर ऑन छूट गया है।
3: हम चले तुम चलो सावन की हवा चले।
2: उसने तोड़े पारंपरिक समाज के बंधन।
1: अब जब हम बाइक लेके निकल गए, जब तीन चक्कर लग गया तब याद आया ये तो अब रोकना ही नहीं आता है।
2: एक कामयाबी जो मिलते मिलते रह गई,
1: कभी सोचते ही नहीं थे कि हम हारेंगे।
2: जिंदगी ने करवाया एक लंबा इंतजार।
3: सुंदर सपनों की है मंजिल कदम की।
2: संघर्ष की डाल पर कामयाबी का फूल खिला।
3: जैसे तो है पास मेरे तेरे पास मैं।
2: जानी मानी गायिका दीपाली सहाय, बॉम्बे टॉकीज 29 अगस्त से 12 सितंबर हर शनिवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध

0: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्प्रेरी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया।
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
0: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा जी। तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
2: अभी हम रिले कर रहे थे विविध भारतीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम आकाशवाणी का। ये बिलासपुर केंद्र है FM Band 103.2 MHz पर। इस समय शाम के 5 बजे हैं। लीजिए सुनिए CF1 विभाग सरगुजा द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ।

0: दीवाने गजराज
1: नमस्कार, स्वागत है हमर हाथी हमर गोठ कार्यक्रम में। मैं अमलेंदु मिश्र। साथियों, हाथियों का विचरण हमारे आसपास के वन क्षेत्रों में लगातार बना हुआ है। नर दंतैल हाथियों से विशेष सतर्कता की आवश्यकता है। आइए जानते हैं हाथियों के आज के विचरण क्षेत्रों के बारे में। एलिफेंट रिजर्व सरगुजा के तमोर पिंगला में हाथियों की कुल संख्या 28 है। ये बूंगा, रमकोला, भेलकक्ष, बड़वारी, धुरिया, अरचो का बरपटिया के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सूरजपुर वन मंडल के प्रतापपुर और रामानुजनगर में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये अभयपुर, मेंड्रा, चंदन नगर, टुकुडाण, सिलफिली, कनक नगर, करसी, बूढ़ाडाण, गणेशपुर, गुड़गवा, मदन नगर, सिंघरा, दलदली, भरदा, गौरा, धर्मपुर, सरहरी, केवरा, करंजवार, सेमई, दरहोरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलरामपुर वन मंडल के वाड्रफ नगर, रामानुजगंज और धमनी में हाथियों की कुल संख्या 11 है। ये पिंडारी, तनवारी, पोखरा, मदनपुर, चीनिया, महावीरगंज, छतवा, इंदरपुर, कनकपुर, सिलाजू, उचेरवा, आबादी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सरगुजा वन मंडल के लुंड्रा में एक हाथी विचरण कर रहा है। ये उदारी, असकला, दोरना, मोहरा, जरहा, डीह के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहा है। जसपुर वन मंडल के कुनकुरी और बगीचा में हाथियों की कुल संख्या 32 है। ये नारायणपुर, चरईमारा, रानी कोम्बो, बन कोम्बो, सारंगडांड, बंदरचुआ, लोढ़ा आंबा, डोडा पानी, सोनगेरसा, बीजा घाट, सारू ढाब, देव डांड के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। धर्मजयगढ़ वन मंडल के छाल, धर्मजयगढ़, बोरो, काकारूमा और कापू में हाथियों की कुल संख्या 88 है। ये आमगांव, गेरसा, उदउदा, पोटिया, आमापाली, नागदरहा, कुड़ेकेला, छाल के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। कोरबा वन मंडल के करतला और कुदमुरा में हाथियों की कुल संख्या 18 है। ये कांसीपानी, जामपानी, साजापानी, गीत कुंवारी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। कटघोरा वन मंडल के पसान, जडगा, एतमानगर और केंदई में हाथियों की कुल संख्या 52 है। ये बंजारी, मड़ई, लोधीबहरा, मतीन, आमाटिकरा, नवापारा, सिटी पखना, फुलसर, कोरबी, झुनकीडी, जुनवानी, खड़पड़ी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। रायगढ़ वन मंडल के रायगढ़, घरघोड़ा और तमनार में हाथियों की कुल संख्या 75 है। ये बंगूरसिया, चक्रधर, धरपुर, धुमा बहाल, पूंजी पथरा, तराई माल, नागदरहा, पंडरी पानी, कमतरा, चिमटा पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। अचानकमार टाइगर रिजर्व के अचानकमार में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये सरई पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलौदा बाजार वन मंडल के सोना खान और कोठारी में हाथियों की कुल संख्या 30 है। ये अचानकपुर, चनहाट, कोठारी, तालदादर, पकरीद के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के कुल्हाड़ी घाट में हाथियों की कुल संख्या 24 है। ये कावारामा, नारी पानी, कोनारी, बुड़ार, जिडार, पायलीखंड, बेसराझर, कोदोमाली, तौरेंगा, कुकरार, ताराझर, खोलापारा, छिंदौला, लूठापारा, फरसरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। दोस्तों, हाथियों की सूचनाओं पर रात में खेतों के आसपास या घर के बाहर ना सोएं, हाथियों से सामना हो सकता है। आइए सुनते हैं प्रसिद्ध क्रिकेटर और ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुंबले जी का ये संदेश।
2: नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुंबले बोल रहा हूँ। यदि हाथी गांव के आसपास दिखे तो तत्काल वन विभाग को सूचना दे। जंगल के किनारे एकांत घरों में रहने वाले लोग पक्के स्कूल या पक्के घरों में चले जाएं। हाथियों के लिए जंगल का

0: रास्ता खुला छोड़ दे। हाथियों की जानकारी के लिए सुनते रहे हमार हाथी हमार गोट।
1: अभी आप सुन रहे थे CF वन विभाग सरगुजा द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम हमार हाथी हमार गोट। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। अब प्रस्तुत है चित्रपट संगीत।

स्वर्ग से सुंदर, ये नाम था फिल्म का जिसका गीत अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ों में। आनंद बख्शी के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। आइए अब सुनते हैं चित्रपट संगीत कार्यक्रम में अगला गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद अजीज के आवाज़ों में। फिल्म का नाम है सिंदूर, रचना है आनंद बख्शी की, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

आइए अब सुनते हैं चित्रपट संगीत कार्यक्रम में अगला गीत। फिल्म का नाम है बागी, आवाजें हैं अभिजीत और कविता कृष्णमूर्ति की। समीर के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया है आनंद मिलिंद ने।

0: भाई साहब, आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
1: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
0: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
2: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।
3: श्रोताओं लीजिए सुनिए एक सूचना। आकाशवाणी बिलासपुर द्वारा एक विशेष फोन इन कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी सोमवार दिनांक 24 अगस्त 2026 को सुबह 11:30 से 12:30 के बीच। इस विषय पर जानकारी देने के लिए स्टूडियो में उपस्थित होंगे नगर के DIG वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री रजनेश सिंह। श्रोता हमें 266592 नंबर पर कॉल कर सकते हैं। बिलासपुर का स्टडी कोड नंबर है 077752 और विषय होगा बढ़ते साइबर अपराध और

उनसे सुरक्षा। इस फोन नंबर पर अपनी समस्याएं आप सीधे डीआईजी सर से पूछ सकते हैं। आपके फोन कॉल्स का हमें रहेगा इंतजार। समय याद रखिएगा, सोमवार सुबह 11:30 से 12:30 के बीच। सूचना समाप्त हुई।

एक सूचना है महिला सभा कार्यक्रम संबंधी। श्रोताओं, आप महिला सभा में अपनी फरमाइश के गीत लिखकर भेज सकते हैं और सुन सकते हैं। महिला सभा में आपकी फरमाइश में मेल कीजिए महिला सभा bsp@gmail.com पर। इसमें महिला सभा का प्रसारण होगा हर मंगलवार और गुरुवार शाम 5:35 से। सूचना समाप्त हुई। इस समय हमारे केंद्र आकाशवाणी बिलासपुर से आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत कार्यक्रम। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अब लीजिए सुनिए किशोर कुमार की आवाज में फिल्म सनम तेरी कसम का गीत। शब्द हैं गुलशन बाबरा के, संगीत है आरडी बर्मन का।

आइए अब सुनते हैं चित्रपट संगीत कार्यक्रम में अगला गीत, आशा भोसले SP बालसुब्रमण्यम की आवाजों में। फिल्म का नाम है तोहफा। इंदीवर की रचना है, धुन तैयार की है बप्पी लहरी ने।

इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत का यह कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय शाम के 5:35 हुए हैं। अब लीजिए सुनिए फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम। ईमेल करें कि

ई मेल करें गीत सुनी कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। स्वीकार कीजिए रत्ना का नमस्कार। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आप सभी की पसंद से। पहला गीत हमने लिया है किशोर कुमार की आवाज़ में फिल्म अंदाज का। हसरत जयपुरी के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया है शंकर जयकिशन ने और फरमाइश है आप सभी श्रोताओं की। भुजो कैचिया बटिंडा से हैं परम सिंह जोड़ा मनजीत कौर करण वीर करण दपिंदर वरिंदर सिमरन एकम दमन और अभिजोत। पथरिया भरेवा से हैं चंदूलाल सिंगरौल नारायणी नोमेश नेहा और वान्या। मोहाली चंडीगढ़ से हैं टी डी मल्होत्रा ऋतिक प्रतीक अनिल शर्मा जयवीर सिंह और अमनदीप। दिल्ली से अजीम वकार माहिरा अजीम जेबा आकार हैड्स बहादुरा नागपुर से हैं वैशाली शैलेश गवाणकर श्वेता सुमित ध्वनि परी। मेहरनगर उमड़खेर महाराष्ट्र से अभिजीत सरिता प्रणीता सिद्धांत प्रिंस और एकांश। नरवेल महाराष्ट्र से पी एस नावकर निर्मला विशाल। ग्राम उच्च भट्टी से मुकेश गोस्वामी मधु आशीष शिवन्या। गोगावा जिला खरगोन मध्य प्रदेश से हैं उस्मान खत्री रिजवान अब्दुल गफ्फार। दरियापुर बाबली से गजानन येले नवदीप विश्वदीप अशोक। रिंगनी से हैं दिनेश वर्मा करुणा वर्मा। भाटापारा से विष्णु साहू पूरब वीरा हर्ष कुमकुम योगेश्वरी। गुजरात से प्रवीण सोनी पूजा पायल जगदीश जौहरी। चलिए सुनते हैं आप सभी की पसंद पर फिल्म अंदाज का ये गीत।

इसके बाद आइए सुनते हैं ईमेल करेंगे सुने कार्यक्रम में अगली फरमाइश। पसंदकर्ताओं के नाम हैं सौंगा मंगलोर से हैं फनीश कुमार चंदन, सावित्री देवी, मोहित, देविका रानी, गजेंद्र कुमार, पार्थ और हेयांश। पलारी से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद, पराग टेलर, पुनाराम, कृष्णा देवांगन। धनौरी तेलीवाला से हैं निसार, सलमानी, नौशाद, आलिया और आयान। कोयलारी कवर्धा से कैलाश चंद्राकर, मुकुंद, पुर्णेंद्र और साहिल। खंडवा से अब्दुल हक, अब्दुल गफ्फार, जियाउल हक, राजेंद्र कटारी और उनके परिवार के सभी सदस्य। नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी, प्रखर, कुशल, नीति, सुरभि, अश्विन, मंगलाबेन, राजेंद्र शाह। पटियाला से हैं मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता। भिलाई से मुकेश वर्मा, सरिता शर्मा और मुकेश शर्मा, गौरव, गरिमा शर्मा। हांसी से राजू मिगलानी, बब्बू डब्बू, बबीता, सुभाष योगी। बिलाईगढ़ से खेकराम देवांगन, रेनू, रजनी, प्रियंका। पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता, किसु, तासु, अर्णवानंद, सत्यमानंद। मामुलवाड़ी महाराष्ट्र से हैं सोपान तायडे, वसंतराव भोजने, निवृत्ति आडोकार।

मदन पुरसी श्रवण कुमार साहू, योगेश और राहुल चंडीगढ़ से हैं। अनिल, जयवीर और परिवार के सभी सदस्य लोरमी चचड़ी से, शंकर कोलाम, संतोषी, संजय, संध्या और शिवम। चलिए सुनते हैं आप सभी की पसंद पर किशोर कुमार, लता मंगेशकर की आवाज़ों में हाथी मेरे साथी फिल्म का ये गीत। शब्द है आनंद बख्शी के, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

आइए अब सुनते हैं ईमेल करें गीत सुने कार्यक्रम में अगला गीत। पसंद है आप सभी श्रोताओं की। जगराओं से हैं सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गव्या मल्होत्रा, सुच्चा सिंह पाठक। बीकानेर से नरेंद्र सुराणा, कांतिलाल, शरद मयंक, विमल अभाड़ी, लालेंद्र होलेंद्र, आचार्य रोनी जैन, प्रमोद दम्भाड़ी। पदमपुर श्री गंगानगर राजस्थान से मेहर अरोड़ा, कीर्ति भूमिका, ममता अरोड़ा। चिरमिरी कुरासिया कालरी से इंद्रभान सिंह, अनुभव ऋषभ, राम सहोदर, नारायण प्रसाद लहरे, दिनेश प्रसाद, कालिंद्री लहरे। सावतपुर से ऋषि सेन, रितेश, कंचन और माही सेन। दिल्ली से हैं सुमित्रा देवी, सोनिया, आयशा रानी। दिल्ली से ही दिलावर खान, हसीना बानो, एलिजा नायाब। राजकोट से जूली, प्राची, प्रवीण पुजारी और जगदीश। हिंगोली महाराष्ट्र से हैं शाहजी बोटखे, नंदा हनुमान, उत्तम जमदाड़े। गुमला झारखंड से नजमुल होदा, एसएम जावेद, शगुप्ता अंजुम। तखतपुर से मिश्रीलाल विश्वकर्मा, मीरा देवी, विशाल, मानस, गंगा देवी। महाराष्ट्र से सिद्धार्थ गोंडाने, अर्चना, प्रणय प्रसिद्धि, महेश रामटेके। दिल्ली से सोनम सना, अदीबा। यवतमाल से पंजाब रामटेके, यशोधरा, श्राव्या। वाशिम महाराष्ट्र से विठल सरोशी, सुषमा, परिधि, मायरा। महाराष्ट्र से हैं रुपेश संघई, महेश, प्रिगेश, प्रीतेश। मणिखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी, लवली, आरती अरोड़ा। पलारी से हैं प्रकाश वर्मा, निखिल, प्रिंस, यशस्वी। सनावद मध्य प्रदेश से दिलीप मालाकार, सुनीता, मुस्कान और योगेश मालाकार। चलिए सुनते हैं लता मंगेशकर, किशोर कुमार की आवाज़ों में फिल्म थोड़ी सी बेवफाई का गीत, जिसे आप सभी श्रोताओं ने पसंद किया था। शब्द हैं नक्श लायलपुरी के, संगीत है खयाम का।

लीजिए सुनिए, बढ़ते साइबर अपराध और उनसे सुरक्षा विषय पर एक जानकारी। आकाशवाणी बिलासपुर द्वारा एक विशेष फोन इन कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग सोमवार दिनांक 24 अगस्त 2026 को सुबह 11:30 से 12:30 के बीच की जाएगी। विषय होगा बढ़ते साइबर अपराध और उनसे सुरक्षा। इस विषय पर जानकारी देने के लिए स्टूडियो में उपस्थित होंगे नगर के DIG वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री रजनेश सिंह। श्रोता हमें फोन कर सकते हैं, हमारा फोन नंबर है 2665592 और बिलासपुर का स्टडी कोड नंबर है 07752। इस नंबर पर अपनी समस्याएं सीधे आप DIG सर से पूछें। आपके फोन कॉल्स का हमें रहेगा इंतजार। समय याद रखिएगा, सोमवार सुबह 11:30 से 12:30 के बीच। ईमेल करें गीत सुनिए कार्यक्रम में। अब आगे बढ़ते हैं और लीजिए सुनिए आप सभी की पसंद पर अगला गीत। पसंद है आप सभी श्रोताओं की। भिवानी से हैं कृष्ण मेहरा, कोमल, किरण, कपिल, कुणाल। बुलढाणा वटशिंगी महाराष्ट्र से अमोल मानकर, शोभा मानकर, दीपाली और श्लोक। डोंगरगांव से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका, अनिष्का, तन्मय। दिल्ली से हैं तुलसी मस्किन, वीना, आशीष, राजा, चैतन्य। नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा, स्वीटी। पिपरिया से कमलकांत गुप्ता, दीपा और रिमझिम। बागबाहरा बदरसी से पन्नालाल सेन, खुशबू, तारा, कौशल सेन। राजकोट से हैं राजेश, कृष्णा, स्वाति, ख्याति कुमारी। देवरी भाटापारा से हैं गनुलाल रजक, अश्विनी वर्मा, गणेश राम। ओंकारेश्वर से हैं सपना, अंबिका, अनीता, चिंकी, मिंकी, पिंकी। देवरी भाटापारा से KR साहू, आकाश, कमलेश और मुरली क्षत्री। चलिए सुनते हैं आप सभी की पसंद पर फिल्म आशिकी का ये गीत। आवाजी हैं अनुराधा पौडवाल, कुमार सानू की। समीर के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया है नदीम श्रवण ने।

0: और फिल्म आशिकी के इस गीत के साथ ही ईमेल करें गीत सुनी कार्यक्रम बस यहीं तक। ईमेल करें गीत सुनी कार्यक्रम का आनंद आप ले सकते हैं शाम 6:20 पर और शाम 7 भी। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। 6:05 हो चुके हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। कार्यक्रम विवरण में आगे बढ़ने से पहले लीजिए सुनिए पहले कुछ संदेश।
1: हाँ ये रिंग अच्छी है, बीवी को पसंद भी आ जाएगी।
2: अरे यस सर, आपकी चॉइस बहुत अच्छी है और ये डिजाइन भी नया है।
1: डिजाइन नया है वो तो ठीक है, लेकिन सोने की प्योरिटी का प्रूफ कहाँ मिलेगा?
3: बनिए एक जागरूक ग्राहक, आज ही डाउनलोड कीजिए BIS केयर ऐप। सोना खरीदने से पहले BIS केयर ऐप पर HUID कोड अवश्य वेरीफाई करें।

0: क्या बात है, बड़े दिनों बाद।
1: हाँ यार। अच्छा सुन, दाढ़ी बनवाने का कितना होगा?
0: अरे वही अपना 60 रुपया।
1: अरे यार अभी सिर्फ मेरे पास 30 रुपए कैश है।
0: तो देख, दो तरीके हैं। पहला, आधी दाढ़ी करा ले।
1: और दूसरा?
0: अरे डिजिटल पेमेंट कर UPI से।
1: ये लो यार, UPI ने तो बचा लिया।
0: एक काम कर, फेशियल भी करा ले, डिजिटल पेमेंट कर देना।
2: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
3: हर लेन देन अब है आसान।
4: हाँ ये रिंग अच्छी है, बीवी को पसंद भी आ जाएगी।
5: अरे यस सर, आपकी चॉइस बहुत अच्छी है और ये डिजाइन भी नया है।
4: डिजाइन नया है वो तो ठीक है, लेकिन सोने की प्योरिटी का प्रूफ कहाँ मिलेगा?
6: बनिए एक जागरूक ग्राहक, आज ही डाउनलोड कीजिए BIS केयर ऐप। सोना खरीदने से पहले BIS केयर ऐप पर HUID कोड अवश्य वेरीफाई करें।
7: कार्यक्रम विवरण में पहले सुनिए आज के शेष कार्यक्रमों के बारे में। प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी हम आकाशवाणी रायपुर से रिले करेंगे शाम 7:30 पर। ईमेल करेंगे सुनिए कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 6:20 पर और शाम 7:00। रात 8:00 पेश किया जाएगा सुगम संगीत कार्यक्रम, इसमें आज की कलाकार होंगी नूरजहां। इसके बाद रात 8:15 पर हम लेकर आएंगे कार्यक्रम रजनीगंधा। विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे रात 9:15 पर। ये तो थी जानकारी आज के शेष कार्यक्रमों की। अब डालते हैं नज़र कल के प्रमुख कार्यक्रमों पर भी। कल सुबह 6:30 पर खेती की बात कार्यक्रम में जानकारी का विषय होगा मक्का के फसल में कीट एवं रोग नियंत्रण। चिंतन आप सुनेंगे सुबह 6:45 पर। सूचनात्मक कार्यक्रम आज सुबह का प्रसारण किया जाएगा सुबह 7:05 पर। सुबह 7:30 पर आप सुनेंगे कल प्रायोजित कार्यक्रम सेहत की बात डॉक्टर के साथ, विषय होगा हार्निया की पहचान समय पर करें व इलाज करवाएं। इस विषय पर डॉक्टर गुरुविंदर सिंह से बातचीत करेंगी पद्मा मणि। प्रस्तुति होगी डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन की और इस कार्यक्रम के प्रायोजक होंगे GI फाउंडेशन और लिवर एंड गैस्ट्रो सेंटर लिंक रोड बिलासपुर। सदाबहार नगमे कार्यक्रम हम लेकर आएंगे कल सुबह 7:40 पर। छत्तीसगढ़ी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम माटी के स्वर श्रोता सुनेंगे सुबह 8:30 पर। सुबह 10:00 बच्चे सुनेंगे अपना कार्यक्रम आओ बच्चों, इसमें सामयिक चर्चा का विषय होगा एक छोटा कदम बड़ी रोशनी नेत्रदान महादान। इसके अलावा प्रायोजित कार्यक्रम में आप सुनेंगे कृष्णा पब्लिक स्कूल कोनी बिलासपुर के बच्चों की प्रस्तुति। नए तराने कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा कल सुबह 10:30 पर। जिले की चिट्ठी कल शाम 6:05 पर और कानून की बात 6:30 पर हम आकाशवाणी रायपुर से रिले करेंगे। इसके साथ ही कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र 6:10 होने को है। छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार अब हम आकाशवाणी रायपुर से रिले करेंगे।

0: आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। प्रादेशिक समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग अभिषेक के जय जोहार। अब सुनाओ आज के प्रमुख समाचार। प्रधानमंत्री हा कही ने कि देश में पाछू 10 ले 12 बछर में 25 करोड़ लोगन हा गरीबी ले बाहर निकले है। कृषि विश्वविद्यालय में होए पेपर लीक मामला में पुलिस हा एक प्रोफेसर समेत 6 जन आरोपी ला गिरफ्तार करे है और प्रदेश में अवैया एक हफ्ता तक वर्षा के सक्रिय रहे के संभावना हवे। आज राजधानी रायपुर समेत अब्बड़ अकन जगह में हल्का ले मध्यम बारिश होए के खबर है। अब समाचार विस्तार ले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हा कहिन है कि देश में पाछू 10

0: 12 बछर म 25 करोड़ लोगन मन गरीबी ले बाहर निकले हे। सरकार ह सुधार बर प्रतिबद्ध हे। ओमन किहिने कि भारत के हमेशा साझा भविष्य के भावना म विश्वास रहे हे। नई दिल्ली म काली संझा वर्ल्ड लीडर्स फोरम ला संबोधित करत हुए श्री मोदी ह किहिन कि यही कारण है कि भारत के G20 म अगुवाई के दौरान ओखर मार्गदर्शक सिद्धांत एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य रहेस। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय यानी IGKV में हुए पेपर लीक मामला में पुलिस ह भारतीय एग्रीकल्चर कॉलेज दुरुक के प्रोफेसर योगेश सोन केसरिया समेत 6 जन आरोपी ला गिरफ्तार करे है। सुरैया मल्ला बता दन कि पाछू 20 अगस्त के BSc एग्रीकल्चर दुसरैया बछर के कीट विज्ञान विषय के परीक्षा शुरू होए ले करीब 2 घंटा पहली पेपर ह ईमेल के माध्यम ले लीक हो गए रहेस। एकर सूचना मिले के बाद विश्वविद्यालय के परीक्षा प्रकोष्ठ प्रभारी डॉक्टर NR रंगारे ह तेलीबांधा थाना में FIR दर्ज करवाए रहेस। जांच में पुलिस ह रायपुर दुर्ग बिलासपुर और कबीरधाम समेत लखठा के जिला में आने आने टीम भेज के बारीकी ले जांच करीस जेमा दुर्ग के रहैया अनुज मिंज ले जरूरी जानकारी मिलीस। पुलिस के अनुसार करीब 36 घंटा के जांच के बाद पेपर लीक के स्रोत और आरोपी मन के पहचान कर ले गेस। ए पूरा मामला के मुख्य आरोपी योगेश सोन केसरिया है जेन बछर 2019 ले भारतीय एग्रीकल्चर कॉलेज दुरुग में प्रोफेसर के पद में काम करत है। पाछू 1 बछर ले ओहा अपन कॉलेज के उत्तर पुस्तिका मन ला जमा करे के औ अवैया परीक्षा मन के प्रश्न पत्र ला लेके ओला कॉलेज में जमा करे के काज करत रहेस। पुलिस ह बताइस है कि संबंधित ह लीक प्रश्न पत्र ला अपन कॉलेज के पढ़ैया छात्र मन ला 11,000 रुपया में बेचे है। इही कोतिले ए प्रश्न पत्र ह सोशल मीडिया में वायरल होइस है। पुलिस ह आरोपी के तीर ले 11,000 रुपया नगद 6 मोबाइल फोन वीडियो रिकॉर्डिंग उपकरण केबल तार और मोबाइल कनेक्टर जब्त करे है। पुलिस ह बताइस है कि 2 आने आरोपी मन अभी फरार है जेमन ल खोजे जावत है। पकड़ाए आरोपी मन ले पूछताछ करके ए मामला में शामिल और लोगन के बारे में जानकारी जुटाए जावत है। इही बीच विश्वविद्यालय प्रबंधन ह पाछू 7 अगस्त के आयोजित प्लांट पैथोलॉजी विषय के परीक्षा घलो रद्द कर दे है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ह कहिन है कि प्रदेश में परीक्षा मन के सूचिता पारदर्शिता और विश्वसनीयता ल लेके कोनो समझौता नहीं करे जाही। ओमन कहिन कि परीक्षा प्रक्रिया ल प्रभावित करैया या पढ़ैया मन के भविष्य ले खिलवाड़ करैया मन के खिलाफ कड़ा कार्रवाई करे जाही। मुख्यमंत्री ह प्रकरण के निष्पक्ष जांच के निर्देश दीन है। केंद्र सरकार ह कही से कि देश में घरेलू मांगला पूरा करे बर चीनी के पर्याप्त भंडार हवे, फिर एकर उत्पादन ह अनुमान ले कमती होए के संभावना है। सरकार ह शक्कर की कीमत में हाले में हुए बढ़ोतरी ल देखत हुए पर्याप्त उपलब्धता पक्का करे और कीमत ल स्थिर रखे बर कई ठिन काज करत है। मंत्रालय ह कही से कि शक्कर की कीमत में हुए बढ़ोतरी ल इथेनॉल बनाए बर चीनी के इस्तेमाल ले जोड़ के देखना सही नहीं है। केंद्र सरकार ह आज 4 बछर ले कम उम्र के लइका मन बर क्लोरफेनिरामाइन मैलेट और फिनाइल एफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड वाले सबो फिक्स डोज कॉम्बिनेशन ल बनाए बेचे और बांटे ऊपर रोक लगाए है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ह एक अधिसूचना जारी करके ए दवाई मन ऊपर साफ साफ चेतावनी लिखना जरूरी करे है कि 4 बछर ले कम उम्र के लइका मन ल ए दवाई नहीं पियाना है। एक कदम छोटे लइका मन के स्वास्थ्य और सुरक्षा ल ध्यान में रखत हुए उठाए गए है। सरकार है ए दवाई बनैया कंपनी मन ल निर्देश दे है कि ये सबो दवाई के लेबल में दे गए निर्देश और प्रचार सामग्री ऊपर साफ साफ चेतावनी लिखे जाए। सरकार है कही से कि ऐसन दवाई के इस्तेमाल ले 4 बछर ले कम उम्र के लइका मन ल खतरा हो सकत है और एकर सुरक्षित विकल्प उपलब्ध हवे। ए बछर जून में घलो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ह देश भर में लोगन के इस्तेमाल बर 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन दवाई ल बनाए बेचे और बांटे ऊपर रोक लगाए रहिस। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुनत हो।
1: छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपके वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमार समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमार फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमार यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुँचत हन। छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार।

0: अब आगू बढ़वो बाचे समाचार कोती। केंद्र सरकार ह काली दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत उद्यमिता पर राष्ट्रीय अभियान के दुसरैया चरण के शुरुआत करे है। ये अभियान 21 नवंबर तक 3 महाबर अव चलही। ग्रामीण विकास मंत्रालय ह बताइस है कि ये अभियान ले ग्रामीण माई लोगिन के उद्यमिता ल मजबूती मिलही और 6 करोड़ लखपति दीदी बनाए के लक्ष्य में योगदान होही। भारतीय जनता पार्टी भाजपा ह वंदे मातरम ऊपर जागरूकता फैलाए और एकर गायन ल बढ़ावा दे बर देश भर में अभियान चलाही। नई दिल्ली में आज पत्रकार मन ले गोट बात में भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ह कहिस कि ये फैसला पार्टी के नवा नियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारी मन के पहली बैठक में ले गए है। छत्तीसगढ़ ले हज बर आवेदन करैया मन के प्रतीक्षा सूची मले 82 जन के नाव तय हो गए है। राज्य हज कमेटी के चेयरमैन मिर्जा एजाज बेग ह बताई से कि हज कमेटी ऑफ इंडिया ले मिले जानकारी अनुसार प्रतीक्षा सूची में 1 नंबर ले 82 नंबर तक के आवेदक मन के चयन हो गए है। चुने गए हज यात्री मन ला पहली किस्त के रूप में हरेक हज यात्री ला 1,52,300 रुपया 30 अगस्त तक जमा करना होगी। बलरामपुर जिला में पाछू रतिया बागसाइड ट्रक और पिकअप के बीच हुए जोरदारहा टक्कर में 3 मजदूर मन के मौका में ही मौत हो गए और 7 मजदूर गंभीर रूप से घायल है। ये हादसा राजपुर कुसमी रद्दा में हाई स्कूल के तीर हुए है। पिकअप में चालक समेत 11 जन मजदूर सवार रहिन जिन मन प्रतापपुर ले शंकरगढ़ जावत रहिन। दुर्घटना के बाद पुलिस ह घायल मन ल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाइस जिहां शुरुआती मलहम पट्टी के बाद गंभीर रूप ले घायल 7 मजदूर ल सुघर इलाज बर मेडिकल कॉलेज रिफर करे गए है। आकाशवाणी रायपुर के प्रादेशिक समाचार एकांश डहर ले प्रस्तुत कार्यक्रम जिले की चिट्ठी के प्रसारण काली संध्या 6:05 ले 6:10 तक करे जाही। एक कार्यक्रम ल छत्तीसगढ़ के सब्बो आकाशवाणी केंद्र एके संग रिले करही। ए दारी के अंक में आप मन दंतेवाड़ा जिला के गतिविधि के बारे में जानकारी सुनिया। प्रदेश में अवैया 1 हफ्ता तक वर्षा के सक्रिय रहे के संभावना हवे। आज राजधानी रायपुर समेत अब्बड़ अकन जगह में हल्का ले मध्यम बारिश होए के खबर है। मौसम विभाग अनुसार मध्य प्रदेश और ओकर तीर एक निम्न दाब के क्षेत्र बने हुए है। एकरे असर ले प्रदेश में अवैया 1 हफ्ता तक बदली और बारिश के संभावना बने रही। मौसम विभाग अवैया 24 घंटा के दौरान उत्तरी और मध्य छत्तीसगढ़ के 1-2 जगह में मध्यम ले भारी वर्षा के चेतावनी दे है। उन्हें कुछ एक जगह में गरज लौक के संग गाज गिरे के संभावना घलो है। इसी बीच कबीरधाम जिला के पंडरिया क्षेत्र के सरैया गांव में एक जुन्ना बांध टूट गये जेखर ले कतकोन एकड़ फसल के प्रभावित होए के आशंका है। उन्हें एकर ले बांध में पानी कम होए ले अवैया समय में किसनहा मन के आगू फसल बर पानी पलोय के संकट खड़ा होए के आशंका ले ओ मन चिंता में हवे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA कोती ले नीट PG परीक्षा के आयोजन अवैया 30 अगस्त के करे जाही। परीक्षा ह बिहनिया 9 बजे ले मझनिया 12:30 बजे तक होही। रायपुर जिला में परीक्षा के ठीक ठीक संचालन बर डिप्टी कलेक्टर रायपुर उपेंद्र किंडो और सहायक पुलिस आयुक्त नंदनी ठाकुर ला नोडल अधिकारी बनाए गए है। आखिर में प्रमुख समाचार एक घाव फेर। प्रधानमंत्री ह कहिन है कि देश में पाछू 10 ले 12 बछर में 25 करोड़ लोगन ह गरीबी ले बाहर निकले है। कृषि विश्वविद्यालय में हुए पेपर लीक मामला में पुलिस ह एक प्रोफेसर समेत 6 जन आरोपी ल गिरफ्तार करे है और प्रदेश में अवैया 1 हफ्ता तक वर्षा के सक्रिय रहे के संभावना हवे। आज राजधानी रायपुर समेत अब्बड़ अकन जगह में हल्का ले मध्यम बारिश होए के खबर है। एकरे संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन इहे सिरावत है। जय जोहार।
1: छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार अभी हम आकाशवाणी रायपुर से रिले कर रहे थे। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, FM बैंड 103.2 MHz पर। इस समय 6:20 हुए हैं। लीजिए सुनिए फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम। ईमेल करें गीत सुने कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। चलिए सुनते हैं आप सभी की पसंद पर मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में फिल्म सूरज का गीत। लिखा है हसरत जयपुरी ने, संगीत है शंकर जयकिशन का। पसंद है आप सभी श्रोताओं की। झज्जर हरियाणा से हैं बिट्टू भाटिया, रीटा रजत, मयंक भाटिया। धरदेई सरगांव से चंदूलाल पटवा, सुनीता हर्ष, विनीत कृष्टि पटवा। भानबेड़ा मुंगवाल से

भारत राम पटौटी, जयंती, हेमंत उमंग मोक्ष, अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन मिथिलेश तारणी, दतरंगी भाटापारा से हैं द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर वर्मा, दतरंगी भाटापारा से ही रमणी वर्मा, पारसमणि, पुष्पेंद्रमणि और नोखेलाल वर्मा, संबलपुर कांकेर से भागुराम यादव, ज्योति ओजस्वी, रसेड़ा से मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी, योगेश, संध्या कीर्ति, रिकेश, वासु, डाली, पूर्वेश, दिल्ली से मालती शर्मा, माया, दिव्या और सीमा, नीला बोड़सरा जांजगीर से हेमदेव तिवारी, दुर्गा प्रसाद, अमन, मीनाक्षी, उमाबाई, विष्णु प्रसाद, दिल्ली से सुखविंदर सिंह जोड़ा, सेठी दीवाना, भाटापारा से हैं इमकेश्वर साहू, कर्ण राहुल, चंपा, बोड़सरा नैला से हैं प्रमोद कुमार साहू, बीमा वैभवी, विनोद, विभूति, अंशु, बबली, प्रियांशु। चलिए सुनते हैं आप सभी की पसंद पर फिल्म सूरज का गीत। स्वर है मोहम्मद रफी का, लिखा है हसरत जयपुरी ने, संगीत है शंकर जयकिशन।

0: भारत सरकार के नियमों के अनुसार 450 से अधिक उत्पाद जैसे ज्वेलरी, टॉयज, हेलमेट, इलेक्ट्रॉनिक्स इत्यादि ऐसे हैं जिनके निर्माण, आयात या सेल के लिए BIS मानक चिन्ह आवश्यक है। एक जागरूक ग्राहक बनिए, किसी भी प्रोडक्ट को खरीदते वक्त उस पर BIS मानक चिन्ह जरूर देखें और उस प्रोडक्ट की प्रामाणिकता जांचने के लिए आज ही डाउनलोड करें BIS केयर ऐप।
1: ईमेल करें, ये सुनिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अब लीजिए सुनिए अपनी पसंद का ये गीत जिसे हमने लिया है फिल्म दुल्हन वही जो पिया मन भाई से। स्वर है हेमलता का, गीत और संगीत है रविंद्र जैन का और इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद हैं आप सभी श्रोता। चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता केशु रिधान खुराना, नाईवाला जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से हैं वेद मिठा, अलका मिठा, ग्राम उच्च भट्टी से हैं मुकेश गोस्वामी, मधु आशी, शिवन्या, पलारी से नीतीश कुमार, लखनलाल, सावित्रीबाई, ईशांत और तनुजा, आमा खोडरा रेंगाखार से हैं देवी सिंह, नेताम राजेंद्र सिंह दक्षप्रिया और गीत सरगम, पीपलोड सरगांव जिला मुंगेली से दीपेश वर्मा, पूनम ज्योति शिवांश, बिलाईगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या हेमलता और डिंपल, बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज सुहान, सरफराज फरदीन अरजान और अबान अब्बासी, छत्रपति संभाजीनगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश और राशि और शीतल, रायगढ़ से नरेंद्र कुमार तिवारी, महेंद्र कुमार जोई, यामनी उमा, पुतकी कला कवर्धा से राधेश्याम पांडे, वीणा विनय शंकर, दतरंगी से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती विनीता रुद्र, लक्षणपुर से जिला बलौदाबाजार से हैं विश्वनाथ साहू, पंकज और तिरुपति साहू, नरगोड़ा से कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी और उनका पूरा परिवार, दिल्ली से हैं बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका, भानु प्रकाश और निशु दीदी। चलिए सुनते हैं आप सभी की पसंद पर फिल्म दुल्हन वही जो पिया मन भाए का ये गीत। स्वर है हेमलता का।

0: भारत सरकार के नियमों के अनुसार 450 से अधिक उत्पाद जैसे ज्वेलरी, टॉयज, हेलमेट, इलेक्ट्रॉनिक्स इत्यादि ऐसे हैं जिनके निर्माण, आयात या सेल के लिए BIS मानक चिन्ह आवश्यक है। एक जागरूक ग्राहक बनिए, किसी भी प्रोडक्ट को खरीदते वक्त उस पर BIS मानक चिन्ह जरूर देखें और उस प्रोडक्ट की प्रामाणिकता जाँचने के लिए आज ही डाउनलोड करें BIS केयर ऐप।
1: आइए अब सुनते हैं ईमेल करें गीत सुने कार्यक्रम में अगला गीत पसंद है आप सभी श्रोताओं की। हरहरपुर मटकली जिला बरेली से हैं शायरुन नूर अंसारी, मोइन तस्लीम, सर्वेश सैनी, रीजे प्रधान। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम विशाल, प्रिया दिशानी, निमिता हुजा। बीड़ शहर से हैं किशन सपकाल, आशा, सोनिया और विशाल। जालंधर से रोशन जहां, नुसरत जहां, मन्नत जहां। गांव कुम्हारहेड़ा सहारनपुर से सैयद मसरूर, शाइना हसन, नाजिया इब्राहिम। बोरी खुर्द से सुधाकर राजे जाधव, प्रशांत जगुताई, साक्षीताई और उनका पूरा परिवार। पजौनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से हैं सत्येंद्र कुमार चौसलिया, आदर्श, सार्थक, अलौकिक। जमशेदपुर से हैं हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल, सोनू, पप्पी। भिलाई 314 से हैं नौशाद अहमद सिद्दीकी, हमीदुन जीशान अहमद, शाहनवाज अहमद। अड़ान नानघाट से माखन वर्मा, चांदनी, राहुल और गोपी वर्मा। कोलसिटी बरका कना से हैं अफजाल ताश, शाहिन सुल्ताना, सोनू तस्नीम, निपी साहिनी, मोहम्मद अफजल मलिक। लक्षनपुर से रामजी साहू, जीवन लाल रजक, निम्मी, शिवम, सतीश और मुकेश कुमार साहू। चलिए सुनते हैं आप सभी की पसंद पर आशा भोसले महेंद्र कपूर की आवाजों में फिल्म दहलीज का ये गीत। शब्द हैं हसन कमाल के, संगीत है रवि का।

आइए अब सुनते हैं ईमेल करेंगे सुने कार्यक्रम में अगला गीत। इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद हैं आप सभी श्रोता। लुतरा खमरिया से अक्रम अमीन अर्श आतिका, लगान पंडरिया से उत्तम कुमार बघेल, रुक्मणी साहिल भारती बघेल, भाटापारा से बचकामल मोतीलाल यादव, सियाराम चोवराम वर्मा, सूरज बारेकर, नारायण यदु, नलगोंदा तेलंगाना से हैं मोहम्मद अमजद, सलमा मुनीर और आयशा तबस्सुम, धुराबांदा भाटापारा से प्रमोद साहू, देव सानेतराम, भूपेंद्र साहू, गिरडी झारखंड से साइमा नवाज, मोहम्मद यासीन अंजान, हसन नवाज, अहद मिफ्रा नाज, चाहत और सादिया, करजत मुंबई से अहमद भाई, दुखना सदफ, जोही इमरान, आमना नसरीन, आसमा परी, राबिया आशु अहमद, नागपुर महाराष्ट्र से कमल साहनी, पिंकी साहनी, अफजल मलिक, दिल्ली से बेबी अंसारी, निशा डब्लू अंसारी, बठेना पाटन जिला दुर्ग से हैं बलकर रणवर्मा, अंजनी जो

बेटी रेखा, पार्थ कश्यप, मिथिलेश, टोमिन बछोर, यश प्रयाण, शिवम। दिल्ली से हैं नीरज अग्रवाल, सहज, श्लोक, प्रियांश, श्रेयांश, अनुभूति। किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहनदास, आशा देवी, राघव कुमार, भानुप्रिया, निकिता। लुतरा खमरिया से नकुल श्याम, मोहम्मद अकरम, मोहम्मद अजीश। जिला भोंगेर से मोहम्मद बुरहानुद्दीन। चलिए सुनते हैं आप सभी की पसंद पर फिल्म चलते चलते का गीत। आवाजें हैं अभिजीत और अलका याग्निक की। जावेद अख्तर के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया है जतिन लल।

इस गीत के साथ ही ईमेल करें गीत सुनी कार्यक्रम बस यहीं तक। इस कार्यक्रम का आनंद आप ले सकते हैं एक बार फिर शाम 7 बजे आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र 6:45 होने को हैं। प्रादेशिक समाचार अब हम आकाशवाणी रायपुर से रिले करें।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले।
1: मेरा नाम मुनिया भाई राठिया है, मैं ग्राम केरा कछार से हूँ। 2024 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से 93,000 का वित्तीय राशि मिला खरीफ फसल में।

0: फसल बीमा जरूर कराएं ताकि फसल में जो नुकसान होता है उसके लिए सहायता मिल सके। फसल बीमा कराना बहुत जरूरी है।
1: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
2: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
1: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
3: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
4: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
5: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
4: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
5: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं। उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
4: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने ना आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
5: क्यों?
4: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है। और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
6: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
7: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
8: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
7: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
8: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
7: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
8: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
6: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
9: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
8: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
9: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
8: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
9: आकाशवाणी से।
6: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर, आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
10: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ल्ड लीडर्स फोरम को संबोधित करते हुए कहा कि भारत ने पिछले 10 से 12 वर्षों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। कृषि विश्वविद्यालय में पेपर लीक मामले में पुलिस ने एक प्रोफेसर सहित 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार। विश्वविद्यालय प्रबंधन ने 7 अगस्त को आयोजित प्लांट पैथोलॉजी विषय की परीक्षा भी रद्द की। भाजपा वंदे मातरम के प्रति जागरूकता फैलाने और इसके गायन को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान चलाएगी। और प्रदेश में अगले एक सप्ताह तक मानसून के सक्रिय रहने की संभावना। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान एक दो स्थानों पर भारी वर्षा होने की दी चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने पिछले 10 से 12 वर्षों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। सरकार सुधारों के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत का हमेशा साझा भविष्य की भावना में विश्वास रहा है। नई दिल्ली में कल देर शाम वर्ल्ड लीडर्स फोरम को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि यही कारण है कि भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान उसका मार्गदर्शक सिद्धांत एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य रहा। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में घरेलू मांग को पूरा करने के लिए चीनी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। हालांकि इसका उत्पादन अनुमान से कम रहने की संभावना है। सरकार ने चीनी की कीमतों में हाल की बढ़ोतरी को देखते हुए पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतें स्थिर रखने के लिए कई कदम उठाए हैं। मंत्रालय ने कहा है कि चीनी की कीमतों में हाल की बढ़ोतरी को इथेनॉल उत्पादन के लिए चीनी के इस्तेमाल से जोड़ना सही नहीं है। केंद्र सरकार ने कल दिन

0: दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत उद्यमिता पर राष्ट्रीय अभियान के दूसरे चरण का शुभारंभ किया है। ये अभियान 21 नवंबर तक 3 महीने के लिए और चलेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बताया कि इस अभियान से ग्रामीण महिलाओं की उद्यमिता को मजबूती और 6 करोड़ लखपति दीदियां बनाने के लक्ष्य में योगदान मिलेगा। केंद्र सरकार ने आज 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए क्लोरफेनिरामाइन मैलेट और फिनाइल एफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड वाले सभी फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन के निर्माण, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर इन दवाओं पर स्पष्ट चेतावनी देना अनिवार्य किया है कि 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को ये दवाएं नहीं दी जानी चाहिए। ये कदम छोटे बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। केंद्र सरकार ने टेलीविजन चैनलों के लिए विज्ञापन की 12 मिनट की अधिकतम अवधि की सीमा हटाने की अधिसूचना जारी कर दी है। ये फैसला केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम 1994 में संशोधन को राजपत्र में अधिसूचित किए जाने के साथ लागू हो गया है। भारतीय जनता पार्टी वंदे मातरम के प्रति जागरूकता फैलाने और इसके गायन को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान चलाएगी। नई दिल्ली में आज पत्रकारों से बातचीत में भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि निर्णय पार्टी के नव नियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों की पहली बैठक में लिया गया। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में पेपर लीक होने के मामले में पुलिस ने भारतीय एग्रीकल्चर कॉलेज दुर्ग के प्रोफेसर योगेश सोन केसरिया सहित 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बीते 20 अगस्त को बीएससी एग्रीकल्चर द्वितीय वर्ष के कीट विज्ञान विषय की परीक्षा शुरू होने से करीब 2 घंटे पहले पेपर ईमेल पर लीक हो गया था। इसकी सूचना मिलने के बाद विश्वविद्यालय के परीक्षा प्रकोष्ठ प्रभारी डॉक्टर एन आर रंगारे ने तेलीबांधा थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। जांच के दौरान पुलिस ने रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर और कबीरधाम सहित आसपास के जिलों में अलग अलग टीमें भेजकर बारीकी से जांच की। इस दौरान दुर्ग निवासी अनुज मिंज से पूछताछ में महत्वपूर्ण जानकारियां मिली। पुलिस के मुताबिक करीब 36 घंटे की जांच के बाद पेपर लीक के स्रोत और आरोपियों की पहचान कर ली गई। पुलिस के अनुसार इस पूरे मामले का मुख्य आरोपी योगेश सोन केसरिया है, जो वर्ष 2019 से भारतीय एग्रीकल्चर कॉलेज दुर्ग में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत है। पिछले करीब 1 साल से वो अपने कॉलेज की उत्तर पुस्तिकाएं जमा करने और आगामी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र प्राप्त कर उन्हें कॉलेज ले जाने का काम कर रहा था। पुलिस ने बताया कि योगेश सोन केसरिया ने प्रश्न पत्र की सामग्री अपने कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों को 11,000 रुपए में बेच दी। इसी के जरिए परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पुलिस ने आरोपियों के पास से 11,000 रुपए नकद, 6 मोबाइल फोन, वीडियो रिकॉर्डिंग डिवाइस, केबल तार और मोबाइल कनेक्टर बरामद किया है। पुलिस ने बताया कि मामले में संलिप्त 2 अन्य आरोपी अभी फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर पेपर लीक में शामिल अन्य लोगों और उनकी भूमिका के संबंध में भी जानकारी जुटाई जा रही है। इस बीच विश्वविद्यालय प्रबंधन ने बीते 7 अगस्त को आयोजित प्लांट पैथोलॉजी विषय की परीक्षा भी रद्द कर दी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि प्रदेश में परीक्षाओं की शुचिता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता से किसी भी स्तर पर समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि परीक्षा प्रक्रिया को प्रभावित करने या विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने मामले की निष्पक्ष और विस्तृत जांच के निर्देश दिए हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं।
1: छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार।
0: और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। छत्तीसगढ़ से हज के लिए आवेदन करने वाले प्रतीक्षा सूची के 82 आवेदकों के नाम तय हो गए हैं। राज्य हज कमेटी के चेयरमैन मिर्जा एजाज बेग ने बताया कि हज कमेटी ऑफ इंडिया से प्राप्त सूचना के अनुसार प्रतीक्षा सूची में क्रमांक 1 से 82 तक के आवेदकों का चयन हुआ है। चयनित हज यात्रियों को पहली किस्त के रूप में प्रतिहाजी 1,52,300 रुपये 30 अगस्त तक जमा करने होंगे। भारतीय इस्पात प्राधिकरण सेल के निदेशक टी एन नटराजन ने आज भिलाई इस्पात संयंत्र का

दौरा कर प्रमुख उत्पादन इकाइयों के परिचालन प्रदर्शन की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने वायर रॉड मिल और यूनिवर्सल रेल मिल में उत्पादकता सुधार पर विशेष जोर दिया। बीएसपी के निदेशक चित्तरंजन महापात्र ने श्री नटराजन को संयंत्र भ्रमण के दौरान आवश्यक सुरक्षा निर्देशों और सावधानियों से अवगत कराया। बलरामपुर जिले में बीती रात बॉक्साइट ट्रक और पिकअप के बीच हुई भीषण टक्कर में 3 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 7 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। ये हादसा राजपुर कुस्मी

0: भीषण टक्कर में 3 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 7 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। ये हादसा राजपुर कुसमी मार्ग पर सेवारी हाई स्कूल के पास हुआ। पिकअप में चालक सहित 11 मजदूर सवार थे, जो प्रतापपुर से शंकरगढ़ जा रहे थे। दुर्घटना के बाद पुलिस ने घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर रूप से घायल 7 मजदूरों को बेहतर इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। प्रदेश में अगले एक सप्ताह तक मानसून के सक्रिय रहने की संभावना है। आज राजधानी रायपुर सहित कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की खबर है। मौसम विभाग के अनुसार मध्य प्रदेश और उसके आसपास एक निम्न दाब का क्षेत्र बना हुआ है। इसके असर से प्रदेश में अगले एक सप्ताह तक बदली बारिश की संभावना बनी रहेगी। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान उत्तरी और मध्य छत्तीसगढ़ के एक दो स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा होने की चेतावनी दी है। वहीं कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने की आशंका जताई है। इस बीच बारिश से कबीरधाम जिले के पंडरिया क्षेत्र के ग्राम सरैया में एक पुराना बांध टूट गया। इससे सैकड़ों एकड़ फसल के प्रभावित होने की आशंका है। प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रायपुर द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम जिले की चिट्ठी का प्रसारण कल शाम 6:05 से 6:10 तक किया जाएगा। इस कार्यक्रम को छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र रिले करेंगे। इस बार के अंक में दंतेवाड़ा जिले की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी जाएगी। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कल नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा से सौजन्य भेंट की। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य और चिकित्सा सेवाओं के विस्तार तथा केंद्र सरकार के सहयोग से संचालित स्वास्थ्य योजनाओं की प्रगति को लेकर सार्थक चर्चा हुई। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने आज महासमुंद में 31,60,00,000 रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड द्वारा नीट पीजी परीक्षा का आयोजन आगामी 30 अगस्त को किया जाएगा। परीक्षा सुबह 9 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक होगी। और राज्य सरकार ने नगरीय निकायों के लिए करीब 9.5 करोड़ रुपए की एल्डरमैन निधि जारी कर दी है। इस निधि से मनोनीत पार्षदों की अनुशंसा पर विकास कार्य किए जाएंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ल्ड लीडर्स फोरम को संबोधित करते हुए कहा कि भारत ने पिछले 10 से 12 वर्षों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। कृषि विश्वविद्यालय में पेपर लीक मामले में पुलिस ने एक प्रोफेसर सहित 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार। विश्वविद्यालय प्रबंधन ने 7 अगस्त को आयोजित प्लांट पैथोलॉजी विषय की परीक्षा भी रद्द की। भाजपा वंदे मातरम के प्रति जागरूकता फैलाने और इसके गायन को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान चलाएगी। और प्रदेश में अगले एक सप्ताह तक मानसून के सक्रिय रहने की संभावना। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान एक दो स्थानों पर भारी वर्षा होने की दी चेतावनी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा।
2: प्रादेशिक समाचार अभी हम आकाशवाणी रायपुर से रिले कर रहे थे। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय शाम के 7 बजे हैं। लीजिए सुनिए फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम। ईमेल करें गीत सुने, ईमेल करें गीत सुने कार्यक्रम में। आइए सुनते हैं सलमा आगा की आवाज में फिल्म निकाह का गीत। शब्द हैं हसन कमाल के, संगीत है रवि का, पसंद है आप सभी श्रोताओं की। अम्बागढ़ चौकी से हैं रिजवान खान, आयशा सबीहा, अनस और रिहान। जैन मंदिर वाली गली कुरावली से हैं राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन, नौरीन, आसना, मोहम्मद कैफ अंसारी। मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य सोनी, मोहिनी, ऋतिक, बलवीर सिंह। गांव लोहगढ़ ठाकुरावाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत, राजदीप, गुरलाल, अविराज सिंह, गुरनूर और शुभदीप। मडी डब्बाली से राजेंद्र, नारंग, अंजू, मोहित, तानिया। पंढरपुर सिटी से प्रशांत शिंदे, सुनीता, यशराज, ऋषि, कृष्णा घोटके। मैसौल सीतामढ़ी से हैं अकरम हुसैन, प्रिंस इशरत अकरम, वसीम अकरम

रूबीना, आरिज वसीम, नदीम, शमीम, ममता रानी शर्मा, पूनम शर्मा, लसूडिया पाता, जिला राजगढ़, मध्य प्रदेश से गोविंद वैष्णव, दिव्या, सुमन, कोमल, परी, कृतिका, रमेश चंद्र, श्री रामपुर, महाराष्ट्र से नासिर शेख, नाजिया नासिर, साजिद और शाहिद, अकोला से हैं रमेश कटनकर, वैशाली, धनंजय कटनकर, सहारनपुर से सोनाली नारंग, आशा, सुरेश, पथिक, कृषि, भाटापारा से दान सिंह रावत, दानु पद्मिनी रावत, शुभम और सौरभ, कैदीमुड़ा रायगढ़ से पुरुषोत्तम सिंह, उषा, ऋषभ, प्रियंका, पूजा, लीलू और रितु, डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव, डॉली, पूजा, आरती और प्रभा देवी तामुरिया। चलिए सुनते हैं फिल्म निकाह का गीत आप सभी की पसंद पर। स्वर है सलमा काका, शब्द है हसन कमाल के, संगीत है रवि का।

फिल्म निकाह के इस गीत के बाद लीजिए सुनिए, ईमेल करें गीत सुने कार्यक्रम में अगला गीत। पसंद है आप सभी श्रोताओं की, दुर्ग से हैं आरसी कांबड़े, करुणा, मीना, अश्विनी और विपुल कांबड़े, कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल, अजीत कुमार, आयुष और नंदिनी, पैठन से सुरेश यादव, अनीता, आरती, पूजा, प्रसाद और सोनल, ग्राम बगबुड़वा पथरिया छत्तीसगढ़ से हैं नरेन नेताम, कुसुम नेताम, राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति कार्तिक, आर्यन वर्मा, जमानिया गाजीपुर उत्तर प्रदेश से हैं सुरेश जायसवाल और मिला दीपक स्वाति, तेलंगाना निजामाबाद से शेख अल्लाह बख्श, राबिया शेख, शेख रहीम मुन्ना, भूतकछाल लोरमी से दुर्गेश मरकाम, निर्मला दीपक, प्रीतम, धनराज मरकाम, मलौट पंजाब से राज शर्मा, योगेश, मीना निवान, सौरभ, शायना और मंडिया, रोपण पंजाब से हरदेव, मिका, जयतेक, बिरक, बलविंदर और उनके सभी दोस्त, नवागढ़ कटई से हैं नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, खंडवा से दुर्गा प्रसाद सैनी, अनीता, गौरव सैनी, बठेना पाटन से हैं परमेश्वर साहू, राजबत्ती, काजल पूर्वी, हेजल, राजेश साहू, रेशमा साहू, पोड़ी भाटा अकलतरा से दिलीप चंदन, चोवाराम यदु, निखिल चंदन, वसुंधरा और प्रांजल। चलिए सुनते हैं आप सभी की पसंद पर फिल्म मेरे जीवन साथी का ये गीत। स्वर है किशोर कुमार का, लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने, संगीत है आर डी बर्मन का।

श्रोताओं, हम आपको एक बार फिर याद दिला दें, कल सुबह 7:30 पर आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम सेहत की बात डॉक्टर के साथ। विषय होगा हार्निया की पहचान समय पर करें व इलाज करवाएं। इस विषय पर डॉक्टर गुरुविंदर सिंह से बातचीत करेंगी पद्मामणि। प्रस्तुति होगी डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन की। इस कार्यक्रम के प्रायोजक होंगे GI फाउंडेशन और लिवर एंड गैस्ट्रो सेंटर, लिंक रोड, बिलासपुर।

लीजिए सुनिए एक सूचना। बढ़ते साइबर अपराध और उनसे सुरक्षा विषय पर आकाशवाणी बिलासपुर द्वारा एक विशेष फोन इन कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग सोमवार दिनांक 24 अगस्त 2026 को सुबह 11:30 से 12:30 के बीच की जाएगी। इस विषय पर जानकारी देने के लिए स्टूडियो में उपस्थित होंगे नगर के DIG वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री रजनेश सिंह। आप हमें फोन कर सकते हैं, हमारा फोन नंबर है 266592 और बिलासपुर का एसटीडी कोड नंबर है 077752। आप अपनी समस्याएं सीधे DIG सर से पूछ सकते हैं। आपके फोन कॉल्स का हमें रहेगा इंतजार और समय याद रखिएगा, सोमवार सुबह 11:30 से 12:30 के बीच।

ईमेल करेंगे सुने कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अब लीजिए सुनिए आप सभी की पसंद पर कार्यक्रम का अगला गीत। फिल्म का नाम है कन्यादान, स्वर है लता मंगेशकर का, लिखा है हसरत जयपुरी ने, संगीत है शंकर जयकिशन का। पसंद है आप सभी श्रोताओं की। जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी कल्पित गर्वी चौहान, गांव जाखोद राजस्थान से हैं शंभुदयाल खटक, बिमला देवी, अमर जीत, सुंदरलाल, योगेश कुमार, दीपक कुमार, पूजा खटक। बिलासपुर से छनुलाल श्रीवास, अनीता पुष्पा, अंजू योगिता, रजन साहू, हेमंत नामदेव और धर्मदास वाधवानी। अकोला से हैं सुशीला देवी मंदूरकर, सदानंद गौरव मंदूरकर। यवतमाल महाराष्ट्र से हैं राहुल मनवर, सरला, विशाल, चेतन, रोशनी और प्रियांशी। देगलूर जिला नांदेड़ महाराष्ट्र से संतोष भाकरे, सुनैना, सुकन्या, सविता। इंदौर मध्य प्रदेश से हैं नारायण खर्चे, ललिता, गणेश, कार्तिक, परी, खुशी, वंदना, स्वाति और प्रयाग चौधरी। पांठर कवटा से अनिल, उषा, अनुश्री, धनश्री। चलिए सुनते हैं आप सभी की पसंद पर फिल्म कन्यादान का ये गीत।

आइए अब सुनते हैं ईमेल करें गीत सुने कार्यक्रम में अगला गीत। इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद हैं आप सभी श्रोता। साधुल शहर राजस्थान से राम कुमार रेवाड़, चंद्रकला रेवाड़, गंडई पंडरिया से हैं पवन कुमार सेन, प्रभा देवी लक्की विक्की नानो, रविंद्र रौनक सेन, फजिलका पंजाब से हैं भूषण खेरा, विष्णु विशाल, आर बी तिवांशी, शालिनी खेरा, जीवन और उनका पूरा परिवार। मुड़गहन से हैं राम दुलारी, प्रजापति रामशरण, चंद्रेश कुमार चंद्रकला, शशिकांता। जूना बिलासपुर से सुशील देवांगन, अखिलेश, लोकेश, आशीष, रवि, मोनू, सोनू, कान्हा और आदित्य। रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता भूत, निखिल, तन्वी। दाढ़ी नौंद्रा महाराष्ट्र से श्री कृष्ण बाठी, संदीप बाठे, अमूल्य बाठे। कोलगांव से पांडुचंदन, उषा, प्रतीक्षा, प्रथमेश और पांडुरंग कुमार। हरियाणा से हैं अंकित कांगड़ा, मोनी, प्रिंस सीताराम, साहिल। मस्तानपुरा पुणा जंक्शन से हैं अनंता भगत, अरुणा सुलोचना और चेतन भगत। जालंधर से रोशन जहां, नुसरत, मन्नत जहां। ग्राम बाघामुड़ा कोमा खान से प्रज्ञानंद देवांगन, नंदनी प्रकाश, गायत्री, यशवर्धन, यशस्वी। निम्नाबाद जिला जींद हरियाणा से तस्बीर सिंह अरोड़ा, जतेंद्र कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत, करमजीत कौर। ग्राम खोंधला उदयपुर सरगुजा से हैं जीवधन सिंह पैकरा, गुरनी करिश्मा, सोमार साय, कलेश्वर सिंह, सुखराम, हीरामणि पैकरा। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिंपा, कपिल छिंपा, पूजा परिहार। जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी पर्ल, विलिस। लालपुर मारो से कीर्ति कुमार, ध्रुव, संतोषी, निमी, पम्मी, निशांत। ओवरठी पारा भाटापारा से हैं अनीता साहू, वीणा, नेहा और मोनिशा। चलिए सुनते हैं आप सभी की फरमाइश पर किशोर कुमार और साथियों की आवाजों में फिल्म तीन देवियों का ये गीत। मजरू सुल्तानपुरी के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया है एच डी बर्मन ने।

इस गीत के साथ ही ईमेल करें। गीत सुने कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। 7:30 होने वाले हैं। प्रायोजित कार्यक्रम किसानवाणी। अब हम आकाशवाणी रायपुर से

0: किसान वाड़ी सुनैया जम्मो किसान भाई बहनी संगवारी मल्ला लक्ष्मीकांत
1: और नीतू शर्मा के
0: राम
1: राम
0: राम। संगवारी हो बेरा है किसान वाड़ी के प्रायोजक हैं कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।

0: हाँ दीदी, बने बने हाँ, और आजे गांव डहर ले आए हाँ।
1: गांव गए रहे तब बने सुघर सुघर साग भाजी खाए ल मिली सोही।
0: हाँ दीदी, रिकिम रिकिम के साग भाजी त घरे के बारी में लगे रहे थे, और अपन खाए बर लगाथन त रासायनिक दवाई के उपयोगो नहीं करन। भले थोर कुन ही होए और थोर थोर खाए बर मिले,
1: हाँ।
0: फिर गांव ले आता हूँ ना तो शरीर बने पुष्ट लागते दीदी।
1: भाई गांव के बातें अलग है नहीं।
0: हाँ।
1: लक्ष्मीकांत साग भाजी फल फलहारी हा पुष्टि ले भरपूर रहते, पोषक तत्व तो बने रही थे उमा।
0: हाँ दीदी, और तेकरे बार कमजोरी होए ले बीमारी होए ले डॉक्टर मन तीर जब जाथन ना तो दवाई तो लिखबे करते, फिर फल फलहारी खाए के घलो सलाह देते।
1: हाँ।
0: अनार चुकंदर अंजीर ऐसने कतकोन फल ला कतकोन जिनिस ला खाए के सलाह देते।
1: काबर की में जन है पोषक तत्व तो बहुत अच्छा रहते है नहीं, जन हमारे शरीर पर बहुत ही जरूरी है। फिर लक्ष्मीकांत शरीर में पोषक तत्व के कमी के कतकोन बीमारी होए के संभावना रहते, ओकरे खातिर खान पान ठीक रखे के सलाह मिलते भाई कि विटामिन प्रोटीन आयरन कैल्शियम ये सब शरीर पर बड़ महत्ता के आए।
0: सिर्तोन बात आए दीदी, और घर में सब मन के बने बने रहते ना तब सब बने लागते, काम भूत मन लागते, और कोनो बीमार है ना तब मन हाँ वही डहर लगे रहते।
1: हाँ ये हमारे शरीर के गोठ हो इस लक्ष्मीकांत। वैसने जब हम फसल लगाथन ना खेत में तो हमारे मन में रहते कि खेत में बढ़िया फसल हो, पौधा हरा भरा रहे और ज्यादा ले ज्यादा उत्पादन मिले हमला, और ये सब खातिर हम बीज पानी गोबर खाद ये सब के व्यवस्था करथन। फिर कई बेर सब कुछ सही होए के बाद घलो पौधा के बढ़वार कमती दिखते, जेन सूक्ष्म पोषक तत्व के कमी के सेती होते।
0: पौधा ला बाढ़े बर कई किस्म के पोषक तत्व की जरूरत होते दीदी। कुछ पोषक तत्व पौधा ला ज्यादा मात्रा में चाहिए, जैसे नत्रजन स्फूर्त पोटास है ना, और कुछ पोषक तत्व जो है वो बहुत ही कम मात्रा में चाहिए। फिर एक महत्ता ये है कि पौधा मन बर सूक्ष्म पोषक तत्व जो हवे ना आयरन मैग्नीज बोरान क्लोरीन जिंक ऐसने कतकोन जिनिस हमारे विशेषज्ञ हमला बताते हैं कि भाई पोषक तत्व के पौधा मन में जरूरत रहते कही के, तो एमन के जो जिनिस के हम नाम लेते रहे ना एमन के पौधा पर बड़ महत्ता हवे।
1: गोट करन जिंक के त एखर ले पौधा के बढ़वार बर एखर होना बहुत जरूरी होते। पौधा मा पीलापन ये सब समस्या जिंक के कमी ले हो सकते।
0: और इसने दीदी विशेषज्ञ बताते हैं कि फूल लगे मा बोरान के बने महत्ता है, योगदान है, खासकर तिलहन दलहन सब्जी और फलदार फसल बर पौधा ला बोरान के जरूरत होते इसे बताते हैं विशेषज्ञ मन। वैसने ना दीदी विशेषज्ञ मन यहू बताते कि आयरन मैग्नीज मॉलिब्लेडनम ये सब घलो जरूरी है।
1: आयरन पौधा ला हरियर राखते, मैग्नीज के कमी ले पौधा मा धब्बा दिखते, मॉलिब्लेडनम मात्रा मा बहुत कम चाहिए। फिर दलहनी फसल मन बर खास महत्व राखते, ये नत्रजन के उपयोग मा मदद करते। मूंग उड़द चना अरहर ये सब फसल मा एखर महत्व समझे जा सकते।
0: अब माटी मा सूक्ष्म पोषक तत्व के कमी काबर होते जानकार मन एकर कई कारण बताते। जैसे खेत मा लगातार एक फसल लेते हन त एक फसल खेती करत हन त माटी में जैविक पदार्थ कमी माटी में अम्लता क्षारीता बदलाव हो जाते है ना, कोनो पोषक तत्व के असंतुलन
1: हाँ,
0: एक
1: हाँ।
0: कई कारण हो सकते। और एकर एक कारण सिर्फ खाद डालना ही पर्याप्त नहीं है दीदी, माटी ला समझना घलो जरूरी है। और एकर सबले बढ़िया तरीका है समय समय में हम माटी के जांच करा सकथन।
1: माटी जांच ले पता चल सकते कि खेत में कौन पोषक तत्व के कमी है और कौन से पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में देवे। ये हिसाब ले खाद और पोषक तत्व के उपयोग करबो तक खेती के लागत कम करे में मदद मिल सकते और फसल के उपज घलो बेहतर हो सकते।
0: और संगवारी हो हमन देखथन कि पौधा कमजोर होते तो तुरंत कोई भी खाद दवाई डाल देथन, फेरे तरीका हमेशा सही नहीं होए। पौधा के लक्षण देखन माटी के जांच करावन जरूरत के हिसाब ले विशेषज्ञ के सलाह लेवन और ओकर हिसाब ले खाद दवाई पोषक तत्व जोन भी जिनिस की जरूरत है हमला ओकर उपयोग करन।
1: और एक बात और संगवारी हो सूक्ष्म पोषक तत्व के ये मतलब नहीं कि जतके ज्यादा डारवे फसल वतके ज्यादा होई, ये बहुत कम मात्रा में चाहिए। कमी होए त सही मात्रा में उपयोग फायदेमंद है, फिर ज्यादा मात्रा पौधा पर नुकसानदायक घलो हो सकते।
0: और एक कारण कृषि विभाग कृषि वैज्ञानिक कृषि अधिकारी और विशेषज्ञ मन ले सलाह हम ले लेवन त एकर उपयोग के हम तरीका उपयोग के मात्रा पर हमला सुघर अनुशंसा हमला बढ़िया अनुशंसा मिली। एकरे कारण संगवारी हो माटी के सेहत बने रही त फसल बने होही उपज बने होही और माटी में जो जरूरी पोषक तत्व के जो संतुलन है वहू रही।
1: जैविक खाद के उपयोग होही फसल चक्र अपनाए जाही और माटी जांच के आधार में खाद पोषक तत्व दे जाए तो हमार खेती और मजबूत हो ही। संगवारी हो
0: हमला बेरा बेरा में हमार कृषि विशेषज्ञ मन ले सुघर सलाह मिलत रही थे और जो हमार खेती किसानी में बड़ लाभ के होते हमार काम के होते। और इसने आज की सलाह क्रम में धान में लगैया रोग

0: ओकर निदान। ए संबंध में हमला सुघर विस्तार जानकारी देवत हैं दीपमाला लकड़ा जी मन। आप मन विषय वस्तु विशेषज्ञ हैं पौध रोग विभाग के कृषि विज्ञान केंद्र भाटापारा में। एक तीर हम नीतू दीदी गोट बात करते हैं तो आवा सुनथन सुघर जानकारी ल।
1: संगवारियों हो, हमर राज मा धान के खेती और उत्पादन दोनों बढ़ होते। किसान के प्रयास रथे हवा पानी माटी ला सुरक्षित राखत हुए कमती लागत मा धान के उत्पादन ज्यादा हुआ। फिर कभू कभू हम देखथन कि धान के उत्पादन वतका नहीं हुआ जतका हमर संगवारी मन ह सोचे रही थे। एखर कई ठन कारण होते संगवारी हो, कभू कभू देखथन कि धान मा कई ठन बीमारी लाग जाते तेखर पाए के भी धान के उत्पादन वतका नहीं हुआ जतका होना चाहिए। ता यही बात ला ध्यान में राखत हुए आज हमन हा जानकारी लेथन धान मा होवैया बीमारी और उखर निदान। ये विषय मा जानकारी दे बर है हमर भी दीपमाला जी, ये मन है विषय वस्तु विशेषज्ञ पौध रोग कृषि विज्ञान केंद्र भाटा पारा ले। राम राम दीपमाला मैडम जी।
2: राम राम मैडम।
1: हमार संगवारी मन ला सबले पहली ये बताते हो कि धान के फसल मा कौन कौन से बीमारी लगते हैं।
2: छत्तीसगढ़ को भारत का धान का कटोरा कहा जाता है। राज्य में कुल कृषि रकबे के बड़े हिस्से में धान की खेती होती है जहाँ लगभग 20,000 से ज्यादा किस्में उगाई जाती। धान की फसल में विभिन्न प्रकार के रोग लगते हैं जो कि धान की उपज को औसतन 25 से 80% तक नुकसान पहुँचा। और ये जो नुकसान है ये रोग के प्रकार, उसके प्रकोप की अवस्था और मौसम पर निर्भर कर। हमारे इस छत्तीसगढ़ में धान में झुलसा रोग, जिसको हम ब्लास्ट भी कहते हैं, जीवाणु जनित झुलसा रोग को बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट कहा जाता है, पंच विगलन रोग, पूरा धब्बा रोग, ब्राउन स्पॉट, ये धान में झुलसा रोग जिसको शीथ ब्लाइट कहा जाता है, ये मुख्य रूप से हमारे फसलों में दिखाई देती है और धान की फसल को नुकसान पहुंचा।
1: ये जो है बीमारी आप मन हाँ बतायो, जिन जिन बीमारी हमारे धान के खेती में लागते, तो ये बताते हो कि ये सब बीमारी के लक्षण का है और एखर निदान का है।
2: सबसे पहले अगर हम बात करते हैं झुलसा रोग को ब्लास्ट भी कहा जाता है, इसको जो लक्षण है वो पत्तियों पर इस रोग के लक्षण प्रारंभिक धब्बे, छोटे छोटे धब्बों के रूप में दिखाई देता है, जिसका जो आकार होता है ये नाव के आकार या फिर आंख के आकार के समान ये दिखाई देता है
1: जी।
2: ये जो धब्बे होते हैं बीच में हल्के भूरे रंग के, जब तने की अवस्था आती है तो इसका प्रकोप उस समय भी देखा जा सकता है। तने की गठानों पर भी इसका आक्रमण होता है जिससे वे काली हो जाती है और पौधे इन ग्रसित गठानों से टूट जाते हैं
1: जी।
2: रोग के प्रकोप से धान की बालियों पर सड़न पैदा हो जाती है तथा उपज प्रभावित होता है, इसकी वजह से बालियां भी टूट के गिर जाती है। अगर हम छत्तीसगढ़ी भाषा में अगर बोला जाए तो किसान भाई बोलते हैं हमारे धान में लकवा लग गए हो सकते, मतलब जो बाली होती है, बाली की जो गर्दन होती है वो टूट के झुक जाती है। इसके प्रबंधन के लिए सबसे पहले तो हमें बीज उपचार करना बहुत अधिक जरूरी, तो इसके बीज उपचार के लिए ट्राईसाइक्लाजोल नामक फफूंद नाशक होता है जिसका उपयोग करके हम बीज उपचार कर सकते हैं। अगर खड़ी फसल में इसका छिड़काव करना है तो ट्राइफ्लोक्सिस्ट्रोबिन 25% प्लस टैबुकोनाजोल 50% WG, ये 1 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से इसका छिड़काव करना है। इसका जो छिड़काव है वो 12 से 15 दिन के अंतराल में करना चाहिए
1: जी जी।
2: दूसरा जो बीमारी होता है वो जीवाणु जनित झुलसा रोग होता है जिसको बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट भी बोलते हैं। इस रोग के प्रारंभिक लक्षण पत्तियों पर रुपाई या बुआई के 20 से 25 दिन के अंदर में दिखाई देता है। इसमें सबसे पहले पत्ती का किनारे वाला जो भाग होता है वो हल्का पनीला सा हो जाता है या फिर मटमैला हरापन दिखाई देने लगता है। फिर ये धीरे धीरे पत्तियों की मुख्य नस की ओर बढ़ते चले जाते हैं जिसकी वजह से जो हमारे फसल की जो पत्तियां हैं वो कमजोर हो जाती हैं और इनमें कंचे जो बनते हैं वो बहुत कम बनते हैं। दाने भी इसमें पूरी तरीके से अच्छे से नहीं भर पाता है जिसकी वजह से पैदावार कम हो जाती है
1: जी।
2: इसके प्रबंधन के लिए संतुलित उर्वरक का उपयोग करना है हमें। नत्रजन युक्त उर्वरक की जो मात्रा है वो अधिक नहीं देनी है और साथ में पोटाश जो हम देते हैं वो 25 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से हमको

0: पोटाश का उपयोग करना। इसके अलावा रोग होने की दशा में खेत में अनावश्यक पानी बाहर निकाल देना है और कोई भी रासायनिक उपचार इस बीमारी के लिए प्रभावकारी नहीं, हम इसमें सिर्फ पोटाश का उपयोग ही कर सकते हैं। अगली बीमारी होती है शीत रॉट। रोग के जो लक्षण है वो धान की गभोट वाली अवस्था में दिखाई देता है। गभोट के निचले हिस्से पर हल्के भूरे रंग के धब्बे बनते हैं जिनका कोई विशेष आकार नहीं होता, और ये जो धब्बे होते हैं वो एक भूरे रंग की परिधि से घिरे होते हैं
1: जी।
0: इस रोग की वजह से बाली गभोट से बाहर नहीं आ पाती, बाली का कुछ भाग ही बाहर आ पाता है जिसमें दाने अच्छे से भरे ही नहीं होते हैं, जिसकी वजह से जो बालियां हैं वो पोचा हो जाता है, जैसे छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज में बोलते हैं ना, पोचा हो गया या पतरा हो गया, इस तरीके का हो जाता है जिससे उत्पादन हमारा कम हो जाता है। इस रोग के नियंत्रण के लिए धान के बीज को बुआई से पूर्व 17% नमक के घोल में डुबाने से हल्के तथा खराब जो बीज हैं वो ऊपर आ जाते हैं और स्वस्थ बीज जो है वो नीचे बैठ जाते हैं
1: जी।
0: फिर जो चयनित बीज है, चयनित बीज का बीज उपचार कवकनाशी जैसे कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब 2 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से करने पर इस रोग का प्रसार कम करने में मदद मिलती है। अगर गभोट अवस्था में हमें कोई फंगिसाइड का अगर स्प्रे करना है, फफूंदनाशक का स्प्रे करना है, तो हम हेक्साकोनाजोल 1 ml प्रति लीटर का छिड़काव कर सकते हैं। साथ ही साथ रोग सहनशील किस्म जैसे दंतेश्वरी का चयन भी इसमें किया जा सकता है। अगला जो बीमारी है वो है भूरा धब्बा रोग, जिसको हम ब्राउन स्पॉट भी कहते हैं। इस रोग के कारण पत्तियों पर भूरे रंग के धब्बे बन जाते हैं जो गोल या अंडाकार होते हैं और पत्तियों की सतह पर समान रूप से फैल जाते हैं। ये धब्बे प्रायः एक पीले रंग के वृत्त से घिरे रहते हैं जो इस रोग की खास पहचान है, और ये दानों के ऊपर भी दिखाई देता है। दानों पे भी ये हल्के भूरे या काले रंग के धब्बे बनाते हैं। इसके नियंत्रण के लिए जैसा मैंने पहले बताया कि धान की बुआई से पहले 17% नमक के घोल में डुबाना है, और जो हल्के बीज होते हैं जो जिसमें दाने नहीं भरे हुए हैं, जो पोचा है बदरा है, वो सारे बीजे पानी के ऊपर में आ जाएंगे और जो स्वस्थ बीज है वो हमारा नीचे आ जाएगा। या फिर कार्बेंडाजिम या मैनकोजेब जो हमारा फंगिसाइड है, 2 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से हम सब बीज उपचार कर सकते हैं। या फिर अन्य जो फफूंदनाशक है जैसे प्रोपिकोनाजोल, इस दवा का उपयोग भी हम कर सकते हैं खड़ी फसल में 1 ml प्रति लीटर पानी की दर से हम प्रोपिकोनाजोल का छिड़काव कर सकते हैं। अगला जो हमारा है वो है शीत ब्लाइट। यह रोग धान में कण से निकलने की अवस्था से गभोट की अवस्था तक देखा जा सकता है। रोग प्रकोपित खेत में पानी की सतह से आरंभ होकर यह जो धान की ऊपरी अवस्था है, कण से निकलते हैं, ऊपर की ओर फैलता है और पौधा रोगग्रस्त होकर झुलस जाता है
1: जी।
0: ये जो रोग है ये भूरे बदरंगे धब्बे से दिखाई पड़ते हैं। प्रारंभ में ये धब्बे का रंग जो रहता है वो हरा मटमैला या ताम्र रंग का होता है, बाद में ये मटमैला सा हो जाता है
1: जी।
0: इसके निदान के लिए रोग फसल अवशेषों को जलाकर नष्ट कर देना है, पौधों की रुपाई बहुत पास पास में नहीं करना चाहिए, और खड़ी फसल में हम हेक्साकोनाजोल कवकनाशी है वो 1 ml प्रति लीटर की दर से हम इसका स्प्रे कर सकते हैं, या थायोफ्यूजामाइड का छिड़काव हम कर सकते हैं 10 से 15 दिन के अंतराल
1: जी। प्रदीप माला जी, आज आप मन हमार संगवारी मल्ला धान मा कौन कौन से रोग लगते और खर निदान कौन रकम ले करे जा सके, ये विषय मा बहुत ही सुघर जानकारी देव, एक बार बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद
1: संगवारी हो, अभी सुनत रहे हैं हमन जानकारी धान में लगैया रोग औखर निदान के विषय में। विशेषज्ञ रही ने दीपमाला लकड़ा, विषय वस्तु विशेषज्ञ, पौध रोग विभाग, कृषि विज्ञान केंद्र भाटापारा दे।

0: हम है भारत के किसान हम
1: किसान हम
2: किसान हम। संगवारी हो, आप मन खातिर एक ठन सूचना है। अवैया मंगलवार 25 अगस्त 2026 के प्रसारित होवैया हेलो किसानवाड़ी कार्यक्रम के विषय होही अगेती गोभी वर्गीय सब्जी के खेती ज्यादा आमदनी के आधार। अब ये विषय में आपन के समस्या और जिज्ञासा के समाधान खातिर हमर स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञ हो ही डॉक्टर गुंजन झा। आप मन वरिष्ठ वैज्ञानिक और प्रभारी हवें कृषि विज्ञान केंद्र राजनांदगांव में। आप मन अपन जिज्ञासा और शंका के समाधान पाए खातिर हमला फोन कर सकते हो संगवारी हो। हमार फोन नंबर है 400-3482, दूसरैया टेलीफोन नंबर है 400-3483 और तीसरैया टेलीफोन नंबर है 400-3484। संगवारी हो, रायपुर के एसटीडी कोड हावय 0771। कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग 25 अगस्त 2026 के बिहनिया 11:30 से 12:00 तक करे जाही और ए कार्यक्रम के प्रसारण मंगलवार के ही संझा 7:30 में करे जाही। हमला आप मन के फोन के अगोरा रही, सूचना ही है सिरावत है।
3: लक्ष्मीकांत।
2: हाँ दीदी।
3: भाई हमार संगवारी मन ह बड़ ध्यान लगा के सब क्रम ला सुनते, फिर एक ठन क्रम है ना जेन रोज प्रसारित होते वो है कृषक प्रश्न मंच। एकर अगोरा विशेष रूप से हमार संगवारी मन करते भाई काबर की उमन ह जिज्ञासा रहते उमन ला की भाई हमन ह कौन कौन से प्रश्न ला पूछे रहे ओखर सही सही उत्तर का है तो हमार कौन कौन संगवारी मन भेजे है इसे। तो चल शुरू करथन कृषक प्रश्न मंच। संगवारी मन ला सबले पहली बता देथन आज के प्रश्न। संगवारी हो लिख लो आज के प्रश्न। प्रश्न है छत्तीसगढ़ में धान में लगैया प्रमुख रोग कौन कौन से है। एक पैत और प्रश्न सुनना संगवारी हो, छत्तीसगढ़ में धान में लगैया प्रमुख रोग कौन कौन से है। ये प्रश्न के सही सही उत्तर आपन हम मेल के माध्यम ले संगवारी हो एक हफ्ता के भीतर हमर तीर पठो दू, माने शनिचर तक आपके जवाब हमर तीर आ जाए ताकि आपके नाम हमन हा शामिल कर सकन। जवाब भेजे बर संगवारी हो हमार पता है राय आज के प्रश्न 23@gmail.com। अब बता दे थन संगवारी हो पाछू हफ्ता के प्रश्न ओखर सही सही जवाब। प्रश्न है संगवारी हो जैविक औ प्राकृतिक खेती में मही के का उपयोग है। एकर सही सही उत्तर है जैविक कीटनाशी के रूप में मही के उपयोग करे जाते। लक्ष्मीकांत ये प्रश्न के सही सही उत्तर लिख के कौन कौन संगवारी मन हा हमर तीर पठो है एला बता दे।
2: मधनपुर कवर्धा ले श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू, राहुल साहू हैं। ग्राम बंगला मटिया बालोद ले शिव कुमार अंगारे, अंजनी, पीहू, लीना, त्र्यंबिका अंगारे हैं। गर्रापार बांधा बाजार ले हैं गंगाराम साहू, सिलोचना साहू, मानवेंद्र और राकेश साहू। नागर कोहरा जिला राजनांदगांव झग्गाराम साहू, बबलू, जामुन देवी, राजू, लल्ला, पूजा, प्रांजल, समीक्षा, बेबी आराध्या साहू। गाँव तेंदुभाठा मगरलोड जिला धमतरी ले हैं उमेन कुमार निषाद, महेश्वरी, देविका, पोषण, नूतन, सुरेंद्र, यशस्वी, भास्कर, किशन, भूपेश, दिव्यांश और शिव निषाद मन। कांकेर संबलपुर ले हैं आगुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव। लोरमी ग्राम चचेड़ी ले हैं कमलकांत मरावी, प्रमीला मरावी, नेहा, पुष्पराज, ऋषभ मरावी। धमधा ग्राम सुखरी कला ले हैं अमित जंगेल, शकुन जंगेल, आरुषी, अंशिका, आदित्य और अंजलि जंगेल मन। संगवारी हो सही जवाब खातिर गाड़ा गाड़ा बधाई।
3: लक्ष्मीकांत।
2: हाँ दीदी।
3: भाई संगवारी मन हा अगोरा करा थे सुघर सुघर गीत कब सुनाबो कहके।
2: हाँ।
3: तब भाई उखर अगोरा ला खत्म करथन और सुनाथन हमार संगवारी मन ला ये सुघर गीत राधिका साहू और रमेश यदु के स्वर्मा।

0: संगवारी हो, सुघर गीत ला सुनत रहें राधिका साहू और रमेश यदुमन ले। दीदी, हमारे छत्तीसगढ़ में फसल विविधीकरण के परंपरा रही से।
1: हाँ।
0: तैहा के समय में हमारे पुरखा मन किसिम किसिम के अनाज फसल लेवाए, अपन बारी में बकरी में जमो किसिम के जिनिस उगावे।
1: हाँ।
0: माने कहन तो कोनो भी जिनिस बर कोनो पर निर्भर रहे के जरूरत नहीं पड़े। चाहे मिर्चा के गोट करन, किसिम किसिम के दाल, उरीद, मूंग, चना, जमो थोर थोर खेती करी डारे, यहाँ तक गन्ना उगा के गुड़ भी निकाल डारे।
1: फिर तो उनके हैं लक्ष्मीकांत। छत्तीसगढ़ के जलवायु बहुत से फसल बर अनुकूल है, जैसे रागी, कोदो, कुटकी, मक्का, गेहूं, बाजरा, धान, राहेर, उरीद, तिवरा, चना, कतकोन अनाज और दलहन तिलहन फसल बर बहुत अच्छा माटी और जलवायु हमार राज में है।
0: फिर तो कहा था दीदी, फिर देख आज किसान भाई मन विविधीकरण भुला गए हैं, फसल चक्रीकरण भुला गए हैं, धान के उत्पादन ज्यादा करत हैं, है ना। अब एकर नुकसान हमला लंबा समय के बाद दिखे लगते। धान में भी हमारे तीर बहुत से स्थानीय किस्म उपलब्ध है, फिर हम एक एक किस्म के बहुत

0: इतना उत्पादन ज्यादा मिली सोच के, तो
1: हाँ
0: एक उल्टा नुकसान हो जाते हमला।
1: फिर एक ही किस्म की लगातार बुआई के सेती कीरा बीमारी के प्रकोप भी बढ़ा थे, जो खेती लागत ला बढ़ा देते और उपज के कमी के रूप में देखे बर मिलते।
0: अब एक ही फसल लगातार लेथन तब माटी ला अपन आप ला सुधारे के भी मौका नहीं मिले, तब माटी के स्वास्थ्य घलो बिगड़ा थे।
1: हाँ, अब फिर से हमला किसान संगवारी तक फसल विविधीकरण के लाभ और महत्ता ला पहुंचाना है, उखर आय ला बढ़ावत माटी के उर्वरता ला भी बनाए रखना है।
0: और जैविक प्राकृतिक खेती ला अपनावा, रासायनिक उर्वरक ऊपर निर्भरता भी हमला कम करना है। और दीदी फसल विविधीकरण माटी के स्वास्थ्य पर तो लाभ के है ही है, फिर जलवायु परिवर्तन ला भी प्रभाव ला ओकर जोन है कम करते।
1: विविध फसल ले किसान मन के आय बाढ़ते, उनला आर्थिक स्थिरता तको मिलते।
0: तो फसल विविधीकरण पारिस्थितिकी संतुलन में भी मदद करते, तो हमला फसल जोन चक्रण है वह फसल विविधीकरण है ला अपनाना है, और हमारे माटी के स्वास्थ्य ला हमारे उपज ला सुघर।

0: आय बढ़ते उल्ला आर्थिक स्थिरता तको मिलते।
1: तो फसल विविधीकरण पारिस्थितिकी संतुलन में भी मदद करते। हमला फसल जो चक्रण है वह फसल विविधीकरण है अपनाना है और हमारे माटी के स्वास्थ्य ला हमारे उपज ला सुघर बनाना है। अब संगवारी मन ला बता देते हैं मौसम विज्ञान केंद्र रायपुर ले मिले जानकारी। छत्तीसगढ़ के कई हिस्सा में हल्का ले मध्यम बारिश हो ही ऐसी संभावना मौसम विभाग बता है। और अवैया अभी तो एक हफ्ता तक बताते हैं कि उत्तर और मध्य छत्तीसगढ़ में एक दो जगह में मध्यम ले भारी बारिश होने की संभावना है। की ये रहीस किसानवाड़ी प्रायोजक रहीन कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
0: लक्ष्मीकांत घड़ी की इशारा हो गए भाई और जाए के बेरा हो गए। अब संगवारी मतलब बता दे थन काली के कार्यक्रम।
1: संगवारी हो जाए के बेरा हुआ थे काली चौपाल। आज की बात में गोठ हो ही किसान संगवारी मन बर सरकारी योजना ओकर लाभ। आज के सलाम मिल ही खेती किसानी जुड़े सुग्घर सुग्घर जानकारी। गीत संगीत के मधुरता गाँव गली और चौपाल तको में बगर ही संगवारी हो त देव विदा। कार्यक्रम सुनैया जम्मो संगवारी मन ला लक्ष्मीकांत
0: और नीतू शर्मा के
1: राम राम, राम।

0: प्रायोजित कार्यक्रम किसानवाणी अभी हम आकाशवाणी रायपुर से रिले कर रहे थे। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय रात के 8 बजे हैं। पेश है सुगम संगीत। सुगम संगीत कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले आइए पहले सुनते हैं साइबर जागृति अभियान प्रोमो।
1: नमस्कार, साइबर जागृति अभियान में सुनिए बिलासपुर पुलिस की चेतना। साथियों, विज्ञान के बढ़ते चरण ने मानव जीवन को बहुत ही आसान बना दिया है। इसमें संचार के साधनों ने तो सारी दुनिया को आश्चर्य में डाल दिया है, किंतु साइबर अपराधी इसे भी दूषित कर रहे हैं। नई तकनीकी का लाभ उठाते हुए ये साइबर अपराधी घर के किसी सदस्य की आवाज में किसी अन्य फोन कॉल से झूठा कॉल कर अपने आप को सड़क दुर्घटना, बीमारी या किसी भी प्रकार की एकाएक आपत्ति आने की सूचना देकर घर परिवार के सदस्यों पर मानसिक दबाव डालकर उन्हें विचलित एवं भयाक्रांत कर बड़ी रकम बड़ी आसानी से फोन पे या किसी भी माध्यम से ठग कर ले जाते हैं। अतः इस प्रकार के अनजान नंबर से कॉल आने पर बिना धैर्य खोए पूछपरख या छानबीन जरूर कर लेवे। ऐसे कॉल साइबर अपराधियों के भी हो सकते हैं, सतर्क रहें। जनहित में सदैव बिलासपुर पुलिस, छत्तीसगढ़। धन्यवाद।
0: सुगम संगीत कार्यक्रम में आज की कलाकार हैं नूरजहां।

0: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
1: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
0: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
1: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
0: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
1: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
2: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए। विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए। ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप।

आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।

मिलकर साथ में सबको, हर किसी को साथ लाना है, सभी अपराधों को खत्म करने को, बस हमें चेतना जगाना है। महिलाओं पर अत्याचार और बाल मजदूरी, ये सब बस बन जाए इतिहास। नशे की लत और सड़क दुर्घटनाओं से ना हो अब किसी जीवन का नाश।

इस समय आप सुन रहे हैं हमारे केंद्र आकाशवाणी बिलासपुर से सुगम संगीत कार्यक्रम। आज के कलाकार हैं नूरजहां। आइए सुनते हैं अगली पेशकश।

ये थी सुगम संगीत कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। इसमें आज की कलाकार थी नूरजहां। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम रजनीकंधा। रजनीगंधा कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को रत्ना का नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं बंधन शीर्षक पर कुछ फिल्मी गीत। श्रोताओं, बंधन हमें एहसास कराता है कैद होने का, और हम में से कोई भी कैद नहीं होना चाहता। लेकिन जब बात रिश्तों में बंधने की हो, या बंधन हमें प्रेम, मित्रता और परिवार से बांध कर और जोड़ कर रखे, तो हम सभी खुशी खुशी इस बंधन को स्वीकार कर लेते हैं।

श्रोताओं, राखी की एक नाजुक सी डोर भाई बहन के रिश्ते को मजबूती से बांध कर रखती है, क्योंकि यह डोर है प्यार, विश्वास और भावनाओं की। इसी तरह प्यार में बंधी कोई भी डोर बहुत मजबूत होती है किसी भी रिश्ते को बांधने के लिए। कई बार तो यह प्रेम बंधन जन्म जन्म का बंधन लगने लगता है।

श्रोताओं, किसी भी रिश्ते की नींव जब प्यार और विश्वास पर टिकी होती है तो उस रिश्ते में एक दूसरे के लिए सम्मान और समर्पण भी जुड़ जाते हैं और वह रिश्ता बस निभता हुआ चला जाता है।

श्रोताओं, रिश्तों की डोर से, प्रेम की डोर से ही तो बंधा है हम में से हर कोई, जिसमें आशीर्वाद है, दुआ है, एक दूसरे की खुशी के लिए त्याग और समर्पण है और एक दूसरे की ख्वाहिशों को पूरी करने की चाहत भी छिपी हुई है, क्योंकि प्यार का बंधन हमें एक दूसरे के लिए जीना भी सिखाता है।

0: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती,
1: देश की सुरीली धड़कन
2: विविध भारती,
0: भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता,
1: कुछ बातें कुछ गीत, कायम रहे छाया गीत,
0: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट,
1: वीर सैनिकों की जय माला
0: और हंसी का हवा महल, 22 को की बातें यादों के उजाले,
1: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग,
3: सखी सहेली,
1: बॉम्बे टॉकीज और
4: सेल्यूलॉइड के सितारे,
1: हम क्या कहें आपको याद सब है जरा जरा,
5: मुझे याद सब है जरा जरा,
0: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर
1: DTH और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन,
0: मन का सुकून दिल की आरती,
1: सुरीली संदली
6: भारती।
7: श्रोताओं, हम आपको याद दिला दें, कल सुबह 7:30 पर आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम सेहत की बात डॉक्टर के साथ। विषय होगा हार्निया की पहचान समय पर करें व इलाज करवाएं। इस विषय पर डॉक्टर गुरुविंदर सिंह से बातचीत करेंगी पद्मा मणि और प्रस्तुति होगी डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन की। बढ़ते साइबर अपराध और उनसे सुरक्षा विषय पर आकाशवाणी बिलासपुर द्वारा एक विशेष फोन इन कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी सोमवार दिनांक 24 अगस्त 2026 को सुबह 11:30 से 12:30 के बीच। इस विषय पर जानकारी देने के लिए स्टूडियो में उपस्थित होंगे नगर के DIG वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री रजनेश सिंह। श्रोता हमें फोन कर सकते हैं, हमारे फोन नंबर हैं 2665592 और बिलासपुर का स्टडी कोड नंबर है 077752। आप अपनी समस्याएं इस फोन नंबर पर सीधे DIG सर से पूछ सकते हैं। आपके फोन कॉल्स का हमें इंतजार रहेगा और समय याद रखिएगा सोमवार सुबह 11:30 से 12:30 के बीच। रजनीगंधा कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। आज हम लेकर आए हैं बंधन शीर्षक पर कुछ बातें और फिल्मी गीतों को। श्रोताओं, प्यार के बंधन, रिश्तों के बंधन हम खुशी खुशी स्वीकार कर लेते हैं और इसमें हमेशा बंधे रहना चाहते हैं, क्योंकि ये बंधन ही हमें अनुशासन भी सिखाते हैं और हमें सही राह भी दिखाते हैं। इन बंधनों के कारण हम रिश्तों में बंधकर भी स्वतंत्र महसूस करते हैं। हर रिश्ते को एक पहचान, एक परिभाषा, एक अर्थ देते हैं ये रिश्तों के बंधन, जो बहुत ही जरूरी होते हैं।

और इस गीत के साथ ही आज के रजनीगंधा कार्यक्रम से अब रत्ना को दीजिए अनुमति। आज हम लेकर आए थे बंधन शीर्षक पर कुछ फिल्मी गीत। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। इस समय रात के 8:45 होने को हैं। समाचार कुछ ही देर में हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के नए पदाधिकारियों से बातचीत की, संगठन को मजबूत करने और जनता से गहरे जुड़ाव पर बल दिया। गृहमंत्री अमित शाह के पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी में वरिष्ठ गोरखा नेताओं के साथ उच्च स्तरीय बैठक के बाद केंद्र ने गोरखा मुद्दे से समाधान के लिए उच्च स्तरीय समिति की घोषणा की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत बांग्लादेश के संबंध आपसी हितों पर आधारित होने चाहिए। भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में जनसेवा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को उजागर करने के लिए एक महीने तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान का आयोजन करेगी। ब्रिक्स युवा मंत्रियों ने शिक्षा, कौशल, उद्यमिता, नवाचार और सामाजिक विकास में युवाओं के लिए अवसरों का विस्तार करने के लिए संयुक्त वक्तव्य अपनाया। ओडिशा में बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने दबाव से तेज वर्षा की संभावना, बाढ़ प्रभावित जिलों में स्थिति गंभीर। और BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में भारतीय महिला डबल्स जोड़ी त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद ने ऐतिहासिक कांस्य पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शाम नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ वार्ता की। पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन के अलावा बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और महासचिव सहित अन्य लोग भी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि संगठनात्मक बैठकें नए विचारों और दृष्टिकोण पर आधारित होती हैं। इनका उद्देश्य पार्टी को मजबूत करना और लोगों के साथ इसके जुड़ाव को बढ़ाना है। इससे पहले दिन में पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने भी पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ बैठक की। श्री नवीन ने कहा कि भाजपा

0: टीम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प को साकार करने के लिए पार्टी के आधार को और व्यापक बनाने के लिए पूर्ण समर्पण और निष्ठा के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री नवीन ने कहा कि पार्टी भाजपा कार्यकर्ताओं के माध्यम से एक राष्ट्रव्यापी अभियान चलाएगी। इसमें वंदे मातरम के इतिहास, राष्ट्रीय महत्व और गौरवशाली विरासत को देश के कोने कोने तक पहुंचाया जाएगा। इसके बाद पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में पार्टी एक महीने तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान का आयोजन करेगी। इसका उद्देश्य जनसेवा के प्रति श्री मोदी की प्रतिबद्धता को उजागर करना है। श्री तावड़े ने कहा कि इस अभियान के अंतर्गत पार्टी कार्यकर्ता देश भर के 14 लाख से अधिक आंगनवाड़ी केंद्रों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सम्मानित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित करेंगे।
1: ऐसे आंगनवाड़ी सम्मान एवं मातृ संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और देश भर की सभी 14 लाख से ज्यादा जो आंगनवाड़ी है वहां तक पार्टी का कार्यकर्ता पहुंचेगा और जिस सेवा भाव से काम करने वाली वहां हमारी माता बहन है उनका सम्मान स्वाभाविकता किया जाए।
0: श्री तावड़े ने ब्लॉक स्तर पर 15 दिन के सेवा सेतु अभियान की भी घोषणा की।
1: सेवा सेतु अभियान के तहत 15 दिन के लिए ब्लॉक लेवल पर हर योजना के संबंधित डिपार्टमेंट के आवश्यक कागजात को लेकर वहां लोग उपस्थित रहे तो आप वहां आइए, फॉर्म भरिए, आपका नाम आयुष्मान में ऐड हो जाएगा। ऐसे सरकार के अलग अलग भिन्न भिन्न जो योजनाएं हैं जिसका लाभ सभी लोगों तक पहुंचना है तो उनको ये मौका होगा कि उनके ब्लॉक स्तर पर सेवा सेतु अभियान का एक अपना अलग कार्यक्रम उस दरमियान होगा, उसमें वो इस मौके का लाभ लेते हुए अपने आप को इस योजना में जोड़ सकते हैं।
0: गृहमंत्री अमित शाह ने आज एक बैठक कर देश की पूर्वी सीमाओं पर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। इनमें सिलीगुड़ी कॉरिडोर चिकन नेक की सुरक्षा मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया गया। एक रिपोर्ट।
2: श्री शाह ने पश्चिम बंगाल के दौरे के तीसरे और अंतिम दिन सिलीगुड़ी के पास सुकना में राज्य सरकार और केंद्रीय सुरक्षा बलों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें सीमा सुरक्षा बल और सशस्त्र सीमा बल के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। बैठक में सीमा निगरानी मजबूत करने, केंद्रीय सुरक्षा बलों, खुफिया एजेंसियों तथा राज्य पुलिस और प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय पर बल दिया गया। प्रस्तावित त्रिकोणीय सुरक्षा ग्रिड की रूपरेखा तैयार करने पर भी चर्चा हुई। गृहमंत्री अमित शाह ने सुकना में वरिष्ठ गोरखा नेताओं के साथ भी बैठक की। दार्जिलिंग के लोकसभा सांसद राजू बिस्ता ने कहा कि बैठक बेहद सफल रही और सभी गोरखा नेताओं ने अपने मुद्दे रखे। बैठक के बाद गृह मंत्री ने घोषणा की कि मुद्दों के समाधान के लिए वार्ताकार पंकज सिंह की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत बांग्लादेश संबंध आपसी सम्मान पर आधारित होने चाहिए। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि किसी भी रिश्ते को सफल होने के लिए आपसी हितों की कसौटी पर खरा उतरना आवश्यक है। भारत बांग्लादेश के साथ हितों की समानता और पारस्परिक सहयोग पर आधारित सकारात्मक, रचनात्मक और प्रगतिशील संबंध चाहता है। विदेश मंत्री ने पाकिस्तान को विश्व का एक अनूठा देश बताया क्योंकि कोई अन्य राष्ट्र अपने पड़ोसी पर हमला करने और दबाव डालने के लिए आतंकवाद का इतने व्यवस्थित और निरंतर तरीके से उपयोग नहीं करता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आज ब्रिक्स युवा मंत्रियों की बैठक ब्रिक्स युवा मंत्रियों के संयुक्त वक्तव्य को अपनाने के साथ संपन्न हुई। बैठक में ब्रिक्स देशों के बीच युवा सहयोग में हुई प्रगति की समीक्षा की गई और शिक्षा, कौशल, उद्यमिता, नवाचार तथा सामाजिक विकास में युवाओं के लिए अवसरों का विस्तार करने के तरीकों पर चर्चा की गई। एक रिपोर्ट।
3: संयुक्त वक्तव्य में शिक्षा, प्रशिक्षण और कौशल, युवा उद्यमिता, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य और खेल, पर्यावरण और सतत विकास, सामाजिक और सांस्कृतिक भागीदारी, स्वयं सेवा, गरीबी उन्मूलन, अंतरधार्मिक संवाद और युवा समावेशन सहित प्रमुख क्षेत्रों की पहचान की गई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि युवाओं को भविष्य को आकार देने में भागीदार होना चाहिए। बैठक में निर्णय लेने की प्रक्रिया में युवाओं की भागीदारी के लिए अनुकूल वातावरण बनाने, युवा नेतृत्व वाली पहलों को मजबूत करने, नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने और सीमा पार युवा आदान

0: मतदान को विस्तारित करने पर चर्चा हुई। विजयवाड़ा से अलू मुरली की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने युवाओं से 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का आह्वान किया है। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा आयोजित विकसित भारत एट 2047 युवा राजनीतिक नेताओं के संवाद में डॉक्टर सावंत ने कहा कि युवा राजनीतिक नेताओं को पद पाने की लालसा के बजाय लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए काम करना चाहिए। उन्होंने उनसे नीति निर्माता, जमीनी स्तर के आयोजक, प्रौद्योगिकी उपयोगकर्ता और सामाजिक उद्यमी के रूप में विकसित होने का आग्रह किया। डॉक्टर सावंत ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व में प्रौद्योगिकी, नवाचार, निवेश, बुनियादी ढांचे और रोजगार के क्षेत्र में की जा रही विकास पहलों की भी सराहना की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वास्थ्य सेवाओं को आधुनिक तकनीक के साथ एकीकृत करने पर बल दिया है। नोएडा में एक लैब का उद्घाटन करने के बाद उन्होंने कहा कि जिस तरह शहरों की संख्या बढ़ रही है, उसी के अनुरूप देश में स्वास्थ्य सुविधाओं का भी विस्तार होना चाहिए। श्री सिंह ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में देश में चिकित्सा सुविधाओं का तेजी से विस्तार हुआ है। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आधुनिक मेडिकल इमेजिंग, डीएनए जांच, जीनोमिक्स, डिजिटल पैथोलॉजी और डेटा आधारित स्वास्थ्य सेवाएं बीमारियों की जांच और उपचार के तरीकों को तेजी से बदल रही है। उन्होंने बताया कि सरकार सशस्त्र बल चिकित्सा सेवाओं में भी नई तकनीक को शामिल कर रही है।
2: जैसे जैसे हमारे शहर बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे हमारी हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बढ़ाना ही होगा। हमारा लक्ष्य केवल बीमारी के सामने आने के बाद ट्रीटमेंट तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। फ्यूचर के हेल्थ केयर सिस्टम को प्रिवेंशन, अर्ली डिटेक्शन, रिस्क असेसमेंट और पर्सनलाइज्ड हेल्थ केयर पर अधिक ध्यान देना होगा।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने समाधान समारोह पहल के अंतर्गत आयोजित 3 दिन की विशेष लोक अदालत के पहले 400 दिन से अधिक मामलों का निपटारा किया। इनमें वैवाहिक और संपत्ति विवाद, मोटर दुर्घटना दावे, भूमि अधिग्रहण और मुआवजे से संबंधित मामले, कर विवाद और सेवा तथा श्रम संबंधी मामले शामिल हैं। न्यायालय ने कहा कि यह पहल न्याय व्यवस्था में मध्यस्थता और विवाद समाधान के अन्य सहमतिपूर्ण तरीकों को बढ़ावा देने के लिए उसके निरंतर प्रयासों को दर्शाती है। मेघालय और असम सरकार के बीच आज गुवाहाटी में संयुक्त बैठक हुई। इसमें 19 अगस्त को शिलांग में असम में पंजीकृत वाहनों में तोड़फोड़ की घटना के बाद स्थिति पर चर्चा की गई। मेघालय के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर असुनिया भालंगधार और असम सरकार में सीमा संरक्षण, असम समझौता कार्यान्वयन और विकास मंत्री अतुल बोरा ने गुवाहाटी में कोयनाधार स्टेट गेस्ट हाउस में दोनों राज्यों की सरकारों के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में संयुक्त बैठक की अध्यक्षता की। त्रिपुरा में नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर जोरम अनिया ने आज गोमती जिले के अथारू भोला में गरिया अकादमी मॉडल स्कूल का दौरा किया। दौरे के दौरान स्कूल की शिक्षा व्यवस्था, बुनियादी ढांचे, चुनौतियों और भविष्य की संभावनाओं पर चर्चा हुई। डॉक्टर अनिया ने जमातिया होडा समुदाय की संस्कृति, परंपराओं और विरासत के बारे में भी जानकारी ली। महाराष्ट्र और जर्मनी के हेसे राज्य ने निवेश, उद्योग, नवाचार, रोजगार और कौशल विकास के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। मुंबई में आज सह्याद्री अतिथि गृह में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और हेसे के मंत्री बोरिस राइन ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। समझौता ज्ञापन के अंतर्गत दवा, स्वास्थ्य, इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल, वित्तीय सेवाएं, लॉजिस्टिक्स सेवा, डिजिटल अर्थव्यवस्था और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने नीट पीजी परीक्षा के लिए चिकित्सा अधिकारियों की तैनाती के कारण सीजीएचएस वेलनेस सेंटर को 27 से 31 अगस्त तक बंद रखने का नोटिस का खंडन किया है। मंत्रालय ने कहा कि यह नोटिस झूठा है और अनाधिकृत है। सभी सीजीएचएस वेलनेस सेंटर अपने निर्धारित कार्य समय के अनुसार कार्य करेंगे। मंत्रालय ने लाभार्थियों को सलाह दी है कि वे केवल आधिकारिक सीजीएचएस चैनलों के माध्यम से जारी की गई जानकारी पर ही भरोसा करें। सरकार ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के उस फर्जी वीडियो का खंडन किया है जिसमें एक निवेश योजना का प्रचार किया जा रहा है। इस वीडियो में 22,000 रुपए के शुरुआती निवेश पर हर सप्ताह 5.5 लाख रुपए की सुनिश्चित आय देने का दावा किया जा रहा है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि यह वीडियो फर्जी है और एआई से तैयार किया गया है।

इकाई ने स्पष्ट किया कि वित्त मंत्री ने ऐसी किसी निवेश योजना या प्लेटफॉर्म का समर्थन नहीं किया है। जांच इकाई ने लोगों से ऐसे जालसाजों से सावधान रहने की अपील की है जो फर्जी योजनाओं का लालच देकर लोगों को ठगने और उनका पैसा हड़पने का प्रयास कर रहे हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है।

0: ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में उड़ीसा में बारिश की संभावना व्यक्त की है। इससे बाढ़ प्रभावित इलाकों में चिंता बढ़ गई है। हमारे संवाददाता ने बताया कि कई इलाकों में अब भी बाढ़ का पानी भरा हुआ है।
1: उड़ीसा में एक बार फिर बारिश होने की संभावना है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में बने नए मौसम से बारिश बढ़ने की उम्मीद है। आईएमडी भुवनेश्वर ने कई जिलों में हल्के से मध्यम बारिश या गरज के साथ छींटे पड़ने का अनुमान लगाया है और ये बारिश का दौर आने वाले हफ्ते तक जारी रहने की संभावना है। आज केंदुझर, मयूरभंज, कालाहांडी और नवरंगपुर के लिए भारी बारिश की येलो वार्निंग जारी की गई है, जबकि 24 और 25 तारीख को केंदुझर और मयूरभंज के लिए ऑरेंज वार्निंग का अनुमान है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के महिला डबल्स सेमीफाइनल में भारत की त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद को चीन की लियू शेंग शू और टैन निंग से हार का सामना करना पड़ा। हालांकि भारतीय जोड़ी ने प्रतियोगिता में कांस्य पदक सुनिश्चित कर लिया है। और FIH हॉकी पुरुष विश्व कप में भारत का मुकाबला मेजबान नीदरलैंड से जारी है। ताजा समाचार मिलने तक नीदरलैंड ने 1-0 की बढ़त बना ली है। पहले राउंड के 3 मैचों में भारतीय टीम ने 2 जीत और 1 हार के साथ दूसरे राउंड में जगह बनाई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के नए पदाधिकारियों से बातचीत की। संगठन को मजबूत करने और जनता से गहरे जुड़ाव पर बल दिया। गृहमंत्री अमित शाह के पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी में वरिष्ठ गोरखा नेताओं के साथ उच्च स्तरीय बैठक के बाद केंद्र ने गोरखा मुद्दे के समाधान के लिए उच्च स्तरीय समिति की घोषणा की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत बांग्लादेश के संबंध आपसी हितों पर आधारित होने चाहिए। भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में जनसेवा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को उजागर करने के लिए 1 महीने तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान का आयोजन करेगी। और BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में भारतीय महिला डबल्स जोड़ी त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद ने ऐतिहासिक कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi interacts with office bearers of the BJP in New Delhi, stresses on strengthening organization and deepening connect with the people. Centre announces high-level committee to resolve Gorkha issue after Home Minister holds high-level meeting with senior Gorkha leaders in Siliguri. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar says India-Bangladesh ties have to be based on mutual interests. BJP to launch month-long nationwide Seva Sankalp Abhiyan to mark Prime Minister Modi's birthday to highlight his commitment to public service. BRICS youth ministers adopt joint statements to expand opportunities for young people in education, skills, entrepreneurship, innovation and social development. In Odisha, fresh weather system over Bay of Bengal to enhance rainfall activity, raising concerns for flood-hit districts. And in BWF Badminton World Championships, Indian women's doubles pair of Trisha Jolly and Gayatri Gopichand clinches historic bronze medal. Prime Minister Narendra Modi held a meeting with the newly appointed national office bearers of the BJP at the party headquarters in New Delhi this evening. Besides BJP President Nitin Naveen, the meeting was attended by the party's national vice presidents and general secretaries, among others. The Prime Minister said in a social media post that organizational meetings are all about new ideas and perspectives aimed at strengthening the party and deepening connect with the people. He said it was a great interaction with fellow party colleagues and the new organizational team. Earlier, BJP National President Nitin Naveen held a meeting with the newly appointed national office bearers. The BJP president said the BJP team is committed to working with full dedication and devotion for expanding the base of the party to realize the resolve of Prime Minister Narendra Modi to make India a developed nation. Mr. Nitin Naveen informed that during the meeting, the BJP also passed a resolution regarding the honour and protection of the historical legacy of Vande Mataram.

0: श्रोता, ये गीत आपने सुना फिल्म रंग दे बसंती से, आवाज़ ए आर रहमान और नरेश अय्यर की थी। गीत के बोल प्रसून जोशी के और संगीत ए आर रहमान का।
1: रुपहले पर्दे के एक अभिनेता,
2: वो ऐसा सीन था कि वो मुन्नी से पूछता है कि तुम कौन से जगह से हो, वो बोल तो सकती नहीं थी, तो बोले कि मैं शहरों के नाम बोल रहा हूँ और उसमें एक शहर मेरा क्यू था, तो वो बड़ा मजेदार सीन है वो।
1: जिन्हें है रेडियो से बेशुमार प्यार,
2: कह सकता हूँ मैं कि रेडियो मेरे जिंदगी का एक अहम हिस्सा रहा है। मेरी नानी माँ का घर था जहाँ बिजली भी नहीं थी, सुबह 6 बजे से उनके घर में वो रेडियो शुरू हो जाता था। एक वक्त ऐसा आया कि वो रेडियो जब खराब हुआ तो मैंने खाना खाना छोड़ दिया।
1: एक कहानी जिसमें है संघर्ष और जिद।
2: राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में एक फायदा ये है कि पहनना ओढ़ना खाना पीना सिर्फ एक्टिंग एक्टिंग एक्टिंग ही रहती।
1: अभिनेता आलोक गागडेकर, बॉम्बे टॉकीज, 22 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

श्रोता, एक गीत आपने सुना फिल्म अतरंगी रे से, आवाज़ें अरिजीत सिंह और शाशा तिरुपति की थी। गीत के बोल इरशाद कामिल के और संगीत ए आर रहमान का।

0: श्रोता गीत आपने सुना फिल्म साथिया से, आवाज़ें के कुणाल और प्रवीण मनी की थी। गीत के बोल गुलजार के और संगीत ए आर रहमान का।
1: ये है विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन, आज के फनकार। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे थोड़ी ही देर में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मल।
1: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर कर

इसी बेमिसाल कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: चाव नहीं करता और साफ अपने जुर्म को कबूल कर लेता है तो इसी से वो रहम का हकदार नहीं हो जाता योर वर्शिप। आज तक जो कानून को दगा देता रहा अचानक आज वो शहीद बनने चला है। ये तो वही बात हुई कि 70 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली है। हमारा ही खून चूस चूस कर जो पलता रहा अचानक आज वो अपना खून हमें दान करने चला आया है। कड़ी से कड़ी सजा अदालत अगर ऐसे आदमी को नहीं देगी तो और किसे देगी।
1: ये आवाज फिल्म काला बाजार में उस मशहूर अदाकार की है जिसे दुनिया जानती है किशोर साहू के नाम से। आज का ये कार्यक्रम केंद्रित है अभिनेता, लेखक, निर्माता और निर्देशक किशोर साहू पर।

गुजरे दौर के सिनेमा के चहेते दर्शकों के लिए किशोर साहू एक सुपरिचित नाम है। बहुआयामी प्रतिभा के कलाकार किशोर साहू ने 1937 से 1980 के बीच 22 फिल्मों में अभिनय किया था। सन 1915 में तब के मध्य भारत और आज के छत्तीसगढ़ प्रांत के दुर्ग शहर में जन्म हुआ था किशोर साहू का। नागपुर के मॉरिस कॉलेज से उन्होंने बीए की पढ़ाई की थी। किशोर साहू के पिता रायगढ़ रियासत के दीवान थे। कॉलेज के दिनों से ही किशोर साहू कहानियां लिखा करते थे। अपने कहानी लेखन से ही वो सिने जगत के संपर्क में आए। तब के बंबई में उन्हें सिने जगत में पांव जमाने के लिए बहुत मेहनत भी करनी पड़ी।

मुंबई में अशोक कुमार और देविका रानी के प्रयासों से किशोर साहू को बॉम्बे टॉकीज की पहली फिल्म जीवन प्रभात में काम करने का मौका मिला। किशोर साहू ने कुछ अरसा मुंबई में और बिताया और फिर परिस्थितियों के चलते वापस नागपुर लौट गए। नागपुर में किशोर साहू के मित्र थे द्वारकादास डागा। उन्हीं के सहयोग से किशोर साहू ने बाद में मुंबई वापस लौटकर अपनी फिल्म निर्माण संस्था की नींव रखी। इस संस्था का नाम था द इंडिया आर्टिस्ट लिमिटेड। अपने इस बैनर तले उन्होंने अपनी पहली फिल्म बनाई बहुरानी। अपने फिल्म बैनर तले किशोर साहू ने जो कुछ और मशहूर फिल्में निर्मित की उनके नाम हैं पूनम की रात, पुष्पांजलि, मयूर पंख और बेटी नैना साहू को लेकर बनाई गई फिल्म हरे कांच की चूड़ियां।

किशोर साहू अभिनेता, निर्माता, निर्देशक बनने से पहले लेखक थे। कहानी लेखन पर उनकी अच्छी पकड़ थी। उनकी ये प्रतिभा कई फिल्मों में नजर आती है। एक लेखक के रूप में उनकी चर्चित फिल्में हैं मयूर पंख, दिल अपना और प्रीत पराई, हरे कांच की चूड़ियां, औरत और तीन बहुरानियां। इस फिल्म की कहानी एक मध्यवर्गीय संयुक्त परिवार, उसकी आर्थिक स्थिति और परिवार के सदस्यों के आपसी संबंधों को रेखांकित करती है। दिल अपना और प्रीत पराई का लेखन करने के साथ साथ किशोर साहू ने इस फिल्म को निर्देशित भी किया था। इस फिल्म के गीत आज भी बेहद लोकप्रिय हैं।

निर्देशक के रूप में किशोर साहू की अन्य मशहूर फिल्में हैं 1942 की कुंवारा बाप, राजा, शरारत, वीर कुणाल, सिंदूर, साजन, 1948 की नदिया के पार, सावन आया रे, काली घटा, मयूर पंख, हैमलेट, किस्मत का खेल, बड़े सरकार, गृहस्थी, घर बसा के देखो, हरे कांच की चूड़ियां, पुष्पांजलि, धुएं की लकीर और पूनम की रात।

0: कौल और साहित्यकार अमृतलाल नागर किशोर साहू के अभिन्न मित्रों में से थे। नागर जी ने किशोर साहू के लिए 3 फिल्में लिखी थीं, राजा, वीर कुणाल और कुंवारा बाप। फिल्म वीर कुणाल की नायिका थीं अभिनेत्री तनुजा और नूतन की मां शोभना समर्थ। सन 1942 में बनी फिल्म कुंवारा बाप और सन 1943 में बनी फिल्म राजा हास्य प्रधान फिल्में थीं। इनमें स्वयं अमृतलाल नागर जी ने भी अभिनय किया था। किशोर साहू एक समर्थ अभिनेता थे। यूं तो उनके अभिनय से सजी कई फिल्में हैं, लेकिन जिन फिल्मों में उनके अभिनय को बहुत सराहना मिली उनमें से ही एक है फिल्म गाइड में किशोर साहू द्वारा निभाई गई रोजी बनी वहीदा रहमान के पति मार्को की भूमिका। ये गीत है फिल्म काली घटा का।
1: हम

28 अगस्त सन 1986 को इस दुनिया में अपने जीवन रूपी रंगमंच की आखिरी भूमिका निभाकर किशोर साहू इस दुनिया से विदा हो गए। हमारे पास अब उनके अभिनय से सजीव फिल्में हैं और उनके परिजनों, इष्ट मित्रों के पास हैं उनकी स्मृतियां।

आज के ये फनकार, आज का ये कार्यक्रम केंद्रित था सुप्रसिद्ध फिल्म अभिनेता, लेखक, निर्माता और निर्देशक किशोर साहू पर। शोध, आलेख और स्वर

0: आज के ये फनकार, आज का ये कार्यक्रम केंद्रित था सुप्रसिद्ध फिल्म अभिनेता, लेखक, निर्माता और निर्देशक किशोर साहू पर। शोध, आलेख और स्वर कमल शर्मा का। संपादक और प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: छाया गीत
1: लग जा गले।
0: हिंदी फिल्म संगीत के स्वर्णिम युग की एक संगीतमय यात्रा।
2: तेरे मेरे सपने अब
0: पुराने दिनों की मनमोहक धुनों में गोता लगाएं, सुरों के पंख लगाकर आसमां में उड़ उड़ जाएं।
2: भीगी भीगी रातों में मीठी मीठी बातों में।
0: याद रहे, ये वो कैप्सूल है जो धुनों को, आवाज को और यादों को जीवंत रखता है।

ये धड़कनों का कारवां जो कभी किसी के नाम से तेज हो जाता है, बहकने लगते हैं कदम, प्यार में किसी से मिलने की रितुवे भी इन वादियों में कई महकते हुए गुल खिला देती हैं, जिनकी रंगत किसी के हुस्न की मिसाल बनकर तन मन को उमंग से भर देती है और दिल गा उठता है।

मन की तरंगे किसी के इंतजार में बेकरार हो राह निहारने लग जाती हैं। बहारों की खुशबू सांसों में घुलकर मिलन की आस जगा देती है। उनकी यादों की कसक दिल के आईने में एक अक्स उभारने लग जाती है। ऐसा लगता है ये वक्त यही थम जाए, अपने प्यार का इजहार दिल खोल के उसके सामने कुछ यूं कर दूं।

अंतराल के बाद छायागीत में आप और हम आ गए हैं साथ साथ। पेश है मोहब्बत भरे दिलों की दास्तां। ये इजहारे मोहब्बत भी खूब रंग लाया, मेरे दिल की सदा उनके दिल की सदा बन गई। वो पहलू में आए और यूं बैठ गए जैसे चांद के पास चांदनी रहती है। उनका वो साथ, गर्म सांसों का एहसास, फिर ओठों पे उनके थिरकते गीतों की फुहार इस मुलाकात को और भी रोशन कर उठी। बस दिल की ना पूछिए, वो तो चुपके चुपके आहें भरने लगा।

कौन रोक सकता है दिल को जब नजरों से नजरें मिलती हैं, बिना कहे ही सारी बात हो जाती है। मोहब्बत के सफर पे चल पड़ते हैं जब दो दिल, तो ढूंढते हैं मंजिल एक होने की। महफिल में हो या खुली वादियों में, अपने प्यार का इजहार करने को बेताब रहती है दिल की धड़कनें। और जब मौसम हो इश्क का, तो कहने ही क्या, वो अपनी रूहानी रंगत में दिलों को रंग देता है और खामोशी बहुत कुछ बयां कर जाती है।

लेकिन खामोशी बहुत देर तक कहाँ खामोश रह पाती है। जब बात आशिकों के दिलों की हो तो जुबां बोल पड़ती है, और हम सफर बनने तक के सफर में कई वादे कस्में दिल कर ही बैठता है। तभी तो एक दूसरे के मोहब्बत पर चाहत पर यकीन करने को दिल मचल उठता है। तभी तो ये गीत होठों पर खुद ब खुद सज उठता है।

कहीं ना कहीं इन गीतों ने आपके दिल को छुआ तो होगा, आपकी यादों ने दस्तक भी दी होगी। फिलहाल मुझे इस सफर से विदा लेनी होगी। प्यार भरे नमस्कार के साथ मंत्री वर्मा को अनुमति दीजिए। शुभ रात्रि।

0: सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुवारे,
1: क्यों कर रहे हो? कहाँ आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना।

0: रंगमंच से रुपहले पर्दे तक कुछ अनकहे किस्से, कुछ यादगार किरदार।
1: रावड़ी राठौड़ में मेरा करैक्टर इंस्पेक्टर का था, जो कि पॉजिटिव था, और कर्नाटका में एक जगह है जो बहुत मंदिर है जहाँ, उसकी जगह पे शूटिंग हुई थी इसकी।
0: अभिनय के दुनिया की बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा, सुनिए उनकी जिंदगी, उनके रिश्तों और सिनेमा की बातें।
2: पिज्जा एमएमएस का मैं खास करके बताना चाहूंगी कि दो ही एक्टर थे उसमें, और दो ही एक्टर की 16 मिनट की नॉन कट मतलब फिल्म है वो।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 25 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

पर। सिनेमा बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।

सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन, अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम।

सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन, अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम।

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

0: अभी हम रिले कर रहे थे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम आकाशवाणी का। ये बिलासपुर केंद्र है, रात के 11 बजने को हैं समाचार। अब हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।
1: समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शाम नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ वार्ता की। प्रधानमंत्री ने कहा कि संगठनात्मक बैठकें नए विचारों और दृष्टिकोणों पर आधारित होती हैं। इनका उद्देश्य पार्टी को मजबूत करना और लोगों के साथ इसके जुड़ाव को बढ़ाना है। इससे पहले दिन में पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने भी पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ बैठक की। श्री नवीन ने कहा कि पार्टी भाजपा कार्यकर्ताओं के माध्यम से एक राष्ट्रव्यापी अभियान चलाएगी। इसमें वंदे मातरम के इतिहास, राष्ट्रीय महत्व और गौरवशाली विरासत को देश के कोने कोने तक पहुंचाया जाएगा। इसके बाद पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में पार्टी एक महीने तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान का आयोजन करेगी। इस अभियान के अंतर्गत पार्टी कार्यकर्ता देश भर के 14 लाख से अधिक आंगनवाड़ी केंद्रों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सम्मानित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित करेंगे।
2: ऐसे आंगनवाड़ी सम्मान एवं मातृ संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और देश भर की सभी 14 लाख से ज्यादा जो आंगनवाड़ी है वहां तक पार्टी का कार्यकर्ता पहुंचेगा और जिस सेवा भाव से काम करने वाली वहां हमारी माता बहन है उनका सम्मान स्वाभाविकता किया जाए।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने आज एक बैठक कर देश की पूर्वी सीमाओं पर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। इसमें सिलीगुड़ी कॉरिडोर, चिकन नेक की सुरक्षा मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया गया। श्री शाह ने पश्चिम बंगाल के दौरे के तीसरे और अंतिम दिन सिलीगुड़ी के पास सुकना में राज्य सरकार और केंद्रीय सुरक्षा बलों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें सीमा सुरक्षा बलों और सशस्त्र सीमा बल के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। बैठक में सीमा निगरानी मजबूत करने, केंद्रीय सुरक्षा बलों, खुफिया एजेंसियों तथा राज्य पुलिस और प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय पर बल दिया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि अहिंसा और शांति भारत की संस्कृति का हिस्सा हैं और किसी को भी अहिंसा के इस मूल्य को इसकी कमजोरी समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा, संप्रभुता और सम्मान की रक्षा करना सरकार का सर्वोच्च दायित्व है। श्री सिंह नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में बोल रहे थे। रक्षा मंत्री ने कहा कि जैन धर्म भारत की सभ्यता और संस्कृति का गौरव है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार जैन परंपराओं और विरासत के संरक्षण के लिए काम कर रही है। उन्होंने बताया कि पिछले कुछ वर्षों में विदेशों से भगवान तीर्थांकर की 20 से अधिक चोरी हुई प्राचीन प्रतिमाओं को भारत वापस लाया गया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि भारत बांग्लादेश संबंध आपसी सम्मान पर आधारित होने चाहिए। नई दिल्ली में कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि किसी भी रिश्ते को सफल होने के लिए आपसी हितों की कसौटी पर खरा उतरना आवश्यक है। भारत बांग्लादेश के साथ हितों की समानता और पारस्परिक सहयोग पर आधारित सकारात्मक, रचनात्मक और प्रगतिशील संबंध चाहता है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आज ब्रिक्स युवा मंत्रियों की बैठक ब्रिक्स युवा मंत्रियों के संयुक्त वक्तव्य को अपनाने के साथ संपन्न हुई। बैठक में ब्रिक्स देशों के बीच युवा सहयोग में हुई प्रगति की समीक्षा की गई और शिक्षा, कौशल, उद्यमिता, नवाचार तथा सामाजिक विकास में युवाओं के लिए अवसरों का विस्तार करने के तरीकों पर चर्चा हुई। सर्वोच्च न्यायालय ने समाधान समारोह पहल के अंतर्गत आयोजित 3 दिन की विशेष लोक अदालत के पहले दिन 400 से अधिक मामलों का निपटारा किया। इनमें वैवाहिक और संपत्ति विवाद, मोटर दुर्घटना दावे, भूमि अधिग्रहण और मुआवजे से संबंधित